भी भव्य जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कारीगर तीनों पवित्र रथों को तेजी से आकार देने में जुटे हैं। इसके अलावा नाटगोर प्रतिमाओं की पॉलिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, तो रथ यात्रा के दौरान भगवान की सेवा पूजा के लिए लकड़ी से बने उपकरणों का निर्माण कार्य भी हो रहा है। चित्रकार सेवक तीनों रथों के पार्श्व देव देवियों की मूर्तियों, सखियों, उलटशुआ, देव देवी आसन फ्रेम आदि पर रंग रोगन करने में लगातार जुटे हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर हर स्तर पर बड़ी तैयारी की जा रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर उनकी सुरक्षा तक को लेकर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम में सुरक्षा और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान कई संभावित आपात स्थितियों से निपटने को लेकर अभ्यास किया गया, जिनमें सुरक्षा, खतरे, मेडिकल इमरजेंसी, भीड़ प्रबंधन और निकासी जैसी स्थितियां शामिल रहीं। इस मॉक ड्रिल के तहत अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल, संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की समीक्षा की गई। ये तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित फॉरेस्ट पार्क की है, जहां राजा पर्वा की रौनक बिखरी हुई है। पारंपरिक झूले, उत्सव और उल्लास के साथ यहां राजा पर्व की शुरुआत हुई। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं झूलों का आनंद लेते बच्चों के साथ ही इस पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पान समेत पारंपरिक पकवानों के स्टॉल देखने को मिल रहे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव के साथ ओडिशा में मॉनसून का स्वागत किया गया। ये राजा पर्व नारित्व और धरती माता की उर्वरता का उत्सव है, यानी ये प्रकृति, उर्वरता और परंपरा का अनूठा उत्सव है, जिसमें पूरे राज्य के लोगों की भागीदारी होती है। इस उत्सव को मनाने के लिए पारंपरिक ओडिया व्यंजन तैयार किए जाते हैं, साथ ही विशेष रूप से तैयार किया गया पान इस त्योहार के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। और अब बात एक ऐसे सरकारी स्कूल की, जिसमें दाखिले के लिए पेरेंट्स कतारों में खड़े नजर आए। तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक सरकारी स्कूल इन दिनों अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए चर्चा में है। इस सरकारी स्कूल में AC, स्मार्ट क्लासरूम, AI आधारित टीचिंग और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि केवल शहर से ही नहीं बल्कि जिले के दूर दराज इलाकों और पड़ोसी जिलों से भी अभिभावक बच्चों के फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं।

0: इससे पहले स्कूल को देखो तो वो स्कूल में कोई भी हमारा को फैसिलिटी नहीं।
1: इसे आप तेलंगाना के सरकारी स्कूल के पुनर्जन्म की कहानी भी कह सकते हैं। नलगोंडा के बोट्टुगुड़ा में कोमाटी रेड्डी प्रतीक गवर्नमेंट स्कूल में इस साल एडमिशन का ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि यहाँ महज 450 सीटों के लिए करीब 4000 आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते इस सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना किसी IIT या IIM की सीट मिलने जितना मुश्किल हो गया है।
2: नलगोंडा जिले ने अपना इमेज पूरी तरह, अपनी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। वजह है, इस जिले में एक वक्त में जीरो एनरोलमेंट्स, शून्य एनरोलमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में होते थे और इसी के लिए देश भर में यह नलगोंडा जिले का नाम था। लेकिन एक साल के अंदर नलगोंडा जिले में एक कोमोट्रिटी प्रति गवर्नमेंट स्कूल, यह सरकारी स्कूल में 450 सीट के लिए 4000 एप्लीकेशंस दाखिल किए गए।
1: स्कूल के बाहर का नजारा किसी महंगे और VIP प्राइवेट स्कूल जैसा लग रहा है, जहां सुबह सुबह से ही माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस के मुकाबले उनसे कहीं बेहतर सुविधाओं से लैस ये सरकारी स्कूल बच्चों और अभिभावकों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है।
3: पहले हमारा स्कूल जो गवर्नमेंट था उसमें ना फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड था, तो हमारे को ऐसा दिल बोलता था कि कब घर जाएं। इसलिए हमारे कोमटेड्डी वेंकट रेड्डी जो मिनिस्टर है सर, उन्होंने ये स्कूल बनवाया। इसमें डिजिटल बोर्ड है, AC कैंपस है पूरा, और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कब स्कूल आए, घर जाने का मन ही नहीं करता हमें।
4: स्कूल अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ती हूँ और प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ते हैं, बट मैं कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं वो क्या बोलते हैं।
1: एडमिशन की लाइन में लगे अभिभावकों का कहना है कि पहले वो अपने बच्चे के लिए नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में भारी भरकम फीस चुका रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस स्कूल के कैंपस और सुविधाओं को देखा तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर लगा।
5: सर, इससे पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे सर, फिर वहाँ फीस, बुक्स सब बहुत ज़्यादा हो जाता सर, तो परेशानी हो रहा था बच्चों को पढ़ाना लिखाना। तो ये स्कूल बना है सर, ये बहुत अच्छा बना है स्कूल, यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर AC कैंपस है, प्राइवेट स्कूल के बराबर ये स्कूल बना है। इस लेवल के ये साल में ये स्कूल में एडमिशन करे।
1: दरअसल साल भर पहले इस स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। पिछले साल तक ये स्कूल बिना किसी पक्की इमारत के चल रहा था और यहाँ करीब 200 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब ये एक स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो चुका है। लिफ्ट से लेकर कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, AI बेस्ड लर्निंग, डिजिटल लैब और इंडोर स्पोर्ट्स तक की सुविधाएं हैं। AI की क्लास में सुंदर पिचाई की तस्वीर बच्चों को इंस्पायर करती है, तो वहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी रूम में सुनील छेत्री, PV सिंधु और विराट कोहली आइकन है।
2: AC क्लासरूम्स है बच्चों के लिए, रेप्यूटेड यूनिफॉर्म यहाँ पर बताई जाती है और साथ ही साथ मिड डे मील्स, ब्रेकफास्ट मील्स यहाँ पर लाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म मुफ्त में दिया जाता है, किताबें और बैग मुफ्त में दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब शिक्षा की बात हो तो AI लर्निंग क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, AC क्लासरूम, साथ में मॉडर्न बेंचेस के साथ एक मुफ्त में इस तरीके का अनुभव यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों को देखने को मिलता है।
1: कुछ समय पहले तक नलगोंडा की गिनती उन जिलों में होती थी जहाँ सरकारी स्कूलों में बहुत कम या बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होते थे, लेकिन इस स्कूल ने तस्वीर बदल दी है और अब ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के माहौल के मामले में बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है। तेलंगाना के नलगोंडा से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गदर के 25 साल पूरे होने पर फैंस को सनी देओल ने कहा शुक्रिया। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
7: फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने उनके निभाए गए तारा सिंह के किरदार को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। साल 2001 में इस फिल्म में तारा सिंह बनकर सनी देओल बड़े पर्दे पर छा गए थे। 15 जून को फिल्म गदर के रिलीज होने के 25 साल पूरे हो गए। फिल्म गदर का क्रेज लोगों में इतना ज्यादा था कि इसका एक उदाहरण साल 2023 में भी देखने को मिला, जब इस फिल्म के अगले भाग यानी गदर 2 को भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली। अब निर्देशक अनिल शर्मा इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। करण जौहर अब साउथ सिनेमा में फिल्म निर्माण की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस कड़ी में उन्होंने पहला कदम मलयालम सिनेमा की तरफ बढ़ाया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन के निर्माण का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया जा चुका है। धर्मा प्रोडक्शन ने 19वीं सदी के केरल की लोक कथाओं और सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और निर्देशक राहुल के साथ हाथ मिलाया है। फिल्म ओडियन में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, जिनमें उनके साथ मंजू वॉरियर अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार हिरानी जियो स्टारर पर प्रीतम और पेड्रो नाम का वेब शो ला रहे हैं, जिसमें उनके बेटे वीर हिरानी अपना एक्टिंग डेब्यू करते नजर आएंगे। अरशद वारसी और वीर हिरानी के इस शो का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। सीरीज की ये कहानी गोवा पर आधारित है, जहां अरशद वारसी यानी पेड्रो नाम के पुलिस ऑफिसर इंजीनियर के रूप में प्रीतम यानी वीर हिरानी की जोड़ी धमाल करती हुई नजर आ रही है। प्रीतम और पेड्रो शो 3 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा। इसमें मोना सिंह, बमन ईरानी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
6: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले वैभव सूर्यवंशी अब क्रिकेट के मैदान पर झगड़े को लेकर चर्चा में। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में इंडिया ए से खेल रहे हैं। दामुला में सोमवार को इस ट्राई सीरीज का चौथा मैच विवादों में घिर गया। इस मुकाबले में श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए को सुपर ओवर में हरा दिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ने के कारण वो चर्चा में आ गए। सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 16 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 9 रन ही बना सकी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सुपर ओवर खत्म होने के बाद श्रीलंका के ऑलराउंडर विशेन ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, मैच खत्म हो गया, अब घर जा। इस बात पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और श्रीलंकाई खिलाड़ी से जा भिड़े। माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों के बीच शारीरिक रूप से झड़प भी हुई। पहले सूर्यांश शेडगे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच शब्दों के बाण चले, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी पास आए तो उन्होंने श्रीलंका के एक खिलाड़ी को धक्का दिया। श्रीलंका टीम के अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। वहीं जब वैभव डगआउट की तरफ जा रहे थे, तब भी उन्होंने हाथ से इशारा करके कुछ कहा। श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी के झगड़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई क्रिकेट फैंस श्रीलंकाई खिलाड़ियों के उकसावे को इस भिड़ंत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने वैभव को आगाह करते हुए रिएक्ट किया है कि उन्हें समय के साथ ट्रोल्स को इग्नोर करना सीखना होगा, वरना उनकी इमेज खराब होने का खतरा हो सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस झगड़े के बारे में दरअसल हुआ क्या था। विक्रांत, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ जो कि वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और विरोधी टीम के खिलाड़ी के साथ धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई, और साथ ही इंडिया ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा भी मैच के दौरान विवाद करते हुए नजर आए।
8: ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, और देखिए इस इंसिडेंट को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और मैं अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि कल हुआ क्या था। हम जानते हैं कि प्रोवोकेशन श्रीलंकन तरफ से हुई होगी, और ये हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती है, खिलाड़ी एक दूसरे को स्लेज करते हैं और वैभव सूर्यवंशी को सामने वाली टीमें टारगेट करेंगी। ये तो इंडिया ए श्रीलंका ए का मुकाबला है, कल को वो जब आयरलैंड जाएंगे या इंग्लैंड जाएंगे या उसके बाद भारत के लिए खेलेंगे, टीमें उनको टारगेट करेंगी। बिकॉज एक बात होती है ना, 15 साल में आपकी गेम कैसी है, दूसरा होता है कि 15 साल में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। भाई आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ही आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कल ना ऐसा लगा वैभव सूर्यवंशी को देखकर कि यार एक इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। हुआ क्या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब इंडिया मैच हार गया, ए फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप सिर्फ उस सुपर ओवर की आखिरी गेंद छोड़ दे, उससे पहले अगर आप 20-25 मिनट देखे, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी। अब एंड वाला जो कहते ना कि ब्लो, वो था वैभव सूर्यवंशी के नाम, लेकिन उससे पहले तिलक वर्मा जो आपके कप्तान हैं वो उलझ रहे थे, बार बार अंपायरों के साथ उलझ रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि तिलक वर्मा के बिहेवियर को देखकर शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगा। इनफैक्ट वो कप्तान है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा थे, तो शायद मैं उनसे बेहतर उम्मीद करता हूँ। और एक कप्तान से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी टीम को लीड करे, मैं उस कप्तान से ये उम्मीद करता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को वो बल्कि समझाए, ना कि आप जो पिछले 25-30 मिनट से चल रहा था, जैसे होता ना कि जमुना पार एक क्लब का मैच चल रहा है, आप भी अंपायर से लड़ रहे हो, वो जो फील्डर है वो भी आपको गाली दे रहे हैं, आप भी जाके सुंडमुखी के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये सही नहीं होता। लोग ना अब क्या कह रहे हैं, 15 साल का बच्चा है, तुम कौन होते हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले। बात ये नहीं है, जब वो क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त खेल रहे थे तब आप नहीं कहते थे कि यार ये तो बेचारा 15 साल का बच्चा है, तब आप कहते थे ही इज़ अ मैन, ही इज़ रेडी फॉर द वर्ल्ड। और आज जब आपको लगता है कि उस बिहेवियर के कारण, उस आपा खोने के कारण उनकी गेम अफेक्ट होगी, तो आप उसको अभी से रोकें। ये चीज़ें जो हैं ये अंडर 19 लेवल पे चलती हैं, ऊपर जाकर क्या होगा कि सामने वाली टीमें समझ जाएंगी कि इनको अगर आप टारगेट करेंगे, जहनी तौर पर स्लेज करेंगे, गाली देंगे, तो भैया उस तरह से आपा खो बैठेंगे। अब ये इंटरनेशनल मैच होता, अगर ये इंटरनेशनल मैच होता तो बैन लग जाता। आप ये याद रखिएगा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ये धक्का मुक्की हुई है। मैंने आपको क्या बोला, मैं अगर आपको स्लेज कर रहा हूँ वो नियमों के तहत सही है, अनलेस एंड अंटिल मैं रेशियल विलिफिकेशन, यानी कि मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर मैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा हूँ तो फिर वो ICC कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आती है। उसके अलावा स्लेजिंग चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं। और हाँ, अगर आपने धक्का दे दिया, आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट कर लिया, तो बैन तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लग जाता है।
6: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात देश के उन बेटियों की जो कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं। इस चैंपियनशिप की टीम के चयन के लिए हरियाणा में ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में चुनी गई देश की 10 पहलवान बेटियों में 6 हरियाणा की हैं, बाकी 4 में 2 रेसलर दिल्ली और 1-1 राजस्थान और महाराष्ट्र से हैं।

0: हरियाणा की पहचान कुश्ती के गढ़ के तौर पर भी है। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चे पहलवानी के दांव पेच सीखने लगते हैं और आगे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों से पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते आ रहे हैं। हरियाणा की मिट्टी और संस्कृति में कुश्ती जैसे रची बसी है और यही वजह है कि रेसलिंग में देश के लिए ज्यादातर मेडल इसी राज्य से आते हैं। सिर्फ छोरे ही नहीं बल्कि हरियाणा की छोरियां भी कुश्ती में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करती हैं।
1: काफी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह शाम दोनों टाइम, डाइट का ध्यान रखना और प्रॉपर रेस्ट वगैरह सब कुछ।
2: क्या काम करते पिता आपके?
1: पापा खेती करते हैं।
2: कभी रोका नहीं परिवार ने कुश्ती में?
1: नहीं, पूरा साथ दिया।
3: कब से पैदा हुआ?
1: बचपन से ही, जैसे मेरे भाई हैं बड़े, वो जाते थे तो उन्होंने देख।
0: हरियाणा के बहालगढ़ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियां शामिल हुई जो कुश्ती के अपने हुनर का प्रदर्शन करती नजर आई।
4: इसमें लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 10 वजन इसमें सिलेक्ट करने हैं, 10 वजनों का चयन होना है और अजरबैजान बाकू में ये खेलने के लिए अगले महीने।
0: इस ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर 10 महिला पहलवानों का चयन किया गया। खास बात ये है कि इसमें भी हरियाणा की बेटियों का दबदबा रहा। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 10 महिला पहलवानों में 6 हरियाणा की ही हैं।
5: खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन टोटल जो जाएंगे बाहर जाएंगे तो 10 खिलाड़ी जाएंगे।
2: किस किस कैटेगरी में सर?
5: ये सब कैटेगरी में है, जैसे 53 में है, 57 में है, सारी कैटेगरी जो है उसमें।
2: ये ट्रायल सिर्फ लड़कियों की है या बॉयज की भी?
5: नहीं, सिर्फ लड़कियों की।
0: इस खेल की बेहतरी के लिए भारतीय कुश्ती संघ की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा खिलाड़ियों को मिल रहा है।
6: तो फेडरेशन ने जो सिस्टम निकाला है ना, ये ओवर एज निकालने का, उस सिस्टम के आधार पे नए बच्चों को मौका मिल रहा है। हमारे अभी तक जितना भी देखा है फेडरेशन ने, पहलवान जो है एक मतलब कि जूनियर और कैडेट खेल के खत्म हो जाते हैं और जो जितना भी अपना स्टेमिना है वो अंडर 17 और अंडर 20 में ख़राब कर देते हैं, सीनियर में वो आ नहीं पाते हैं। तो लगभग अभी ये जो नया सिस्टम जो ओवरेज को लेकर फेडरेशन ने कराया है, उससे लगता है कि पहलवान जो ना अब हमारे को सीनियर में मेडल देंगे। ये जो आज ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये सीनियर में आपको आने वाले नहीं 28 महीने 32 ओलंपिक में आपको ये बच्चे मेडल देंगे।
0: ट्रायल में चुनी गई लड़कियां अब अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अलग अलग भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ताइवान में ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए शुरू की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी फुटबॉल टीम का मैच ड्रॉ होने पर जापानी फैंस खुशी से झूम उठे। जश्न मनाने के लिए वो टोक्यो के सबसे मशहूर और बिजी चौराहे शिबुया क्रॉसिंग पर जमा हुए, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड के लिए। जैसे ही सिग्नल लाल हुआ, ठीक उसी सेकंड सब ने जश्न रोका और बेहद अनुशासन के साथ वापस फुटपाथ पर लौट आए ताकि गाड़ियों का रास्ता ना रुके। यानी जब तक पैदल चलने वालों के लिए ट्रैफिक लाइट हरी रही, तब तक सड़क के बीचों बीच फैंस नाचते गाते रहे। लाल होते ही जश्न पर फुल स्टॉप। दुनिया जापानी फुटबॉल फैंस की तारीफ कर रही है। ताइवान के ताओ आदिवासियों ने लकड़ी की पारंपरिक नाव से फिलीपींस के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की है, जिसका मकसद सैकड़ों साल पुराने सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों को फिर से जीवित करना है। इस 20 सीटों वाली ओवायन नाव को ऑर्किड द्वीप के 6 समुदायों ने मिलकर बनाया है। 24 घंटे की समुद्री यात्रा में 7 लोग बारी बारी से चप्पू चलाएंगे। ये कैंपेन दोनों समुदायों के बीच खोए हुए संपर्क को फिर से जोड़ने का प्रयास है। स्थानीय लोगों ने इस समुद्री यात्रा को एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया और इसका स्वागत किया। चीन में 600 साल पुरानी ओपेरा कला की धमाकेदार वापसी हुई। यहां हिट टीवी ड्रामा ने किंग क्यान ओपेरा को एक बार फिर सुपर हिट बना दिया। यहां के शियान की बैल्कनीज पर अचानक से इन ओपेरा शोज की प्रस्तुति होने लगी है, जिसके कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में चीन दर्शकों का दिल जीत लिया है। चीन में तैयार हो गया है एआई लैब का भविष्य, क्योंकि बीजिंग में एआई एक पूरी लैब चला रहा है जिसमें इंसान सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। इस लाइट्स आउट लैब में बिना स्टाफ के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लैब में एआई खुद रिसर्च करता है और खुद ही नतीजे निकालते हैं। लैब में ना तो कोई स्क्रीन है और ना ही कोई LCD डिस्प्ले। यहाँ AI तमाम प्रक्रियाएं खुद सुधारता है और दक्षता बढ़ाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से पहले चीन में रेस का रोमांच देखने को मिल रहा है। यहाँ चोंकिंग की फुरोन नदी में उतरी 18 टीमों ने एक दूसरे को चुनौती दी, जहाँ करीब करीब 500 पैडलर्स ने ताकत और तालमेल का प्रदर्शन किया है। रेस में 200 और 500 मीटर की रेस में सबसे जबरदस्त मुकाबला हुआ। ग्वांगझू में 600 एथलीट्स ने इस रेस में हिस्सा लिया। यहाँ रिटर्न ड्रैगन फॉर्मेट ने कई गुना रोमांच बढ़ा दिया।
3: स्मृति मंधाना के नाम जुड़ा हिस्टोरिकल अचीवमेंट, तो वहीं राजस्थान के धौलपुर के बेटे ने बनाई अंडर 19 टीम में जगह। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
7: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम के साथ एक ऐतिहासिक अचीवमेंट जुड़ गया है। टाइम मैगजीन ने अपनी टॉप 100 लिस्ट में स्मृति मंधाना को शामिल किया है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में विराट और रोहित जैसे स्टार प्लेयर्स गायब हैं। इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है और उनका नाम है स्मृति मंधाना, जो लिस्ट में 41वें नंबर पर हैं। टाइम्स मैगजीन की इस लिस्ट में प्लेयर्स, कोच और निवेशक तक शामिल हैं। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी और कार्लोस अल्कारेज जैसे स्टार्स शामिल हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कल हरमनप्रीत की टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स की महिला टीम से होगा। महिला T20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रनों की शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का लक्ष्य अब कल खेले जाने वाले अपने अगले मुकाबले में नीदरलैंड्स को हराना होगा। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच डे नाइट होगा। कल दोपहर 1 बजे टॉस के बाद लगभग 1:30 बजे मैच शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है, जिसमें पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया 1-0 से आगे है। अब कल के मैच को जीत कर भारतीय टीम का सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर फोकस रहेगा। राजस्थान के धौलपुर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। रजत को श्रीलंका दौरे के लिए चुनी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय अंडर 19 टीम 6 जुलाई से श्रीलंका में एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी। रजत के चयन की सूचना मिलने के बाद से शहर में और खेल जगत में खुशी है। रजत के साथी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसे धौलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। रजत इससे पहले राजस्थान अंडर 16 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे 2 बार 13 शतक जड़कर सुर्खियों में आ चुके हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी और निरंतर प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें इंडियन अंडर 19 टीम में जगह मिली। सरेना और वीनस विलियम्स विंबलडन में अपनी डबल्स पार्टनरशिप फिर से शुरू कर रही हैं। ऑल इंग्लैंड क्लब ने आज दोनों को ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए डबल्स वाइल्ड कार्ड का न्योता दिया है। ये टूर्नामेंट 2 हफ्ते से भी कम समय में शुरू होने वाला है। विलियम्स बहनों ने साथ मिलकर डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिनमें से 6 खिताब दोनों ने विंबलडन में जीते। बहनों की इस जोड़ी ने पहला विंबलडन खिताब 2000 में और आखिरी विंबलडन खिताब 2016 में जीता था।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
9: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
10: To thrive in today's tech world, you need more than coding tutorials. That's why WGU's computer science degree teaches you the building blocks behind AI and automation, like algorithms, data structures, architecture, and more. You'll earn multiple industry certifications, gain real experience, and graduate with a degree employers trust. Plus, it's flexible, affordable, and online. Move your tech career forward at WGU.edu.
11: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

सबका एक उत्तर होगा। अच्छा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो। उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, झंझट खत्म। तो सुबोध राजपूत, तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके। भाई, कामना से तो हम भी नहीं बचे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम कामनाओं में फंसे हैं ना। जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंग बली। घटे रामदास का, बड़े रामदास का गांठी वंदन वो करें जिनके राम ना हो। फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पे पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। कबीर हमें बहुत याद आते हैं।

कबीर बाबा की वाणी, मन लाग्यो मेरो यार, किसमें लगा, मन लाग्यो मेरो यार। सुबोध जी, आपने पूछा कि कामनाओं को कैसे रोकें, ऐसे रोक सकते हो, ऐसे भी समझो। वृंदावन में दो लोग थे, शाम का समय, ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, नाव पर बैठे भांग खाए हुए थे, दोनों ने आपस में बात की, बोले चलो दिल्ली चलते हैं। जमुना जी में नाव, नाव पर दोनों ब्रजवासी, जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो, रात भर चलेंगे सुबह पहुंच ही जाएं, जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे फिर गाड़ी से जाएं। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई, इनको तब ध्यान आई, सुबह प्रातः काल नाव चलाते चलाते थक गए, सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा कि क्यों भाई, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है सामने।

0: वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया, दूसरी की तरफ देख के बोले, अपन रात को कहां से चले थे? बोले वृंदावन से। बोले पहुंचे कहां रात भर में? बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल हैं भैया, जो रात भर चले हो वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे? शायद ये उल्लू बना रहा। दूसरे से पूछा, क्यों भैया ये कौन सी सिटी है? हे भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है गो ब्रज भाषा में जी वृंदावन है, पर रात भर अपन लोग चले कहां? तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा। क्या ध्यान आया? रात भर नाव तो चलाते रहे, पर नाव जिस रस नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोल नहीं भूल गए। रस्सी से खूंटी, खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है, जिंदगी भर भजन करते रहते हैं पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से। आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है, हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंगबली है आदि आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं? कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए, आपका पागल भगत। हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या, सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे ना मान प्रिय हो ना सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है। हनुमान कौन? जो बलवान है। हनुमान कौन? जो बुद्धिमान है। हनुमान कौन? जो तेजवान है। हनुमान कौन? जो विद्यावान है। इसलिए तो ये हनुमान है। आपने पूछा कि अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है हनुमान जी के अनेक नाम, पर प्रिय तो हनुमान जी का। एक और सुनो, हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना, ये हनुमान जी का काम है। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है? हनुमान जी बोले आ जाओ। ऐसी पूंछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की चौराहे चौराहे पर कि रावण को चिढ़ हो गई हनुमान जी की पूंछ से। इतनी चिढ़ हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया कि ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, ना युद्ध हो पाता, ना हमारा विनाश हो पाता। तो पूरी जड़ कौन है? ये बंदर है। तो सबसे ज्यादा खतरा किससे है? बंदर से है। क्या करें? एक काम करो, बंदर को ही मार दो। हनुमान जी के सामने रावण खड़ा हो गया, ए बंदर इधर आ। हनुमान जी बोले बोलो। चलो एक एक मुक्का की हो जाए। एक एक मुक्का जानते हो ना, राजस्थानी में क्या कहते हैं? सुट्टा मुक्का, गुक्का गुक्का।
1: क्या घर का माहौल, घर की तरंगे किसी को बीमार कर सकती हैं? क्या आपकी सोच की वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं? क्या गलत मंत्र भी आपको बीमारी का शिकार बना सकते हैं? क्यों हो जाते हैं बार बार बीमार? और क्या है बीमारी का ज्योतिष में उपचार? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: पंच कैलाशों में से एक पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, 1 से 30 जुलाई तक चलेगी यात्रा। सबसे दुर्गम तीर्थ यात्राओं में से एक है किन्नौर कैलाश की यात्रा। क्रिकेट के मैदान पर दम दिखाएंगी भारत की बेटियां, T20 विश्व कप में इंग्लैंड के लीड्स में नेदरलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। पहले मैच में पाकिस्तान को दी थी मार। देश को मिलेगा अपनी तरह का पहला क्रिकेट स्टेडियम, भोलेनाथ, काशी और गंगा की थीम पर बनाया जा रहा है वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम, 90% कार्य पूरा। फ्रांस में G7 समिट में जुटे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता, 16 महीने बाद ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री मोदी, आज द्विपक्षीय वार्ता, ब्रिटेन, कनाडा और UAE के साथ राष्ट्र प्रमुखों की बैठक। पोपलियो ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते की तारीफ की, बोले भगवान का शुक्र है कि समझौता होने जा रहा है, शांति की उम्मीद।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी ये बहुत पवित्र और दुर्गम यात्रा। यात्रा के दिशा निर्देश जारी। किन्नौर में समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग। यह दुर्गम होती है कि किन्नौर कैलाश की यात्रा, सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को ही किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। रेकांग पीओ के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है यात्रा, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है जरूरी। 14,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती कुंड में स्नान के बाद शुरू होती है अंतिम चढ़ाई, दुर्गम खड़ी चढ़ाई पर पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के होते हैं दर्शन। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, पठानकोट पुलिस हाई अलर्ट पर, जिले भर में रेड अलर्ट जारी। गृह मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद, 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। अनंता पुलिस ने पहलगाम टैक्सी स्टैंड पर की मॉक ड्रिल, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई और विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन और एजेंसियों के बीच तालमेल का किया गया अभ्यास। एजेंसियों ने सालाना यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनके सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की तारीखों का अभ्यास किया। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। आंकड़ा पहुंचा 12.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री गंगोत्री मुमड़ा आस्था का जनसैलाब, दोनों जगह करीब 12 लाख भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 50 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा, तीर्थयात्रियों का भव्य स्वागत। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में कुल 44 लोग, इनमें 32 पुरुष 12 महिलाएं। कैलाश यात्रा में भक्तों की सुरक्षा के लिए यात्रा दल के साथ 2 लाइन अफसर और 1 चिकित्सक मौजूद। आज नाथुला मार्ग की ओर रवाना होगी यात्रा। 20 जून को पहला जत्था नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में करेगा प्रवेश। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और नेदरलैंड्स के बीच होगा मुकाबला। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को दी थी मात। भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज लखनऊ के काना स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को 7 विकेटों से मात दी थी। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। क्रिकेटर स्मृति मंदना ने बढ़ाया देश का मान। टाइम मैगजीन की ओर से जारी खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में बनाई जगह। सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बनी स्मृति। लिस्ट में स्मृति मंदना के अलावा मैसी, रोनाल्डो और हालैंड जैसे फुटबॉलर शामिल। उत्तर प्रदेश, वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज। वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम निर्माण का 90% कार्य पूरा। उत्तर प्रदेश का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा वाराणसी स्टेडियम। भोलेनाथ, काशी और गंगा की थीम पर बन रहा है स्टेडियम। आधुनिकता के साथ संस्कृति की भी दिखेगी छाप। स्टेडियम की छत अंदर चंद्राकार फ्लड लाइट त्रिशूलनुमा नजर आएगी। 3.86 एकड़ जमीन पर बनाए गए जा रहे हैं इस स्टेडियम में। 30,000 लोग उठा सकते हैं मैच का लुत्फ। काशी, गंगा और भोलेनाथ से प्रेरित देश का पहला स्टेडियम होगा वाराणसी स्टेडियम। इस साल दिसंबर तक स्टेडियम निर्माण पूरा होने का लक्ष्य। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एवियन में G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया स्वागत। मुलाकात में दिखी रिश्तों की गर्माहट। फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान मिले दुनिया के ताकतवर देशों के प्रमुख। इस दौरान सभी नेताओं ने खिंचवाई तस्वीर। G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 16 महीने बाद हुआ आमना सामना। आज ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान भारत और UAE में हुई द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की। G7 समिट के दौरान भारत और कनाडा के बीच भी हुई बैठक। बैठक पर बोले कनाडा के प्रधानमंत्री, ऊर्जा, टैलेंट और AI के क्षेत्र में नई साझेदारी के लिए कर रहे हैं काम। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। G7 समिट में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में केन्या के राष्ट्रपति विलियम बूटो से भी मुलाकात की। फ्रांस में भारत इनोवेट 2026 का समापन। 29 देशों के 2,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। पोपियो ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते की तारीफ की। पोप ने कहा भगवान का शुक्र है कि शुक्रवार को समझौते होने जा रहा है। वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी। मां अन्नपूर्णा मंदिर में की पूजा अर्चना, आशीर्वाद लिया। अनंत अंबानी ने वाराणसी पहुंचने से पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। इस दौरान अनंत अंबानी ने सफेद कबूतर भी उड़ाए। 19 जून को अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन में लेंगे हिस्सा। लोकल से ग्लोबल हुआ भारत का यूपीआई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस में की यूपीआई सर्विस की शुरुआत। फीफा वर्ल्ड कप के बीच नशाखोरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का क्रिएटिव पोस्ट लिखा। महान खिलाड़ियों का निर्माण अनुशासन से होता है, इसलिए नशे की लत के जाल में ना फंसे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: क्या घर का माहौल, घर की तरंगे किसी को बीमार कर सकती हैं? क्या आपकी सोच की वजह से भी आप बीमार पड़ सकते हैं? क्या गलत मंत्र भी आपको बीमारी का शिकार बना सकते हैं? क्यों हो जाते हैं बार बार बीमार? और क्या है बीमारी का ज्योतिष में उपचार? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
2: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
0: पर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हमें कोई नया काम शुरू करना पड़ता है, नया व्यापार, नए मकान का निर्माण, कोई बिल्कुल नई यात्रा। तो अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो किस प्रकार से नए काम की शुरुआत करें कि आपको लाभ हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज नए काम के शुरुआत की बात कर रहे हैं। जीवन में कब ऐसा होता है, कब ऐसे मौके आते हैं कि नया काम शुरू हो? देखिए, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि कुंडली में बृहस्पति या शुक्र, अगर इनकी दशा चले तो नया काम होता है। गोचर में, ब्रह्मांड में गुरु और शनि दोनों आपके लिए अनुकूल हो जाएं, दोनों आपके लिए मजबूत हो जाएं, तो भी नया काम शुरू होता है। 7:30 उतरने के तुरंत बाद भी नया काम शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। भाग्य स्थान का स्वामी यानी भाग्येश, या सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश, अगर इनकी दशा चले तो भी नया काम शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। सबसे ज्यादा जो नए काम की शुरुआत होती है या जीवन में बड़ा बदलाव होता है वो 7:30 या ढैया उतरने के तुरंत बाद होता है, ऐसा देखा गया है। नए काम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जब आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी जानिए। दिन, समय और स्थान का सही चुनाव करना चाहिए। जिस दिन आप नया काम शुरू कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा का बल यानी चंद्रमा कितना मजबूत है और तारा बल आपके नक्षत्र को कितनी ताकत मिल रही है, ये देख लें। चंद्र बल और तारा बल मजबूत होना चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हैं उस काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए, या अपनी राशि के अनुसार
राशियों के हिसाब से दिन का चुनाव करना चाहिए। और जिस दिन आप नए और शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उस दिन से संबंधित शुभ वस्तु खाकर आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अलग अलग राशियों के शुभ दिन होते हैं, उस दिन पर विशेष वस्तु खाकर या विशेष काम करके आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नए काम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि कौन सी राशि के लोग किस दिन क्या खा करके नया काम शुरू कर सकते हैं या नया काम शुरू करना चाहिए। मेष राशि की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पीली सरसों खाकर नया काम शुरू करें। वृषभ राशि, शनिवार के दिन घी खाकर नया काम शुरू करें तो बेहतर होगा। मिथुन राशि के लोग शुक्रवार को दही खाकर नए काम की शुरुआत करें। कर्क राशि, मंगलवार को गुड़ खाकर नए काम की शुरुआत करना अच्छा होगा। सिंह राशि, रविवार को पान खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कन्या राशि, बुधवार के दिन हरी धनिया खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तुला राशि, शुक्रवार के दिन दही खाकर नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, रविवार के दिन जरा सा पान का पत्ता खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। धनु राशि, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को पीली मिठाई खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि, सोमवार के दिन दही और चीनी खा करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुंभ राशि, शनिवार के दिन नए काम की शुरुआत करें, जरा सा घी खाकर नया काम शुरू करें अच्छा होगा। मीन राशि, बुधवार के दिन नए काम की शुरुआत करें, जरा सा धनिया खाकर नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज हमने बात की नए काम की शुरुआत कब करें और कैसे करें। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नए कपड़े पहली बार जब भी पहने बुधवार या शुक्रवार को धारण करें। ऐसा करने से आपको नए कपड़े मिलते रहेंगे और आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार का
सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: पंच कैलाशों में एक पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, 1 से 30 जुलाई तक चलेगी यात्रा। सबसे दुर्गम तीर्थ यात्राओं में से एक है किन्नौर कैलाश यात्रा। क्रिकेट के मैदान पर दम दिखाएंगी भारत की बेटियां, टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के लीड्स में नेदरलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, पहले मैच में पाकिस्तान को दी थी मात। देश को मिलेगा अपनी तरह का पहला क्रिकेट स्टेडियम, भोलेनाथ काशी और गंगा की थीम पर बनाया जा रहा है वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम, 90% निर्माण कार्य पूरा। फ्रांस में G7 समिट में जुटे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता, 16 महीने बाद ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज द्विपक्षीय वार्ता, ब्रिटेन कनाडा और यूएई के राष्ट्र प्रमुखों के साथ बैठक। गोपलियों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते की तारीफ की, बोले भगवान का शुक्र है कि समझौता होने जा रहा है, शांति की जताई उम्मीद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम लगातार जो बार बार बीमार पड़ते हैं उसके कारण क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े दिन में हम बीमार पड़ने लगते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
5: अगर आपको बीमारियों का वहम रहता हो कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, तो सलाह लेकर या तो एक पन्ना धारण करिए या एक चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में पहनिए, आपको लाभ होगा।
4: और आइए अब जान लेते हैं 17 जून 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
5: दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:38 तक, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:37 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 8:13 तक, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा

0: उसके शरीर के बारे में जानकारी देता है। इनके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य आपका शरीर है और चंद्रमा आपका मन है, तो सूर्य और चंद्रमा अगर बेहतर हैं तो किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर बनाए रखते हैं। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है या सूर्य अगर कमजोर है तो व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, उसके शरीर में दिक्कतें आती हैं। अगर चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो चंद्रमा मन की समस्याएं बढ़ा देता है। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इसका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर कुंडली जल तत्व की है और जल तत्व ही बिगड़ा हुआ है, यानी कुंडली का मुख्य तत्व बिगड़ा हुआ है, तो अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार आपको परेशान करती हैं। यानी कि कुंडली के ग्रहों के अलावा कुंडली का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, व्यर्थ का मानसिक तनाव इस समय हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या समाप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कर्ज आसानी से चुका सकेंगे, परिवार में अशांति से बचिएगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: लगातार बीमार रहने की अन्य कौन सी वजह होती है, आइए जान लेते हैं।
0: देखिए, लगातार बीमार होने के पीछे आपके ग्रह, आपके नक्षत्र अवश्य होते हैं। और कौन सी वजह है,

0: जिसकी वजह से आप लगातार बीमार होते हैं। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं उस घर की अगर तरंगे ठीक ना हो, घर में अशुभता ज्यादा हो, घर में निगेटिविटी ज्यादा हो, तो आप लगातार बीमार रहेंगे। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होता है, जिन घरों में नियमित रूप से अशांति और विवाद होता है, वहां पर भी लोग लगातार बीमार रहते हैं। अगर आप किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट देते हैं, जानबूझकर किसी के मन को या शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, तो भी आप लगातार बीमार रह सकते हैं। जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये बीमारी ना हो जाए, लगातार बीमारी के बारे में सोचेंगे तो भी बीमार रहेंगे। अगर आप कोई मंत्र गलत तरीके से जपते हैं या कोई गलत मंत्र अगर आप जप करते हैं या गलत रत्न अगर आप धारण कर लेते हैं बिना जानकारी के, तो भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके घर का माहौल, आपके घर की तरंगें और आपका खान पान, ये आपके स्वास्थ्य को तेजी से बिगाड़ सकता है, जिसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें, परिवार में अशांति हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुड लक में आप जानेंगे कि आज का पहला प्रश्न पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, आज का पहला प्रश्न प्रथमेश शिंदे जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। 16 अप्रैल 1995 का जन्म है, 8:30 रात को सतारा महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूं भविष्य के लिए और बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथमेश आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और तुला राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका प्रेम विवाह अवश्य ही होगा, लेकिन आपके सातवें स्थान में सूर्य की उपस्थिति है और राहु की प्लेसमेंट को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा धैर्य रखिएगा, एग्रेशन से क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा। अगर थोड़ा धैर्य बना करके चलेंगे तो जिंदगी बेहतर होगी। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ये उपाय करें, थोड़ा धैर्य रखें, तो भविष्य और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि पंडित जी उसका जवाब दे, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न राहुल मीणा ने हमें लिखा है, कोटा राजस्थान से लिखते हैं। 12 जून 2000 का जन्म है, 6:10 शाम को भानपुरा मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मुझे दो नौकरी मिली है, एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की और एक ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की, तो मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। राहुल आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा सूर्य की चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा विभाग की नौकरी है, वो अगर आप ज्वाइन करें या वो अगर आप नौकरी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर के हालात भविष्य में बेहतर दिख रहे हैं, केवल विवाह का निर्णय आपको सोच समझकर लेना चाहिए। साल 2027 में आपके विवाह की संभावना बनती है, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करेंगे तो जीवन बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य कब बेहतर रहता है।
0: ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति हमेशा बीमार रहता हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, सामान्यतः बेहतर रहता है। कब होता है ऐसा? देखिए, मंगल व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का स्वामी है। मंगल को सेनापति इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खतरों से, बीमारियों से, मुश्किलों से आपकी सुरक्षा करता है। मंगल के बेहतर होने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। और मंगल अगर बेहतर हो तो व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से सरलता से निकल जाता है। मंगल के अलावा अगर बृहस्पति लग्न को, लग्नेश को प्रभावित करे, मजबूत स्थिति में हो, तो बृहस्पति भी व्यक्ति की रक्षा करता है। हाथ में अगर जीवन रेखा मजबूत हो और जीवन रेखा के पैरेलल एक मंगल की रेखा भी हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। घर की जो तरंगे हैं आपके, घर के जो वाइब्रेशन हैं आपके, अगर आप इनको अच्छा रखें, घर में शुभता रखने का प्रयास करें, तो ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है।
1: और चलिए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है, अपयश से, बदनामी से बचाव करें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आइए जानते हैं पंडित जी से, अगर लगातार आप बीमार रहते हो तो किन किन उपायों से खुद को ठीक रखा जा सकता है, क्या बचाव है, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए।
0: देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लगातार बीमार रहते हो, कोई ना कोई बीमारी आपके ऊपर हावी रहती हो, तो क्या उपाय करें जिससे ठीक रहें। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को अगर आप जल चढ़ाएं तो बहुत लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय कुछ समय पूजा उपासना में जरूर दीजिए। कम से कम सुबह शाम नाम जप करिए या सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए या सुनिए। संगति पर और अपने आहार पर विशेष ध्यान दीजिए। संगति अच्छी रखिए और आहार को शुद्ध और सात्विक रखिए। जब भी मौका मिले किसी संत के साथ, महात्मा के साथ, महापुरुष के साथ कुछ समय जरूर बिताइए या उनके प्रवचनों को सुनिए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए और किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और गुडलक में आप जानेंगे आज की अंतिम राशि के राशिफल को, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर की समस्या हल होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आइए अब जानते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न सारिका शर्मा ने हमें बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मेल लिखा है। 18 फरवरी 1977 का जन्म है, रात के 9:12 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि नया मकान मेरा कब तक होगा और मकान लेने में मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारिका जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। साल 2027 के शुरुआती समय तक आप प्रॉपर्टी ले पाएंगी, प्रॉपर्टी खरीदने का समय अभी चल रहा है। दक्षिण दिशा का मकान या दक्षिण दिशा का प्लॉट मत लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पूजा करवाएंगी अपने प्लॉट की या अपने मकान की, सावधानी पूर्वक नींव का पूजन करवाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मकान आप जल्दी ले सकें, प्रॉपर्टी का लाभ आपको जल्दी हो, इस नींव का पूजन करवाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मकान आप जल्दी ले सकें, प्रॉपर्टी का लाभ आपको जल्दी हो, इसके लिए एक 10-12 रत्ती का ओपल बनवा करके पहन लीजिए। चांदी में पहना जाएगा, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न ज्योति जी ने बिहार से लिखा है, ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 अप्रैल 1989, मध्य रात्रि में 12 बजे, पटना बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य और जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरे बेटे की कुंडली मांगलिक है। ज्योति, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा चंद्रमा की चल रही है। पहली बात यह है कि आपके बेटे की कुंडली में मंगल छठे स्थान में बैठा हुआ है, कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका विवाह अगर अब तक नहीं हुआ है, 2023-24 में शादी नहीं हुई है, तो 2027 में ये विवाह करेंगे अपनी इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ। करियर और भविष्य इनका उज्ज्वल है, लेकिन डाइजेशन का, खान पान का और पेट का इनको ध्यान रखना होगा। एक इनको ओपल बनवा करके पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करें।
1: पंडित जी, आपसे एक सवाल था, क्योंकि आज हम गुड लक के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं लगातार बीमार पड़ने के बारे में, तो कौन सा ऐसा उपाय है जिसे हम करें तो हम बीमार ना पड़े।
0: जी देखिए, आपको शुरुआत में ही बताया कि आपका खान पान, आपके घर का वाइब्रेशन, आपके घर की तरंगे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्वास्थ्य पाएं, आप स्वस्थ बने रहें, तो ज्योतिषीय उपाय दो हैं। पहला ये कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए नित्य प्रातः, और प्रातः काल ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए। अगर आप दोनों समय सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें थोड़ी सावधानी रखें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो नॉर्मली आपको स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी। अब अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या हो गई है और आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार नारायण कवच पढ़ना चाहिए या नारायण कवच का पाठ सुनना चाहिए। अगर ये दो में से जैसी जरूरत हो आप उपाय करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, और अगर थोड़ा बहुत बिगड़ गया तो नारायण कवच का पाठ करके आप उसको ठीक बना सकते हैं। लेकिन कुल मिला के हर हाल में सूर्य देव को जल चढ़ाना और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करना ये आपके लिए जरूरी है।
1: जिनका जन्मदिन आ रहा है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानेंगे पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिनका जन्मदिन 17 जून को है उन लोगों को हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी दूर की जगह पर स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो इस साल भी आपके विवाह में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में ताजमहल की मूर्ति या प्रतिकृति रखना उचित है। देखिए, ताजमहल कोई पवित्र स्थल या कोई पवित्र आकृति नहीं है, ये एक वास्तुकला का प्रतीक है और वास्तव में एक मकबरा है। मकबरे की आकृति को घर में रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है।
1: और चलिए अब जानते हैं 17 जून 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। ये एक साथ कई तरह की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और इनको पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक रहता है।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर जहां पंडित जी हमें रोज एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि घर के सभी लोगों का रोजगार अच्छा चले इसके लिए क्या उपाय करेंगे? अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी गौशाला की, थोड़ी सी मिट्टी मंदिर की और थोड़ी सी मिट्टी किसी बागीचे की लाकर एक गमले में मिलाकर रखिए। घर में रहने वाले सभी लोगों को करियर के मामले में लाभ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
2: रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: बात करेंगे स्कूल की। एक और अनोखा स्कूल इन दिनों वायरल हो रहा है। देखिए, आपने स्कूल में बच्चों को जाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा स्कूल देखा है जहां सिर्फ डॉग ही पढ़ते हों? जी हाँ, हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा ही स्कूल जो चीन के शंघाई में मौजूद है। ये एक ऐसा डॉग प्री स्कूल है जहां पर डॉग्स के लिए पढ़ाई, खेल, संगीत और फिटनेस तक की तमाम सुविधाएं हैं।

0: की मधुर धुनों के बीच खेलते ये डॉग्स किसी पार्क में नहीं बल्कि चीन के शंघाई में एक डॉग प्री स्कूल में है। यहाँ हर सुबह इन नन्हे मेहमानों की क्लास शुरू होती है। दिन भर के स्केड्यूल में खेलकूद, सोशलाइजेशन, हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ट्रेनिंग और लाइव पियानो म्यूजिक तक शामिल है। पॉथ्री नाम का ये डॉग प्री स्कूल पालतू डॉग्स को घर से लाकर पूरे दिन उनकी देखभाल करता है। स्कूल की टीम खुद डॉग्स को लेने और छोड़ने का काम भी करती है। स्कूल में डॉग्स के लिए खास किचन भी है जहां उनके लिए ताज़ा और हेल्दी ट्रीट तैयार किए जाते हैं। शाम की चाय की तरह यहां डॉग्स के लिए आफ्टरनून टी भी परोसी जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां डॉग्स को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराई जाती है, आउटडोर ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस अनोखे प्री स्कूल की शुरुआत जेनजांग ने की थी। अपने पालतू डॉग की चिंता और अकेलेपन की समस्या को देखते हुए उन्हें ये आइडिया आया। सिर्फ एक साल में यहाँ आने वाले डॉग्स की संख्या 10 से बढ़कर 200 तक पहुँच गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए अब दूसरा सेंटर खोलने की तैयारी भी चल रही है।
1: 是一周年，但我刚开始的时候，我没有想过会有那么多的人，那么多的家长会来，也没想过有一个老师。 但可能慢慢的到了第三个月的时候，有一波志同道合的小伙伴就加入我们了。然后那个时候我们的狗狗已经从十几只到了三四十只，到了第七、第十个月的时候，我就发现越来越多的家长会来，因为我们那个时候的覆盖范围已经3到5公里，已经包不住了。我们的狗狗越来越多，跨区的狗狗会来找，对。然后到现在为止，我们现在有200只狗狗。
0: चीन में घटती जन्म दर और बदलती जीवन शैली के बीच पालतू जानवरों पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक चीन का शहरी पेट मार्केट 2025 में 312 अरब युआन से ज्यादा का हो चुका है और अगले कुछ वर्षों में इसके 405 अरब युआन के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी अब डॉग्स के लिए भी स्कूल, फिटनेस और लग्जरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारोबार बन चुका है। ऐसे में पियानो के धुनों से लेकर फिटनेस ट्रेनिंग और स्पेशल ट्रीट्स तक, शंघाई का ये डॉग प्री स्कूल दिखाता है कि बदलती दुनिया में पालतू जानवरों की जगह अब परिवार के सबसे खास सदस्यों में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और आइए अब देखते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
0: सोशल मीडिया पर इस भूखी ओपोसम और उसकी नाराजगी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भूख से बिलबिलाई ये ओपोसम गुस्से में पोल पर चढ़ गई। अब रूट गई तो मनाना पड़ेगा। तो अब इन रूठी महोदया के पास केला लाया गया। इन्हें तब भी भरोसा नहीं था कि ये उन्हें खाने को दिया जा रहा है और मनाया जा रहा है। जैसे ही केले का ग्रास मुंह में गया, तब कहीं जाकर चेहरे पर शांति आई, मानो रूठी हुई बीवी की तरह कह रही हो कि मैं कोई गुस्सा थोड़ी थी, मैं तो बस भूखी थी। सिब्लिंग्स आपस में लड़े नहीं तो वो सिब्लिंग कैसे? वो चाहे जानवरों के बच्चे हों या इंसान के बच्चे, एक दूसरे से लड़े बिना भाई बहनों को चैन कहाँ आता है? अब इन वायरल तस्वीरों में आपस में लड़ रहे बियर सिब्लिंग्स को देखिए जरा। बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। बीच सड़क पर इन भिड़ते बच्चों को माँ भालू देख रही है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ जाती है और उन्हें लड़ते लड़ते ही बीच सड़क से कोने तक ले जाती है, मानो कह रही हो जितना लड़ना है यहाँ लड़ो, बीच सड़क पर मत लड़ो। बच्चे की मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए एक बकरी बच्ची का मन बहलाने और उसे डाइवर्ट करने के लिए लाई गई, लेकिन इस दाव के उल्टे पड़ने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जब लोगों ने देखा कि अब तो बच्ची के साथ बकरी का भविष्य भी खराब ही हो गया है, क्योंकि बच्ची ने मोबाइल की लत छोड़ी नहीं बल्कि बकरी को भी लत लगा दी। अब ऐसी तस्वीर देख कौन नहीं मुस्कुराएगा और कौन नहीं कहेगा कि बच्चे मन के सच्चे। यूं ही जापानियों को सिविक सेंस में दुनिया में सबसे अव्वल माना जाता है। आप अगर ये बात नहीं जानते तो ये वायरल तस्वीरें देखिए, आप खुद इसको सलाम करेंगे। वीडियो में देखिए जरा, यहाँ हुए एक स्टेडियम में मैच के बाद फैंस यहाँ फैले कचरे को अपने हाथों से उठा रहे हैं। बच्चे हो या युवा, कचरा उठाना यहाँ छोटा काम नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, जब फैन से इसकी वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि ये आदर का मामला है, हम खिलाड़ियों का, स्टेडियम का और खेल का सम्मान करते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। है ना सम्मान का संदेश। इन तस्वीरों को देखिए जरा, इन्हें देख आप खुद समझ जाएंगे कि कभी कभी हमें जिनसे खतरा होता है वही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। वीडियो में देख रहे बत्तख के बच्चों का एक झुंड अपनी माँ से बिछड़ गया, जहाँ उनकी मुलाकात इस गोल्डन रिट्रीवल पिल्ली से हुई। बत्तख के बच्चे इस पिल्ली के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वो जब इन्हें सूंघ कर जाने लगा तो वो भी उसी के पीछे हो लिए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
4: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: वर्ल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री विमानों के उड़ान भरने के बाद आज से कार्गो सेवा भी शुरू। आकाशा एयरलाइंस ने भी शुरू की अपनी सेवा।
11: पंच कैलाशों में से एक पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, 1 से 30 जुलाई तक चलेगी यात्रा। सबसे दुर्गम तीर्थयात्रियों में से एक है किन्नौर कैलाश की यात्रा।
2: वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी, काशी विश्वनाथ मंदिर में सप्तर्षि आरती की मां अन्नपूर्णा का 21 ब्राह्मणों ने कराया

0: का ये सिलसिला अभी जारी रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। जबकि पहाड़ों में भी राहत की बारिश हो रही है, तो आज कहां कहां हो सकती है बारिश और कहां पहुंचा है मॉनसून, आगे आपको बताएंगे।
1: साथ ही बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से काशी, गंगा और शिव की थीम पर आधारित होगा। इसका काम करीब 92% पूरा हो चुका है। ये स्टेडियम यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। कहा यह जा रहा है कि स्टेडियम आने वाले 2 से 3 महीनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और 2027 से अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन भी ये स्टेडियम कर सकेगा। तो कैसी चल रही है तैयारियां, आगे बताएंगे।
0: बिल्कुल पूजा, देखिए वहीं पर कल की टू में आलिया भट्ट को कास्ट किए जाने की चर्चा बनी हुई है। चर्चा तो ये भी है कि आलिया ने फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी है। अब आलिया रिप्लेस की गई हैं, दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट की गई हैं या फिर उनका अलग किरदार होगा, ये बताएंगे आपको आगे।
1: इसके अलावा आज महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड के साथ होगा, यानी क्रिकेट के मैदान पर भारत की बेटियां आदम दिखाएंगी। कहां और कब होगा ये मैच, इसकी जानकारी भी आपको आगे देंगे।
0: देखिए साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे हम शंघाई, जहां पर डिज्नीलैंड ने अपनी स्थापना के 10 साल पूरे करने का जश्न मनाया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ डिज्नी कैरेक्टर्स की विशेष परेड भी निकाली गई और शानदार आतिशबाजी भी की गई। इसके तमाम रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
1: पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये दुर्गम और बेहद ही पवित्र यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। समुद्र से करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए।
0: ओडिशा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कारीगर तीनों पवित्र रथों को तेजी से आकार देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा नाटकोड़ प्रतिमाओं की पॉलिशिंग का काम भी अब तेजी से किया जा रहा है। तो रथ यात्रा के दौरान भगवान की सेवा पूजा करने के लिए लकड़ी से बने उपकरणों का निर्माण भी किया जा रहा है।
1: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या करीब 36 लाख से अधिक हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 13 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
0: श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, पठानकोट पुलिस हाई अलर्ट पर है। जिले भर में पुलिस ने नाके लगाकर सर्च अभियान चलाया। गृह मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक पवित्र अमरनाथ यात्रा चलेगी।
1: अमृतसर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 7 महीने बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस ट्रेन का पहले भी संचालन किया जा चुका है, लेकिन रूट में बदलाव चलते इस दोबारा शुरू हो गया है। और माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट भी बदल गया है। अब ये जालंधर कैंट की बजाय बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट होकर चलेगी। रेलवे के इस फैसले से पंजाब के कई शहरों के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।
0: देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे यानी अनंत अंबानी ने अपनी धार्मिक यात्रा से पहले गुवाहाटी के प्रसिद्ध माँ कामाख्या मंदिर में वो पहुंची और जहां पर उन्होंने माँ कामाख्या के दर्शन पूजन किए। पूजन के बाद उन्होंने सफेद कबूतर भी उड़ाए, वहीं पर अनंत को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
1: यूपी, वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए एक गुड न्यूज आई है। वाराणसी को जल्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा। स्टेडियम निर्माण का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। ये यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी स्टेडियम होगा। भोलेनाथ, काशी और गंगा की थीम पर स्टेडियम बन रहा है।
0: महिला T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम आज नेदरलैंड्स के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलने जा रही है। ये मैच लीड्स के हेडिंगले मैच में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था।
1: फिल्म गदर एक प्रेम कथा के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने उनके निभाए गए तारा सिंह के किरदार को ढेर सारा प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। साल 2001 में इस फिल्म में तारा सिंह बनकर सनी देओल बड़े पर्दे पर छा गए। 15 जून को फिल्म गदर के रिलीज होने के 25 साल पूरे हो गए।

न्यूज के साथ देखिए, शुभ समाचार ये निकल कर आया है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में तपिश से राहत बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार कल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। आज भी राजधानी के आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि देश के कई राज्यों में गरज चमक के साथ तेज आंधी चलने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर दिया है। कई राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इस बीच देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत और दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का ये जो सिलसिला है अभी जारी रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बनी रहेगी और दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों का मौसम यूं ही सुहाना बना रहेगा। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।

0: उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में इन दिनों हो रही बारिश मानसून की बारिश नहीं है बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से है। इस बारिश के चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में कभी काले घने बादलों का डेरा रहता है, तेज हवाएं चलती हैं, झमाझम बारिश राहत लेकर आती है तो कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सोमवार की सुबह हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया।
1: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता रहा, उसके साथ ही कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहा।
0: मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। इसके पीछे वजह है एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस। 18 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो दिल्ली को भी 2-3 दिन तक भिगोएगा।
1: वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का यही मिजाज देखने को मिल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश भले ही हो रही हो लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचे मानसून की रफ्तार थम सी गई है। इसके पीछे मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है, साथ ही अलनीनो और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से कुछ घंटे पहले जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई थी उनमें मानसून वाले बादल नदारद नजर आए। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4-5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है। वैसे आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राज्यों में मौसम में बदलाव दिखने वाला है। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी बारिश जारी रहेगी। मानसून को लेकर दिल्ली सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है और फ्लड कंट्रोल रूम को दुरुस्त कर दिया गया है ताकि मानसून आने पर या यमुना में पानी पड़ने पर दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है तो वहीं दक्षिण भारत में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। इस बीच देश के बड़े हिस्से में मौसम में तेज बदलाव भी देखने को मिल सकता है।
3: बिल्कुल पूजा, देखिए मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो मैदानी इलाकों में मौसम तेजी से करवट लेगा। 21 राज्यों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी कर दिया गया।
2: और कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, यानी इसका असर मैदानी इलाकों में दिखेगा और पारा भी गिरेगा।
3: बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि उत्तर भारत में लोगों को तपिश से राहत मिलेगी। एनसीआर के आसपास बादल छाए रहने की संभावना है।
2: राहत की फुहारों के साथ ही तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। कुल मिलाकर मौसम की मेहरबानी जारी रहेगी और मैदानी इलाकों में कुछ हद तक उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिलेगी।
3: और देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कल से 22 जून के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही है और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई है।

0: मॉनसून की आहट हो गई है, बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख मिचौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं से रेस लगी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक इनकी आवाजाही जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून से 22 जून के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर और शिमला जिलों में कुछ स्थानों पर दिन के दौरान गरज के साथ बारिश, हल्की वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में तूफानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है।
1: अभी तक मानसून जो है लगभग अपनी नॉर्मल गति से ही आगे बढ़ रहा है और एक बार जैसे ही पूर्वी भारत पूरा क्रॉस करेगा, हमारे उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा। नॉर्मली जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमारा मानसून जो है 25 जून तक पूरा प्रदेश कवर हो जाता है। इस साल भी जो है अभी तक मानसून हमारा नॉर्मल गति से आगे बढ़ रहा है, यानी कि लगभग अधिकांश राज्यों में नॉर्मल टाइम पे ही पहुंचा हुआ है और हम लगातार परिस्थितियों को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मॉनसून भी हिमाचल प्रदेश में समय पर दस्तक देने वाला है। आईएमडी के मुताबिक सभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कवर करने के बाद अब ये पूर्वी भारत में प्रवेश कर चुका है और सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है।
1: कांगड़ा, मंडी और कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी दिया हुआ है ओलावृष्टि को ध्यान में रखते हुए। टेम्परेचर्स की भी अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें, अभी जो बारिश हुई थी हमारे पूरे प्रदेश में अगले पिछले 2-3 दिनों में, जिसकी वजह से तापमान में बहुत एक अच्छी खासी गिरावट जो है लगभग 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की देखी गई थी। नेक्स्ट 4-5 डेज की भी अगर हम बात करें तो निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों के कुछ एक जिलों में तापमान हमें जरूर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों में तापमान लगभग इसी रेंज में बने रहेंगे।
0: तो अगर आप भी छुट्टियां बिताने हिमाचल प्रदेश जाने की सोच रहे हैं तो मौसम को ध्यान में जरूर रखिए, ताकि आपकी यात्रा में कोई विघ्न ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गर्मी के इस मौसम में कश्मीर में खुशियों का मौसम लौट आया है। डल झील पर सैलानियों की आमद बढ़ने से पर्यटन को रफ्तार मिल गई है। वहीं शिकारा नाविकों के चेहरे भी खिल उठे। पर्यटकों से शिकारा का हाउसबोट फुल है। पर्यटकों को यहां की शांत फिजा में शिकारा राइड काफी रास आ रही है।

0: बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए तो तमाम झीलें हैं, लेकिन बात श्रीनगर के डल झील की हो तो बोटिंग की बात ही कुछ अलग है। डल झील की सैर बिना शिकारा राइड के अधूरी मानी जाती है और यही शिकारा राइड डल झील की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। मैदानों में मौसम गर्मी का है, लिहाजा राहत की तलाश में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड की तरह जम्मू कश्मीर भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। देश भर से पर्यटक जम्मू कश्मीर की शान डल झील की खूबसूरती निहारने पहुंच रहे हैं और शिकारा राइड का लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत अच्छा लगा, मैं 23 साल पहले भी आई थी, तब का एक्सपीरियंस और अब का में बहुत अंतर है। पहले और अब के कश्मीर में पहले भी उतना ही अच्छा लगा था, अभी भी उतना ही अच्छा है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सच में ही जन्नत है जो कहा जाता है।
2: जो भीड़ भाड़ है एंड द फास्ट सिटी है, फास्ट लाइफ ऑफ द सिटी, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। द लेक बहुत बहुत अच्छा था, शिकारा राइड स्पेशली, वो पानी से इतना पास, बहुत मजा आता है।
0: डल झील के शांत पानी में रंग बिरंगे शिकारे और झील की ठंडी हवाएं सैलानियों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। एक बार जो जम्मू कश्मीर आ गया और डल झील में शिकारे से सैर कर ली, वो इस हसीन नजारे को ताउम्र नहीं भूल पाता। शिकारा राइड का जादू बार बार सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है।
3: यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, जैसे हम अक्सर वीडियोस में इंस्टाग्राम पे देखते थे ना, तो वास्तव में जो चीज है वो रियल में यहाँ पे आके हमने फेस किए।
4: बहुत ही अच्छा लगा कश्मीर, और यहाँ के लोग काफी कुछ सहयोग करते हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति सहयोग करने की भावना है और हर व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई, हाँ, अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल सीरियस लोग हैं ये, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल बहुत बदल चुका।
0: रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों की वजह से हाउस बोट्स और शिकारा चलाने वाले स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। डल झील की शांत लहरों पर तैरते ये शिकारे न केवल कश्मीर की पहचान है बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीद भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए कुछ और खबरों की बात कर ले। बात करेंगे जयकी श्रॉफ की, जो मुंबई के वर्सोवा में मानसून की तैयारियों के बीच रेनकोट दान अभियान में शामिल हो गए और इसको लेकर वर्सोवा में रेनकोट बांटने का अभियान चलाया गया। और इस अभियान का मकसद जो है जरूरतमंदों को रेनकोट दान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। मुंबई की बारिश में ये रेनकोट काफी मददगार साबित होते हैं, ऐसे में जयकी श्रॉफ खुद इस मुहिम में आगे बढ़े। तस्वीरें देखिए।
6: अध्यात्म और भक्ति की नगरी काशी को अब नई पहचान मिलने जा रही है। दरअसल घाटों की नगरी काशी विश्वनाथ धाम से अब क्रिकेट के रोमांच का नाता जुड़ने जा रहा है। वाराणसी में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से काशी, गंगा और शिव की थीम पर आधारित होगा। स्टेडियम का करीब 92% निर्माण पूरा हो चुका है। यह स्टेडियम यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा।

0: वाराणसी में बन रहा गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। स्टेडियम का करीब 92% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक ये पूरी तरह से बन जाएगा। इस साल के अंत तक यहाँ एक ट्रायल मैच आयोजित करने की योजना है, जबकि 2027 में इस मैदान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेले जाने की संभावना है। स्टेडियम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भगवान शिव थीम आधारित वास्तुकला है। यहाँ डमरू के आकार का मीडिया सेंटर बनाया गया है, जबकि मैदान में 4 त्रिशूल स्वरूप फ्लड लाइटें स्थापित की गई हैं। क्रिकेट स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार है, मानो बाबा विश्वनाथ की नगरी का क्रिकेट स्टेडियम भी शिवमय हो चला है।
1: टोटल 32,000 कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, और महादेव के थीम पे, जैसे भगवान भोले को आपने जानते ही, आप चंद्रशेखर नाम है जिसके ऊपर, जिसके सर पे चंद्रमा हो, तो क्रिसेंट के आधार पे रूप सीटिंग है, और त्रिशूल उनको चाहिए, तो त्रिशूल के हिसाब से अपना लाइट है डिजाइन, जो हाई मास्ट लाइट है, जो जिसको फ्लड लाइट बोलते हैं आप, जिसमें मैच होता है रात में, तो त्रिशूल के आकार का लाइट है, और बाकी दो ही चीज है, और बेलपत्र है, डमरू है।
0: यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरोज शुक्ला का कहना है कि स्टेडियम को शिवमय बनाना आसान नहीं था, कई बार की कोशिश के बाद ये संभव हो सका।
1: एक बार दो बार तो हमने डिजाइन फेल किया और उसको, मतलब उस टाइम से मैं दिख नहीं रहा था, फाइनली तीसरी बार हमें कंक्लूड हो गया था। एक तो ये, और दूसरा टोटल इसका वेट जो है 100 टन है, तो इसको 6 पीस में रखा है हमने, और इसका इरेक्शन आगे पीछे ना हो, ऊपर का जो देख रहे हैं आप हेड, ये टोटल 32 टन का है, 32 टन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए इरेक्शन करना इज नॉट ए जॉक।
0: करीब 30 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहे गंजारी क्रिकेट स्टेडियम में करीब 32,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। दर्शक दीर्घा में बैठने की व्यवस्था गंगा के घाट की सीढ़ियों जैसी होगी। इससे दर्शकों को खेल के साथ साथ काशी की आध्यात्मिक संस्कृति का भी अनूठा अनुभव मिलेगा, यानी अत्याधुनिकता के साथ ही काशी की संस्कृति और भोले की नगरी की झलक इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पूरे देश में अलग पहचान दिलाने वाला है। इस स्टेडियम को लेकर काशीवासियों में खासा उत्साह है। स्टेडियम में अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, जिससे 1-2 घंटे तक लगातार बारिश भी हो जाए तो मैदान को मात्र 30 मिनट के भीतर खेल के लिए तैयार किया जा सकेगा। ये सुविधा इसे देश के चुनिंदा आधुनिक क्रिकेट स्टेडियमों की श्रेणी में खड़ा करेगी। यही नहीं, स्टेडियम को ICC की मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम का रेडियस 76 मीटर बनाया गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शंघाई में हुई डिज्नी के किरदारों की परेड।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: खबरें तो आ रही हैं।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: वाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री विमानों के उड़ान भरने के बाद आज से कार्गो सेवा भी शुरू, अकासा एयरलाइंस ने शुरू की अपनी सेवा।
14: पंच कैलाशों में से एक पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, 1 से 30 जुलाई तक चलेगी यात्रा, सबसे दुर्गम तीर्थ यात्रियों में से एक है कैलाश की यात्रा।
13: वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी, काशी विश्वनाथ मंदिर में की सप्त ऋषि आरती, मां अन्नपूर्णा का 21 ब्राह्मणों से कराया कुमकुम अभिषेक।
14: ओडिशा में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजा पर्व, महिलाओं ने गाए पारंपरिक गीत, नारी तत्व और धरती माता के सम्मान में मनाया जाता है पर्व।
13: गांधरबल में 19 जून से शुरू हो रहा है माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद।
14: डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का फैसला।
13: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मुख्य अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार और तकनीक का पावर हाउस है भारत।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। अब बात कर लेते हैं मेकिंग के दौर से गुजर रही फिल्म कल्कि 2 की। कल्कि 2 के सीक्वल को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। इसी बीच बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री आलिया भट्ट का नाम फिल्म से जुड़ने से फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। चर्चा है कि आलिया भट्ट कल्कि 2 में एक बेहद अहम किरदार निभा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूट भी कर लिया है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। अब आलिया रिप्लेस की गई, दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट की गई है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साइंस फिक्शन फिल्म में आलिया देवी त्रिकुटा यानी कि वैष्णो देवी का किरदार निभाएंगी। कल्कि 2 दिसंबर 2027 में रिलीज होने की संभावना है।
1: तो ये सब मेरे बर्थडे के लिए नहीं था।
2: अपनी 18वीं सालगिरह पे तू बड़ा पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके।
3: रिलीज को तैयार अल्फा। मेकिंग के दौर से गुजर रही लव एंड वॉर और अब कल्कि 2। 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल। इन तीनों फिल्मों में एक खास कनेक्शन है। आलिया भट्ट जिनका करियर ग्राफ इन दिनों तेजी से ऊपर उठा है और अब इसमें प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल्कि 2 का नाम भी जुड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलिया को कल्कि 2 में कास्ट किया गया है और अगर ये सच है तो ये पहली बार होगा जब प्रभास और आलिया किसी फिल्म में एक साथ काम करेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आलिया ने कल्कि 2 की शूटिंग शुरू भी कर दी है। पिछले महीने हैदराबाद में इस साइंस फिक्शन फिल्म के लिए आलिया ने 5 दिन का शूट किया और अब सितंबर से फिल्म का अगला शेड्यूल शुरू होगा जिसमें आलिया के मेजर सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। हालांकि इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कल्कि 2898 एडी में दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस थी। कल्कि 2 में भी दीपिका को पहले कास्ट किया गया था लेकिन कुछ विवाद के बाद दीपिका को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था। अब आलिया को कास्ट करने की खबरें सामने आने के बाद चर्चा इस बात की भी है कि क्या आलिया ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस किया है या फिर दीपिका के किरदार सुमति को साई पल्लवी निभा रही हैं और आलिया किसी दूसरे किरदार में कास्ट की गई हैं। मतलब चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं लेकिन कुछ भी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया देवी त्रिकुटा यानी वैष्णो देवी का किरदार निभाएंगी। भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम जब माता सीता को लेने लंका जा रहे थे तब उन्हें समुद्र किनारे तप करती त्रिकुटा मिली। श्री राम ने उन्हें त्रिकुटा पर्वतमाला की गुफा में तपस्या करने को कहा और आश्वासन दिया कि भविष्य में उनका कल्कि अवतार उनसे मिलने आएगा। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि की माता का नाम सुमति का जिक्र किया गया है जिसका किरदार कल्कि के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण ने निभाया था। फिल्म में दिखाया गया है कि दीपिका के पेट में पल रहा बच्चा ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि है जिसे बचाने के लिए पूरी फिल्म की कहानी बुनी गई है। अब वापस आलिया पर आते हैं तो मेकर्स की तरफ से न तो आलिया की कास्टिंग और न ही उनके किरदार के बारे में कुछ कहा गया है लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही थ्योरी फिल्म के सब्जेक्ट के लिहाज से फिट बैठती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो बॉब स्टार रिहाना एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई है। वजह है उनके हाथ में दिखा एक बहुत खास डायमंड टेनिस ब्रेसलेट। बताया जा रहा है कि ये ब्रेसलेट जो है उन्हें मुकेश अंबानी परिवार की ओर से गिफ्ट किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रिहाना अपने फैशन और रोजमर्रा के स्टाइल के बारे में बात करती नजर आई और इसी दौरान उन्होंने कैमरे के सामने अपना हाथ दिखाया और कलाई में पहना डायमंड ब्रेसलेट फ्लॉन्ट भी किया। रिहाना ने खुद बताया कि ब्रेसलेट जो है उन्हें भारत में अंबानी परिवार से मिला था। इस ब्रेसलेट की कीमत को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। इस डायमंड टेनिस ब्रेसलेट की कीमत करीब 2,20,00,000 रुपए की जा रही है। ब्रेसलेट की ये डिजाइन अपनी सादगी, क्लासिक लुक और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। फिलहाल रिहाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके इस खास गिफ्ट की खूब चर्चा हो रही है।
0: तो वहीं चीन के शंघाई में डिज्नीलैंड ने अपनी स्थापना के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ डिज्नी कैरेक्टर्स की विशेष परेड भी निकाली गई और शानदार आतिशबाजी भी की गई।
3: डिज्नीलैंड नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं सालगिरह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई, जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और आइए बात करते हैं क्रिकेट की। आज भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों के मुकाबले होने जा रहे हैं। दरअसल आज टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच जो है लखनऊ के काना स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे होगा। वहीं पर महिला T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम आज नेदरलैंड्स के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलने जा रही है। ये मैच लीड्स के हेडिंग्ले मैच में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को 64 रनों से खरारी मार दी।
0: दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया ने जमकर नेट प्रैक्टिस की और इस दौरान हिटमैन रोहित शर्मा ने भी खूब पसीना बहाया। प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा गेंदबाजी में भी हाथ आजमाते दिखे। 3 वनडे मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। जाहिर है टीम इंडिया का जोश हाई है। आज टीम इंडिया सीरीज में अजय बढ़त बनाने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फैंस की निगाहें रोहित शर्मा पर रहेंगी। पिछले मैच में रोहित अच्छे टच में दिखे थे, लेकिन 16 रन के स्कोर पर वो रन आउट हो गए थे।
4: और इसी क्रम में बात करेंगे क्रिकेटर स्मृति मंदना की, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में जगह बना ली है। टाइम मैगजीन की ओर से यह सूची जारी की गई है। बड़ी बात यह निकल कर आई है कि इस लिस्ट में विराट कोहली समेत किसी और दिग्गज भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है, तो अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है।
0: चलिए अब बात करते कुछ और खबर की। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का खुमार इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। बाबा ऑक्टोपस तो याद ही आपको होंगे। पॉल द ऑक्टोपस ने 2010 के फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन की जीत की भविष्यवाणी की थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई थी। इसके बाद पॉल द ऑक्टोपस की खूब चर्चा हुई और इस बार भी कई नए फ्यूचर प्रेडिक्टर्स सुर्खियों में हैं। सबसे ताजा तस्वीर डलास जू की शेरनियों की है, जिन्होंने इंग्लैंड क्रोएशिया मैच में क्रोएशिया की जीत की भविष्यवाणी की। इंग्लैंड और क्रोएशिया के झंडों के बीच रखे भोजन में शेरनियां सीधे क्रोएशिया की ओर पहुंची। तो जाहिर है मैच से पहले इंग्लैंड के उन फैंस को बड़ा झटका लगा है जो ऐसी भविष्यवाणियों पर भरोसा करते हैं। खास बात यह है कि ऐसे एक्टिविटी सिर्फ मैच का अनुमान लगाने के लिए नहीं, बल्कि जानवरों को सक्रिय रखने के लिए भी कराई गई।
4: देखिए, जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया और ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम शुरू कर दिया। जयपुर के रामबाग चौराहे पर पहली बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है जो रेड लाइट पर रुकने वाले वाहनों की पूरी डिटेल ऑन द स्पॉट दिखाती है। स्मार्ट कैमरे वाहन का नंबर स्कैन करके PUC, इंश्योरेंस और चालान की जानकारी तुरंत स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पहल से वाहन चालकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने में आसानी हो रही है और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

0: जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शुरू किया है, जिसके जरिए अब वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक रामबाग चौराहे पर पहली बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जहां रेड लाइट पर रुकने वाले वाहनों की पूरी डिटेल ऑन द स्पॉट दिखाई जा रही है। इस सिस्टम में लगाए गए स्मार्ट कैमरे जैसे ही किसी वाहन का नंबर स्कैन करते हैं, तुरंत उस वाहन से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगती है। इसमें गाड़ियों की PUC स्थिति, इंश्योरेंस की वैधता और लंबित चालानों की पूरी जानकारी शामिल होती है।
1: जयपुर के सबसे बिजिएस्ट यानी कि सबसे हैवी ट्रैफिक वाले चौराहों पर एक नई पहल की जा रही है, जिसमें कुछ ऐसी स्क्रीन्स लगाई जा रही है जहां ट्रैफिक के चलते ही वहां पे गाड़ियों के नंबर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे और वो नंबर ऐसे होंगे कि वहां मेंशन किया जाएगा कि इस गाड़ी के नंबर पर कितने चालान हैं, क्या उनके नाम पे कोई चालान है भी या नहीं है, है तो टोटल अब तक कितने हैं, कितने अमाउंट के हैं, क्या उस गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है, क्या उस गाड़ी का PUC हो रखा है, ये सब चीजें एक डेटा के जरिए इन स्क्रीन्स पे दिखाई जाएंगी।
0: इस पहल का सबसे खास पहलू ये है कि वाहन मालिक रेड लाइट पर रुकते ही अपने वाहन की स्थिति को लाइव देख सकते हैं। इससे लोगों को अपने दस्तावेज समय पर अपडेट करने में मदद मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस सिस्टम का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी है। रामबाग चौराहे पर लगाई गई ये स्क्रीन अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बन गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये शुरुआत है और आने वाले समय में शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी ऐसी AI आधारित स्क्रीन और कैमरे लगाए जाएंगे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था और अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनने की उम्मीद है।
2: यह प्रक्रिया अभी रामबाग सर्किल पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। अगर यह इस सर्किल पर यह सफल रहता है, जंक्शन पर यह अगर सक्सेसफुल रहता है, तो हम अदरवाइज हमारे और भी 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ऑलरेडी ANPR कैमरे हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो वहां पर भी हम इसको आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि ऐसे वाहनों को चिन्हित करके और उन पर इमीडिएट एक्शन किया जा सके।
0: ये पूरा सिस्टम आधुनिक कैमरों और फास्ट इंटरनेट पर टिका है। ये मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में काम करता है। रामबाग चौराहों पर ANPR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही आप चौराहे से गुजरेंगे, ये कैमरे आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेंगे। स्कैन करते ही ये सिस्टम आपके नंबर को नेशनल ट्रांसपोर्ट डेटाबेस से मैच करेगा। अगर आपकी गाड़ी पर कोई पुराना चालान बाकी है या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है, तो महज 12 सेकंड के अंदर गाड़ी का नंबर चौराहे पर लगी बड़ी LED स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उसकी जानकारी तुरंत अगले चेक पॉइंट पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वालों को भेज दी जाती है। पुलिस आपको रोककर पेंडिंग चालान या दस्तावेजों की कमी के बारे में बताएगी और मौके पर ही चालान भरने को कहेगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग लगातार अपने चालान पेंडिंग रखेंगे, भविष्य में उनकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जयपुर के अजमेरी गेट के पास एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। जयपुर पुलिस की ये नई स्मार्ट तकनीक सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए एक बेहतरीन कदम मानी जा रही है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए कीकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: भाई यार, कब से वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो ही नहीं रहा है, क्या करूँ कि वेट लॉस हो जाए।
5: आपका दिनचर्या कैसा होता है, मतलब करते क्या हो सारा दिन?
4: भाई देखो, सुबह देखो 9 बजे एक तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, पोहा उपमा कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद 2 बजे लंच करता हूँ, 5 रोटी दाल सब्जी कुछ खा लेता हूँ, शाम को उपमा या पोहा जो बच जाता है वो शाम को खा लेता हूँ, रात को 9 बजे अपना डिनर हो जाता है।
5: बहुत सिंपल है, आपको साइकिल ब्रेक करनी।
6: एक्सक्यूज मी भैया, आपके कितने सेट बाकी हैं?
4: 2।
6: लेकिन भैया मैं आपसे पहले आया हूँ।
4: सॉरी।
7: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
3: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
10: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
11: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
13: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री विमानों के उड़ान भरने के बाद आज से कार्गो सेवा की शुरुआत। अकासा एयरलाइंस ने भी शुरू की अपनी सेवा। वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी, काशी विश्वनाथ मंदिर में की सप्तऋषि आरती, मां अन्नपूर्णा का 21 ब्राह्मणों से कराया कुमकुम अभिषेक। ओडिशा में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजा परबा पर्व, महिलाओं ने गाए पारंपरिक गीत। नारित्व, उर्वरता और धरती माता के सम्मान में मनाया जाता है पर्व। गांधरबल में 19 जून से शुरू हो रहा है माता खीर भवानी का मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का फैसला। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार और तकनीक का पावर हाउस है भारत।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब हमें कोई नया काम शुरू करना पड़ता है, नया व्यापार, नए मकान का निर्माण, कोई बिल्कुल नई यात्रा। तो अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो किस प्रकार से नए काम की शुरुआत करें कि आपको लाभ हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात के 9:38 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:37 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 8:13 तक और राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज नए काम के शुरुआत की बात कर रहे हैं।

यानी भाग्येश या सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश, अगर इनकी दशा चले तो भी नया काम शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। सबसे ज्यादा जो नए काम की शुरुआत होती है या जीवन में बड़ा बदलाव होता है वो साढ़े साती या ढैया उतरने के तुरंत बाद होता है, ऐसा देखा गया है। नए काम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या समाप्त होगी। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कर्ज आपका सरलता से चुकेगा, लेकिन परिवार में अशांति से बचिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जब आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी जानिए। दिन, समय और स्थान का सही चुनाव करना चाहिए। जिस दिन आप नया काम शुरू कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा का बल यानी चंद्रमा कितना मजबूत है और तारा बल आपके नक्षत्र को कितनी ताकत मिल रही है ये देख लें। चंद्र बल और तारा बल मजबूत होना चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हैं उस काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए या अपनी राशि के अनुसार राशियों के हिसाब से दिन का चुनाव करना चाहिए। और जिस दिन आप नए और शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उस दिन से संबंधित शुभ वस्तु खाकर आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अलग अलग राशियों के शुभ दिन होते हैं, उस दिन पर विशेष वस्तु खाकर या विशेष काम करके आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नए काम पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी

टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन हानि से बचाव करें। परिवार में अशांति हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होता जाएगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि कौन सी राशि के लोग किस दिन क्या खा करके नया काम शुरू कर सकते हैं या नया काम शुरू करना चाहिए। मेष राशि की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन पीली सरसों खाकर नया काम शुरू करें। वृषभ राशि, शनिवार के दिन घी खाकर नया काम शुरू करें तो बेहतर होगा। मिथुन राशि के लोग शुक्रवार को दही खाकर नए काम की शुरुआत करें। कर्क राशि, मंगलवार को गुड़ खाकर नए काम की शुरुआत करना अच्छा होगा। सिंह राशि, रविवार को पान खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कन्या राशि, बुधवार के दिन हरी धनिया खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। तुला राशि, शुक्रवार के दिन दही खाकर नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, रविवार के दिन जरा सा पान का पत्ता खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। धनु राशि, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को पीली मिठाई खाकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि, सोमवार के दिन दही और चीनी खा करके नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कुंभ राशि, शनिवार के दिन नए काम की शुरुआत करें। जरा सा घी खाकर नया काम शुरू करें अच्छा होगा। मीन राशि, बुधवार के दिन नए काम की शुरुआत करें। जरा सा धनिया खाकर
नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है, बेवजह के अपयश से बचाव करें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, मानसिक तनाव कम होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की नए काम की शुरुआत कब करें और कैसे करें। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। नए कपड़े पहली बार जब भी पहने बुधवार या शुक्रवार को धारण करें। ऐसा करने से आपको नए कपड़े मिलते रहेंगे और आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जून 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right fields, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ballgame.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

गधे मत बनो, बनना ही है तो घोड़े बनो, चाल अपनी चलो, चाल अपनी चलो, रास्ता अपना चुनो, मार्ग अपना चुनो, मुस्कुराओ तुम, इतराओ मत, घबराओ मत, मुस्कुराओ, जिंदगी को खुशनुमा मानो, ये जिंदगी चार दिन की है, आनी जानी है, सब मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर मरने मरने में अंतर होगा, लोग रो रो कर मरेंगे, हम मुस्कुरा करके मरेंगे। तुलसी बाबा ने कहा, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए। संसार रोता रह जाए तो कामना को वासना को पकड़ना है, कंट्रोल करना है तो उस पर ध्यान देना बंद करो, वासना बढ़ती जाएगी, जितने मकान खरीदोगे उतने मकान लेने के सपने बढ़ते जाएंगे, जितनी गाड़ियां खरीदोगे उतनी गाड़ियों के सपने बढ़ते जाएंगे, तुम फॉर्चूनर खरीदोगे तो तुम्हें रेंज रोवर दिखाई देगी, तुम वो खरीदोगे तो तुम्हें डिफेंडर दिखाई देगी, तुम डिफेंडर भी ले लोगे तो तुम्हें फरारी VMW दिखाई देगी, उसके ऊपर की दिखाई देगी, जब गाड़ियों से तुम उब जाओगे तुम्हें उड़ना पसंद आएगा, हेलीकॉप्टर से तुम चार्टर्ड खरीदोगे, इसके बाद फिर तुम हवाई जहाजें खरीदोगे, एक दिन उड़ते उड़ते बिल्कुल ही उड़ जाओगे, मजा ना ले पाओगे। इसलिए चार दिन की जिंदगी है यार, मुस्कुरा कर जियो, ठहाका लगा कर जियो, और जीने का ढंग होना चाहिए, बुरा मत मानना मेरे पागलो, यहां बहुत से लोग बैठे बैठे कह रहे हैं क्या बेतुकी बात कह रहे हैं कि हंस के जियो, हमारी जिंदगी में गम है, अरे तुम भी क्या कम आदमी हो यार, उल्लू आदमी हो, किसी ने तुम्हारे हिस्से में नींबू दे दिए तो खट्टा मान करके मत नाराज हो, शरबत बना के पी जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों टेंशन में हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो, कहानी खत्म। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है तो काहे को रो रहे हो, पनीर बना लो, झंझट खत्म। लेकिन तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते, अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा, अच्छा सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए, यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर लो, झंझट खत्म। तो सुबोध राजपूत, तुमने पूछा है कि कामना से कैसे बचा जा सके, भाई कामना से तो हम भी नहीं बचे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम कामनाओं में फंसे हैं, ना जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंगबली। घटे रामदास का बड़े रामदास का गांठी वंदन वो करें जिनके राम ना होए, फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पे पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। कबीर हमें बहुत याद आते हैं,

कबीर बाबा की बाणी, मन लाग्यो मेरो यार, किसमें लगा? मन लाग्यो मेरो यार में। सुबोध जी, आपने पूछा कि कामनाओं को कैसे रोकें, ऐसे रोक सकते हो, ऐसे भी समझो, वृंदावन में दो लोग थे, शाम का समय, ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, नाव पर बैठे भांग खाए हुए थे, दोनों ने आपस में बात की, बोले चलो दिल्ली चलते हैं। जमुना जी में नाव, नाव पर दोनों ब्रजवासी, जाना है दिल्ली। एक ने कहा कि ट्रेन से क्या जाना, जमुना जी भी तो दिल्ली से ही निकली, नाव से चलो, रात भर चलेंगे, सुबह पहुंच ही जाएं, जहां तक पहुंचेंगे वहां नाव रख देंगे, फिर गाड़ी से जाएं। पूरी रात नाव चलाई, सुबह हो आई, इनको तब ध्यान आई, सुबह प्रातः काल नाव चलाते चलाते थक गए, सोचा कोई नगर दिखाई पड़ रहा, लगता है दिल्ली के आसपास का कोई नगर है, जरा पूछ लिया जाए। तो किसी से पूछा कि क्यों भाई, ये कौन सी सिटी है, कौन सा नगर है? सामने वाले ने उत्तर दिया, चुप रहो, ये कोई सिटी या नगर नहीं है, ये वृंदावन है। अब दिमाग खराब हो गया, दूसरी की तरफ देख के बोले, अपन रात को कहां से चले थे? बोले वृंदावन से। बोले पहुंचे कहां रात भर में? बोले वृंदावन। क्या जमुना जी गोल गोल हैं भैया, जो रात भर चले हो वृंदावन के वृंदावन में पहुंचे? शायद ये उल्लू बना रहा। दूसरे से पूछा, क्यों भैया ये कौन सी सिटी है? हे भैया चुप रहो, ये सिटी ना है, ये तो भैया वृंदावन है। अब तो पक्को है गो ब्रज भाषा में जी वृंदावन है, पर रात भर अपन लोग चले कहां? तब ध्यान आया, पीछे मुड़कर देखा, क्या ध्यान आया? रात भर नाव तो चलाते रहे, पर नाव जिस रस, नाव की रस्सी जिस खूंटे से बंधी थी वो खोल नहीं भूल गए। रस्सी से खूंटी, खूंटी से रस्सी बंधी, नाव बंधी ही रही, नाव चलाते रहे। वही हम लोगों का हाल है, जिंदगी भर भजन करते रहते हैं पर मन को संसार रूपी खूंटी से बांध देते हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सुबोध जी, कामना से बचना है, वासना से बचना है, तो उपासना करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये हमने दूसरा प्रश्न लिया है जयपुर से, आपने लिखा हनुमान नाम का अर्थ क्या है, हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान जी के अनेक नाम हैं, बजरंग बली है आदि आदि लोग पुकारते हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान ही क्यों पुकारते हैं, कृपा करके बताने का कष्ट करें। और आप कभी खोले के हनुमान जी दर्शन करने आए, आपका पागल भगत। हे पागल भगत, तुमने पूछा कि हनुमान नाम का अर्थ क्या, सीधा सीधा सुनो, जो अपने मान का मर्दन स्वयं कर दे उसी को हनुमान कहते हैं। जिसे ना मान प्रिय हो ना सम्मान प्रिय हो, जिसे केवल भगवान प्रिय हो उसे हनुमान कहते हैं। एक बात और, हनुमान कौन? जो ज्ञानवान है। हनुमान कौन? जो बलवान है। हनुमान कौन? जो बुद्धिमान है। हनुमान कौन? जो तेजवान है। हनुमान कौन? जो विद्यावान है। इसलिए तो ये हनुमान है। आपने पूछा कि अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है हनुमान जी के अनेक नाम, पर प्रिय तो हनुमान जी का। एक और सुनो, हनुमान जी का काम है स्वयं का मान नीचे रखना, प्रभु का सम्मान बढ़ाना, अभिमानियों को ठिकाने लगाना, ये हनुमान जी का काम है। रावण को अभिमान आ गया, क्या हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है? हनुमान जी बोले आ जाओ,
ऐसी पूंछ से आग लगाई कि जब हनुमान जी वापस आ गए तो पूरी लंका में हनुमान जी की ही चर्चा चली। इतनी चर्चा चली हनुमान जी की चौराहे चौराहे पर कि रावण को चिढ़ हो गई हनुमान जी की पूंछ से। इतनी चिढ़ हो गई कि वो एक बार जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया कि ना ये बंदरा आता, ना सीता माता का पता लगाता, ना ये दोनों राजकुमार लंका आ पाते, ना युद्ध हो पाता, ना हमारा विनाश हो पाता।

0: can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
2: I have no idea how this election is going to play out,
1: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: आज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
11: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
14: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
15: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
10: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
10: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
17: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
10: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
18: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
19: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
18: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
20: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
14: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
21: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
10: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
22: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
10: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
23: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
10: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
16: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
2: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
10: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
13: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
10: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
3: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
4: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
18: रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा भारत, रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवा के बाद आज पहुंचा पहला कार्गो विमान, 1 जुलाई से नियमित कार्गो सेवा होगी शुरू। वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी, काशी विश्वनाथ मंदिर में की सप्तर्षि आरती, मां अन्नपूर्णा का 21 ब्राह्मणों ने कराया कुमकुम अभिषेक। ओडिशा में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजा पर्व, महिलाओं ने गाए पारंपरिक गीत, नारित्व उर्वरता और धरती माता के सम्मान में मनाया जाता है ये पर्व। गांदरबल में 19 जून से शुरू हो रहा है माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। अब डॉक्टर के पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का बड़ा फैसला।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
18: पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी ये बेहद पवित्र और दुर्गम यात्रा, यात्रा के दिशा निर्देश जारी। किन्नौर में समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग, मान्यता है कि दिन में कई बार रंग बदलता है ये शिवलिंग।

ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर तैयारी था, आपसी तालमेल को भी परखना था। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। गांदरबल में 19 जून से शुरू हो रहा है माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी। अमरनाथ यात्रा के बाद कश्मीरी पंडितों का दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक उत्सव, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारे गए भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल।

बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी कतार। उज्जैन में आशुतोष ब्रह्मचारी ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, गायिका प्रांजल दहिया भी भस्मारती में उषा। यूपी, वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज आई सामने। वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम निर्माण का 90% काम पूरा। यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा वाराणसी स्टेडियम। भोलेनाथ, काशी और गंगा की थीम पर बन रहा है ये स्टेडियम। आधुनिकता के साथ संस्कृति की भी दिखेगी झलक। स्टेडियम की छत अर्धचंद्रकार, फ्लड लाइट त्रिशूल नुमा, लॉज डमरू नुमा और रास्ते विल्प पत्र की आकृति में होंगे। 30.86 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे स्टेडियम में 30,000 लोग उठा सकेंगे मैच का लुत्फ। गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा होगा दर्शन दीघा में बैठने का इंतजाम। काशी, गंगा और भोलेनाथ से प्रेरित देश का पहला स्टेडियम होगा वाराणसी स्टेडियम। इस साल दिसंबर तक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करने का है लक्ष्य। रायगढ़ में राजा महोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई इसमें शामिल। उत्सव में पारंपरिक झूले, लोकगीत और लजीज पकवानों के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। उत्सव में पारंपरिक ओडिसी और संबलपुरी नृत्यों के माध्यम से उड़िया लोक कला की दी गई प्रस्तुति।

उत्सव में पारंपरिक परिधान में नजर आई महिलाएं, राजा झूला का लिया नाम। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा मां के दर्शन के लिए वंदे भारत बनी लोगों की पहली पसंद। पुंज में लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए शानदार पहल, लड़कियों को सिखाया जा रहा है आत्मरक्षा का गुर। लड़कियों के लिए टाइक्वांडो कैंप का आयोजन, 100 से अधिक लड़कियों ने लिया इसमें हिस्सा। रांची में कृषि व्यापार मेले का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन ने की इसमें शिरकत। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत, आईटीबीपी और माय भारत की ओर से किया गया इसे आयोजन।

0: श्रीनगर में रिटायरमेंट से पहले की काउंसलिंग वर्कशॉप के 69वें संस्करण का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हुए इसमें शामिल।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है
तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी,
एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।

0: You can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा भारत। रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अमरनाथ यात्रा से पहले बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में CRPF जवानों ने की विशेष पूजा, भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन। यात्रा के सकुशल संपन्न होने की मांगी कामना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवा के बाद आज पहुंचा पहला कार्गो विमान, 1 जुलाई से नियमित कार्गो सेवा होगी शुरू।

नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और आज आपको हम लेकर चलते हैं पवित्र और पावन धाम यानी कैलाश मानसरोवर, जहां आज भी महादेव का दिव्य वास माना जाता है। देखिए, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसा ये धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि यहां पर आस्था, अध्यात्म और रहस्य का अद्भुत संगम भी है। कहते हैं कैलाश पर्वत पर स्वयं देवों के देव महादेव ध्यानमग्न होकर विराजते हैं। यही कारण है कि सदियों से श्रद्धालु इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए कठिन से कठिन यात्रा भी तय करने को तैयार रहते हैं। और अब तो महादेव के भक्तों का इंतजार भी खत्म हो गया है। साल की सबसे पवित्र और अलौकिक कैलाश मानसरोवर यात्रा का शंखनाद हो गया है। महादेव के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का पहला जत्था पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ चुका है। इस बार भोलेनाथ के भक्तों में एक अलग ही आनंद और उत्साह देखने को मिल रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक से नाथुला दर्रे के रास्ते तिब्बत की ओर रवाना हो चुका है। हिमालय की दुर्गम चोटियां और कठिन मार्गों को पार करते हुए ये श्रद्धालु उस पवित्र भूमि की ओर बढ़ रहे हैं जिसे आस्था का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है।

0: महादेव का पवित्र और पावन धाम कैलाश पर्वत। जिसके कण कण में है महादेव का वास, जहां देवा अधिदेव महादेव ध्यान मग्न रहते हैं, जहां अध्यात्म शांति और अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव का वो निवास स्थल जो सनातन से लेकर बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। वो पवित्र और पावन धाम जहां आस्था मिलती है अद्भुत रहस्य से। आइए चले दिव्य कैलाश यात्रा पर।
1: भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। सिक्किम की ओर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है। नाथुला दर्रे के रास्ते होने वाली इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। गंगटोक में प्रशासन ने यात्रियों के स्वागत के साथ साथ स्वास्थ्य जांच और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अनुरूप ढलने की विशेष व्यवस्था भी की है।

0: अमल धवल पर्वत के इसी शिखर पर शिव का वास है। यही पावन पुण्य कैलाश है। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच दूर से ही दिखते हैं महादेव। तप में लीन, शांत और निश्चित, साक्षात एक विराट शिवलिंग की आकृति में, सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। और ये ठीक भी है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ कंकर कंकर में शंकर हैं, जिनके दर्शन की मनोकामना लिए शिव भक्तों का पहला जत्था नाथुला दर्रे के रास्ते आगे बढ़ चुका है।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का यात्रियों का पहला जत्था सिक्किम पहुंच चुका है। सिक्किम से नाथुला दर्रे के रास्ते ये तिब्बत पहुंचेगा और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। ये पहली बार है जब एक लंबे अंतराल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है और दो अलग अलग पासेज यानी नाथुला और लिपुलेख के रास्ते ये यात्रा आगे बढ़ेगी। पहले बैच की अगर हम बात करें तो इसमें 44 यात्री हैं, जिसमें 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। और इन पूरे यात्रियों की सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। इनकी टीम में लगातार डॉक्टर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा लाइजन ऑफिसर्स की टीम भी इन यात्रियों के साथ मौजूद रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले जत्थे को दिल्ली से रवाना करते हुए तमाम तैयारियों के साथ इस बात की भी जानकारी दी कि जल्द ही दूसरा बैच जो नाथुला दर्रे के बाद लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा करेगा उसको भी रवाना किया जाएगा।
0: चीन के साथ तनातनी के लंबे अंतराल में कैलाश की यात्रा बंद रही, पर पिछले साल जब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली तब एक बार फिर से कैलाश के ऊंचे शिखर तक जाने की राह बनी। इस साल भी शिव के धाम जाने के लिए लोगों में जबरदस्त जोश है, पर यात्रा लंबी है और बेहद कठिन थी, इसीलिए भाग्यशाली यात्रियों का चयन लकी ड्रॉ से होता है। विदेश मंत्री की मौजूदगी में कंप्यूटर आधारित ड्रॉ प्रक्रिया से नाथुला दर्रे के रास्ते जाने के लिए नाम चुने गए। लिस्ट में जिनका नाम आया वो गदगद है, जो रह गए वो भी निराश नहीं है।
2: कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आयोजित मानसरोवर यात्रा में हमारा प्रथम बैच में सिलेक्शन हुआ है और करीब 15 साल से हमारे ड्रीम था कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को करें, मगर शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। इस बार हमें सौभाग्य से मौका मिला है और हम लोग बहुत ईगरली इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें शुरुआत में ट्रैकिंग का मौका मिले और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसको हम पूरा करें। हम सिक्किम टूरिज्म के लिए और सिक्किम गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया है और हर एक स्टेप पर हमारे को कितना जितना वॉर्म से हमें रिसीव किया गया और हमारे को लुक आफ्टर किया गया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
0: दिल्ली से चलकर यात्रियों का पहला जत्था सोमवार को सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पहुंच गया। भारत चीन सीमा पर मौजूद ऐतिहासिक नाथुला दर्रे के रास्ते इस पवित्र यात्रा में शामिल सभी 44 श्रद्धालु उत्साह और भक्ति से भरपूर हैं। इस पहले दल में 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। बैच के साथ दो लाइन ऑफिसर और एक डॉक्टर भी मौजूद है, जो कठिन रास्तों पर यात्रियों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। गैंगटॉक से आगे नाथुला दर्रे के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट और सीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 20 जून को ये पहला जत्था नाथुला दर्रे से होकर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए दो मुख्य रास्ते हैं। पहला नाथुला दर्रा मार्ग, जो दिल्ली से गैंगटॉक और नाथुला दर्रा होते हुए तिब्बत और वहां से डाचिन तक जाता है। मुख्य यात्रा डाचिन यानी कैलाश बेस कैंप से शुरू होती है। इस रूट पर पैदल यात्रा का हिस्सा कम होता है, इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। दूसरा रूट है लिपुलेख, जो उत्तराखंड से जाता है। दिल्ली से काठगोदाम, पिथौरागढ़, धारचूला और फिर लिपुलेख दर्रा होकर तिब्बत। ये रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस साल नाथुला और लिपुलेख दोनों रास्तों पर 10-10 बैच जाएंगे। हर बैच में 50 यात्री होंगे। यानी हर रूट पर 500 भाग्यशाली लोग महादेव के दर्शन के लिए कैलाश जाने वाले हैं। शिव के निवास तक जाना आसान नहीं है। समुद्र तल से करीब 21,000 फीट की ऊंचाई कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद यम द्वार से कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। पथरीला रास्ता, चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इनके बीच 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा करीब 50 किलोमीटर की है, जिसे 3 दिनों में पूरा किया जाता है। जिन शिव भक्तों ने परिक्रमा की है, शिव को करीब से देखा है, उनके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव हैं। जो पहली बार जा रहे हैं वो पहले ही आनंदित हैं।
3: मेरी वाइफ, हम दोनों का लकी ड्रॉ निकला है। करीब 100 लोग आए थे, उसमें से आज हम बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि महादेव ने हमें बुलावा दिया है। हर हर महादेव।
4: बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। हमने एक बार पहले भी इसके लिए एंट्री करी थी,
3: तीन चार साल से,
4: बट हमारा आ नहीं रहता। आज महादेव की कृपा से हम दोनों का एक साथ आ गया, बहुत खुश है।
5: ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज कैलाश यात्रा के ड्रॉ में हम यात्री हैं कुछ, जिनका हमारा वेटिंग लिस्टेड में आया है। भारत सरकार का जैसे कि एक नियम है, जो पहले यात्रा कर चुके हैं उनको कन्फर्म नहीं करते हैं, उनको वेट लिस्टेड में ही रखते हैं। तो अगर कोई जगह बस्ती है तो फिर हमने जो वेट लिस्टेड में यात्री आते हैं उनको दोबारा मौका दिया जाता है यात्रा करने का। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये यात्रा को ऑर्गेनाइज करती है सरकार, और हम उम्मीद करते हैं कि वेट लिस्टेड वालों का भी नंबर आए। ओम नमः शिवाय।
0: कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच शिव का ये धाम मनमोहक है। मान्यता है कि जहां शंकर विराजे हैं, उसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। स्वाभाविक है कि सनातन परंपरा में इस जगह को दर्शन का हृदय कहा जाता है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है, जिसे देखने, पूजने और अनुभव करने के लिए शिव भक्त चल पड़े हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में अनगिनत जगहों पर कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश को दिव्य तीर्थ का स्थान प्राप्त है, तो वहीं कई शोध स्थान को धरती का केंद्र बताते हैं। तमाम मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिनका जवाब इंसान आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं।

0: बारहों महीने बर्फ से ढके रहने वाले इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये सोने की तरह धमकने लगती हैं। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माना जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर है। कैलाश के चारों ओर के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकुट, हिरण्यकशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्री और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है।
1: कैलाश मानसरोवर पर्वत सनातन और सनातनियों के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का निज निवास स्थान है। कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने मात्र से उसकी मुक्ति मिल जाती है। कहा गया है, प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशी पापम विनश्यति। अगर भगवान के शिव भूत भावन का अगर प्रातः काल में दर्शन किया जाए तो रात्रि में किया गया पाप नष्ट हो जाता है। आजन्म कृते मध्याने सप्त जन्म कृतनीय, जो मध्य काल में अगर दर्शन करता है उसके 7 जन्मों का पाप विनष्ट हो जाता है।
0: अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्कंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रातिक्रम में कांतारम रोम हुर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्य दृष्टासुरे भविष्यथ। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैश्रवणौ राजन गुह्यकय सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। ये यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्त यातिक्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गति परम सिद्धानाम देवर्षिणिम प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है, तो वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था।
1: तो नर नारायण भगवान जो है वह वहाँ तपस्या किए हैं। संतों के भी वह तपस्थली है, इसलिए भूत भावर भगवान का वह निज निवास स्थान ऐसे पावन पवित्र हैं कि दर्शन करने से उसकी मुक्ति की प्राप्ति होती है। सभी हमारे सनातन धर्म के जो चार हैं, वह चारों जो हैं वहां जाते हैं। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया और सनातन धर्म को मानने वाले सभी मतालंबियों जो हैं वहां जाकर के भगवान भूत भावन का दर्शन करते हैं। कहा गया है कि शिवम जिस भगवान जो शिव होते हैं सम कल्याणम करोति ती शंकरा, जो समान रूप से सबका कल्याण करते हैं। आसु तिघ शीघ्रम तुष्यति कुप्यति इति आसुतोषः, ऐसे आसुतोष भगवान जो क्षण में प्रसन्न होकर के आवहरदानी उनको कहा जाता है, जिनके ऊपर वरदहस्त रख देते हैं उनका कल्याण ही कल्याण होता है।
0: हिंदू बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6714 मीटर यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम है। पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। दरअसल माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए कैलाश की चढ़ाई कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
2: कैलाश मानसरोवर के बारे में माना जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया। पर्वत के अनेक श्रृंखलाओं पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पर कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की मर्जी के बगैर कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो भगवान शिव के यह क्षेत्र ऐसा है, ऐसा ऊर्जा का क्षेत्र है जहां कोई नहीं जा सकता। वहां पर तमाम प्रकार के जो यक्ष हैं, देवी देवता हैं, अनेक साधु संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वहाँ निवास करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आने का मन नहीं करेगा और यहाँ से कोई जा नहीं सकता। वो भगवान शिव का लोक है जिसको कोई पार नहीं पा पाया कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है, कहाँ तक है। उसकी ऊर्जा का कोई मापदंड नहीं है।
0: माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियाँ अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिसका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहां कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: Sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
4: Swing and a foul out of play off to the left.
3: Big 12 Radio.
5: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
3: Talk Sport.
6: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
3: And more. Search sports to find the stations covering your team.
7: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है, देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे, और कुछ को देख आप भी कहेंगे ये कैसे हो गया।
13: यूं ही जापानियों को सिविक सेंस में दुनिया में सबसे अव्वल माना जाता है। आप अगर ये बात नहीं जानते तो ये वायरल तस्वीरें देखिए, आप खुद इसको सलाम करेंगे। वीडियो में देखिए जरा, यहाँ हुए एक स्टेडियम में मैच के बाद फैंस यहाँ फैले कचरे को अपने हाथों से उठा रहे हैं। बच्चे हो या युवा, कचरा उठाना यहाँ छोटा काम नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, जब फैन से इसकी वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि ये आदर का मामला है, हम खिलाड़ियों का, स्टेडियम का और खेल का सम्मान करते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। है ना सम्मान का संदेश। इन तस्वीरों को देखिए जरा, इन्हें देख आप खुद समझ जाएंगे कि कभी कभी हमें जिनसे खतरा होता है वही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। वीडियो में देख रहे बत्तख के बच्चों का एक झुंड अपनी माँ से बिछड़ गया, जहाँ उनकी मुलाकात इस गोल्डन रिट्रीवल पिल्ले से हुई। बत्तख के बच्चे इस पिल्ले के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वो जब इन्हें सूंघ कर जाने लगा तो वो भी उसी के पीछे हो लिए।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
14: sports all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
15: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
14: Big 12 Radio.
16: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
14: and
16: down.
14: Talk sports.
17: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
14: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
8: रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1,78,00,000 के पार पहुंचा भारत का ये रिकॉर्ड। रक्षा मंत्रालय ने बताया, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अमरनाथ यात्रा के सकुशल संपन्न होने की कामना के साथ बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में सीआरपीएफ जवानों ने की विशेष पूजा, भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवा के बाद आज पहुंचा पहला कार्गो विमान, 1 जुलाई से नियमित कार्गो सेवा की होगी शुरुआत। ओडिशा में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजा पर्व। पर्व महिलाओं ने गाए पारंपरिक गीत नारित और धरती माता के सम्मान में मनाया जाता है पर्व। गांदरबल में 19 जून से शुरू हो रहा माता खीर भवानी का मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का फैसला।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
8: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान। इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी ये बेहद पवित्र और दुर्गम यात्रा। यात्रा के दिशा निर्देश जारी। किन्नौर में समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग। मान्यता है कि दिन में कई बार रंग बदलता है ये शिवलिंग। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। पुलवामा में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। गांदरबल में 19 जून से शुरू हो रहा माता खीर भवानी का मेला, तैयारियां जारी। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रायगढ़ में राजा महाउत्सव की धूम, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। उत्सव में

0: पुंछ में लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए शानदार पहल, लड़कियों को सिखाया जा रहा आत्मरक्षा के गुर। लड़कियों के लिए ताइक्वांडो कैंप का आयोजन किया गया, 100 से ज्यादा लड़कियों ने लिया इसमें हिस्सा। रांची में कृषि व्यापार मेले का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन ने की इसमें शिरकत। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत, आईटीबीपी और माई भारत की ओर से किया गया इसको आयोजित। श्रीनगर में रिटायरमेंट से पहले की काउंसलिंग वर्कशॉप के 59वें संस्करण का यहां पर आयोजन किया गया।
1: आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरा पहला कार्गो विमान, वाटर कैनन से विमान का किया गया स्वागत। मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और एक्टर जैकी श्रॉफ ने लिया हिस्सा। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पंजाब के जालंधर से 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन, चुने गए खिलाड़ियों में कोच सरबजीत सिंह, हैप्पी के 2 शिष्य शामिल। विमेंस टी20 विश्व कप में आज नीदरलैंड महिला टीम से होगी भारतीय टीम की भिड़ंत, पहले मैच में पाकिस्तान को रौंदने के बाद अपने विजयी अभियान की जारी रखना चाहेगी हरमनप्रीत की टीम। आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच, 3 मैचों की सीरीज का ये दूसरा मुकाबला।
0: हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी ईशा देओल, फिल्म घूंघट का ऐलान, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देगी ये कहानी। फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर जारी, 26 जून को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मलयालम सिनेमा में करण जौहर का पहला कदम, पृथ्वीराज सुकुमारन की ओडियन का ऐलान हुआ। फिल्म पैडी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी, फिल्म 13 दिनों में उसने की है 220 करोड़ की कमाई। अंबानी परिवार ने रिहाना को गिफ्ट किया डायमंड ब्रेसलेट, कीमत करीब 2.2 करोड़ रुपए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
1: यात्री सेवा के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये कार्गो सेवा भी शुरू, एयरपोर्ट पहुंचा पहला कार्गो विमान, 1 जुलाई से नियमित उड़ान।
0: बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे अनंत अंबानी, मां अन्नपूर्णा का किया कुमकुम अभिषेक।
1: गांधरबल में माता खीर भवानी के मेले की भव्य तैयारियां, 19 जून से शुरू होगा मेला।
0: अब डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला।
1: कल की 2 में दिख सकती है आलिया भट्ट, हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग की चर्चा, दिसंबर में रिलीज होगी फिल्म।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए आज कल्की टू की खबर के साथ आपको बताते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है इसका। कल्की टू के सीक्वल को लेकर फैंस के एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। इसी बीच बॉलीवुड की स्टार आलिया भट्ट का नाम फिल्म से जुड़ने से फैंस के एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। चर्चा यह है कि आलिया भट्ट कल्की टू में अहम किरदार निभा सकती हैं और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूटिंग को शुरू कर दिया है।
1: हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। इस फिल्म में आलिया को दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट किया गया है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठाने में अभी भी वक्त बचा हुआ है, क्योंकि ये फिल्म के दिसंबर में रिलीज होने की चर्चा है।
2: तो ये सब मेरे बर्थडे के लिए नहीं था।
3: अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके है?
4: रिलीज को तैयार अल्फा। मेकिंग के दौर से गुजर रही लव एंड वॉर और अब कल्की टू, 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्की 2898 एडी के सीक्वल। इन तीनों फिल्मों में एक खास कनेक्शन है, आलिया भट्ट, जिनका करियर ग्राफ इन दिनों तेजी से ऊपर उठा है और अब इसमें प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल्की टू का नाम भी जुड़ गया है। मीडिया

0: रिपोर्ट्स की माने तो आलिया को कल्कि 2 में कास्ट किया गया है और अगर ये सच है तो ये पहली बार होगा जब प्रभास और आलिया किसी फिल्म में एक साथ काम करेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आलिया ने कल्कि 2 की शूटिंग शुरू भी कर दी है। पिछले महीने हैदराबाद में इस साइंस फिक्शन फिल्म के लिए आलिया ने 5 दिन का शूट किया और अब सितंबर से फिल्म का अगला शेड्यूल शुरू होगा जिसमें आलिया के मेजर सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। हालांकि इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। कल्कि 2898 AD में दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस थी। कल्कि 2 में भी दीपिका को पहले कास्ट किया गया था लेकिन कुछ विवाद के बाद दीपिका को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था। अब आलिया को कास्ट करने की खबरें सामने आने के बाद चर्चा इस बात की भी है कि क्या आलिया ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस किया है या फिर दीपिका के किरदार सुमति को साई पल्लवी निभा रही हैं और आलिया किसी दूसरे किरदार में कास्ट की गई हैं। मतलब चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं लेकिन कुछ भी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया देवी त्रिकुटा यानी वैष्णो देवी का किरदार निभाएंगी। भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम जब माता सीता को लेने लंका जा रहे थे तब उन्हें समुद्र किनारे तप करती त्रिकुटा मिली। श्री राम ने उन्हें त्रिकुटा पर्वतमाला की गुफा में तपस्या करने को कहा और आश्वासन दिया कि भविष्य में उनका कल्कि अवतार उनसे मिलने आएगा। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि की माता का नाम सुमति का जिक्र किया गया है जिसका किरदार कल्कि के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण ने निभाया था। फिल्म में दिखाया गया है कि दीपिका के पेट में पल रहा बच्चा ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि है जिसे बचाने के लिए पूरी फिल्म की कहानी बुनी गई है। अब वापस आलिया पर आते हैं तो मेकर्स की तरफ से न तो आलिया की कास्टिंग और न ही उनके किरदार के बारे में कुछ कहा गया है लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही थ्योरी फिल्म के सब्जेक्ट के लिहाज से फिट बैठती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़े पर्दे पर कार्तिक आर्यन और शर्वरी वाघ की जोड़ी पहली बार दिख सकती है। जी हाँ, ये दोनों स्टार लव रंजन की आने वाली फिल्म में एक साथ दिख सकते हैं। फिल्म के मेकर्स ने इसकी पुष्टि तो नहीं की लेकिन चर्चा है कि फिल्म के लिए शर्वरी से बातचीत का सिलसिला जारी है। अगर ये बातचीत नतीजों तक पहुंचती है तो मुमकिन है कि कार्तिक और शर्वरी की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में शुमार हो जाए।
2: शर्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी मचाएगी बड़े पर्दे पर धमाल। मशहूर डायरेक्टर लव रंजन की अगली फिल्म में दोनों दिख सकते हैं एक साथ। एक्ट्रेस शर्वरी वाघ इन दिनों अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा में उनकी शानदार एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। अब चर्चा है कि शर्वरी के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर निर्देशक लव रंजन अपनी अगली फिल्म के लिए शर्वरी को फीमेल लीड के रूप में कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे। हालांकि अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन सूत्रों का कहना है कि शर्वरी ने भी इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लव इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी योजना दिसंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की है। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वो कार्तिक और शर्वरी को पूरी स्टोरी सुनाएंगे। उसके बाद शर्वरी फिल्म पर अपना अंतिम फैसला लेंगी और अगर सब कुछ सही रहा तो कार्तिक और शर्वरी की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखेगी। वहीं दूसरी ओर शर्वरी के पास पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स की लंबी कतार है। शर्वरी YRF स्पाई यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म अल्फा में नजर आएंगी। ये एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है जिसमें शर्वरी का बिल्कुल नया और दमदार किरदार देखने को मिलेगा। इसके अलावा शर्वरी मशहूर फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोलिया में भी लीड रोल में नजर आएंगी। कुल मिलाकर शर्वरी के करियर की गाड़ी इस समय फुल स्पीड में दौड़ रही है। बड़े बैनर्स, बड़े सितारे और बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच उनका बढ़ता कद साफ इशारा कर रहा है कि वो बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि लव रंजन की फिल्म में बड़े पर्दे पर कार्तिक आर्यन के साथ शर्वरी की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: चलिए एनिमेशन की दुनिया में लिए चलते हैं, जहां पर श्रेक बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी पसंदीदा कैरेक्टर रहा है। अब गुड न्यूज ये आई है कि श्रेक एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने जा रहा है। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके ट्रेलर ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को काफी गुना बढ़ा दिया है।
4: शहर फादर फादर अवे के सफर पर निकले।
5: ओ तेरे, ये सच में हो रहा है, हाइला ये हो रहा है, इसका मतलब समझाओ,
6: हुलिया बदलना होगा।
7: एक बार फिर से दर्शकों को हंसाने आ रहे हैं श्रेक, फियोना और डंकी।
8: स्नोमैन को बताना चाहोगे?
9: जल्दी करो श्रेक।
10: तुमसे तो इतना भी नहीं हो सकता, अब क्या कहूँ?
11: मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ बाबू।
7: करीब 17 साल बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है। श्रेक 5 का फैंस को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को इंतजार भी लंबा करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है।
4: शहर फादर फादर अवे के सफर पर।
7: ट्रेलर की शुरुआत 2001 वाली पहली श्रेक की कहानी से होती है, लेकिन तभी डंकी बीच में आकर ट्रेलर में नया ट्विस्ट दे देता है।
12: नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा।
13: तो इसका मतलब श्रेक और डंकी करने वाले हैं कुछ और।
14: नहीं, कहना भी मत।
13: दो पक्के दो।
7: डंकी के अंदाज से साफ है कि इस बार श्रेक की कहानी पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।
13: रोमांच पर।
8: स्नोमैन को बताना चाहोगे?
7: श्रेक 5 का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कहानी एक हैरत अंगेज सफर से शुरू हो रही है। श्रेक, फियोना और डंकी एक बार फिर से जादुई दुनिया की सैर पर निकलते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात दानव और डरावने स्नोमैन से होती है। ये स्नोमैन फ्रोजन फिल्म के ओलाफ की मजेदार पिरोड़ी जैसा लगता है। श्रेक 5 में फैंस का पसंदीदा किरदार गिंगी भी वापस आ गया है। ट्रेलर के अंत में श्रेक, फियोना, उनके बच्चे और डंकी एक जेल में बंद नजर आते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी डंकी गाना गाने लगता है, जिससे श्रेक परेशान हो जाता है, और यहीं ये ट्रेलर दर्शकों के मन में तमाम सवाल उठाते हुए खत्म हो जाता है।
13: दो पक्के दो।
14: नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा।
7: श्रेक 5 का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये फिल्म कॉमेडी, इमोशंस और एडवेंचर का जबरदस्त डोज लेकर आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन कॉनराड वर्नन और वॉल्ट डोरन ने किया है। ये दोनों मशहूर डायरेक्टर पहले भी श्रेक फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं। श्रेक की दीवानगी पूरी दुनिया में रही है। यही वजह है कि ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए इस फिल्म को 30 से ज्यादा भाषाओं में डबिंग के साथ रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वहीं चीन के शंघाई में डिज्नीलैंड ने अपनी स्थापना के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ डिज्नी कैरेक्टर्स की विशेष परेड भी निकाली गई और शानदार आतिशबाजी भी की गई है। देखिए।
0: डिज्नीलैंड, नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं सालगिरह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई, जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए बात करते हैं जून के महीने में बदलते हुए मौसम की।

देखिए बारिश अभी बाकी है। गुड न्यूज ये आई है कि उत्तर पश्चिमी भारत और दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का ये सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद बनी रहेगी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके का मौसम भी सुहाना बना रहेगा।

0: उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में इन दिनों हो रही बारिश मानसून की बारिश नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से है। इस बारिश के चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में कभी काले घने बादलों का डेरा रहता है, तेज हवाएं चलती हैं, झमाझम बारिश राहत लेकर आती है तो कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सोमवार की सुबह हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया।
1: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होता रहा, उसके साथ ही कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी रहा।
0: मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। इसके पीछे वजह है एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस। 18 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो दिल्ली को भी 2-3 दिन तक भिगोएगा।
1: वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का यही मिजाज देखने को मिल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, जहां बारिश भले ही हो रही हो लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचे मानसून की रफ्तार थम सी गई है। इसके पीछे मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है, साथ ही अलनीनो और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से कुछ घंटे पहले जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई थी उनमें मानसून वाले बादल नदारद नजर आए। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4-5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है। वैसे आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राज्यों में मौसम में बदलाव दिखने वाला है। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी बारिश जारी रहेगी। मानसून को लेकर दिल्ली सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है और फ्लड कंट्रोल रूम को दुरुस्त कर दिया गया है, ताकि मानसून आने पर या यमुना में पानी बढ़ने पर दिल्ली वासियों को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट आया। मौसम विभाग ने कल से 22 जून के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की बात कही है और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

0: मॉनसून की आहट हो गई है, बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख मिचौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं से रेस लगी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक इनकी आवाजाही जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून से 22 जून के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर और शिमला जिलों में कुछ स्थानों पर दिन के दौरान गरज के साथ बारिश, हल्की वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में तूफानी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है।
1: अभी तक मानसून जो है लगभग अपनी नॉर्मल गति से ही आगे बढ़ रहा है और एक बार जैसे ही पूर्वी भारत पूरा क्रॉस करेगा, हमारे उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश करेगा। नॉर्मली जो है वो हिमाचल प्रदेश में हमारा मानसून जो है 25 जून तक पूरा प्रदेश कवर हो जाता है। इस साल भी जो है अभी तक मानसून हमारा नॉर्मल गति से आगे बढ़ रहा है, यानी कि लगभग अधिकांश राज्यों में नॉर्मल टाइम पे ही पहुंचा हुआ है और हम लगातार परिस्थितियों को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तापमान में करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मॉनसून भी हिमाचल प्रदेश में समय पर दस्तक देने वाला है। IMD के मुताबिक सभी दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्यों और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कवर करने के बाद अब ये पूर्वी भारत में प्रवेश कर चुका है और सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है।
1: कांगड़ा, मंडी और कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी दिया हुआ है ओलावृष्टि को ध्यान में रखते हुए। टेम्परेचर्स की भी अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें, अभी जो बारिश हुई थी हमारे पूरे प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में, जिसकी वजह से तापमान में बहुत एक अच्छी खासी गिरावट जो है लगभग 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की देखी गई थी। नेक्स्ट 4-5 डेज की भी अगर हम बात करें तो निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों के कुछ एक जिलों में तापमान हमें जरूर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों में तापमान लगभग इसी रेंज में बने रहेंगे।
0: तो अगर आप भी छुट्टियां बिताने हिमाचल प्रदेश जाने की सोच रहे हैं तो मौसम को ध्यान में जरूर रखिए, ताकि आपकी यात्रा में कोई विघ्न ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, गर्मी के इस मौसम में कश्मीर में खुशियों का मौसम लौट आया है। डल झील पर सैलानियों की आमद बढ़ने से पर्यटन को रफ्तार मिल गई है। वहीं शिकारा नाविकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पर्यटकों से शिकारा हाउस बोट फुल हैं। पर्यटकों को यहां की शांत फिजा में शिकारा राइड काफी रास आ रही है।

0: बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए तो तमाम झीलें हैं, लेकिन बात श्रीनगर के डल झील की हो तो बोटिंग की बात ही कुछ अलग है। डल झील की सैर बिना शिकारा राइड के अधूरी मानी जाती है और यही शिकारा राइड डल झील की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। मैदानों में मौसम गर्मी का है, लिहाजा राहत की तलाश में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड की तरह जम्मू कश्मीर भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। देश भर से पर्यटक जम्मू कश्मीर की शान डल झील की खूबसूरती निहारने पहुंच रहे हैं और शिकारा राइड का लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बहुत अच्छा लगा, मैं 23 साल पहले भी आई थी, तब का एक्सपीरियंस और अब का में बहुत अंतर है। पहले और अब के कश्मीर में पहले भी उतना ही अच्छा लगा था, अभी भी उतना ही अच्छा है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सच में ही जन्नत है जो कहा जाता है।
2: जो भीड़ भाड़ है एंड द फास्ट सिटी है, फास्ट लाइफ ऑफ द सिटी, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। द लेक बहुत बहुत अच्छा था, शिकारा राइड स्पेशली, वो पानी से इतना पास, बहुत मजा आता है।
0: डल झील के शांत पानी में रंग बिरंगे शिकारे और झील की ठंडी हवाएं सैलानियों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। एक बार जो जम्मू कश्मीर आ गया और डल झील में शिकारे से सैर कर ली, वो इस हसीन नजारे को ताउम्र नहीं भूल पाता। शिकारा राइड का जादू बार बार सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है।
1: यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, जैसे हम अक्सर वीडियोस में इंस्टाग्राम पे देखते थे ना, तो वास्तव में जो चीज है वो रियल में यहाँ पे आके हमने फेस किए।
3: बहुत ही अच्छा लगा कश्मीर, और यहाँ के लोग काफी कुछ सहयोग करते हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति सहयोग करने की भावना है और हर व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई, हाँ अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल सीरियस लोग हैं ये, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल बहुत बदल चुका।
0: रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों की वजह से हाउस बोट्स और शिकारा चलाने वाले स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। डल झील की शांत लहरों पर तैरते ये शिकारे न केवल कश्मीर की पहचान है बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए हम वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मिल जाएगा ब्रेक के बाद। देखिए वाराणसी में बन रहा है शिव थीम पर क्रिकेट स्टेडियम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
7: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
8: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling, because there's country music fans everywhere.
7: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंचा। रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि।
4: अमरनाथ यात्रा को लेकर कामना के साथ बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में CRPF जवानों ने की विशेष पूजा, भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन।
3: गांधरबल में 19 जून से शुरू हो रहा माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की पूरी उम्मीद।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: अध्यात्म और भक्ति की नगरी काशी को अब नई पहचान मिलने जा रही है। घाटों की नगरी काशी विश्वनाथ धाम से अब क्रिकेट के रोमांच का नाता भी जुड़ने जा रहा है। वाराणसी में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से काशी गंगा और शिव की थीम पर आधारित होगा। स्टेडियम का करीब 92% निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और पूरा भी हो चुका है। ये स्टेडियम यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। कहा जा रहा है कि ये स्टेडियम आने वाले 2 से 3 महीनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और 2027 से अंतर्राष्ट्रीय मैचों का यहां आयोजन भी हो पाएगा।

0: वाराणसी में बन रहा गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। स्टेडियम का करीब 92% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक ये पूरी तरह से बन जाएगा। इस साल के अंत तक यहाँ एक ट्रायल मैच आयोजित करने की योजना है, जबकि 2027 में इस मैदान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेले जाने की संभावना है। स्टेडियम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भगवान शिव थीम आधारित वास्तुकला है। यहाँ डमरू के आकार का मीडिया सेंटर बनाया गया है, जबकि मैदान में 4 त्रिशूल स्वरूप फ्लड लाइटें स्थापित की गई हैं। क्रिकेट स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार है, मानो बाबा विश्वनाथ की नगरी का क्रिकेट स्टेडियम भी शिवमय हो चला है।
1: टोटल 32,000 कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, और महादेव के थीम पे, जैसे भगवान भोले को आपने जानते ही हो, आप चंद्रशेखर नाम है जिसके ऊपर, जिसके सर पे चंद्रमा हो, तो क्रिसेंट के आधार पे रूप सीटिंग है और त्रिशूल उनको चाहिए, तो त्रिशूल के हिसाब से अपना लाइट है डिजाइन, जो हाई मास्ट लाइट है, जो जिसको फ्लड लाइट बोलते हैं आप, जिसमें मैच होता है रात में, तो त्रिशूल के आकार का लाइट है। और बाकी दो ही चीज है, और बेलपत्र है, डमरू है।
0: यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरोज शुक्ला का कहना है कि स्टेडियम को शिवमय बनाना आसान नहीं था, कई बार की कोशिश के बाद ये संभव हो सका।
1: एक बार दो बार तो हमने डिजाइन फेल किया और उसको, मतलब उस टाइम से मैं दिख नहीं रहा था, फाइनली तीसरी बार हमें कंक्लूड हो गया था। एक तो ये, और दूसरा टोटल इसका वेट जो है 100 टन है, तो इसको 6 पीस में रखा है हमने, और इसका इरेक्शन आगे पीछे ना हो। ऊपर का जो देख रहे हैं आप हेड, ये टोटल 32 टन का है, 32 टन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए इरेक्शन करना इज नॉट ए जॉक।
0: करीब 30 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहे गंजारी क्रिकेट स्टेडियम में करीब 32,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। दर्शक दीर्घा में बैठने की व्यवस्था गंगा के घाट की सीढ़ियों जैसी होगी। इससे दर्शकों को खेल के साथ साथ काशी की आध्यात्मिक संस्कृति का भी अनूठा अनुभव मिलेगा, यानी अत्याधुनिकता के साथ ही काशी की संस्कृति और भोले की नगरी की झलक इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पूरे देश में अलग पहचान दिलाने वाला है। इस स्टेडियम को लेकर काशी वासियों में खासा उत्साह है। स्टेडियम में अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, जिससे 1-2 घंटे तक लगातार बारिश भी हो जाए तो मैदान को मात्र 30 मिनट के भीतर खेल के लिए तैयार किया जा सकेगा। ये सुविधा इसे देश के चुनिंदा आधुनिक क्रिकेट स्टेडियमों की श्रेणी में खड़ा करेगी। यही नहीं, स्टेडियम को ICC की मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम का रेडियस 76 मीटर बनाया गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।
2: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बोटिंग के दौरान पर्यटकों के सामने उस समय रोमांचक और डरावनी स्थिति पैदा हो गई जब एक बाघ पानी में उतरकर उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा, जिससे पर्यटक दहशत में आ गए। हालांकि कुछ करीब आने के बाद बाघ वापस लौट गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वन्य जीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

0: जंगल सफारी के दौरान अचानक अगर बाघ दिख जाए तो पर्यटकों के रोमांच की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वही बाघ अगर आपको देखकर आपकी ओर दौड़ लगा दे तो जाहिर सी बात है खौफ की कोई सीमा नहीं होगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शारदा डैम में बोटिंग कर रहे सैलानियों के साथ कुछ ऐसा ही मंजर घटा, जब एक बाघ पानी में उतरकर अचानक बोटिंग कर रहे सैलानियों की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी।
1: आज देखा टाइगर, आज देख ले टाइगर, और टाइगर भी ऐसा देगा हमला करते हुए।
0: जानकारी के मुताबिक शेरपुर कस्बे के निवासी सलमान खान अपने परिवार के साथ बीते शुक्रवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे थे। सफारी करने के बाद वो परिवार समेत चूका क्षेत्र में मौजूदा शारदा सागर डैम में बोटिंग का लुत्फ उठाने पहुंचे। बोटिंग करते समय उन लोगों की नजर डैम के किनारे मौजूद टहलते हुए एक बाघ पर पड़ी। सफारी के दौरान बाघ का दिखना किस्मत की बात होती है, फिर क्या था, सलमान और उनके परिवार ने अपने अपने मोबाइल कैमरों से बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बाघ पानी में उतरकर उनकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा, जिससे सभी लोग घबरा गए, बच्चों की चीखें निकल गई।
2: बोटिंग के दौरान जब हम पहुंचे तो हमारी नजर एक पानी में बैठे हुए बाघ पर पड़ी, तो एक ऐसा दृश्य था जिसे हम लोग देखकर, जिसके लिए जाना पहचाना जाता है टाइगर रिजर्व, देश विदेशों में जिसकी पहचान है, जिसकी खूबसूरती है टाइगर के लिए, तो हम लोग वो नज़ारे को देख ही रहे थे, तो अचानक एक टाइगर वो हमारी तरफ दौड़ा, जिसे देखकर थोड़ा सा भयभीत हुए बच्चे, लेकिन उसका दृश्य नज़ारा वो आज कई दिन बीत गए हैं लेकिन बच्चों के जहन से और हमारे जहन से बिल्कुल भी नहीं उतर पा रहा है।
0: एक तरफ बाघ का खतरा था, दूसरी ओर डैम का गहरा पानी, मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो गई। हालांकि कुछ दूर आने के बाद बाघ वापस लौट गया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन ये पूरी घटना बाघ का वीडियो बनाने की वजह से कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों का दिखना सामान्य बात है, अक्सर पर्यटकों को घूमते टहलते बाघ दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बोटिंग के दौरान किसी बाघ का नाव के करीब आना काफी दुर्लभ और रोमांचक घटना मानी जा रही है। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़डे।
3: लंच टाइम में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: What's going on everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
7: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
8: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
9: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
8: More top sports.
10: And he's gonna go! There's the tying goal!
8: And everything in between.
10: This game is over!
8: Upgrade now for the premium listening experience.
11: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच मैदान से लेकर चिड़ियाघरों और सड़कों तक पहुंच गया है, तो कहीं एक बतख लोगों की पसंदीदा मैस्कॉट बन गई है, तो कहीं पर शेरनियों ने मैच के नतीजा को लेकर भी हैरान करने वाली भविष्यवाणी दी है। देखिए
16: वर्ल्ड कप का जुनून इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप का हर मैच अहम है और पूरी दुनिया की नजर फुटबॉल के विश्व विजेता पर टिकी है, लेकिन फुटबॉल का ये जोश सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित नहीं रहा। ये तस्वीरें मेक्सिको सिटी की हैं, जहां की सड़कों पर इन दिनों एक खास सितारे की चर्चा है। नाम है मर्ले। ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पालतू बतख है, जो मेक्सिको की फुटबॉल जर्सी पहनकर लोगों के बीच घूमता है। मर्लिन जहां भी जाता है लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इस बतख के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मर्लिन को अब वर्ल्ड कप का अनऑफिशियल मैस्कॉट कहा जाने लगा है। दिलचस्प बात यह है कि मर्लिन ने एक खेल के दौरान अपनी चोंच से मेक्सिको का झंडा चुन लिया और देखते ही देखते वो फुटबॉल फैंस का चहेता बन गया। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि मर्लिन ने ये भविष्यवाणी मेक्सिको और साउथ कोरिया के बीच होने वाले मैच के लिए की, लेकिन सिर्फ मर्लिन ही नहीं, अमेरिका के डलास जू में रहने वाली शेरनियां भी इन दिनों सुर्खियों में है। इंग्लैंड और क्रोएशिया के मुकाबले से पहले चिड़ियाघर प्रशासन ने शेरनियों के सामने दोनों देशों के झंडों के पास खाना रखा। मकसद था ये देखना कि आखिर शेरनियां किस टीम को चुनती हैं, और नतीजा आया चौंकाने वाला। इंग्लैंड के प्रतीक चिन्ह पर तीन शेर बने होने के बावजूद शेरनियां सीधे क्रोएशिया वाले हिस्से में पहुंची और वहां रखा खाना खाने लगी। यानी शेरनियों ने विजेता क्रोएशिया को चुना। हालांकि जू प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जानवरों को सक्रिय और स्वस्थ रखने की एक खास एक्टिविटी भी है। एक तरफ मेक्सिको की सड़कों पर बतख मर्लिन लोगों का दिल जीत रहा है तो दूसरी तरफ डलास की शेरनियां फुटबॉल मैच की भविष्यवाणी कर रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इस रंग में इंसानों के साथ साथ जानवर भी पूरी तरह रंगे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: ड्रैगन बोट फेस्टिवल के इस खास मौके पर चीन के फुजियान प्रांत में 600 साल पुरानी एक अनोखी परंपरा फिर से जीवंत हो उठी है। यहां समुद्र की ऊंची लहरों और तेज हवाओं के बीच में रोमांचक ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
17: समुद्र की लहरों के बीच साहस परंपरा और खेल भावना का ये अनोखा संगम चीन की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दक्षिण पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में समुद्री ड्रैगन बोट रेस की शानदार शुरुआत हुई। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समुद्र पर रेस लगाती ये रंग बिरंगी नावे बेहद खूबसूरत नजर आई। लाल पीले सफेद और हरे रंग की चार ड्रैगन बोट 800 मीटर लंबे ट्रैक पर तेजी से फिनिश लाइन की ओर बढ़ती दिखी। समुद्र के बीच ये रोमांच मुकाबला दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये रेस जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। नदी या झील की तुलना में समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण नाव चलाना कहीं ज्यादा कठिन होता है। ऐसे में नाविकों को मुकाबला जीतने के लिए ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। आयोजकों के मुताबिक प्रतियोगिता में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर टीम को हर लेन में एक बार रेस कराई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में अंदर और बाहर की लेन पर लहरों और हवाओं का असर अलग अलग पड़ता है जिससे नावों की रफ्तार बदल सकती है। समुद्री परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ इस्तेमाल होने वाली ड्रैगन बोट सामान्य नाव से ज्यादा चौड़ी और ऊंची बनाई जाती है। इससे नावें लहरों का बेहतर सामना कर पाती है। करीब 600 साल पुरानी ये परंपरा आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े हुए है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान आसपास के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग अपने गांव लौटते हैं और मिलकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं। ये प्रतियोगिता 5 से 7 दिन तक चलती है और स्थानीय संस्कृति की एक खास पहचान बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
15: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए
4: गुड न्यूज टुडे। इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
18: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
19: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत। रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अमरनाथ यात्रा को लेकर कामना के साथ बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में सीआरपीएफ जवानों ने की विशेष पूजा, भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन। गांदरबल में 19 जून से शुरू हो रहा है माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। उड़ीसा में धूमधाम से मनाया जा रहा है राजा परबा पर्व, महिलाओं ने गाए पारंपरिक गीत, नारित्व उर्वरता और धरती माता के सम्मान में मनाया जाता है पर्व। डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का बड़ा फैसला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। पुलवामा में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। सभ्यास में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास किया गया। बिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर तैयारियां, आपसी तालमेल को भी परखा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा से पहले बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में सीआरपीएफ जवानों ने की विशेष पूजा अर्चना, जवानों ने लगाया जय माता दी के जयकार। पूजा के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, यात्रा के सकुशल संपन्न होने की मांग का। शारदा की पूजा के बाद लंगर का भी आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांदरबल में 19 जून से शुरू हो रहा है माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी। अमरनाथ यात्रा के बाद कश्मीर पंडितों का दूसरा सबसे बड़ा और धार्मिक उत्सव है। पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी पवित्र यात्रा। किन्नौर में समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिव। यह दुर्गम होती है किन्नौर कैलाश की यात्रा, सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को ही किन्नौर कैलाश की अनुमति दी है। रिंकांगियो के पास तंगडिंग गांव से शुरू होती यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है आवश्यक।

उत्सव में पारंपरिक परिधान में नजर आई महिलाएं, राजा झूला का आनंद। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज, वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होने जा रहा है वाराणसी स्टेडियम। आधुनिकता के साथ संस्कृति के बीच साफ झलक, स्टेडियम की छत पर अर्धचंद्राकार फ्लड लाइट त्रिशूलनुमा। 3.86 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे हैं इस स्टेडियम में 30,000 लोग बैठ सकते हैं। काशी गंगा और भोलेनाथ से प्रेरित देश का पहला स्टेडियम होने जा रहा है वाराणसी स्टेडियम। पुंछ में लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए शानदार पहल, लड़कियों को सिखाया जा रहा है आत्मरक्षा कुर। लड़कियों के लिए त्वाइकांडो कैंप का आयोजन किया गया, 100 से ज्यादा लड़कियों ने भाग लिया। रांची में कृषि व्यापार मेले का आगाज हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत, ITPP और माँ भारत की ओर से किया गया आयोजन। नगर में रिटायरमेंट से पहले काउंसलिंग वर्कशॉप के 59वें संस्करण का आयोजन किया गया। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरा पहला कार्गो विमान, वाटर कैनन से विमान को सलूट किया गया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने PNG और CNG इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में अद्विका वार्ता संवाद का आयोजन किया गया, बच्चों से डिप्टी CM ने बातचीत। मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। रियासी में ऑर्गेनिक लीची की खेती की बढ़ी डिमांड, लीची से लाखों कमा रहे हैं किसान। रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंच गया भारत। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिर्फ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला। गोरखपुर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पौधारोपण भी किया। पटना में स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाड़ू लगाई, लोगों को जागरूक किया। कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मेयर घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान, कार्यक्रमों के साथ झाड़ू लगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के पुलिस की मेहनत रंग लाई, पश्चिम बंगाल के एक युवक को 9 साल बाद उसके परिवार से मिलाया। पुलिस ने लगातार कोशिशों से युवक के घर वालों को ढूंढ निकाला, सूचना पाकर फौरन पहुंची। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पंजाब के जालंधर से 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। गुरविंदर वीर सिंह 100 मीटर दौड़ के लिए, जबकि रशदीप कौर का 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ के लिए हुआ है चयन। जालंधर के ही रहने वाले तेजिंदर पाल सिंह दूर शॉटपुट में हुए चयन। मुंबई में बारिश के सीजन से पहले जरूरतमंदों की मदद के लिए पहल, गरीबों को रेनकोट बांटने जाएंगे। वर्सोवा में सामुदायिक रेनकोट वितरण कार्यक्रम में पहुंची जाएगी श्रॉफ, कार्यक्रम को निर्देशन गोवानी का भी मिला साथ। लद्दाख के संगमहल मिलिट्री स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में लगातार इजाफा। मुंबई के वर्ली में आज फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। पंजाब से जुड़े मिडफील्डर सरप्रीत सिंह ने रच दिया इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एवियन में G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उनका स्वागत किया। फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान मिले दुनिया के ताकतवर देशों के प्रमुख, इस दौरान सभी नेताओं ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब 16 महीने बाद आमना सामना हुआ। फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान भारत और UAE में हुई द्विपक्षीय बैठक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक। दिल्ली में 19 जून तक बारिश की संभावना। पहाड़ी राज्यों में 22 जून तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का दावा, बिहार झारखंड की ओर बढ़ रहा है मौसम। राजस्थान के जैसलमेर में बदल गया मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश से गिरा तापमान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी जबरदस्त बारिश। कुछ देर के लिए सड़कों पर जम गया कुआ का पानी। जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके में तुलैल में फटा पाला। भारी बारिश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है नच तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
4: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: सोशल मीडिया पर इस भूखी ओपोसम और उसकी नाराजगी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भूख से बिलबिलाई ये ओपोसम गुस्से में पोल पर चढ़ गई। अब रूठ गई तो मनाना पड़ेगा। तो अब इन रूठी महोदया के पास केला लाया गया। इन्हें तब भी भरोसा नहीं था कि ये उन्हें खाने को दिया जा रहा है और मनाया जा रहा है। जैसे ही केले का ग्रास मुंह में गया तब कहीं जाकर चेहरे पर शांति आई, मानो रूठी हुई बीवी की तरह कह रही हो कि मैं कोई गुस्सा थोड़ी थी, मैं तो बस भूखी थी। सिब्लिंग्स आपस में लड़े नहीं तो वो सिब्लिंग कैसे, वो चाहे जानवरों के बच्चे हों या इंसान के बच्चे, एक दूसरे से लड़े बिना भाई बहनों को चैन कहाँ आता है। अब इन वायरल तस्वीरों में आपस में लड़ रहे बियर सिब्लिंग्स को देखिए जरा, बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। बीच सड़क पर इन भिड़ते बच्चों को माँ भालू देख रही है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ जाती है और उन्हें लड़ते लड़ते ही बीच सड़क से कोने तक ले जाती है, मानो कह रही हो जितना लड़ना है यहाँ लड़ो, बीच सड़क पर मत लड़ो। बच्चे की मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए एक बकरी बच्ची का मन बहलाने और उसे डाइवर्ट करने के लिए लाई गई, लेकिन इस दाव के उल्टे पड़ने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जब लोगों ने देखा कि अब तो बच्ची के साथ बकरी का भविष्य भी खराब ही हो गया है, क्योंकि बच्ची ने मोबाइल की लत छोड़ी नहीं बल्कि बकरी को भी लत लगा दी। अब ऐसी तस्वीर देख कौन नहीं मुस्कुराएगा और कौन नहीं कहेगा कि बच्चे मन के सच्चे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
16: रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत। रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अमरनाथ यात्रा को लेकर कामना के साथ बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में CRPF जवानों ने की विशेष पूजा, भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन। गांधरबल में 19 जून से शुरू हो रहा है माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं और रखरखाव पर हुआ मंथन, 200 किलो के झूले के जीर्णोद्वार का निर्णय। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का फैसला।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: सास बहू और पीठा में आज तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट के अनगिनत शेड्स, बिल्कुल इन लिपस्टिक्स की तरह। और देखिए जिस तरह इन लिपस्टिक्स में है रंग और वैरायटी, उसी तरह है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। चाहे हो वो आपकी फेवरेट टीवी शोज, वेब शोज, फिल्में या फिर कुछ और, एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज यहाँ पर कर रही हैं आप सबका इंतजार। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला। जी हाँ, हमारी हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए ईशा और सूरज की पानी पूरी डेट। अंश और प्रेरणा की शादी की रस्मों में लगेगा डांस का तड़का। क्रिश का होगा खुलासा, होगा थप्पड़ शो। होगी परेशान, दादी देगी पूरा साथ। आरंभ भी बनेगी जग्गा जासूस, अवंतिका को लगेगा डर।
2: भाई सब गोलमाल है।
1: सीरियल इश्क जुनूनी में आएगा ट्विस्ट, होगा सच का खुलासा।
2: अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। रस्ते की
1: और अवार्ड्स नाइट में लगेगा सितारों का मेला, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: ईशा, लड़कियां जब लिपस्टिक लगाती हैं तो काफी इतराती हैं और करती हैं पाउट, लेकिन आप क्या करती हैं?
1: वेल, ईशा तो बेचारी क्या ही करेंगी, क्योंकि ईशा तो हमेशा घिरी रहती हैं किसी ना किसी लाइफ प्रॉब्लम से, किसी ना किसी सिचुएशन से. ओ माय गॉड, फिलहाल तो टूट पड़ा है इन पर भी एक और ट्विस्ट वाला तूफान. तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज.

0: टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रही है पानीपुरी की पार्टी। वही आज ईशा अपनी दोनों नंदों संग पहुंच गई है पानीपुरी का मजा उठाने के लिए। और ठेले पर देखिए कौन है, सूरज, जो बन गए हैं पानीपुरी वाले और चटपटी पानीपुरी खिला रहे हैं वो इस तिकड़ी को। और देखिए इन तीनों में तो पानीपुरी कॉम्पिटिशन ही लग गया है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं पानीपुरी खाने में। बड़े मजे से ये तीनों खट्टी मीठी पानी पूरी खा रही हैं और बड़े ही चाव से सूरज इन्हें खिला भी रहा है। असल में सूरज इन्हें पानी पूरी क्यों खिला रहा है, इसके पीछे भी मकसद है। तो आइए सूरज से ही जानते हैं आखिरकार इन तीनों को पानी पूरी खिलाने का क्या राज है।
1: मुझे आप सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी, वो दरअसल बात ये है कि कल केक के अंदर मैंने क्रीम छिड़क दी ताकि जब ईशा जी को केक कट करे तो उन्हें वो रिंग दिखे और वो खुश हो जाए और मैं खुश कर पाऊँ। लेकिन केक कट करने के बाद वो रिंग मिली नहीं और मुझे डर ये है कि कहीं आप लोगों में से किसी ने वो रिंग खा तो नहीं।
0: जी हाँ, सूरज ढूंढ रहा है वो अंगूठी जो उसने केक में छुपाई थी, जो अब मिल नहीं रही। इसीलिए वो चाहता है कि इन तीनों में से वो अंगूठी किसके पास है वो ये पता करे। और देखिए ईशा खुद ही अंगूठी सामने लेकर आ जाती है और कहती है कि उसे केक में कल ही ये अंगूठी मिल गई थी और अब ईशा चाहती है कि सूरज उसे प्रपोज करे।
1: ये रिंग आपको मिल गई फिर भी आप मुझे सता रहे हैं।
2: हाँ तो पत्नी हो तुम्हारी, पति को छेड़ने का लीगल राइट है मेरे पास। मेरे भोले पति ब्रह्मचारी सर, ये नहीं मुझे कली
1: नहीं। ईशा जी, ये आपने बिल्कुल गलत किया। अरे आपको जरा सा भी अंदाजा है कितने टेंशन में था।
2: बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, गुस्सा हमेशा नाक पर चढ़ा रहता है। अब गुस्सा ही करोगे या मुझे प्रपोज ही करोगे?
0: लेकिन सूरज ने तो ईशा को प्रपोज करने से साफ इनकार कर दिया और ऊपर से शर्त भी रख दी कि अब ईशा को सभी के सामने सूरज को प्रपोज करना होगा।
1: नहीं, अब मैं प्रपोज नहीं करूंगा। हमेशा लड़के ही लड़कियों को क्यों प्रपोज करते हैं? अरे लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं। अब आपको मुझे प्रपोज करना होगा, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। अरे मैं भी तो देखूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं।
2: वैसे भी प्रपोज लड़के करते हैं, लड़कियां थोड़ी।
1: अभिषा जी, आपको मुझे मनाना होगा।
3: पानीपुरी ठेले के पीछे बहुत बड़ा दास्तां है। एक्चुअली जो केक में रिंग सूरज ने छुपाया था वो रिंग एक्चुअली मिल नहीं रही है सूरज को, और वो रिंग ऑलरेडी ईशा जी को मिल चुकी है और ईशा जी जानबूझ के नहीं बता रही है। तो एनी हाउ इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे आने का। तो सूरज और अरव दिमाग लगाए हैं कि काम करते हैं, हम पानीपुरी का ठेला लेकर चलते हैं। लड़कियों को बोलते हैं कि अभी तो हम गाँव जाने वाले हैं तो अगले एक हफ्ते तक तो हमें मिलेगा नहीं पानीपुरी वगैरह खाने को, तो बेटर हम लोग सोचे कि तुम लोगों का मूड थोड़ा ठीक कर दे, अच्छा कर दे। तो वो लेकर आ गया है यहाँ पे पानीपुरी, सभी को पानीपुरी खिला रहा है और उसी बहाने आरव को जानबूझ के सूरज पूछ रहा है कि वो रिंग मिली आरव तुम्हें जो तुम्हारी खो गई थी एक्स वाई जेड करके, कि वो मुद्दा छिड़े और कोई बताए। तो ईशा एंड ऑल सब लोग जो है पानीपुरी में ही बिजी है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है वो मुद्दे की तरफ। एंड सूरज फ्रस्ट्रेट होके पैनिक हो जाता है, बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं सच बताऊंगा, मैंने रिंग वगैरह छुपाई थी वो मिल नहीं रही, मुझे डर है कि आप लोग कोई उसे निगल ना लियो। तो वहाँ पे ईशा जी हंसना शुरू करती है और रिबिल्ड होता है कि वो चीज़ें ईशा जी को मिल गई है। तो सारी बहनें मिलके बोलती है कि ठीक है अब जो भी है अब प्रपोज कर लो, ईशा जी तैयार, मतलब कि ईशा भाभी तैयार है। लेकिन सूरज अब यहाँ पे अपने एटीट्यूड में आ गया, सूरज बोलता है नहीं अब बहुत हो गया, हमेशा लड़के ही क्यों प्रपोज करें, लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं, तो बेटर अब आप मुझे पूरे जहां जा रहे हैं हम गांव में, पूरे गांव वालों के सामने आप मुझे प्रपोज करेंगे।
0: तो भाई अब देखना होगा कि क्या सूरज की ये बात ईशा मानकर सभी के सामने सूरज को प्रपोज करेगी या फिर नहीं, क्योंकि इनकी लव स्टोरी की ये गाड़ी तो चल पड़ी है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा। आज ऐसा ही कह रही हूँ मैं अपनी फेवरेट शेड ऑफ लिपस्टिक से। इतना ही प्यार करते हैं हम अपनी फेवरेट शेड से। वैसे कुछ ऐसा ही रिश्ता है यहाँ पर अपराजिता और रक्षित का। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि इनकी कहानी में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता ही रहता है जो लेकर आता है हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।
5: और मैं भी 10वीं बार कह रहा हूँ मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है यार।
0: अपराजिता का डाइवोर्स।
5: मैं अपनी जान ले लूंगा, अपने आप को मार दूंगा, लेकिन अपने जिंदा रहते हुए इस रिश्ते को खत्म नहीं होने दूंगा।
0: ललित का सुसाइड ड्रामा। सास और माँ के सामने मजबूर हुई अपराजिता। स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता के घर में रोहन और आरू की कवर कलेवा की रस्म हो रही है, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंच गए हैं ललित और उसकी माँ, जिन्हें देखकर अपराजिता को आ रहा है गुस्सा। भाई अपराजिता की माँ तो यही चाहती है कि उनका रिश्ता सुधर जाए, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अपराजिता लेकर आ जाती है डाइवोर्स के पेपर्स। जरा देखिए कैसे वो डाइवोर्स के पेपर्स ललित को थमाती है और तो और उसकी तस्वीर भी उसके साथ खींच लेती है ताकि ललित कोई ड्रामा ना कर सके। ये देखकर ललित की माँ चंद्रभागा वो हैरान है और हैरान होते के साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया अपना ड्रामा। रो रो कर वो अपना दर्द सबके सामने बयां कर रही है।
6: मैंने सुना था कि अनपढ़ लड़कियां घर में जाती है और पढ़ी लिखी कोर्ट ले जाती है। अरे दुनिया के सामने मेरा ऐसे तमाशा बनाने से तो अच्छा होता तो मुझे मार ही देती। मार मार दे।
7: अरे आप बंद कीजिए, बंद कीजिए ये सब प्लीज।
6: अरे अब वो मेरी बात सुन, देखो उनकी हालत तुझे, ऐसा मत कर बेटा, उनकी बात सही है।
7: मैं बार बार सोच चुकी हूँ, 4 साल से सोच ही तो रही हूँ माँ, यही सोच रही थी कि रिश्ता कैसे बचे, यही सोच रही थी कि बेइज्जती से कि चुप कैसे रह जाऊँ, यही सोच रही थी कि आपसे अपनी मार कैसे छुपाऊँ। और इतना सोच के ना यही समझ पाई कि रिश्ता खत्म हो जाए ना तो ही सबका भला हो जाए।
8: आज जो रस्म हो रही है उस रस्म का नाम है कवर कलेवा, जो कि मारवाड़ी फैमिलीज में आपको मोस्टली देखने को मिलेगी। तो इस रस्म में हम दामाद जो होने वाले दामाद जी उनको बुलाते हैं और प्यार से उनके लिए ढेरों पकवान बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी उनको उनका वो करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको शगन देते हैं, सब देते हैं। तो ये वही रस्म होती है। तो हमारी जो मम्मी है उनके सामने ललित जी ने थोड़ा ड्रामा वामा करके उनको थोड़ा अपनी साइड में ले लिया है। तो अब मम्मी को ऐसा हो गया है कि बेटी का घर टूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए जब मेरे होने वाले पति या फिर उनके होने वाले दामाद का आज जब कवर कलेवा हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि जो बेटी की शादी हो चुकी है उन दामाद जी को भी बुला के एक बार कर लिया जाए ताकि यहाँ से एक फ्रेश बिगनिंग हो सके। बट दीदी ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और वो नहीं चाहती कि ये हो, वो रिश्ता तोड़ना चाहती है।
0: अपराजिता का फैसला सुनकर ललित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने भी घर वालों के सामने ड्रामा करना शुरू कर दिया, लेकर आ गया छुरी और अपनी नस काटने की जिद करने लगा।
5: आप तेरे लिए है 7 जन्मों का साथ देना और इस जन्म में मैं अपनी बीवी जी के इस फैसले में साथ दिया। मैं अपनी जान ले लूंगा, अपने आप को मार दूंगा, लेकिन अपने जिंदा रहते हुए इस रिश्ते को खत्म नहीं होने दूंगा। मैं अपनी नष्ट कर
6: ललित अपनी माँ के बारे में सोच, मेरा क्या होगा।
8: वो तो हमेशा से ड्रामा करते आए हैं, शायद उन्होंने अपनी माता जी से सीखा है ड्रामा करना, जैसे कि आप देखेंगे अभी माता जी भी ड्रामा में फुल ऑन मार्क्स हैं, तो जीजू भी है, तो हर प्रयास और हर कोशिश वो करेंगे कि दीदी मेरी जितनी अच्छी दीदी हैं उनसे उनको डिवोर्स ना मिले, उनको डिवोर्स छोड़ ना पाएँ और उनको प्रताड़ित करते रहें, बट आई थिंक दीदी मेरी स्ट्रांग स्टेप लेंगी और हम परिवार एज अ परिवार उनके साथ खड़े रहेंगे, और अगर उनको ये रिश्ता तोड़ना है तो जरूर तोड़ सकती हैं।
0: भाई अपनी माँ की जिद के आगे अपराजिता को ये रिश्ता मजबूरन जोड़ना पड़ रहा है और ये कंवर कलेवा की रस्म अदा करनी पड़ रही है। ऐसे में अपराजिता की सासू माँ तो बहुत खुश है, तभी तो देखिए झट से वो लेकर आ गई है सुहागन का सारा सामान, और ललित वो अपराजिता के सामने जाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है और उसे जबरदस्ती कंवर कलेवा की रस्म के लिए बिठा रहा है, और अपराजिता वो झिझक रही है, ना चाहकर भी उसे रस्म अदा करनी पड़ रही है।
9: अरे इतने प्यार से तो खिला रहा है, हाथ क्यों रोक गया, गलत बात है ना बेटा?
10: गलत तो है, आज आलू और रोहन का है ना, तो हम अपने बारे में नहीं बना सकते, सारा ध्यान इन दोनों पे होना चाहिए, हमारे बीच जो था हो चुका है, आज के स्टार्स आलू और रोहन है।
8: मैं तो पहली बात मनाना ही नहीं चाहती थी, मुझे लग रहा था इतना सब कुछ बवाल हो रहा है दीदी की ज़िंदगी में, हमें मनाने की ज़रूरत थी क्यों है, बट मम्मी ने बोला कि नहीं करना है करना है, और भी कर रहे हैं, तो ये सब रस्म फंक्शन तो होते रहेंगे, दीदी का जीवन है वो सुधरना चाहिए और अच्छी राह पे चलना चाहिए।
0: अब अपराजिता तो बड़ी ही समझदारी से पीछे हट गई और उसने ये रस्म भी पूरी नहीं की, देखना होगा कब अपराजिता की माँ को दिखाई देगा कि अपराजिता क्या दर्द सह रही है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अगर आपको भी चाहिए ना मेरी तरह लिपस्टिक का स्मूथ फिनिश, तो मैं बताऊं आपको क्या करना है, एक तो अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें, और लिपस्टिक लगाने से पहले एक वेरी थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट या फिर बेस आप लगा सकते हैं अपने लिप्स पर, उसके बाद जब आप लिप्स को लाइन करेंगे और उसके अंदर लिपस्टिक को फिल करेंगे, आपका लुक हो जाएगा फ्लॉलेस। इसी टिप के साथ लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगली खबर, जिसमें है एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ।
11: तुम्हारे पिशी मुनी ससुराल से सामान अपने मायके में भेज रही है।
12: नोएनिका पर फिर लगे इल्जाम,
11: आपकी बेटी बिना कुछ बोले यहाँ का सामान अपने मायके भेज रही है और मैं चुप रहूं।
12: ससुराल में शुरू हुआ तमाशा,
13: इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी।
12: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में आज फिर एक बार शुरू हो चुका है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर नायनिका ने दिया है घर के इस बच्चे को गिटार, लेकिन इसी बात पर देखिए कैसे बवाल शुरू हो गया है और उसे कई सारी बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन इस बार नायनिका भी चुप नहीं बैठी, उसने भी सभी को करारा जवाब दिया, इसी के चलते शुरू हो गया है फिर एक बार तमाशा।
11: अरे गबलू, ये गिटार क्या तू घर से लेकर आया? लेकर क्यों खड़ा है, साइड में रख दे और बैठ जा खाना खाने। वैसे ये गिटार अचानक लाया कहाँ से?
14: ये पीसी मुने ने दिया था मम्मी, वो तिनी दीदी का गिटार है, मेरा टूट गया था ना।
11: एक मिनट, पीसी मुने ने दिया मतलब? अच्छा समझ गई, तुम्हारे पीसी मुनी ससुराल से सामान अपने मायके में भेज रही है।
15: अरे माँ क्या हो गया, गिटार ही तो है, तिन्नी के इस्तेमाल में नहीं था, गबलू यूज कर लेगा।
13: इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी।
11: अरे वाह, आपकी बेटी बिना कुछ बोले यहाँ का सामान अपने मायके भेज रही है और मैं चुप रहूं।
15: बोदी, हमें सबके सामने ऐसे शर्मिंदा क्यों कर रही है, भूली मत ये हमारे समधी है।
13: यहाँ पे किसी का कोई कुछ नहीं है काका मोनी। माँ ये गिटार जरूर तिन्नी का है, लेकिन ये आप लोगों में से किसी ने नहीं दिलाया उसे, ये मैंने अपने पैसों से लिया है। अगर मैं अपने पैसों से कुछ खरीद रही हूँ ना माँ, तो मैं बिल्कुल अपने मायके लेकर जा सकती हूँ, और एक बार नहीं हजार बार लेकर जा सकती हूँ। और गबलू, तू अगर अपनी पिशी माँ से प्यार करता है ना, तो तू ये गिटार अपने साथ घर लेकर जाएगा। बोधी, माँ, बाबा, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। एक इंसान की बातों का बोझ सब पर नहीं पड़ना चाहिए।
15: संदीप जी, एक बात याद रखिए, आपकी बेटी इस घर में फ्री का खाना नहीं खा रही है। इस घर को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं ना, उनमें आधे पैसे मेरे बेटे देते हैं और आधे आपकी बेटी देती है।
16: ये हर घर की कहानी है। जो हमारे जो औरतें हैं, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं या फिर अपने लिए कुछ करती हैं या अपनी अपनी इच्छाओं को आप जब कमर्शियली सक्सेस में लेकर जाते हो, भले कोई भी लेवल हो, इट्स नॉट कि आप डॉक्टर ही बन जाओ, बट जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हो, यू डू जॉब, आप जॉब पर जाते हो, तो एक आपके पास अपने लिए स्टैंड लेने के लिए एक यू नो ऑप्शन मिल जाता है कि आप बोल सकते हो। तो वही आज हुआ है। तो नौनिका ने उन्हें बोला है बहुत प्यार से, थोड़ा उसको दुख हुआ क्योंकि उसके पेरेंट्स की बेइज्जती हुई है, तो वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई, लेकिन फिर उसको पता है कि उसकी मदर इन लॉ का नेचर है वो, तो सबको संभालते हुए उसने बहुत प्यार से बातों को हैंडल करके उन्हें ये मैसेज पहुँचवा दिया कि ये मेरे पैसों का, इसलिए मैं देख सकती हूँ।

वहीं दूसरी तरफ नैनिका और ईशान के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये ईशान का सपना है या हकीकत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

0: फिलहाल तो नानिका पर कई सारी मुश्किलें आने वाली है।
1: आज तेरी कॉलेज फ्रेशर्स वेलकम पार्टी है।
2: मॉम, ईशान अब आपके जान पहचान वाला है, आप उसके कुछ गाने सुन लेना और फिर चले जाना।
1: आज ही की छुट्टी है मेरे पास और थोड़ा थकी भी हुई हूँ, और तेरे भाई बहन जा रहे हैं ना।
2: बस मेरी किस्मत खराब है और मेरे इतने स्पेशल डे में भी आप मेरे साथ नहीं होंगे।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो हमारे इस एपिसोड में छाया है लिपस्टिक्स का जुनून। जी हाँ, आज तो लिपस्टिक्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ शेयर कर रहे हैं आपके साथ कुछ ब्यूटी टिप्स। और इस कहानी में क्या है, इस कहानी में तो है सिर्फ और सिर्फ इश्क का जुनून। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको आपकी फेवरेट चूड़ी यानी गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज।
4: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
0: रूहानी की बंदूक लीला।
4: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल।
0: हुआ मामा जी का खुलासा।
4: रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल, गोलमाल।
0: मामी की चप्पल मार पिटाई।
4: गोलमाल है।
0: टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज रूहानी के ससुराल में पहुंच गई है पुलिस रूहानी को गिरफ्तार करने के लिए। असल में मिहिर के मम्मी पापा ने रूहानी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि रूहानी ने ही उसके बच्चे को मारा है। ऐसे में पुलिस रूहानी को गिरफ्तार करने आई है। रूहानी हाथ जोड़कर विनती भी कर रही है और अपने आप को बेगुनाह भी बता रही है, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं। ऐसे में जैसे ही लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी रूहानी को हथकड़ी लगाने के लिए, तो रूहानी ने छीन ली पुलिस की बंदूक और कर दिया घर में बंदूक तमाशा।
5: रुक जा, दूर रहो, कोई आके बता रहा हूँ। तुम्हारे बेटे क्या कर रहे तुम? मैंने कहा ना, कोई आगे नहीं आएगा।
0: अब रूहानी ने बगावत तो की, साथ ही साथ सभी को ये भी बता दिया कि वो घर जल्द ही लौटेगी, लेकिन सबूतों के साथ। इस बात पर गुरु को पूरा विश्वास है, इसीलिए वो अपनी रूहानी का इंतजार कर रहा है और पुलिस वो भी रूहानी के घर में रूहानी के आने का इंतजार ही कर रही है। ऐसे में पुलिस को लगता है कि रूहानी वाकई में भाग गई है, लेकिन तभी रूहानी घर में आ जाती है और करती है सभी के सामने सच का खुलासा, वो भी मामा जी का।
5: मैंने कहा और वो
6: भी
5: अपने बेगुनाई का सबूत देते।
0: भाई तेजू ने तो रूहानी को हल्के में लिया था, लेकिन रूहानी ने अपना दम दिखा दिया। इसी के साथ जैसे ही मामा जी को कंबल उड़ाया तो कुसुम के सामने सारा खुलासा हो गया और कुसुम ने सभी के सामने अपने ही भाई पर हाथ उठा दिया।
5: क्या
6: तो उसके बाद ये सब ड्रामा शुरू होता है और हमें भी थोड़ा शौक लगता है कि भाई मतलब हमरे ही साले हैं और ऐसा कांड हमारे साथ हमारे परिवार के साथ कर रहे हैं, तो गुरु को भी गुस्सा आता है, गुरु भी उनका कॉलर वॉलर पकड़ लेता है, धमकाता है, हम भी धमकाते हैं, और कविता भी जो है उनको मतलब खूब मारपीट होती है उसमें बीच में। तो ये सब कहानी चल रही है, तो इन बिटवीन मामी पूछती है कि आप पे क्या सबूत है, तो फिर रूहानी उनको वो पेन ड्राइव में सबूत दिखाती है जिसमें मामा के CCTV फुटेज है हॉस्पिटल की, और वो उनके जूतों से उन्हें पहचान जाते हैं। तो जब ये सब हो जाता है तो सबका ध्यान एक तरफ होता है, तो इतने मामी और मामा कुछ इशारा करते हैं, मामी उनके पीछे चप्पल लेके भागते हैं और ऐसे करते करते मामा घर से भाग जाते हैं। फिर मामी जो है जग उठाकर अपनी सारी जो सातों मांगे हैं उनकी उनको धो देती है कि भाई अब इस मांग का कोई मतलब नहीं है, मतलब इस काइंड ऑफ गुड ड्रामा गोइंग ऑन।
0: अजी मामा जी तो चीख चीख कर अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि रूहानी अपने साथ सबूत भी लाई है, और देखिए कैसे रूहानी ने सभी के सामने लैपटॉप में पेन ड्राइव दिखा के वो वीडियो दिखा दिया जिसमें मामा जी और उनके जूते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मामा जी की चोरी पकड़ी जाती है और गुरु उसे भी आ जाता है मामा जी पर गुस्सा।
7: मत कहिए हमारी माँ को जी, जी अपने मतलब का बोझ होने वाले कभी कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। हमारी माँ को सताए, हमारी कंपाउंडर को फंसाए, ऐसी सजा देंगे ना तुम्हें मामा, तुम्हारी सात पुश्तें याद रखेंगे।
0: आज तो मामा जी की खैर नहीं, क्योंकि नागेश्वर जो उसे सबसे ज्यादा मानते थे वो भी उससे नाराज हैं, और उन्होंने तो उसे घर के बाहर का रास्ता दिखाना भी सही समझा। लेकिन तभी रूहानी ने पुलिस को वो सिरिंज भी दे दी जिससे मिहिर को जहर दिया गया था, और वो मामा जी के खिलाफ हैं। ऐसे में मिहिर के मम्मी पापा ने रूहानी के पैरों पर गिरकर माफी मांगी क्योंकि उन्हें उसे दोषी करार दिया था, बट सच सबके सामने आ गया है। लेकिन मामी वो तो सर पकड़कर जमीन पर बैठी हैं कि इसी बीच उन्होंने अपना खेल खेल दिया और सभी के सामने अपनी चप्पल उतार दी अपने ही पति को मारने के लिए।
6: हाँ, इस मामले में तो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है, जो बात वो कह रही थी वो सही निकली, तो उस पर ये इल्ज़ाम तो हट गया कि उसने मतलब किसी को मारा नहीं है, ये इल्ज़ाम तो उस पर हट गया। लेकिन अभी जो मेन चीज़ बाकी है वो है गुरु और तेजू की शादी, तो उसमें भी देखना है कितना ड्रामा होने वाला है।
0: अब मामी ने तो बड़ी ही चालाकी से मामा को फरार कर दिया। इतना ही नहीं, घर वालों के सामने उन्होंने ये भी जताया कि वो अपना रिश्ता अपने पति से तोड़ रही है, अपने सिर पर पानी डालकर अपना सिंदूर पोंछ रही है। ऐसे में अब घर वाले त्रिपुरारी को ना सही बल्कि ललिता का साथ दे रहे हैं, यानी ललिता अभी भी इसी घर में है और वो नए खेल खेलेगी जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: आज तो लिपस्टिक्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, और देखिए इनमें कितनी वैरायटी, कितने ब्रांड्स, कितने शेड्स, ओ माय गॉड। और ऐसी है यहाँ पर भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। हमारी अगली खबर जिसे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी एकदम गर्मा गर्म। कैसे? ऐसे।
8: लेट्स नॉट ट्रू।
0: रेड कार्पेट पर उतरे सितारे, देखा सितारों का फैशन का दर्शन, रेड कार्पेट पर लगे चार चांद, बीती शाम हुए IWM बस डिजिटल अवार्ड्स जिसमें सितारों का मेला लग गया, और इस अवार्ड नाइट को अटेंड करने के लिए टीवी और बॉलीवुड के कई सारे सेलेब्स यहां पर पहुंचे। दिखा रेड कार्पेट पर इनका जलवा, और फैशन के तो क्या कहने भाई, अवार्ड्स नाइट है ऐसे में सज धज तो बनती ही है।

तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस अवार्ड नाइट में कौन कौन से सितारे हुए शामिल। तो भाई बात करते हैं टीवी और बॉलीवुड की इन हसीनाओं की, तो देखते हैं कैसे रेड कार्पेट पर इन्होंने अपना जलवा बिखेरा।

0: तो भाई सबसे पहले बात काजोल की, जिन्होंने रेड कार्पेट की शान बढ़ाई और पहन कर आई ये ब्लू कलर का ब्लिंगी आउटफिट, जिसमें वो कर रही हैं फ्लॉन्ट।
1: नितू कल्ली ने गोरी पागल करते सारे, नितू कल्ली ने गोरी पागल करते।
0: इसके साथ यहाँ नजर आई शाइनी दोषी, जिन्होंने ब्लैक आउटफिट चुना।
1: सूरज चंदा तारे जदों तू नचदी नचदे, सूरज चंदा तारे यू लुक लाइक ओ, यू डांस लाइक आ, यू लुक लाइक ओ, यू डांस लाइक आ।
0: आशी सिंह जो बनकर आई हैं एकदम प्रिंसेस, क्योंकि है इनका प्रिंसेस लुक।

0: गई। मोना सिंह जो यहाँ नजर आई एकदम कैजुअल अंदाज में,
1: चिट्टे रंग दी ते हुण तैनू वेखिया तू लाल हो गई, एक ही दस गोरी कमाल हो गई, कमाल हो गई नी मेरे नाल हो गई, हुण तैनू वेखिया सी चिट्टे रंग दी ते हुण तैनू वेखिया तू।
0: दत्ता और कोंकणा सेन साथ साथ नजर आए और यहाँ इन्होंने पहनी है साड़ी यानी कि इंडियन अटायर। इसके अलावा आकांक्षा रंजन ने भी साड़ी को चुना

और नेहल जिनके फैशन के तो क्या कहने, फिर रेड कार्पेट है, ऐसे में सजना धजना तो बनता ही है। जहाँ हमारी टीवी और बॉलीवुड की हसीनाएं अपना जलवा बिखेर रही हैं, तो वहीं मुंडे भी पीछे रही हैं। सूट बूट में रेडी होकर यहाँ नजर आए विजय वर्मा। you know it, so sing it, now,

మనోజ్ బాజ్పేయి. నిషాంత్ మల్ఖాని. రాజ్పాల్ యాదవ్.

अनुपम खेर। पंकज त्रिपाठी।

0: जिंदगी में ना हर महिला एक ना एक बार ऐसे दो राहे पे जरूर खड़ी होती है।
1: Yes, right.
0: ये हमारी जॉली सुपरस्टार है ना, ये जब उस दो राहे पर खड़ी थी तब इन्होंने अपने सपनों के ऊपर अपनों को पूरे दिल से चुना। जोरदार तालियां मुंबई महाराष्ट्र से आई हमारी सुपरस्टार निशा पोद्दार जी।
2: सैटरडे को फील करने के लिए हम क्या पीते हैं?
1: हम ड्रिंक करते हैं।
2: अच्छा अच्छा एक काम करो यारा, क्या पीती रहती है तुम?
1: यारा कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू सो मच तियारा।
0: जो गुस्सा क्यों है आपने?
2: ये बोलिए कि पहला राउंड चलती ना तो पहला राउंड भी होनी जीतती मेरे कारण आ रही है।
1: सबके कमरे में टीवी पर उसके रूम में नहीं है सर।
0: आपका जो शादी से पहले का जो जीवन था वो कैसा था और शादी के बाद में क्या बदला?
1: शादी के पहले मुझे लाइक घूमना फिरना और मैं जॉब भी करती थी, बट आफ्टर माय मैरिज लाइक मेरा लव मैरिज है तो उन्होंने मुझे मना किया कि लाइक अभी नहीं करना है, मैं हूँ ना क्यों करना है, आई एम देयर ना। तो आई वाज लाइक ठीक है, लव इज ब्लाइंड, तो बस इसलिए मैंने छोड़ दिया। पर उसके बाद मुझे रिग्रेट होने लगा कि लाइक क्योंकि कभी भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं झगड़े होते हैं तो इज लाइक क्या कर दिए पूरा दिन, क्या कर दिए कुछ नहीं कर दिए, तूने लाइफ में क्या अचीव किया है? बिकॉज आई रिग्रेट कि मैंने पहले नहीं किया, मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी तो अब मुझे सिर्फ करना है। एंड आई नो ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी एंड ही लव्स मी अ लॉट।
0: प्रतीक आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
3: जैसे बात हो रही थी कि भाई इसने मेरे सपने पूरा करने के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया था, घर की सुपरस्टार तो बनी है, आई वॉन्ट कि भाई ये तू अभी अपने सपने पूरे करे, घर की चार दीवारी से बाहर निकले, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो उसी का है ना जस्ट टू ना एक ऑफर लेटर काइंड ऑफ थिंग कि भाई हमारी खुद की कंपनी है तो क्यों ना ये मुझे ही ज्वाइन करके मुझे और सपोर्ट करे।

0: इनके पति अगर देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो इनके पिता देश की भूख मिटाने के लिए अपने खेत में खड़े होते हैं। 26 लोगों के संयुक्त परिवार का शेरनी सा ख्याल रखने वाली हमारी अगली सुपरस्टार अलवर से शशि रानी जी।
1: एक राजस्थान का लुक मुझे आज मेरे पति में नहीं दिख रहा पर इनमें दिख रहा।

0: जब जाते थे बॉर्डर पे, किस चीज से आपको सुकून मिलता था?
1: सबसे बड़ा सुकून मिलता था कि मेरे मम्मी पापा बुआ बहन बहुत बड़ा परिवार था। मुझे एक ही चीज की जरूरत थी कि मेरे परिवार को संभाल ले, मैं अपने आप संभल जाऊं। इन्होंने मेरे माँ को, मेरे बाप को, मेरे बुआ को इतना इज्जत दी, इतनी उनकी सेवा करी जितनी मेरे से भी ज्यादा। इसने बहुत नाम कमाया और कभी मेरे से कोई शिकायत नहीं करी आज तक। मैं नौकरी जाता था, ध्यान मेरा जरूर रहता था घर में, लेकिन मुझे पता था कि सब हो जाएगा, वो सारा मैनेज कर लूंगा।
2: बचपन में शादी हो गई थी, पापा किसान थे, छोटे छोटे इनकी हमारी शादी कर दी, तो इनके घर आई तो बहुत बड़ा परिवार मिला, पीछे भी बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन मैं ऐसे घबराती थी कि कैसे होगा, तो बोले मैं हूँ ना, और आज ये बोलते हैं तुम हो ना।
1: तुम हो ना।
0: बता देना चाहता हूँ कि ना फौजी वहाँ बॉर्डर पर इसलिए भी शायद खड़े हैं क्योंकि घर पर उनके पीछे उनकी माँ, बेटी, बहन, कोई महिला है जिसने उस

0: रूही, आपकी जिंदगी में जितना ड्रामा चल रहा है ना हाल ही में, मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा ब्रेक यहाँ पर आप डिजर्व करती हैं। देखिए, आप ऐसा कीजिए, सब कुछ छोड़कर आ जाइए मेरे पास। आज तो लिपस्टिक्स के आसपास हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, तो चलते हैं शॉपिंग पर, अपने लिए कुछ लिपस्टिक्स ही खरीद लें। आपके चेहरे पर भी यूं आ जाएगी एक प्यारी सी मुस्कुराहट। लेकिन फिलहाल क्या है इस कहानी का अपडेट, चलिए पता कर कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
1: पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई,
2: किस्मत का खेल
1: दूरी सी हमारी कहानी रही।
2: जाने अनजाने हुआ रूही और नाहर का मेल,
1: ये जरूरी नहीं जा मिले, जा मिले।
2: मिलकर भी ना मिल सके रूही और नाहर।

टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही का कैफे बढ़िया चल रहा है। वो अपने कैफे पर ध्यान भी दे रही है, लेकिन आज थोड़ी परेशान है क्योंकि उसे बाहर जाना है। ऐसे में उसने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बोल दिया है ताकि वो बिजी रहे, और इसी बीच मिष्टी भी आकर रूही को संतावना देती है कि वो बिना टेंशन लिए वहाँ से जा सकती है। बस फिर क्या, मिष्टी का भरोसा पाते ही रूही अपनी बेटी को समझा बुझा कर वहाँ से निकलने लगी कि तभी मिष्टी ने लाकर उसे एक ऑर्डर दे दिया ताकि जाते जाते रूही वो ऑर्डर डिलीवर कर सके। ऐसे में रूही वो ऑर्डर लेकर निकल तो जाती है, लेकिन फिर किस्मत अपना खेल खेलती है क्योंकि उसी के कैफे के बाहर पहुंच गया है नाहर भी, और वो इस बात से अनजान है कि ये रूही का कैफे है। ऐसे में जैसे ही रूही बाहर आती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और रूही का दुपट्टा उड़कर नाहर के ऊपर जा गिरता है। इतना ही नहीं, रूही के दुपट्टे से रूही का चेहरा भी ढक जाता है, जिसके चलते रूही और नाहर एक दूसरे के आमने सामने होते हुए भी देख नहीं पाते।

0: है आज तो रूही और नाहर मिलकर भी मिल ना सके और रूही अपने काम से निकल गई है, लेकिन तभी अचानक उसकी परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि उसे कैफे से आ जाता है कॉल, जिसके चलते वो मचा देती है भागम भाग। इतना ही नहीं, वो तो ऑटो को रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन ऑटो रुकने का नाम नहीं लेते। ऐसे में वो ऊपर वाले से दुआ मनाती है कि उसकी बेटी रुचिता और मिष्टी दोनों ही ठीक हो। अब देखना होगा कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है रूही के कैफे में। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मन्नत, आज तो लिपस्टिक्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे आपसे एक बात कहूं, आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके लिपस्टिक शेड्स के नाम हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र, कान भरना, जेलस फील करना, नए नए जाल बिछाना। आप तो समझ ही गए होंगे ना मेरा इशारा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज। क्या फिर से कोई बिछा रहा है यहाँ पर मन्नत की जिंदगी में कोई नया जाल? लेट्स चेक इट आउट।
0: मिलकर भी ना मिल सके मन्नत और विक्रांत।

मन्नत और मान्यता का हुआ सहेलियाना। कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत दिल्ली तो पहुंच गई है अपने विक्रांत को ढूंढते हुए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस होटल में वो रुकी हुई है उसी होटल में विक्रांत भी आया हुआ है, क्योंकि वहां पर उसकी और मान्यता की शादी जो होने वाली है। ऐसे में मन्नत होटल के लॉन्च पर आती है जहां पर विक्रांत अपनी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। मन्नत को अपने विक्रांत का होने का एहसास भी होता है, लेकिन वो उसे आगे से देख नहीं पाती और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो गिर जाती है, जिसके चलते विक्रांत भी पलट कर देखता है, लेकिन उसका सामना मन्नत से हो नहीं पाता।

0: 좋아.
1: 아, 없어졌어.
2: अब जाने अनजाने ही सही विक्रांत ने मन्नत के लिए वेटर के जरिए दर्द की दवा पहुंचवा दी और वहां से चला गया। ऐसे में मन्नत और विक्रांत का आमना सामना होते होते रह गया। इसी बीच मन्नत को आ जाता है धैर्य का कॉल, जो जानना चाहता है कि आखिर मन्नत विक्रांत की मुलाकात हुई या नहीं। ऐसे में मन्नत अपनी हार बताती है और उदास हो जाती है। वैसे मन्नत को आज हार मिली है, लेकिन उसने जीत की तरफ अपना पहला कदम उठा लिया है। असल में मन्नत और मान्यता दोनों आपस में एक ही कमरे में मौजूद हैं, और तो और दोनों साथ में हैं। इसी बीच मन्नत को ये याद आता है कि उसे दरगाह जाना है, इसलिए वो फटाफट उठती है। लेकिन तभी मान्यता को देख वो मान्यता का ख्याल रखने लगती है। भाई ये देखकर तो यही लग रहा है कि मान्यता और मन्नत दोनों में अच्छा सहेलियाना हो गया है। खैर, जाते जाते मन्नत खिड़कियां भी बंद कर देती है ताकि तेज हवाओं से मान्यता को तकलीफ ना हो। लेकिन उसे क्या पता कि किस्मत बार बार उसे ये संकेत दे रही है कि मान्यता का अभिमन्यु ही मन्नत का विक्रांत है। तभी तो उसकी नज़र सामने पड़े आधार कार्ड पर पड़ती ही नहीं। खैर, मन्नत तो दरगाह के लिए निकल जाती है। इसी बीच विक्रांत को भी कॉल आता है क्योंकि उसे भी दरगाह जाना है। ऐसे में वो भी दरगाह के लिए निकल जाता है कि तभी मान्यता विक्रांत के कमरे में जाती है और विक्रांत को ना पाकर हैरान होती है। इतना ही नहीं, वो तो कॉल भी लगा देती है और तब उसे पता चलता है कि विक्रांत अकेला ही चला गया है। बस इसी बात पर मान्यता का गुस्सा बढ़ने लगता है।
3: और तुमने कहा था तुम बहुत थक गई हो, इसलिए तुम्हें साथ नहीं लाया। अब कोई नहीं, तुम आराम करो।
2: विक्रांत उर्फ अभिमन्यु के लिए मान्यता का ये साइको लव देखकर तो यही लग रहा है कि मन्नत के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। इतना ही नहीं, मन्नत खतरे में भी पड़ सकती है। देखना होगा कि अब मन्नत इसका सामना कैसे करेगी। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आपने लगाई अपनी फेवरेट रेड लिपस्टिक और उसके बाद क्या किया? फोटो के लिए दी एक बड़ी सी स्माइल। वाओ, दिस इज रॉकिंग। लेकिन लिपस्टिक तो लगी हुई थी आपके दांतों पर। ओ माय गॉड, हो गया ना शॉकिंग। ये अक्सर होता है डार्क लिपस्टिक्स के बाद। तो प्लीज याद रखें, डार्क लिपस्टिक्स के बाद एक बार मिरर को अच्छी तरह देखें, एक बड़ी स्माइल देकर, ताकि लिपस्टिक के ट्रेसेस कहीं और ना हो, सिर्फ आपके लिप्स पर हो। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
5: है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के अरमान की, यानी रोहित पुरोहित की, जिन्होंने अपनी वाइफ शीना बजाज को उनके बर्थडे के मौके पर एक कार गिफ्ट की है।

0: लीजिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के सेट से ये बिहाइंड द सीन नजारे, जहां दिखाया गया कि कैसे शूटिंग हो रही है।
1: कहाँ है? ठीक है पहुंच गए ना, वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
0: शुक्ला अपनी फैमिली संग पहुंच गई है नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर लेने भगवान जी का आशीर्वाद, जहां से उन्होंने शेयर किए हैं ये नज़ारे।
2: आज तो लिपस्टिक्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे हर लिपस्टिक की होती है एक एक्सपायरी डेट, इस हिसाब से तो अनुपमा की प्रॉब्लम्स की भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कुछ ना कुछ अनुपमा की जिंदगी में होता ही रहता है जो लेकर आता है उनकी जिंदगी में तूफान, लेकिन तभी तो आता है कहानी में हमारे लिए एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आप सबको अनुपमा के पास।
0: झूम कर नाचे घर वाले, शादी की रस्मों में लगा नच का तड़का, देखी अनुपमा की खुशी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जल्द ही अंश और प्रेरणा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और ऐसे में शुरू हो चुकी है शादी की रस्में, और आज हो रही हल्दी और संगीत की रस्म, जहां देखिए सभी लोग पीले रंग में रंग चुके हैं। लेकिन यहाँ डांस मस्ती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अंश और प्रेरणा की शादी में शामिल हो गए हैं प्रेम, राही और बाकी का पूरा परिवार, और ऐसे में अंश, प्रेरणा और अनुपमा की खुशी दुगनी हो गई है।

भाई आज तो अनुपमा के साथ साथ लेडीज गैंग भी झूमकर नाच रही है। अनुपमा है, प्रेरणा है, राही है और है बाकी की लेडीज जो झूमकर अपने नच का टशन दिखा रही है। भाई मौका खुशी का है, ऐसे में सभी साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। आज तो राही और प्रेम भी हो गए हैं दीवाने और देखिए कैसे इस नच में हो गए हैं शामिल। भाई शादी वाला घर है, ऐसे में रिश्तों की उलझने भूलकर सभी लोग बस मना रहे हैं खुशियां।

0: वैसे यहाँ अनुपमा झूम कर नाच रही है, लेकिन प्रेम और राही तो अनुपमा से नाराज हैं। ऐसे में पहले प्रेम डांस करने में आनाकानी करता है, लेकिन फिर प्रेरणा के मनाने पर वो आ भी जाता है।
1: बोले

0: मेरा गोरदाना है, मेरा और अंश का. तो वो बेसिकली आरती के बाद हम रिंग एक्सचेंज करेंगे, फिर डांस होगा, फन होगा, सब मिलके एक साथ आएंगे, फाइनली सेलिब्रेशन होगा, तो आपको देखने मिलेगा इसे.
1: डांस अभी होगा और डांस इसलिए हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि गाना हमने सजेस्ट किया था. कौन सा
0: बोली चू
1: और इस पे हम सब अपने अपने यू नो लव इंटरेस्ट के साथ डांस करेंगे. हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ डांस करेंगे और उसके बाद फिर
2: और क्या होता है.
1: हाँ, तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ राही आएगी, प्रांशी आएगी, हम लोग
0: प्रेम आएगा.
1: हम हमारे लिए तो राही है ना इम्पोर्टेंट, हमारे लिए प्रेम नहीं है.
0: माय
1: कजिन, माय सिस्टर प्रेरणा बुरी, राही और प्रांशी आती है, परी आती है. तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आएंगे, लेकिन हमने देखा वो आ गए. तो हमें बाद में पता चलता है जब तोशु बोलते हैं कि दिग्विजय ने माफी मांगी है हाथ जोड़ के, तो हम लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं था. तो
0: हम लोग तो उन्हें मना किया है कि माफी नहीं मांग सकते,
1: उनकी गलती थी नहीं, पर वो हमारे लिए ऐसा करते हैं तो हम उनको थैंक यू बोलते हैं. और उसके बाद फिर हमारी फैमिली आती है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब फैमिली साथ है, फंक्शन हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो अब नाच गाना भी होगा.
3: भाई फैमिली डांस के बाद बारी आई कपल डांस की. होने वाले दूल्हा दुल्हन यानी कि अंश और प्रेरणा एक दूसरे के रंग में रंग गए हैं और आ गया है मौसम रोमांस का. भाई देखिए कैसे फिल्मी अंदाज में ये डांस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे में भी खो गए हैं.

0: तो मैं कैफे में आ रही हूँ एंड सडनली अंश मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान करता है एंड मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ. फिर हमारा एक स्मॉल मोमेंट है, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फीलिंग्स एंड फिर वो प्रॉपर एक ड्रीमी रोमांटिक सॉन्ग में हमारा डांस है, क्यूट क्यूट से मोमेंट्स है. तो आप जब वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा.
1: वैसे इससे पहले काफी तमाशा हुआ था. असल में क्या हुआ था आइए हम आपको बताते हैं. अनुपमा गई थी प्रेम और राही के पास उन्हें शादी का इनविटेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रेम ने कर दिया था बवाल. प्रेम ने साफ साफ अनुपमा से ये कह दिया था कि वो शादी में तभी शामिल होंगे जब दिग्विजय उनसे माफी मांगेगा. और ऐसे में यहाँ बहसबाजी शुरू हो गई थी, जहाँ अनुपमा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था और प्रेम भी अपनी ही टशन में है.
2: मेरी दो दो बेटियां आपके घर की बहू है, ये कौन है कमर. वैसे प्रेरणा की माँ यानी रजनी देसाई के बारे में मेरी राय कुछ अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि प्रेरणा मेरे अंश की पत्नी बने, क्योंकि ये लड़की तुम्हारी.
3: अगर अनुपमा जोशी चाहती है कि हम सह परिवार इनके घर शादी में जाए तो इनके परम मित्र को मुझसे माफी मांगनी होगी. अरे ये तो मेरी शराफत है कि मैंने सजा देने के बजाय सिर्फ माफी मंगवाने की जिद की है. दिग्विजय सूद को मुझसे माफी मांगनी होगी, सबके सामने मांगनी होगी, ये मेरा फैसला है.
2: नहीं मांगते, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो मुझे उन्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद आकर तुमसे चोरी कह देते. लेकिन उन्होंने कुछ गलत किया, वो सही है और तुम गलत, इसलिए दिग्विजय सर तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, ये मेरा फैसला है.
0: तो वैसे कोठारी हाउस के साथ हमारा फिलहाल जम नहीं रहा है, बट फिर भी क्योंकि संबंधी है तो हमें जाना पड़ रहा है एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रेम, तो मुझे चाहिए कि वो मेरे शादी में आए. तो हम एक ट्राई कर रहे हैं बट फिर वहाँ प्रेम एज यूजुअल थोड़े अकड़ में मना कर देता है एंड वो एक शर्त रख देता है, क्योंकि उनको दिग्विजय सर ने थप्पड़ मारा था तो उनको वो एक थोड़ा रिवेंज सा चाहिए उसे, तो वो एक शर्त रखता है. अब देखते हैं दिग्विजय सर मानते हैं या नहीं मानते हैं वो शर्त. तो अब वो सब उस सीन पर डिपेंड करता है कि कोठारी फैमिली आएगी कि नहीं आएगी.
1: लेकिन शादी अच्छे से हो जाए इसीलिए दिग्विजय ने खुद ही प्रेम से माफी भी मांगी, इसीलिए तो वो शादी के फंक्शंस में हो रहे हैं शामिल. यानी कि अब प्रेम राही फंक्शंस में तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन प्रेरणा और अंश की शादी में और कौन कौन से तमाशे होने बाकी हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
4: अभीरा, आज तो लिपस्टिक्स के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें. वैसे कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि लिपस्टिक भी ना लगाओ, सिर्फ एक लिप ग्लॉस लगा लो. लिप्स लगते हैं बहुत ही खूबसूरत एंड टोटली फ्रेश. तो सोच रही हूँ क्यों ना ले आऊँ मैं आपके लिए ये खूबसूरत लिप ग्लॉस जो आप पर खूब जचेगा. लेकिन नहीं जचते हैं आपकी कहानी में आए हुए ये ट्विस्ट जो बदलते रहते हैं इनकी कहानी का मोड. लेकर चलते हैं आप सबको अभीरा और अरमान के पास. हुआ क्रिश का खुलासा,
5: लड़की बस टाइम पास थी, कुछ सीरियस नहीं था.
1: क्रिश को पड़ा जोरदार तमाचा. तान्या और क्रिश के उलझते रिश्ते. स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज सभी घरवालों के सामने क्रिश का ये सच आ गया है कि क्रिश का अफेयर चल रहा है. इसी बात पर तान्या नाराज है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी क्रिश उसे रोक लेता है, उसके आगे हाथ पैर जोड़ता है, माफी भी मांगता है. यहाँ तक कि बातों बातों में वो ये भी कह देता है कि ये सब उसने सिर्फ टाइम पास के लिए किया था. बस फिर क्या, ये सुनते ही तान्या भड़क उठती है.
6: लड़की के साथ मेरा ऐसे इमोशनल कुछ भी नहीं रहा, ऐसे वो टाइम पास थी, मैं उससे ब्रेकअप करने वाला था।
5: रानी साहब ने, वो लड़की बस टाइम पास थी, कुछ सीरियस नहीं था।
7: टाइम पास थी वो लड़की बस, ये तो उससे ब्रेकअप भी करने वाला था। अब तो मुझे तो इस महान इंसान की आरती उतारनी चाहिए ना, अपनी खुश नसीबी को बार बार थैंक यू बोलना चाहिए कि ये मेरे पास वापस आ रहा है। हम सब चाहते हैं ना कि हम साथ रहे, ठीक है, हम साथ रहे। पहली बार किसी लड़के के साथ ऐसे अफेयर करो, टाइम पास, दो हाथ मिले करे
5: चलेगा ना आप सबको। कहना बहुत आसान है कि अपनी शादी पे ध्यान दो, अपना रिश्ता सुधारो, एडजस्ट कर लो। हम लोग ये तो देखेंगे आप लोग मुझे किसके साथ एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं।
7: अभी तो इसके एक अफेयर के बारे में पता चला है, हो सकता है कई लड़कियों
5: के साथ मेरा हमारे रिश्ते का मजाक बना के रख दिया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज रोज के बर्बाद करके रख दिया। ये जो कुछ बची कुछ ही सेल्फ रिस्पेक्ट लेके ना,
7: भगवान के लिए मुझे इस घर से जाने दीजिए प्लीज।
1: बेचारी तानिया अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली तो गई, लेकिन काजोल वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पाई और उन्होंने अपने ही बेटे के गालों पर जड़ दिया जोरदार तमाचा।
5: क्यों किया क्रेश? मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए होंगे जो तुझ जैसा बेटा मिला।
8: वो ऑब्वियसली लाइक वो माँ का है वो कि भाई इतना चीट कर रहा है तो अपनी वाइफ पे, तो वो तो थप्पड़ तो जायज़ है ही। अब तो मतलब एज ए कैरेक्टर बोलूँ क्रिश तो मतलब इट्स लाइक यू नो डिजर्व भी करता है यार क्रिश यार, ये तो चीटिंग तो मैं कहता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, तो इवेंचुअली डिजर्व तो करता है क्रिश थप्पड़ खाना।
5: तुमने क्या कर दिया बेवकूफ लड़के, तुझे ये सच कर दिया मैंने, बोलो कहाँ है तुम्हारा फोन?
9: लड़की को फोन करो और कहो कि तुम उसे कभी नहीं मिलोगे।
6: ऐसी लड़की नानी सा, ऐसी कोई लड़की नहीं है, तो तान्या को गलत फहमी हो रही है कसम से।
9: ना हम इतने मासूम हैं और ना तो इतने शातिर जितना तुम सोच
6: रहे हो।
1: अब क्रिश ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि उस पर विश्वास होना नामुमकिन है। ऐसे में दादी ने क्रिश को अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाने के लिए कह दिया। ऐसे में कॉल लगाकर क्रिश इससे पहले कुछ और कहता, दादी उसका फोन छीन लेती है और देती है अल्टीमेटम। अब देखना होगा क्या तानिया के केस के बहाने घर वालों को पता चल पाएगा कि अरमान कौन सी बीमारी से जूझ रहा है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: आज तो वसुधा भी हमारे साथ शेयर कर रही हैं एक इम्पॉर्टेंट टिप, स्पेशली लिपस्टिक्स को लेकर। ये तो कह रही हैं कि बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें, तभी तो लिपस्टिक का एप्लीकेशन होगा स्मूथ। इमेजिन अगर आपके लिप्स चैप्ड हैं, ड्राई हैं, तो आप कैसे लिपस्टिक लगाएंगे? इट विल बी सो पेनफुल। तो बहुत ज़रूरी है आप इन्हें हमेशा मॉइस्चराइज रखें। लिप बाम, वैसलीन हमेशा अपने पास रखें। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको वसुधा के पास और देखते हैं क्या फिलहाल इनकी कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट या फिर आया है नया ड्रामा। वेल, जो भी हो हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है। लेट्स चेक इट आउट।
1: वसुधा का फैसला।

0: दीदी ने दिया वसुधा का साथ। समर की हुई टाई टाई फिश, जी टीवी के सीरियल वसुधा में भाई वसुधा ने अपना बिजनेस शुरू किया है, लेकिन इसमें अड़ंगा डाल रहा है समर। ऐसे में फिर एक बार समर ने वसुधा को अपने साथ काम करने का और बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दिया है। ऐसे में वसुधा असमंजस में है कि वो क्या करे। जहाँ चंद्रिका कह रही है कि उसे ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो वहीं वसुधा पहुँची है दादी सा के पास उनकी राय जानने के लिए, क्योंकि वसुधा को पता है कि दादी सा उसे सही ही राह दिखाएंगी। ना सिर्फ दादी सा ने वसुधा को समर से डील करने के लिए और बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए मना कर दिया, बल्कि वसुधा को ये भी समझाया कि उसे जो करना है अपने बलबूते पर अकेले करना होगा।
1: तो किसी को सहारा लेकर अपनी अलग पहचान ना बन सके, एक बार सहारा ले लियो ना तो कितने ही पहाड़ तोड़ देंगे। दुनिया कभी हर इज्जत ना करेगी, बस यही कह देगी कि इतने बड़े घराने की बहू थी इसलिए कर ली। इसलिए सहारा लेने की गलती कभी मत करना। देख इसने परेशान, इसने कभी किसी को सहारा ना दियो, कोई गलती ना की ऐसी। जो कुछ कियो अपने बलबूते पे कियो, तू तो इसने अपनी आदर्श माने है ना, तो फिर वही कर जो इसने की।
0: ऐसे में आता है समर और वसुधा ले लेती है फैसला और समर के सामने उसे बिजनेस डील के लिए ना कह देती है, जिसके बाद फूटता है समर का गुस्सा। लेकिन दादी सा फिर एक बार बीच में आकर सिचुएशन को संभालती है, लेकिन समर चुप नहीं बैठने वाला है।
2: मैंने ये काम अपनी पहचान बनाने के लिए किया, और आप इस पहचान का हिस्सा बन जाते हो। आप भरे को परेशान करने की कोई नई तरीके है ना, लेकिन क्या फर्क है, जो इंसान व्यापारिक गलत रूप से करे उससे और उम्मीद भी टेकी जा सकती है। और अगर मारे को किसी कारणवश अपना व्यापार बंद भी करना पड़ जाए तब भी मारे को कोई मना ना हो, लेकिन आपके साथ मैं डील करूँ तो तुम्हारे आदर्श को।
3: हमारे परिवार में अतिथि ने मान सम्मान देने की नीत है, इस करके चुप हो। अगर तुम्हारे लाड़ी सर का पायदा ना होता ना, तो तुम्हारे चूते मार मार के इस घर से बाहर निकाल देती।
2: सुन लिया दादी सा क्या कहनी है,
0: सबसे बड़ी मुसीबत तो समर ही है जो नहीं चाहता कि वसुधा का कोई बिजनेस बढ़े, क्योंकि वसुधा ने ऑलरेडी उसके ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए हैं। तो समर भी बस वसुधा का कॉम्पिटिटर बन के आ जाता है मार्केट में, और समर अपना एक अलग कार्ट लगाता है। वसुधा की कार्ट को कोई देखता नहीं है क्योंकि हमारी कार्ट बहुत सिंपल होती है। तो बस ये बिजनेस राइवलरीज हैं जो थोड़ी चल रही हैं, और समर से कैसे बचा जाए ये भी वसुधा को समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं, वसुधा कुछ तो कर ही लेगी। समर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको पता है अगर वसुधा मेरे साथ आई तो कोई ना कोई फ़ायदा होगा वसुधा का डेफिनेटली, सॉरी कोई ना कोई फ़ायदा होगा समर का डेफिनेटली। वसुधा उसके लिए एक गोल्डन कॉइन साबित होगी, वो अपने फ़ायदे के लिए सब करना चाह रहा है। सब लोग अगेंस्ट है समर के, और क्योंकि समर का बिहेवियर ही ऐसा है, इज़ वेरी डेंजरस, और वसुधा जो है उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल भी किसी ऐसे इंसान का जो कि उसके लिए ऑलरेडी डेंजरस है। इसलिए वसुधा बिल्कुल नहीं जा रही है समर के कंपनी में।
4: नहीं, टफ तो है, बार बार कोशिश करता हूँ किसी तरीके से तो वसुधा मान जाए, पर बार बार रिजेक्ट करती रहती है वसुधा मुझे, मेरे ऑफर को। तो वो ईगो सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहा है एक्चुअली। वो बिजनेस स्टार्ट ही इसलिए किया था कि कॉम्पिटिशन दे सके। समर को उससे ना तो पैसे कमाने हैं ना फ़र्क पड़ता है। उसने एक पे दो बॉटल फ्री, चार बॉटल फ्री सब कुछ किया जस्ट टू डिस्ट्रॉय वसुस ब्रांड। तो उसको वो बोलता भी है इनफैक्ट कि मैं इन्हें पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि किसी को किसी की जगह दिखाने के लिए किया है। तो वो ब्रांड चल रहा है, चले ना चले उसको कोई मतलब नहीं है समर को। इट्स जस्ट दैट रजवाड़ी चटका जो वसु का ब्रांड है उसको डाउन करना है और ख़त्म करना है, दैट्स द मेन मोटो।
0: तो भाई अब समर वसुधा के बिजनेस को नीचे करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: वैसे हमारी डॉक्टर आरंभी भी हैं कमाल, बताइए कैसे, क्योंकि देखिए कहां से शुरू हुई थी इनकी कहानी और अब कहाँ पहुँच गई है। लेकिन क्या कहानी में आने वाला है अब एक बहुत बड़ा मोड़। शायद आप सब जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिलहाल तो मैंने डॉक्टर आरंभी के लिए चूज़ किया है ये खूबसूरत सा लिप ग्लॉस। देखिए, वाओ, आई लव इट, उन पर भी बहुत सूट करेगा। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के पास, लेकर आते हैं उन्हें ये लिप ग्लॉस और साथ ही साथ लेकर आते हैं उनकी कहानी का अपडेट।
0: आरंभी की जासूसी। ध्रुव की चालाकी। अवंतिका और विश्वास हुए गुमराह। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आरंभी को अवंतिका का सच पता चल गया है। ऐसे में देखिए कैसे मौका पाते ही आरंभी अवंतिका के कमरे की ओर आगे बढ़ चली है जासूसी करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो अवंतिका के कमरे के अंदर जाती, दूर खड़ा ध्रुव देख लेता है और हैरान है कि आखिर आरंभी अवंतिका के कमरे में करने क्या जा रही है। इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट। ध्रुव की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि अपने कमरे में अवंतिका और विश्वास दोनों भी आ गए हैं। ऐसे में आरंभी को बचाने के लिए ध्रुव चालाकी से प्लान बनाता है और देखिए कैसे नींद का बहाना कर पहुंच जाता है अवंतिका के कमरे के बाहर।
1: जीसी, आप यहाँ इतनी रात को, क्या हुआ? जीसी, आई थिंक आप नींद में चल रहे हैं। मैं काम करती हूँ, आपको मैं आपके रूम तक छोड़ आती हूँ, आइए। नहीं, आपका रूम नहीं है, इट्स ओके। डीसी को अपने रूम में छोड़ के आते हैं, ओके?

0: भाई आज तो आरंभी बाल बाल बच गई क्योंकि ध्रुव ने उसे बचा लिया। लेकिन आरंभी ने अपनी जासूसी पर ब्रेक नहीं लगाया। अगले ही दिन उसने बहाना कर दिया कि घर में दीमक लग गई है। ऐसे में अवंतिका अपने कमरे में आकर परेशान है ये देखकर कि उसकी अलमारी बिखरी हुई है। उसे टेंशन आ जाता है कि कहीं किसी ने उसकी अलमारी से उसका वो मोबाइल तो नहीं ले लिया। ऐसे में वो मोबाइल ढूंढ भी रही है और घर वालों को देख भी रही है ताकि कोई उसकी इस चालाकी को समझ ना ले। इसी बीच आ जाती है आरंभी भी और देखिए जैसे ही वो अवंतिका की अलमारी की सफाई करने के लिए आगे बढ़ती है तो कैसे अवंतिका घबरा जाती है।
1: हाँ सारा बच्चा रो मत, देखते ना एक एक चीज कबर से निकाल के चेक करते हैं, पता चल जाएगा कौन सी चीज अच्छी उसे रख लेंगे, कौन सी खराब हो गई है उसे तो फेंकना ही पड़ेगा वरना सब कुछ खराब हो जाएगा ना।
2: और मेरे टॉयज
1: भी निकाल के चेक करते हैं, जो अच्छा होगा उसे रख लेंगे, जो अच्छा नहीं होगा बदल देंगे, न्यू टॉयज लाएंगे। ओके
2: आंटी पक्का प्रॉमिस ना?
1: पक्का प्रॉमिस बेटा।
2: मॉम सब कुछ चेक करना पड़ेगा, लेट्स डू इट ना।
3: सानिया काम डाउन, आप लोग सब प्लीज जस्ट रिलैक्स। ओके मुझे पता है मेरे वार्डरोब में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कौन सी चीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं चेक कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, प्लीज आप लोग जाइए, मैं कर लेती। ओके सानिया गुड नाइट, थैंक यू।
2: अरे नहीं नहीं अवंतिका, तुम अकेले इतनी मेहनत क्यों करोगी? आरंभी की लापरवाही से सब हुआ है तो उसे सब ठीक करना पड़ेगा ना।
3: ठीक है मैं आरंभी की हेल्प कर देती हूँ।
0: अब अवंतिका ने आरंभी को अपने वार्डरोब से हटाकर सानिया के वार्डरोब में लगा दिया। लेकिन आरंभी की नजर अवंतिका पर ही है जो बेहद परेशान दिख रही है क्योंकि वो मोबाइल टटो रही है पर उसे मिल नहीं रहा। ऐसे में जैसे ही मोबाइल मिल जाता है उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है और ये बात आरंभी को पता चल जाती है। फिर देखिए कैसे आरंभी चालाकी से अवंतिका का वो मोबाइल आराम से निकाल भी लेती है और अवंतिका को पता भी नहीं चलता।
1: सानिया अच्छा ये ड्रेस देखो, ये देखो, ये तो मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये भी खराब हो गई। मॉम सीना मॉम
3: एक सेकंड बेटा एक
1: मॉम सी
3: दिखाओ।
4: इट्स ओके सानिया, ये पुरानी ड्रेस
3: आपके लिए नई ड्रेस आ जाएगी,
4: ये फेंक दो इसे, चलो फेंको।
1: ये सब ना बाहर निकाल के ही देखना पड़ेगा।
3: रुको मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लेती हूँ, अगर इसमें कुछ ज्यादा जरूरी है इम्पोर्टेंट कपड़े ऐसे कुछ होंगे तो मैं वो निकाल के रख दूँ।
0: भाई आज तो आरंभी ने अवंतिका को बुद्धू बना दिया और अवंतिका को लगा कि उसकी जीत हो गई। तभी तो देखिए कैसे सारे सामान को वापस से बिखेरने लगी वो मोबाइल ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वो मोबाइल नजर नहीं आता। ऐसे में अवंतिका की परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि उसका सच सामने जो आने वाला है।
5: मेरे मॉम की साड़ी के साथ वो घटिया हरकत क्यों की तुमने आरंभी?
6: सचमुच ऐसा कुछ वही करेगा जिसका कोई फायदा हो।
5: उठ जाओगी तो जैसे तुम्हारा बैग फेंका है तुम्हें भी बाहर फेंक दूं।
6: ठीक मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ रह रही मेहमान डॉक्टर अवंतिका से भी ये कहना होगा कि अपना सामान पैक करे और यहाँ से निकल जाए।
5: अवंतिका यहाँ से क्यों जाएगी?
6: मुझे भी पता है अवंतिका के बारे में।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: तो फिर कैसा रहा एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट रंग बिरंगा, बिल्कुल इन लिपस्टिक्स की तरह। हमारे पास तो होता है आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, लेकिन क्या करें अब तो घड़ी कर रही है इशारा। तो सी यू टुमारो सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
10: रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत। रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अमरनाथ यात्रा को लेकर कामना के साथ बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में CRPF जवानों ने की विशेष पूजा, भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन। गांधरबल में 19 जून से शुरू हो रहा माता खीर भवानी मेला, तैयारियां जोर शोर से जारी, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। वांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं और रखरखाव पर हुआ मंथन, 200 किलो के झूले के जीर्णोद्वार का निर्णय। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का फैसला।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। पुलवामा में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी की तैयारी को परखा। इस अभ्यास में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन और अलग अलग एजेंसियों के बीच में तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों को परखा गया। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर तैयारी रही, आपसी तालमेल को भी परखा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे श्रद्धालु। कठुआ में अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन मुस्तैद, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों ने कठुआ स्टेशन का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्टेशन पर लगाए गए CCTV कैमरे, स्टेशन परिसर पर तैनात जवान। जम्मू में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने ली तलाशी। सुरक्षा बलों ने भगवती नगर बेस कैंप के आसपास के इलाकों में चलाया सर्च अभियान, आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही नजर। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा से पहले बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में CRPF जवानों ने की विशेष पूजा, जवानों ने लगाए जय माता दी के जयकारे। पूजा के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, यात्रा के सकुशल संपन्न होने की कामना की। मां शारदा की पूजा के बाद लंगर का भी आयोजन, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। गांधरबल में 19 जून से शुरू हो रहा माता खीर भवानी का मेला, तैयारियां परखी गईं। अमरनाथ यात्रा के बाद कश्मीरी पंडितों का दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक उत्सव, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान, इस साल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी ये बेहद पवित्र और दुर्गम यात्रा। किन्नौर में समुद्र तल से करीब 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग, दिन में कई बार रंग बदलता है। बेहद दुर्गम होती है किन्नौर कैलाश की यात्रा, सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। रिकांग पीओ के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है ये यात्रा, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। 14,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती कुंड में स्नान के बाद शुरू होती है अंतिम चढ़ाई, दुर्गम खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के होते हैं दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लगी।

0: में पारंपरिक परिधान में नजर आई महिलाएं, राजा झूला का लिया गया है। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा मां के दर्शन के लिए वंदे भारत बनी लोगों की पहली पसंद। भारतीय नौसेना की और बढ़ेगी ताकत, 3 युद्धपोत होंगे एक साथ शामिल। INS दूनागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक को एक साथ किया जाएगा इसमें शामिल। भारतीय नौसेना में दिखेगी मेक इन इंडिया की झलक, समुद्र में त्रिशक्ति संभालेगी मोर्चा। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों, एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस है, जबकि INS अग्रय एडवांस्ड सोनार टॉरपीडो स्वदेशी ASW रॉकेट लॉन्चर से लैस। INS संशोधक हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्र तल की मैपिंग समुद्री क्षेत्र की जानकारी को बेहतर बनाएगा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: Tune in to How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाइयों और बहनों, नमस्ते।
1: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
2: After multiple assassination attempts, they can't even get.
3: They're reliable.
4: Always when I need them.
1: To live sports action.
5: One hand jam by LeBron on the break.
6: That's another three, Steph Curry.
1: And your favorite music.
7: Well, the dawn begins to crack. Yeah.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: हमारी जिम्मेदारी इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, 3 युद्ध पोत INS दूनागिरी, अग्रय और संशोधक 21 जून को एक साथ कोलकाता में किए जाएंगे कमीशन। रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत, रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अमरनाथ यात्रा को लेकर कामना के साथ बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में CRPF जवानों ने की विशेष पूजा, भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
14: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। सनातनी आस्था कहती है कि जन्म मृत्यु के क्रम में बंधा है जीवन चक्र, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या आत्मा शून्य में विलीन हो जाती है, किसने गढ़ी है स्वर्ग और नर्क, पाप और पुण्य की मान्यता, ये बातें ताउम्र हमारे सामने घूमती रहती हैं। देखिए, दावा किया जाता है कि गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के सच से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताई गई हैं जो मृत्यु के बाद प्राणी के चक्र को बताती है। इसी के साथ आज हम आपको गरुड़ पुराण के उन्हीं रहस्यों से अवगत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहती है गरुड़ पुराण की अवधारणा।

0: आस्था कहती है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? कहां वाकई किसी लोक में यमलोक होता है और हमारी आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है? मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। सनातन संस्कृति में स्वर्ग और नरक बातें कही जाती हैं। सबसे यक्ष प्रश्न, जन्म पर मृत्यु का अधिकार क्यों है? धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिसने जन्म लिया उसे एक न एक दिन मरना है। सनातन धर्म से जुड़े संस्कार कहते हैं कि प्राणी अपने देह का त्याग करता है, उसके शरीर की आत्मा नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु, ये वो रहस्य हैं जिनका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन फिर भी लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये वो गूढ़ रहस्य हैं जिनको जितना समझने की कोशिश की गई, ये उतने ही अबूझ होते गए। कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में जन्म मृत्यु का वर्णन मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु को विस्तार से समझाया गया है। हम आज आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों के बारे में बताएंगे, ताकि आप जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी को आसानी से समझ पाएं। गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से जन्म और मृत्यु के कई रहस्य पूछे। गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक के बारे में गूढ़ प्रश्न पूछे। भगवान विष्णु ने गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का विधान है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है। इसका श्रवण या मनन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है।
1: गरुड़ पुराण हमें वैतरणी पार या मोक्ष प्राप्ति का योग दिखाता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि अपने पूरे जीवन में व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसके पश्चात सारे जीवन अच्छा कर्म किया हो, और अगर अपने पुत्रों से पिंड न प्राप्त हो, पुत्र की कामना भी इसीलिए करता है, पुम नामक नरक से त्राण देने वाला पुत्र होता है। पिंडदान आदि का अतिशय महत्व बताया गया, और जिस व्यक्ति दिवंगत का पिंडदान आदि हो जाता है वो किसी प्रकार की अधोगति नहीं जाता, पशु पक्षी प्रेत योनि में नहीं जाता, पितरों में या मोक्ष को प्राप्त करता है।
0: धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि जन्म और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जो इस संसार में आया है एक दिन उसे यहाँ से जाना ही है। क्योंकि पृथ्वी को मृत्यु लोक माना गया है और मानव देह को नश्वर कहा गया है, यानी जिसका एक न एक दिन नाश हो जाएगा। माना जाता है कि परमात्मा के पांच तत्वों से बना ये शरीर मृत्यु के बाद पांच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। धर्म शास्त्रों का मानना है कि आत्मा अमर है, आज एक शरीर तो कल दूसरे शरीर में उसे जाना है, यही जीवन और मृत्यु के बीच का अटल सत्य है। जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आज तक ये कोई जान नहीं पाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु से जुड़े कर्मों को बताया गया है।
1: किसी शरीर पूरा होने पे या घर में किसी शोक की दृष्टि में व्यक्ति को सुनाया जाता, शोक संतप्त परिवार को सुनाया जाता। उसका कारण ये विष्णु पुराण का वो अंश है जो ये व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में या व्यक्ति के संतानों को जीवन के पश्चात किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, और किस कर्म के करने से व्यक्ति को नारकीय जीवन या शरीर छोड़ने के बाद किस किस गति को प्राप्त करना हो सकता है।
0: माना जाता है कि जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसी तरह से श्री हरि से गरुड़ को मृत्यु के बाद का सच बताया था, जिसे संसार गरुड़ पुराण के नाम से जानता है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड का स्वरूप बताया गया है। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में उल्लिखित नरक मन की विशेष अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, परंतु ये प्रतीकात्मक हैं, वास्तविक नहीं। ये बात जरूर है कि उसी तरह के परिणाम वास्तविक जीवन में भुगतने पड़ते हैं। ये परिणाम वास्तविक और मानसिक होते हैं।
1: वो कहता है गरुड़ पुराण के शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर वो फल भोगेगा, पर प्रत्यक्ष में देखा जाए तो इस जीवन में ही वो फल भोग रहा है। किसी व्यक्ति को अपने किए गए जीवन के कष्टों के कर्मानुसार ही व्यक्ति को आगे का भविष्य बनता है। वो शरीर छोड़ने के बाद या शरीर में इसी समय आपके आगामी आने वाले भविष्य क्या निर्माण करेगा, गरुड़ पुराण आपको ये समझाता है।
0: माना जाता है कि मृत्यु के बाद शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने और जीते जी जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि ये शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वो अपने अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष के सफर पर निकलती है।
1: सामान्यतः माना जाता है कि जब घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक संतप्त परिवार को अपने वृद्ध जन के निमित्त कारक यह सुनाया जाता है। तो क्योंकि माना जाता है वो सूक्ष्म शरीर से आत्मा जब तक कर्म पूरा नहीं होता तब तक घर में ही परिवार के समक्ष रहती है, तो उसके आगे के मार्ग मोक्ष मार्ग को आगे की मार्ग पे यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका पाठ परिवार को और उस दिवंगत आत्मा के निमित्त सुनाया जाता है।
0: माना जाता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। कहते हैं कि गरुण पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाले फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसलिए आप धर्म की राह पर चलते हुए अपना जीवन यापन करें, क्योंकि ये संसार एक मोह माया है। इसलिए ना तो किसी चीज का लालच कीजिए और ना ही मृत्यु से भयभीत होइए। बस कर्म ऐसे कीजिए कि अनंत काल तक आप जिंदा रहें। गरुड़ पुराण से जुड़े और भी कई गूढ़ रहस्य हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आने जाने के चक्र से मुक्ति मिलना ही मोक्ष कहलाता है। जीवन के बाद मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है? सनातन धर्म की आस्था मानती है कि इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नश्वर होती है, वो कभी नहीं मरती है। अगर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है तो क्या उसे स्वर्ग नर्क जैसी किसी अवस्था से गुजरना होता है? इस सवाल का भी जवाब गरुड़ पुराण में मिल जाता है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में।

0: सच और झूठ, धर्म और अधर्म, और जीवन और मरण, ये हमारे जीवन में सांसों की तरह घुले हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु ही अटल सत्य है। प्राणी खाली हाथ ही इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है, लेकिन अपनी जीवन यात्रा के इस कालखंड में वो कई ऐसे अनुचित कर्म कर जाता है जिसका लेखा जोखा यमपुरी में होता है। उसी आधार पर प्राणी के साथ व्यवहार होता है, ये सदियों से मानी जा रही सनातनी आस्था है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर प्राणी को अपने ज्ञात अज्ञात कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के स्वर्ग या नर्क जाने की मान्यता है।
1: हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक अगली यात्रा का शुरुआत है। तो पंच महाभूत का शरीर शांत होने के बाद जो सूक्ष्म आत्मा शेष रह जाती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, परंतु व्यक्ति की जिस देह में आई है उस देह के कर्मानुसार उस आत्मा को आगे किस प्रकार के कर्म में जाना पड़ेगा ये हमें पता लगता है।
0: शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, जबकि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो नरक का अधिकारी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आपकी यमपुरी की यात्रा कैसी होती है, चलिए वो आपको बताते हैं। आत्मा को सर्वप्रथम यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में यमराज पाप और पुण्य के आधार पर आत्मा की स्थिति को तय करते हैं। आत्मा के मृत्यु लोक से यमलोक तक के सफर का वर्णन गरुड़ पुराण में है, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं और इसका रहस्य क्या है, तो आइए इस गूढ़ रहस्य को जानते हैं। तुलसी पत्र और कुश का प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति से दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त होते हैं। इन कर्मों से व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। जल और दूध का दान करना भी कल्याण में सहायक होता है। गुरु की कृपा से भी दंड शून्य होते हैं, व्यक्ति सद्गति की ओर जाता है।
1: अगर आत्मा निकल जाए तो शव हो जाता है, आत्मा जब तक है तब तक वो शिव है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कहा गया कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो शरीर नाशवान है परंतु आत्मा नाशवान नहीं है। तो शरीर छोड़ने के बाद वो अपने कर्मानुसार अगली गति को जाती है, अपनी यात्रा पूर्ण करती है, अगले शरीर को प्राप्त करती है या मोक्ष को प्राप्त करती है, जो कि हमारे सनातन धर्म का अंतिम सोपान है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को प्राप्ति के लिए उस आत्मा का प्रयाण हो जाता है।
0: लोग ऐसा मानते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सिर्फ मृत्यु के समय करना चाहिए और इसके पाठ से भय पैदा होता है। माना जाता है कि जीवित रहते हुए गरुड़ पुराण का पाठ करने से मनुष्य को अपने कर्मों का ज्ञान होता है, जिससे वो पाप कर्मों से बचकर अच्छे मार्ग पर चलता है। इससे मृत्यु का भय कम होता है और जीवन में सही दिशा मिलती है। और तो और, इसे घर में रखने या पढ़ने से कभी अशुभ नहीं होता। गरुड़ पुराण का पाठ अगर भाव समझकर किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। इसका पाठ कभी भी कर सकते हैं। अमावस्या को इसका पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। इसका भाव समझने पर यह बिल्कुल भी भय पैदा नहीं करता। गरुड़ पुराण के भाव को समझने के लिए इसके साथ गीता भी जरूर पढ़ें। माना जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ इंसान को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करता है और साथ ही ये उस रहस्य से भी पर्दा उठाता है जिसे जानने और समझने की जिज्ञासा हर इंसान में होती है।
1: सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि वो जीवन मिला है उसके प्रारब्ध के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप। इस जीवन में और फल स्वरूप अच्छे कार्य करेगा तो व्यक्ति अपने उत्तम गति को प्राप्त करता है। जैसे या तो वो स्वयं में सुखी रहेगा जीवन में और धर्मात्मा हो तो आगे जाके अपने पितरों में या मोक्ष को, भगवान को साक्षात प्राप्त कर लेता, भगवान में समाहित हो जाता है।
0: तो भय से दूर होकर जन्म और मृत्यु के इस रहस्य को समझिए। जीते जी अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि सत्कर्म ही उत्तम गति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि ये अटल सत्य है जिसे ना तो कोई झुठला सका है और ना ही इसे झुठलाया जा सकता है।
2: तो आज हम आपको गरुण पुराण के रहस्य बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु का सच आखिर क्या है। देखिए, गरुण पुराण के मुताबिक अगर कुछ बातों का पालन किया जाए तो आत्मा को सदगति और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।

0: जीते जी मोक्ष का आधार है गरुण पुराण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की धुरी है गरुण पुराण। गरुण पुराण में जिस तरह जन्म और मृत्यु का वर्णन है, उसी तरह इस पुराण में छिपे हैं सफलता के कई रहस्य। इसमें वर्णित एक श्लोक के अनुसार माना जाता है कि अगर 6 चीजों की पूजा आप करें तो आपको सब कुछ मिल सकता है। ये श्लोक है, विष्णु एकादशी गंगा तुलसी विप्र देवनः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु अपने भक्तों के दुखों को खत्म करके उन्हें सुख और शांति देते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए स्नान आदि कर खुद को पहले शुद्ध कर लें, एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे इसका निश्चित लाभ मिलता है। गंगा का पूजन करें। सभी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी को देवी माना गया है, इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। किसी रूप में इनका अपमान आपको भारी पड़ सकता है। गंगा ही सफलता की जननी है।
1: गरुड़ पुराण में सबसे पहले बताया गया है कि दिवंगत शरीर समाप्त होने के साथ में ही परिवार जन को उस दिवंगत आत्मा के लिए क्या कर्म करने चाहिए, विशेष तौर पे उसके जो हमारे दैनिक कर्म है उनको किस विधि से करना है, पिंडदान आदि, तर्पण आदि। गरुड़ पुराण का मूल मंत्र है भगवान विष्णु का मूल मंत्र और महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने वाला साक्षात गरुड़ पुराण का पुण्य फल सुन लेता है। इस मंत्र का जाप करने वाला अगर 108 माला कर ले तो 18,000 श्रीमद् भागवत का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है।
0: तुलसी का पूजन करें। तुलसी त्याग का प्रतीक है। इन्हें अपने घर में स्थान देने और जल देने से अवरुद्ध विकास भी खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। ज्ञानी का सम्मान करें। योग्य ज्ञानी मनुष्यों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इनका मजाक उड़ाना सर्वथा अनुचित है। जो मनुष्य ज्ञानी लोगों का सम्मान करता है वो खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। गाय की पूजा करें। गाय को हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना गया है। गाय में सभी देवता निवास करते हैं। जो मनुष्य गाय को पूजता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो गरुण पुराण की इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा ताकि परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे और मोक्ष का मार्ग खुल जाए। चलिए आपको गरुण पुराण से जुड़े मोक्ष प्राप्ति के कुछ दान बताते हैं जो ज्योतिष और धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर आधारित हैं, जिससे आपकी मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। गोदान सर्वोत्तम दान माना गया है। वैतरणी पार करवाने में सहायक है। भूमि दान से परलोक में आश्रय मिलता है। तिल का दान पाप नाशक माना गया है। स्वर्ण का दान यमलोक के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अन्न का दान यमलोक के मार्ग में भूख और प्यास से मुक्ति दिलाता है। गुड़ के दान से पितरों की शांति होती है। चांदी के दान से मानसिक शांति और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आप भी जीवन की इस अमित सच्चाई का ध्यान रखें। गरुण पुराण में लिखी मानव के पुरुषोत्तम बनने की सीख को अपनाएं, सत्कर्म करें, जिससे आपका और आपके परिवार का जीवन धन्य हो सके और आपको जीते जी मोक्ष की प्राप्ति सहज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी हिंदी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
3: More thawed. और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में बीमारियां आ जाती हैं? क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से हर कार्य में असफलता मिलती है? क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा और कैसा होता है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: Order for Jennifer C.
13: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
12: Yeah. Can you handle that much caffeine?
13: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
12: Oh, really? That's great.
13: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
12: Yeah, you just said that.
13: Did you say I just said that?
12: Yeah, I'm cutting you off.
13: I can't have any more? Why not?
14: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard. Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
8: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: हरिद्वार में शिव भक्ति का बन गया नया रिकॉर्ड। विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन के पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, आस्था का उमड़ा सैलाब। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि। प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम, करीब 1768 ईस्वी की है दुर्लभ पांडुलिपि। गांधरबल में 19 जून से शुरू होगा माता खीर भवानी मेला, भव्य अंदाज में की जा रही है तैयारियां। कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र,

अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। बांदीपोरा के शारदा देवी मंदिर में सीआरपीएफ जवानों ने की विशेष पूजा। भजन संध्या और लंगर का भी आयोजन। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। 3 युद्धपोत आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक 21 जून को एक साथ कोलकाता में किए जाएंगे कमीशन।

0: तैयारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। आज हम चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे, एक मिशन और 22.5 लाख सपने। 21 जून को फिर से नीट यूजी परीक्षा होने जा रही है। करीब 1.25 महीने में दूसरी बार नीट एस्पिरेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम की कसौटी से गुजरना होगा। कसौटी वैसे एनटीए के लिए भी है, क्योंकि इस बार पेपर लीक ना हो ऐसे में तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और 3 दिन बाद नीट पर एनटीए की परीक्षा हो रही है। नीट की तैयारी को लेकर किस तरह की प्लानिंग की गई है, फुल प्रूफ प्लानिंग क्या है, आज हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। परीक्षा में कामयाबी का क्या है रिविजन मंत्र, आज इस पर भी बात होगी। एग्जाम प्रक्रिया कैसी होगी, क्या कुछ नए नियम हैं, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और कैसे खुद का ख्याल रखें, इन तमाम पहलुओं पर आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, उनके खास टिप्स भी आपको देंगे और इसी मुद्दे पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जेएनटी पर अगले 1 घंटे री नीट से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो नीट को लेकर सरकार और एनटीए हर संभव तैयारी कर रहे हैं ताकि पहले जैसी स्थिति ना आए और नीट पर 10 पॉइंट्स, जो 10 अहम पॉइंट्स है, लीक प्रूफ प्लान क्या है जिस पर अमल किया जाएगा इस बार और जो तमाम सिक्योरिटी बदली गई है उस पर बात कर लेते हैं। एफओस की मदद से फिलहाल पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। MI-17 और दूसरे विमानों का इस्तेमाल कर पेपर भिजवाए जा रहे हैं। इन पेपर्स को स्ट्रांग रूम की 3-लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है। CRPF, CISF, स्थानीय पुलिस का पेपर पर कड़ा पहरा है। परीक्षा केंद्रों की हाईटेक निगरानी हो रही है। AI और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। पेपर बनाने वालों को लॉकडाउन की तरह ही रखा गया है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई है। इसके कुछ फीचर्स पर अस्थाई रोक लगी है, इसको लेकर भी आगे डिटेल्स हम जानेंगे। और सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। धोखाधड़ी की शिकायत के लिए पोर्टल्स भी तैयार कर दिए गए हैं जहां आप शिकायत कर सकते हैं। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। परीक्षा से पहले एजेंसी ने टेलीग्राम पर अस्थायी बैन जैसे बड़े कदम भी उठाए हैं। एनटीए चीफ अभिषेक सिंह ने इसके पीछे क्या वजह है रही वो बताया।
1: As far as the examination, the NEET examination and NTA is concerned, there are two broad reasons because of which we had to take this drastic step. One, the platform was continuously being misused by scamsters, by fraudsters, by sharing fake question papers as kind of genuine question papers and trying to fool people into paying for those question papers and trying to exploit the anxiousness that students have. These students are going to write the examination second time around and many of them are anxious, and by giving them this, sometimes

0: छात्रों से ज्यादा एनटीए की परीक्षा माना जा रहा है। एनटीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या क्या रहेगी, उसे महज सवा महीने के अंदर ही ये एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ा है। समय बहुत कम, लेकिन फुल प्रूफ एग्जाम कराने की चुनौती सबसे बड़ी, लिहाजा परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी कवच तैयार किया गया। परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकल पुलिस के साथ सीआरपीएफ सीएएसएफ के कंधों पर, भारतीय वायुसेना की भी मदद इसमें ली जा रही है। क्वेश्चन पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पिछले 4 दिन में एयरफोर्स के विमानों ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। सिक्योरिटी के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर को रियल टाइम जीपीएस और डिजिटल लॉक वाले बॉक्स में रखा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही ताकि कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। साथ ही साथ एनटीए ने साफ कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे, आधिकारिक प्लेटफॉर्म से जरूर क्रॉस चेक कर लें एक बार। तो इसी पर इस बीच नीट परीक्षार्थियों से भी हमने बातचीत की है। सभी को उम्मीद यही है कि इस बार सही से एग्जाम कंडक्ट होगा और उनका पेपर भी अच्छा जाएगा। और इन परीक्षार्थियों से बात की चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी असीम बस्सी ने।
1: नीट री एग्जामिनेशन जो है 21 जून को होने वाला है और उसके लिए सरकार ने काफी तैयारी की, क्योंकि पिछली बार बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी कि क्योंकि पेपर जो है वो कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि पेपर जो है लीक हो गया था, तो एग्जामिनेशन पूरा रद्द कर दिया था। और अब री एग्जामिनेशन जो है 21 जून को होने वाला है। हमारे साथ वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, फिर एग्जाम रद्द हो गया था और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है और इस बार उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
2: अनन्या।
1: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
2: जी सर।
1: तो अब दोबारा आप री एग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं?
2: जी सर।
1: तो अब कितना अप्रिहेंशन है? इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की अप्रिहेंशन है स्टूडेंट?
2: तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो, बट ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम एयरफोर्स इन वर्ल्ड है, फर्स्ट टाइम इतने सारे मेजर्स दिए हुए हैं तो कुछ कह नहीं सकते, बट होपफुली अच्छा ही जाएगा इसमें। तो
3: इस बार भी हमारी तैयारी तो वैसी ही है, बाकी डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी तो और जन एवर जीरो की कुछ भी हो सकता है।
4: इतनी बार ज्यादा मेहनत की कि इस बार ज्यादा मेहनत की आपने?
3: उतनी कर रहे हैं क्योंकि पेपर तो वही है ना हमारा,
5: उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं और यही होप है कि अब लीक नहीं होगा और मतलब जो डिजर्व करते हैं बच्चे मेडिकल में जाने के लिए और वही मेडिकल में जाएंगे ताकि अच्छी सिलेक्शन हो बच्चों की और कट ऑफ इतनी हाई ना जाए जितनी पहले जा रही थी।
1: इस बार 21 जून को जब एग्जाम होगा, री एग्जामिनेशन इस बार फिर अपीयर होंगे क्योंकि पिछली बार जो पेपर लीक हो गया था, रद्द जो एग्जामिनेशन था। सो इन्होंने कहा कि काफी ज्यादा इनके लिए ऊपर प्रेशर भी रहा, अनफेयर हुआ जो हुआ, लेकिन इस बार इनको एक्सपेक्टेशन है कि पेपर जो है फेयरली कंडक्ट हो, सब कुछ नॉर्मल रहे और किसी तरह की कोई लीकेज ना हो। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी।
0: तो चले रीनीट को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि एनटीए का भी है, चर्चा इसी को लेकर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डी के पांडे जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, स्वागत है सर आपका। शिखा दरबारी जी हैं फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, आपका भी स्वागत है। विवेक ठाकुर जी हैं एमडी एंड फाउंडर स्कॉलर्स डीन एलुमनाई आईआईटी खड़गपुर, सर आपका भी स्वागत है। और कल्पना शर्मा जी करियर काउंसलर, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत शिखा जी आप ही से करूंगी क्योंकि बार बार देखिए स्टूडेंट्स तो पहले भी तैयार थे, स्टूडेंट्स अब भी तैयार हैं, मन में संशय बहुत सारे जिसको लेकर इस पूरे कार्यक्रम में आगे चर्चा आपसे भी करेंगे, लेकिन परीक्षा एनटीए की भी इस बार है, करीब सवा महीने में दोबारा परीक्षा से अब बच्चों के साथ साथ एनटीए को भी गुजरना पड़ रहा है।
6: हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि ये इस बार एनटीए की परीक्षा ज्यादा है। एंड इफ यू रिकॉल 2024 में भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने ये चीज बोली थी कि वी आर हैविंग डाउट्स अबाउट द एनटीए'स वे ऑफ वर्किंग, तो कहीं एनटीए को अपने जो उनके वीक पॉइंट्स थे, क्योंकि अगर उनके वीक पॉइंट्स पे उन्होंने काम किया होता तो शायद ये जो नौबत आई पिछली बार वो नहीं आई होती। और सबसे बड़ी जो इसमें वीक पॉइंट था वो था कि आपने जो पेपर सेटर ही लिया, वो पेपर सेटर ही आपका जो है उसने पेपर लीक कर दिया। पर लेकिन इस बार जितनी तैयारियां करी जा रही हैं, वो कहते हैं ना कि अगर आप दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है तो क्योंकि जो इस टाइम डिफेंस को लगाया जा रहा है या इस तरह से किया जा रहा है, दिस इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें अपना नॉर्मल सिस्टम ही इस तरह से रखना चाहिए कि डिफेंस इज मेंट फॉर समथिंग एल्स। पर आई थिंक क्योंकि इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है एनटीए के लिए कि इसकी वजह से कहीं शायद पब्लिक में सबको ट्रस्ट दिखाने के लिए हम उस लेवल की चीजें कर रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि मूंगफली को भी अब हम हथौड़े से मार रहे हैं।

0: तो मूंगफली को तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चाहिए होता है, हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स नहीं चाहिए, हमें अपनी ही सिस्टम जो है वो इतना फुल प्रूफ करना चाहिए कि उसमें ऐसी कोई सिचुएशन आनी नहीं चाहिए।
1: शिखा जी, एक चीज जल्दी से क्लियर करते जाइए, आपने कहा कि दिखाने के लिए भी हो रहा है, क्या ये दिखाने के लिए हो रहा है या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है? चैलेंज इस बार एनटीए को सबसे बड़ा क्या लग रहा है?
0: नहीं, क्या होता है ना कि जब आपका एक बार आप इतने बुरी तरह फेल हो चुके तो इस बार आप कोई भी छोटा सा भी चांस नहीं लेना चाहते, और जब इस वक्त माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को अपने हाथ में ले लिया है तो ऐसे में आपको एक, जिसे कहते हैं ना, एकदम एस्केलेट कर देते हैं उस लेवल तक कि भी आप कोई भी कुछ हो जाए पर पेपर लीक नहीं हो सकता। तो उसके लिए जितनी भी बेस्ट तैयारी वो कर सकते हैं वो इसलिए कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो उस चीज को कुछ दिखाने के, देखिए दिखाने के लिए भी होता है क्योंकि ट्रस्ट आप कैसे करेंगे, ट्रस्ट को एक दिन में तो आप नहीं, कोई ऐसी चीज है ना जिससे आप क्रिएट कर देंगे स्टूडेंट्स में भी, उनके पेरेंट्स में भी, तो वो ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह के कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो आउट ऑफ द वे होती हैं। एंड आई थिंक कि इस तरह से आउट ऑफ द वे जो प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि हम इस तरह से करेंगे, उससे लोगों को कॉन्फिडेंस आ भी रहा है।
1: ठीक है, चलिए ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी, सीधा आप ही के पास आऊंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेना की मदद ली जा रही है पेपर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है सर उसमें करीब 200 से ज्यादा उड़ानें इस वक्त MI-17 हेलीकॉप्टर्स भर चुके हैं पेपर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है और किस तरीके से, क्योंकि परीक्षा एनटीए की हो रही है, किस तरीके से सेना मदद कर रही है इस बार एनटीए की?
2: जय हिंद, बहुत धन्यवाद मुझे संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी बात जो है वो एयरफोर्स को जो सौंपी गई है वो ट्रांसपोर्टेशन तो एक एक जरिया है, एक मोड है जो कि शायद त्वरित तरीके से पेपर्स पहुंचाएगा। महत्वपूर्ण जिसकी आप चर्चा करेंगे कि जो जो जो इसमें एक क्रेडिबिलिटी जो डाउन हो रही है एग्जामिनेशन सिस्टम की, एनटीए की, एनटीए एक उसका एलिमेंट है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पूरे इकोसिस्टम पर एक जो है उसकी क्रेडिबिलिटी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। उसको पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी में भी एयरफोर्स की सलाह ली जा रही है, उसकी मदद ली जा रही है। उसका मुख्य कारण क्या है कि सेनाओं की एक इमेज है सबके बीच में कि सेनाएं अगर हैं तो काम सही रूप से होगा, सही तरीके से होगा और बिना किसी बायस होगा। तो ये उसको पुनर्स्थापित करने के अंदर एयरफोर्स अगर कामयाब हो पाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा नहीं कि ऐसे कार्यों में सेना, भारतीय वायुसेना पहली बार सहयोग कर रही है। अगर ध्यान हो लोगों को, कोविड के समय में लोगों को दवाइयां और जब बाढ़ वगैरह आती थी और पहुंच भी पाते थे नॉर्थ ईस्ट में, जो लोगों को सैलरी भी तक भी जो है सेनाएं ले गई हैं। जहां तक बात है कि इस नीट के एग्जामिनेशन की, तो नीट के एग्जामिनेशन के लिए एयरफोर्स ने अपने C-130 हेलीकॉप्टर्स और साथ साथ आर्मी ने भी LH हेलीकॉप्टर्स को इसमें सहयोग दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने, ताकि कहीं कोई एरर नहीं हो, कहीं टाइम लैग नहीं हो, क्योंकि उद्देश्य एयरफोर्स को लाने का मात्र यह था कि समय के साथ बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के ये सारा ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और उसमें कामयाबी मिली। निश्चित रूप से 200 से अधिक जो है वो इसमें सॉर्टीज हुई और 18 सेंटर्स पर जो है हब सेंटर बनाए गए थे जहां पर कि ये पेपर गए और आगे फर्दर जहां पर कि एक्सेस डिफिकल्ट था वहां पर उनको हेलीकॉप्टर की मदद से वो ये क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। साथ में कोई इसके अंदर कोई टैम्परिंग हो या नहीं हो उसकी बहुत जिम्मेदारी रखी जाती है। एयरफोर्स स्टेशन आने के बाद वैसे भी कैमरेज हैं और उसके बाद गार्ड्स हैं कि कहीं कोई जो है अनवांटेड एलिमेंट इसमें एंटर कर पाएगा उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बाकी जैसे चीजों को संभाल के रखते हैं वैसे ही हर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर इन चीजों को रखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो है, जैसे बच्चे भी, आप अभी चंडीगढ़ के बच्चों को आपने दिखाया है, वो भी कह रहे हैं कि एयरफोर्स को इसमें शामिल किया गया, इसका मतलब उन पर विश्वास जाग रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को नहीं लगना चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं लगना चाहिए कि जो उनका प्रयास है वो एक गलत दिशा में जा रहा है या शायद फिर उनका ये प्रयास बेकार जाए। तो महत्वपूर्ण यह है कि पुनर्जागृत करना उस भावना को कि जो पूरा देश है उनके साथ में है और वो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ हम क्यों नहीं होंगे, महत्वपूर्ण बात यह है। तो निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना वो सभी कार्य कर सकती है जो इस देश के लोग सोचते हैं कि, और हमारे बच्चे जो कल का भविष्य है उनके लिए हम हमेशा सतर्क हैं।
1: बिल्कुल विवेक ठाकुर जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, चैलेंज सबसे बड़ा क्या रहेगा? हालांकि इस बार जैसे मल्टीलेयर सिक्योरिटी की बात हो रही है, एयरफोर्स में इन्वॉल्व है, CISF है, CRPF इन्वॉल्व है, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई इन्वॉल्व है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है, टेलीग्राम को लेकर भी एक्शन लिया गया है, तो चैलेंज सबसे बड़ा क्या है इस बार विवेक ठाकुर जी?
3: नवजोत जी, जैसा आपने कहा कि एग्जाम जो ये हो रहा है, ये सबसे बड़ा एग्जाम जो है एनटीए का है, तो देखिए फैक्ट यही है कि बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छी है. बच्चे साल भर, 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, और जब वो तैयारी करते हैं तो इस बात पे ध्यान देते हैं कि फिजिक्स के किसी सब टॉपिक में पता चले कि इस पार्टिकुलर पार्ट को उन्होंने छोड़ दिया है, यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री लगा दे तो हम कैसे आंसर करेंगे. दिक्कत यह है कि एनटीए इन चीजों को नहीं सोचता है. एनटीए मान के चलता है कि सारी चीजें सही होंगी, और सिचुएशन जो ये सारा है कि एयरफोर्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, मुझे इन सबको देखते हुए सिर्फ ये लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात बहुत अच्छे से जाए, शादी बहुत अच्छे से हो, इसकी तैयारी चल रही है, तो आपने दूल्हे को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी है और आपने शूटर्स लगा दिए हैं, और पता चला कि दुल्हन का ही प्लान है किसी और के साथ निकलने का. तो मेरा मानना है कि जो एनटीए है इसके अंदर खुद के इतने लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हर बार सरकार की व्यवस्था की किरकिरी हुई है, और अभी भी 4 दिन का समय बचा हुआ है. एनटीए को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ओएमआर शीट जब बच्चे फिल कर देते हैं उसके बाद 2 से 3 घंटे का समय होता है जिसमें कई बार वहां मैनिपुलेशन होता है. बच्चों से जो स्कैमिस्टर्स है, एजेंट्स है, वो कहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, 30 लाख रुपए दे दो, हम आंसर की से डायरेक्टली ओएमआर शीट फिल करके हम जमा कर देंगे. एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ भी होता है कि जब आपने एयरफोर्स से तो एग्जाम पेपर्स पहुंचवा दिए सेंटर्स पे, पता चला कि आपके एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर्स खुद इतने उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है कि वो क्या करते हैं कि 2 बजे पेपर आपने दिया बच्चों को और वो पेपर की फोटो खींच के कहीं भेज देते हैं, और बाय द टाइम जब पेपर खत्म हो रहा है तो आंसर कीज आ जाती है उनके पास. मोस्टली इंस्टीट्यूशंस जो है आपके 10-15 मिनट में तैयार कर देते हैं आंसर कीज, वहां से फिल करके सब कुछ हो जाता है. तो एनटीए हर बार यही चूक जाता है कि वो ये मानता है कि उसके अंदर की जो चीजें हैं वो सब ठीक चलेंगी. आप हर बार देखिए, 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में मैं शामिल था, सारी हियरिंग में उस समय जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी उनके सामने मैं प्रेजेंट था. आप देखिए सारी जो कमियां निकल के आई हैं वो एनटीए की तरफ से निकल गई, चाहे वो पेपर सेटर्स ने पेपर लीक किया हो, चाहे उनकी व्यवस्था में खामियां हो, छोटी छोटी टेक्निकल लीप होल्स इतने ज्यादा हैं कि अभी भी 4 दिन का समय है. अगर एनटीए उस पर लगे और साथ साथ वो बच्चों को ये भी विकल्प दे कि भाई जो बच्चे 21 जून को पेपर नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं, आप उनको एक विंडो 28 जून का भी दीजिए, आप 2 वीक बाद भी दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई बच्चा मेंटली अभी चैलेंज्ड फील कर रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रेस में है बच्चे, बच्चों का रिदम जो है वो बनने में 6 से 8 महीने का समय लगता है, और एक बार जब बच्चा एग्जाम देके 1 हफ्ते 10 दिन के लिए रिलैक्स हो चुका होता है, पता चला मौसी के यहाँ घूमने गया, नैनीताल घूमने गया, तो उसके लिए रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है. तो आज भी कल भी एक सुसाइड हुआ सीकर में, तो बच्चों को ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि अगर आप 21 जून को अपियर नहीं हो पा रहे हैं तो यू हैव अनदर विंडो ऑन 28 जून. ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी इससे.
1: ठीक है, चलिए ये बच्चों की मानसिक स्थिति इस वक्त कैसी उसको लेकर मैं आगे कल्पना जी से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले शिखा जी एक बार आपसे, आपके पास आते हुए, क्योंकि जितनी बातें विवेक जी ने कही हैं यही सबसे बड़ा चैलेंज है. देखिए इस बार लगातार, पिछले बार भी हमने देखा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, इस बार पूरा पेपर रद्द हुआ, बात बिल्कुल ठीक है. क्या इस बार एनटीए की तैयारी पुख्ता है, दिखाने की कोशिश हालांकि हो रही है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, सोशल मीडिया पर अफवाहों की तरफ ध्यान न दें, टेलीग्राम के कुछ फीचर्स को आपने बैन कर दिया, लेकिन बावजूद इसके क्या एनटीए तैयार है? और दूसरी बात यह है मैम, सबसे बड़ी बात, इस बार हम नीट की बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या अगले साल से, क्या हम माने कि हर साल जब भी नीट का एग्जाम कंडक्ट होगा या कोई और जेई जैसा एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या इसी तरीके से सेना को इन्वॉल्व किया जाएगा, मल्टीलेयर सिक्योरिटीज होंगी, या फिर खुद की कमियों को भी ठीक करने की जरूरत है?
0: देखिए यही मैं आपको पहले भी कह रही थी कि ठीक है इस वक्त हम एक ट्रस्ट बढ़ाने के लिए हम इस तरह की सारी चीजें यूज कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक मेंटली एक सेटिस्फेक्शन रहे कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो बहुत अच्छे से होगा. एनटीए ने अपनी पूरी तैयारी करी है तो इसलिए हमें लगता है कि इस बार एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा. पर लेकिन जो एक सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है, एनटीए या हमारा पूरा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो आज तक भी 24 का जो आपका एक एक्यूज था, संजय मुखिया उसका नाम था, ओएसएस स्कूल था, आपने 144 लोगों को पकड़ा था, और उसमें क्या हुआ 24 में कि सीबीआई ने टाइम पे चार्जशीट नहीं फाइल करी, उसकी वजह से जो है वो पता ही नहीं कि उसमें क्या हुआ. अगेन अगर हम अब 2026 का देखें तो 2026 में सबको पता है कि किंग पिन कुलकर्णी है, तो अगर हम, क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं बहुत सारे इस बात पे कि आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखने होते हैं, ये नहीं कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है इसलिए हम उस आदमी को सजा नहीं देंगे। जब तक हम सजा नहीं देंगे, देखिए आपने एक पूरा नया एक्ट बनाया इस बात के लिए, 2024 में जब ये सारा सिस्टम हुआ था तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट आपने 2024 का बनाया, तो 2024 से पहले तो हम कह सकते थे कि भी इस तरह का कोई एक्ट नहीं था तो हम सजा कहां देते। पर अब जब 2024 के बाद एक्ट बन चुका है तो अब हम 2026 के अपराधियों को हम ऐसी सजा दें, और उसमें देखिए वही एविडेंस वाली बात है कि कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि
1: मुझे मैम ब्रेक लेना है। एक सेकंड फटाफट से जल्दी से, विवेक जी ने जो कहा एक बात, विवेक जी की जो उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन और देना चाहिए, केवल 21 तारीख ना रखे क्योंकि बच्चों पर मेंटल प्रेशर भी, क्या वो ऑप्शन पॉसिबल हो सकती है?
0: नहीं, वो होता है जैसे IIT में होता है कि आप डिफरेंट डेट्स देते हैं, पर अभी यहाँ पे सिस्टम आपने लागू नहीं किया है तो हम अभी इस साल नहीं कर सकते हैं, पर इन द लॉन्ग रन इट्स अ गुड सजेशन।
1: इट इज अ गुड सजेशन। अब कल्पना जी सीधा आपके पास आती हूँ। देखिए डेढ़ महीने में दूसरी बार, और आप से बेहतर शायद बच्चों की मानसिक स्थिति कोई और समझ नहीं सकता क्योंकि आप खुद एक करियर काउंसलर हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे खुद आपके पास आए होंगे इसको लेकर, क्योंकि प्रेशर सिर्फ बच्चे पर नहीं होता, पूरे पूरे परिवार पर इसका प्रेशर होता है कि अब दोबारा से एग्जाम देना है। कैसी, किस तरीके से बच्चों को अब तैयारी करनी चाहिए? वक्त बहुत कम है।
4: आई अग्री, उनका पेन 100% जस्टिफाइड है, लेकिन अब आगे उनको 21st के लिए तैयार होना है। जो रीटेस्ट हुआ है ऑल ओवर इंडिया क्यों हो रहा है कि हर कोई, इफ एनीवन इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस लीक, उनको ये बेनिफिट ना मिले तो आपके लिए एक मौका है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका जो तैयारी है उसके आप कोई डिसएडवांटेज ना हो। तो जब ये रीनीट हो रहा है, द सिलेबस इज नॉट योर चैलेंज, आपका माइंड है आपका चैलेंज। आप अपना फोकस बनाए रखें, आप एंग्जाइटी से लड़ने का अभी से सीख ले कि ड्यूरिंग द पेपर, बिफोर द पेपर आप कैसे अपनी एंग्जाइटी को फाइट करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, अपना सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करिए, स्विच ऑफ योर फोन्स। मतलब ये जो फेक न्यूज है चारों तरफ कि पेपर बिक रहा है आप खरीद लो, या फिर इस तरह से सेंटर पे ये हो गया या वहां से लीक हो गया, ये सारी न्यूज आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें। जस्ट अनइंस्टॉल योर सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज फेक न्यूज, एंड अपने माइंड पे अपना काम करिए। आपको सिलेबस ऑलरेडी आता है अपने थर्ड में, को उसको ऑलरेडी एक बार तो टेस्ट कर चुके हैं। अभी वक्त है नॉट टू रिवाइज दैट वॉज, कुछ कई बार होता है क्या, कुछ सिलेबस रह जाता है या समथिंग इज वीक, वहां आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप और ज्यादा एंशियस हो जाएंगे। सो अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करिए, अपना मेंटल जो स्टेट है उस पर काम करिए, एंड सोशल मीडिया से एकदम दूर रहिए। एंग्जाइटी फाइट करने का तरीका आप सीख लीजिए। बेस्ट होता है डीप इनहेल एंड देन अ स्लो एक्सहेल व्हेन यू फील दैट यू आर, योर हार्ट इज बीटिंग फास्ट। एंड लॉजिस्टिकली आप अपने एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, एंड फिजिकली अपने सेंटर्स को देख के आइए, सो दैट वो जो लास्ट मिनट में हैसल्स होती हैं जिससे और घबराहट होती है वो ना हो। एंड आई वुड से पेरेंट्स, दे शुड टेल देयर किड्स कि ना हम आपको सपोर्ट करते हैं अनकंडीशनली,
1: जी
4: चाहे कुछ भी हो जाएगा।
1: जाहिर सी बात है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं, बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं, लीक प्रूफ तैयारी किस तरह की है, कितना NTA तैयार है, बच्चे तो तैयार ही हैं लेकिन NTA खुद कितना तैयार है, और इस मल्टी लेयर सिक्योरिटी से फायदा कितना होने वाला है, इन तमाम सवालों का जवाब इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: तैयारी जिसको लेकर हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, बच्चों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, एनटी की तैयारी कैसी होनी चाहिए, एक बार सीधा आपके पास आना चाहूंगी ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, क्या भरोसा बन पाएगा जब इतनी सिक्योरिटी दी जाती है तो वो बच्चा, वो विद्यार्थी जो वहां पर जाकर बैठता है, सर उनके माइंड में क्या रहता है? क्योंकि पहला एग्जाम दे दिया लेकिन दूसरे में एक तो री हो रहा है, डेढ़ महीने बाद दोबारा से एग्जाम हो रहा है और ऊपर से इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो रही है, बच्चों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर कि किस तरह का जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो कितनी मल्टीलेयर सिक्योरिटी से उनको गुजरना होगा।
1: देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, ट्रस्ट डेफिशिएंट, इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि वो को विश्वास बिठाना, पुनर्स्थापित करना कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए जो जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, जो सावधानियां बरती गई हैं वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। पहले मैं उस बात पर आ जाऊं जो कि आपका सीधा प्रश्न है कि सेंटर पर उनके ऊपर जो सिक्योरिटी होगी तो क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ सकता है या उनको क्या? देखिए, जैसे भी आज भी किसी भी एग्जामिनेशन में गए हैं जब तक, तो वो कुछ कुछ उनको सिक्योरिटी उनको देखना पड़ा है, गेट पर जो आते हैं तो एडमिशन कार्ड चेक होता है, उनकी फिक्स किंग होती है। इस बार जो है निश्चित रूप से दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी कि सीसीटीवी कैमरास की जो बहुतायत होगी और तीसरी बात कोई भी कैलकुलेटर और मोबाइल और साथ में कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस भी उसमें जो है मना उनको अलाउड नहीं होगा। तो ये सब जो है उनको, ये उनको नहीं बल्कि किसी भी आदमी को जो जाएगा अंदर उसको अलाउड नहीं होगा। और ये एक ये यही एक अडिशनल कदम हो सकता है कि देखिए कैलकुलेटर तो कुछ एग्जामिनेशन में अलाउ करते हैं लेकिन अभी बिल्कुल उसके लिए भी मना किया गया है। तो वो एग्जामिनेशन सेंटर जाएं और स्वस्थ मन के साथ जाएं, पूरे भरोसे के साथ जाएं और अपने पर आत्मविश्वास अपना बढ़ाएं कि जो होगा वो, जो उन्होंने तैयारी किया उसके हिसाब से हुआ और जो उनके कॉम्पिटेंस है, जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उस पर ज्यादा ड्वेल करें, नो डाउट अबाउट दिस। तो उसको करके जब जाएंगे तो अपने सेंटर पर समय से पहले पहुंचें क्योंकि 45 और मैं बता दूं जो चीजें हो रही है सिक्योरिटी से रिलेटेड, अब थ्री लेयर सिक्योरिटी जो रखी गई है तो वो उसमें उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से जा पाएंगे, एडमिशन कार्ड दिखाया उनकी एंट्री जो है अलाउड हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात है जो बाकी सब एलिमेंट है जो कि लीक में योग देते रहे या एलिमेंट कंपोनेंट थे उनको रोकने पर रोक लगाई गई है। अब एग्जामिनेशन पेपर देखिए, मैं जल्दी जल्दी बता दूं जो बातें मेरे संज्ञान में आई। पहली बात कि पेपर जो सेट हो रहा है उसके जो सेटर्स हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनके पास कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई इंटरनेट नहीं होगा और जब तक एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो एकांत वास करेंगे। दूसरी बात मैं समझ सकता हूं कि वो एक सजा भी होगी और ये क्या हम कर रहे हैं वो, लेकिन महत्वपूर्ण है देखिए ट्रस्ट, ये एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये हो रहा है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कैसे स्थापित किया जाए। तो दूसरी बात जो पेपर जो है वो कंप्यूटर में सेट किया जा रहा है उनको इंक्रिप्टेड फॉर्म में किया जा रहा है, जहां पर प्रिंटिंग हो रही है वहां पर कोई भी जो रीजनल सेंटर्स बनाए गए प्रिंटिंग एरिया में और वहां पर जो है कोई आना जाना किसी को अलाउड नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परमिटेड नहीं थे। साथ में जब वो जहाज में आए हैं तब भी सिक्योरिटी है और उसके बाद जब उस हैंड ओवर किए जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जा रहा है वहां पर सीसी, और जो पेपर जिसके जिक्र कर रहे थे शायद वो पेपर खत्म होने के बाद उसमें टेम्परिंग हो सकती है, उसके लिए सीसीटीवी के अंतर्गत ही सारे पेपर आंसर शीट्स को सील किया जाएगा और आंसर शीट भी उसी चैनल से वापस आएंगे जिस चैनल से उनके पास पहुंच रहे हैं। तो सारे पर्याप्त है जिसमें बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा कोई संज्ञान होगा मुझे इसमें डाउट है, उनको सीधे से जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, बाकी उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ होगा सिक्योरिटी के माध्यम का मेरे आंकलन में नहीं लगता।
0: ठीक है, उस पर मैं विवेक जी आपसे जवाब लूंगी लेकिन जल्दी से शिखा जी, यहाँ पर भरोसा पैदा करने की कोशिश हो रही है, मेरा सवाल वापस से आपसे क्योंकि इसके बाद हम सीधा बच्चों पर आएंगे, बच्चों के ही सवाल करेंगे, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, बच्चों को अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या सीख एनटीए को मिली है इससे?
2: एनटीए को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है और उनको इससे सीख लेनी भी चाहिए क्योंकि उनको लगातार बताया जा रहा था कि आपके जो प्रोसेसेस हैं उसमें हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्पेसिफिकली बोला था। तो उसके बाद जो हमें अपना सारे प्रोसेस होता है, एक उस प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट प्रोसेस ही उनका जो होता है कि किसी को भी आप पेपर सेटर रखते हैं तो उसका आपको 360 डिग्री पूरा आपको वेरिफिकेशन करना होता है। जैसा अभी विवेक जी बोल रहे थे कि भी वो लॉक इन की में रख देंगे तो इट इज़ नॉट वेरी गुड, बट आई वुड लाइक टू शेयर कि जब भी बजट बनता है तो बजट में भी यही होता है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सीक्रेट थिंग कि वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वहां पे रखा जाता है कि भाई, अब आजकल तो उतना नहीं है पर पहले उनको 2-3 दिन वहीं रखा जाता था कि भाई आप जब तक बजट बाहर नहीं आ जाएगा तब तक आप जो है बाहर नहीं जा सकते इस ऑफिस के। तो इस तरह का प्रोसेस हमेशा से चलता रहा है, तो एनटीए को इससे सीख लेनी चाहिए थी, अपने सारे वीक पॉइंट्स पे काम करना चाहिए था। और यहां तो बिल्कुल उनका जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके अपने आदमी ने जिसने पेपर सेट किया था उसने लीक कर दिया। तो अभी हम चाहें बहुत सारी प्रोसेसेस को सबको हम ट्रिपल लेयरिंग कर रहे हैं, एनक्रिप्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर कि इस बार तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और एनटीए ने सच में जो इतना बड़ा ये पूरा पूरा हमारे देश में तमाशा हो गया एनटीए के लिए, तो इससे उसको पूरी सीख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी सीख उसको जो ये लेनी चाहिए कि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे ये इंश्योर करे कि 2024 के भी और 2026 के भी जो कल्प्रिट्स हैं उनको सही मायने में सजा मिले।
0: बिल्कुल, और विवेक जी इसी और ध्यान दे रहे थे कि बच्चों की तो तैयारी पूरी है, एनटीए आप अपनी तैयारी एनटीए को करनी चाहिए। अब सीधा जल्दी से बच्चों की बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर इम्तिहान बच्चों का नहीं होता। बार बार मैं इस बात पर फोकस करती हूँ कि इम्तिहान पूरे परिवार का होता है और इसकी तैयारी केवल 6 महीने साल पहले नहीं शुरू होती, 5-6 साल पहले से बच्चे इसकी कोचिंग तैयारियां शुरू कर देते हैं। विवेक जी अब सीधे तौर पर आपके पास आऊंगी, क्या टिप्स हैं बच्चों के लिए इस वक्त जब वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, 21 तारीख को पेपर है, कितने बजे घर से निकलें, अपने साथ क्या चीज ले जानी चाहिए क्या नहीं ले जानी चाहिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त बच्चों के और अभिभावकों के जहन में आ रही होंगी, आप क्या सलाह देंगे उनको?
3: नवजोत जी मैं शुरू करूंगा, जो शिखा मैम ने एक रिप्लाई दिया था कि देखिए हो सकता है ये बच्चों को एक और विंडो दिया जा सकता है कि 2024 में, मैं याद दिलाऊं आपको कि जब कुछ सेंटरों पे गड़बड़ी हुई थी तो 2-3 हफ्ते बाद एनटीए ने उन्हीं सेंटर्स पे एग्जाम रखा था और नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट जारी किया था। और यहाँ पे अगेन मैं कहूँ कि इससे कोई एग्जाम के रिजल्ट आने में बहुत देरी नहीं होगी क्योंकि आईआईटी का सिस्टम है, आप यूज करिए ना, अगर आप एयरफोर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप बाकी एजेंसीज को डिप्लॉय कर रहे हैं, आप इतना ड्रास्टिक मेजर्स ले रहे हैं कि आप टेलीग्राम को बैन कर दे रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप आईआईटी का सिस्टम डिप्लॉय कीजिए। जो 17 मई को एग्जाम हुआ था जेई एडवांस का, आप सोचिए उन्होंने 1 जून को 2 हफ्ते के अंदर पूरे देश के बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया, इतना एफिशिएंट सिस्टम है। क्योंकि ओएमआर चेकिंग जो है मिनट्स में होती है, घंटों में नहीं होती है, आपको ओएमआर स्कैन करना है और रिजल्ट निकालना है तो आप 2 वीक में निकाल सकते हैं। बच्चों के लिए अगर ये राहत दे सकते हैं 4 दिन भी है तो बहुत बड़ी राहत होगी। अब मैं बात करूंगा जो आप कह रही थी,
0: ये आपका वैलिड पॉइंट है, मेरे ख्याल से शिखा जी भी इसको लेकर अग्री कर रही थी, लेकिन सजेशन अच्छा है शिखा जी, वही बात है कि अभी एनटी की तरफ से आया नहीं है इसको लेकर, लेकिन आपने वही कहा कि विचार इस पे हो सकता है।
2: हाँ, विचार बिल्कुल हो सकता
3: है मैम, 2 दिन में आईआईटी का सिस्टम, 2 दिन
2: जैसे सैट वगैरह भी होते हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर्स मैम, सैट के भी आप कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं और आपको पूरे साल में 4 बार भी वो पेपर देके और आप कर सकते हैं उस पेपर को, तो इस तरह का प्रोविजन रहना चाहिए कि इकट्ठे 22 लाख बच्चों को हम प्रेशर ना डालें, जब जो तैयार है तब वो पेपर दे।
0: बिल्कुल, आपकी आपकी बात को अग्री कर रही है शिखा जी। विवेक जी अब आगे बढ़ते हैं।
3: मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आईआईटी रुड़की ने इस बार जेईई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट किया था, उन्होंने विद इन फ्यू डेज पूरा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया क्योंकि ओएमआर शीट जो है उसको स्कैन करने का बस आपको लफड़ा है, उसके बाद तो मिनट्स में रिजल्ट कंपाइल होकर डिक्लेयर हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू मैं आता हूँ कि जो बच्चों को क्या करना चाहिए, देखिए मेरा मानना है कि बच्चों को जो भी इस समय डिस्ट्रेस में, उनको एक ही बात समझनी है कि आपकी लड़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन से नहीं है, आपकी लड़ाई इस समय खुद से है, आपको खुद पे नियंत्रण संयम पूरा रखना है, इसलिए आप अपनी दिनचर्या जो है परफेक्ट रखें, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठें, सोशल मीडिया और इंटरनेट से पूरी दूरी रखें और कोशिश करें कि जब भी मन में किसी तरह की शंका या घबराहट आ रही है तो पेरेंट्स के साथ बैठें और अपने मेंटर्स के साथ बैठें, रैंडम चीजें गूगल पे सर्च करना और मोटिवेशनल वीडियो देखना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोशिश यही करें कि इन द बिल्डअप टू एग्जाम आपके आसपास जो पॉजिटिविटी बूस्ट करने वाले लोग हैं आप उनसे संपर्क में रहें, उनसे बातचीत में रहें, संवाद में रखें, किसी भी मन में जो चिंता बढ़ रही है उसको बिल्डअप ना होने दें क्योंकि जब वो चीजें बिल्डअप होती हैं तो वो आपको ड्रास्टिक स्टेप्स के टुवर्ड्स ले जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप एंड शेयर योर थॉट्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बना है वर्ल्ड में जो मेक और ब्रेक एग्जाम है, ये आपके जिंदगी का एक छोटा सा पड़ाव है, आपको बस इससे गुजरना है, ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को आप बहुत अच्छा नहीं करते तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने जेईई और नीट का एग्जाम निकालना है, तो आप इस बात से बिल्कुल मुतमईन हो जाइए कि आपने जो सीखा है वो जिंदगी भर आपके काम आएगा, ये परीक्षा एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आपके जीवन का।
0: बिल्कुल, कल्पना जी क्या टिप्स आप देंगी बच्चों को, क्योंकि यहाँ बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त।
4: बच्चों को ये जो जितनी डिस्कशन हो रही है इंक्लूडिंग टीवी, डोंट माइंड, कि जो ये डिबेट्स हो रही हैं कि सिस्टम फेल हो गया या जो भी हुआ है उससे दूर रहे अभी, बिकॉज जितना भी ऑप्टिक्स हो रहा है कि एयरफोर्स यूज हो रहा है, इवन टेलीग्राम बैन हो रहा है, इट इज टू क्रिएट इंस्टिल दैट ट्रस्ट इन द सिस्टम कि इस बार ऐसा नहीं होगा, आप अपना बेस्ट करिए। तो हम घर में पेरेंट्स से स्पेशली कहेंगे कि डिबेट्स और वो सब चला के उनको डिस्टर्ब ना करें। दूसरा, आपस में एक दूसरे को पैनिक ना दें कि तेरा ये रिवाइज हो गया ये नहीं हुआ, बिकॉज दे ऑलरेडी डन दैट एग्जाम, उन्होंने एक बार दे चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेडिटेशन, बच्चों को मेडिटेशन अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा ओम चैंटिंग या जिस तरह भी उनके घरों में प्रेयर्स होती हैं वो करें, इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विद इन. एंड उसके साथ साथ अपना स्लीप, 7 to 8 hours ऑफ कंप्लीट स्लीप उनको जरूर लेना है. फूड लाइट एंड डाइजेस्टेबल रखना है. एडमिट कार्ड का नोटिस एनटीए की वेबसाइट पे तो आ गया है. इट क्लियरली सेज आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं. आप लो हील्स एंड स्लीपर्स प्रिफर करिए. आप अपना रिलीजियस चीजें पहन सकते हैं, दे वोंट थ्रो इट आउट. एंड टाइम से आप सेंटर पे पहुंचिए. सिक्योरिटी के लिए आप कोऑपरेट विद द पीपल देयर सो दैट आप जल्दी अंदर जाके बैठ सके.
0: बिल्कुल, एक बार जल्दी से ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी आपके पास आते हुए, सेंटर पर क्या स्टूडेंट्स को थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्या वहां पर चेकिंग के कुछ ज्यादा इंतजाम किए गए हैं इस बार, आप क्या टिप्स देंगे बच्चों को?
1: देखिए कोई अतिरिक्त तो नहीं है, लेकिन माहौल जरूर. देखिए जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि ट्रस्ट स्थापित करने की बात हो रही है, तो बच्चों को खुली हवा में सांस लेके आराम से बिल्कुल स्वस्थ मन से जाना चाहिए और किस प्रकार का लोड नहीं ले. बहुत सही बात कहा कि ये जीवन का छोटा सा हिस्सा है जो कि आपको एक आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए. और माँ बाप से बात करें, अपने मित्रों के साथ बातचीत करें, और पढ़ाई के बारे में बात नहीं करें, जनरल बात करें, ताकि आपका मन डाइवर्ट हो और हल्के तरीके से जाएं. और खुली हवा में जरूर सांस लें, सबसे जरूरी चीज़ है कि आप बहुत पैनिक में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, दिक्कत होगी. सिक्योरिटी के लिए आप समय से थोड़ा सा पहले पहुंचे, फ्रिस्किंग होगी जो लेडीज और गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अलग अलग है, और महिलाएं और जो है पुरुष जो है दोनों अनुसार अपने करेंगे. तो वो एक समय उसमें अधिक समय, मेरे ख्याल से पहले भी होता रहा है, कोई नई चीज नहीं है वो, तो वो अपने समय से पहले जाए थोड़ा सा 5 मिनट पहले, ताकि वो खुद सेटल रहे मेंटली, वो अपने आप को आत्मविश्वास जगा सके कि वहां ऐसा कुछ नहीं है अतिरिक्त हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सामान्य हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो उनके उनसे संबंधित नहीं है. और उनको वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो दिखाई भी नहीं देगा, वहां पर उनको एयरफोर्स नहीं दिखाई देगी, उनको एयरफोर्स के जहाज नहीं दिखाई देंगे, उनको सीआरपीएफ सीएसएफ नहीं दिखाई देंगे, उनको नॉर्मल एक गार्ड दिखाई देगा. तो हाँ, वो अपना आराम से जाएं जैसे कि पहले जाते रहे. और ठीक है कि ये एग्जामिनेशन उनको दोबारा देना पड़ रहा है, तो ये मान के जाएं कि शायद जैसे प्री बोर्ड होता है तो अब बोर्ड हो रहा है. ये अपने आपको एक आत्मविश्वास जगाने का तरीका है. मैं जानता हूं कि ये मानसिक तौर पर जो है बहुत जरूरी है अपने आपको स्ट्रांग करना. अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो समय बिताना, समय जब एग्जामिनेशन देते हैं, और उस प्रेशर में आप गलती और करेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसमें आपको खमेजा ज्यादा बचना पड़ेगा. तो थोड़ा सा आप अपने आपको ठंडा रखिए, और एग्जामिनेशन के कम अज कम 1 घंटे पहले कुछ भी बात नहीं करिए एग्जामिनेशन की. आप पानी पीजिए, जोक्स क्रैक करिए, गाना गाइए, और आप मस्त रहिए, ताकि आप बिल्कुल जाएं तो स्वस्थ मन से एग्जामिनेशन हॉल में जाएं. क्योंकि मैं तो यही टिप्स फॉलो करते रहा हूं हमेशा, कि जब भी गया हूं मैं तो हमेशा अपने आप को लाइट करके रखा हूं, और ताकि एग्जामिनेशन में जाएं तो मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकूं. क्योंकि आप अगर तनाव में जाएंगे, कहा जाता है ऑपरेशंस में हमें भी कहते हैं कि ऑपरेशन विच बिगिंस विद टेंशन फिनिश विद स्ट्रेस ओनली, तो बेहतर है कि आप हल्के में से जाएं, और जो होगा जरूर अच्छा होगा.
0: बिल्कुल, और विवेक जी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कामयाब जो दुनिया में बहुत कामयाब लोग हैं वो सिर्फ नीट और जेई करके ही कामयाब नहीं हुए, रास्ते बहुत सारे होते हैं, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. लेकिन फिर भी शिखा जी देखिए, तैयारी बहुत है, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, परिवार की उम्मीदें होती हैं, बच्चों की उम्मीदें होती हैं. क्या टिप्स देंगी, लास्ट मिनट प्रिपरेशन रिविजन्स किस तरह की होनी चाहिए बच्चों की?
2: लास्ट मिनट में तो यही होता है कि जितना आपने साल भर में पढ़ा है उसको बिल्कुल, जो चीज़ आपको लगता है कि आपको नहीं आती है, आई एम श्योर कि हर बच्चा जो है जब पढ़ता है तो अंडरलाइन करता है, फिर जो उसको नहीं आता है उसको हाईलाइट करता है. तो लास्ट मोमेंट पे बस अपना हाईलाइटेड पोर्शन देखिए, अपने सारे बस क्वेश्चन, जैसे अब आपके सारे फॉर्मूलाज होते हैं उनको रिवाइज करिए. और इसमें एक मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि लास्ट मिनट पे क्या होता है, मैं बहुत बार ये बिलीव करती हूँ कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है. तो लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप 1 घंटे में अपने सारे फॉर्मूलाज और सब कुछ जाने से पहले रिवाइज करते हैं तो वो आपके दिमाग में बने रहते हैं. पर उसको एक खुले मन से करिए, कि ये नहीं कि अपने ऊपर कोई प्रेशर आप करिए. तो अगर आप इस तरह से जाएंगे, और देखिए बच्चों की जो चेकिंग है वो तो हमेशा ही होती है, तो उसमें आपको कोई इतना नहीं सोचने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. वो जैसे सिर्फ इन पर जो इम्परसोनिफिकेशन कर देते हैं बच्चे, उनको पकड़ने के लिए होती है. तो आप बिल्कुल उससे जाइए कि बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा. एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, कि आप सब लोग जो भी इसको डिजर्व करते हैं वो इसमें अच्छे से पास हों और हमारे देश के अच्छे डॉक्टर बने.
0: बिल्कुल विवेक जी, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी मेजर्स, जितने भी अभी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, फुल प्रूफ मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, इसके अलावा क्या कुछ चेंज इस बार हो सकता है?
3: देखिए, मुझे लगता है कि एनटीए पे जैसे देश का शीर्ष नेतृत्व जो है वो खुद नजर रखे हुए है, क्योंकि बहुत अब इम्पोर्टेंट हो गया, पब्लिक पूरा इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि एनटीए पे पहले भी उन्होंने रिलाई करके गलती करी है, अभी भी मुझे लगता है एक एक माइक्रो मैनेजमेंट जो होता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि एनटीए ने 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट में यही एडमिट किया था कि हम तो लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब आप जब लाइव मॉनिटरिंग करते हैं तो हजारीबाग के एक सेंटर से लोग निकाल के ले गए पेपर, तो आपको पता ही नहीं चला, आप तो लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे तो आपको कैमरे में नहीं दिखा। तो देखिए उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि वो एनटीए जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रिलायबल नहीं रहा है। मुझे लगता है एक एक चीजें जो है, चेकलिस्ट जो है, वो गवर्नमेंट के अपने टॉप ऑफिशियल से खुद उसमें नजर रखनी चाहिए। और बहुत छोटे छोटे इसमें लूप होल्स हैं, जो कि के राधाकृष्णन कमेटी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, अगर उसको पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करें तो अभी भी चार दिन है, ये इंश्योर किया जा सकता है कि सिर्फ इस बड़ी बड़ी चीजों की नहीं बात है कि आप एयरफोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं। क्योंकि देखिए समझने की कोशिश करिए, जो ये एग्जाम है ये एकेडमिक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ये किसी देश के बीच में लड़ाई नहीं कि एयरफोर्स जो है वो इन्वॉल्व होकर उन चीजों को समझ सकता है। तो वो नेटिग्रिटी जो है, जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो इनपुट दे सकते हैं, जैसे मैं 2 साल से लगातार गवर्नमेंट एजेंसीज को इनपुट दे रहा हूँ लगातार बिहाइंड द सीन्स, तो वो जो नेटिग्रिटीज होती है कहाँ पे कैसे चीजें मैनेज होती है। जैसे एक छोटी सी मैं बताऊं आपको, जो ये एग्जाम 3 मई को हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों के पास ये ऑफर आया था कि आप एग्जाम सेंटर पे आ जाइए, 2 बजे का ये जो एग्जाम पेपर है हम आपको 2 घंटे पहले दे देंगे, उसके एवज में आपको इतने पैसे देने हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिसपे बैठ के एनटीए को चेकलिस्ट बना के गवर्नमेंट को सीधी नजर रखने की जरूरत है जहां पे गड़बड़ हो सकती है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बच्चों को रिलैक्स करने के लिए, देखिए देश के जो सबसे बड़े इस समय सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, देश के जो पहले बिलियनेयर डॉक्टर हैं, वो नीट के एग्जाम में उन्होंने टॉप नहीं किया था, वो किसी एम्स के पास आउट नहीं है। डॉक्टर नरेश त्रेहान इज द फर्स्ट बिलियनेयर डॉक्टर ऑफ दिस कंट्री एंड ही इज नॉट अ पास आउट ऑफ एम्स, ही इज अ पास आउट ऑफ केजीएमयू। तो ये अपने आप में रिलैक्सिंग होना चाहिए कि आपको कोई लड़ाई जीतने नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देने जाना है। और आपको खुश इस बात पे होना चाहिए कि जो रन बनाने के लिए पहले आपको 20 ओवर मिले थे, अब तो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं 10 ओवर, तो आपको उतने ही रन बनाने के लिए 30 ओवर मिल रहे हैं। हाँ। तो आपको तो खुश होकर जाना चाहिए कि आप तो बना ही देंगे डेफिनेटली।
0: इसी पॉजिटिव नोट के साथ तमाम जो परीक्षार्थी हैं, हम गुड न्यूज टुडे उन सभी को ऑल द बेस्ट कहता है। खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और रिलैक्स होकर परीक्षा केंद्रों पर जाइए। ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें
9: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
3: I have no idea how this election is going to play out,
2: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। देखिए, कुछ महीने पहले अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से दूर हुए, अब म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भी उसी राह पर चल पड़े। अब सवाल ये है कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है, क्यों एक के बाद एक सितारे काम से ब्रेक ले रहे हैं और ये ब्रेक इतना जरूरी है, इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे।
3: नमस्कार, मैं श्री गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आगे बात मानसून की करेंगे, जिसकी रफ्तार अचानक से सुस्त पड़ गई है, तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक कैसे हो रहा है राहत की बूंदों का इंतजार, और काशी में रागों के जरिए कैसे दिया जा रहा है बादलों को न्योता, इसकी तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे आपको।
4: बिल्कुल, देखिए बात मौसम की होगी, बात एंटरटेनमेंट की होगी, और आगे बात मेसी के उस जादू की करेंगे जिससे दुनिया सलाम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन इस मैच की असल कहानी तो मेसी ने लिख दी है। तो कैसे एक बार फिर खुद फुटबॉल के जादूगर बनकर सामने आए हैं मेसी, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: केंद्र विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन के पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, आस्था का उमड़ा जनसैलाब। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि, प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम, करीब 1768 ईस्वी की है दुर्लभ पांडुलिपि। गांदरबल में 19 जून से शुरू होगा माता खीर भवानी का मेला, भव्य अंदाज में की जा रही तैयारियां, कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, 3 युद्धपोत INS दूनागिरी, अग्रय और संशोधक 21 जून को एक साथ कोलकाता में किए जाएंगे कमीशन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी की पहली हैट्रिक, अब तक लगा चुके हैं 11 इंटरनेशनल हैट्रिक, छठा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले प्लेयर बने।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
2: तो चाय पर चर्चा में फिलहाल एक ब्रेक यही तो चर्चा हो रही है,
3: ब्रेक का दौर चल रहा है,
2: ब्रेक का दौर चल रहा है,
3: एवरीबॉडी नीड्स ब्रेक,
4: एवरीबॉडी नीड्स अ ब्रेक। और अब खबर क्या है ये भी बता दीजिए।
2: नहीं नहीं, खबर नहीं, ब्रेक आप बताइए कितना जरूरी होता है।
4: अब ब्रेक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैसे अगर खबर के लिहाज से जो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इतना बदल गया है ना आजकल, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया थे उससे हटकर जब से इंटरनेट आया है और हर कोई इंसान इंटरनेट पर आ गया है, तो उसकी रीच इतनी ज्यादा है। मैंने कई रैंडम रील्स देखी हैं जिसपे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने शगुफ्ता रिप्लाई किया है, यानी आपकी रीच लोगों से डायरेक्ट हो गई है। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया में क्रिएटिव फ्रीडम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स बेटर टू वॉक आउट और अपना कुछ शुरू करना ज्यादा बेहतर होगा, और इसी को ब्रेक कहेंगे।
2: नहीं, ब्रेक तो हर किसी के लिए जरूरी होता है जो कि चर्चा कर रहे थे। वैसे आपने खबर बताई दी है तो आगे बढ़ जाते हैं हम। बॉलीवुड में ब्रेक का दौर चल रहा है, कुछ महीने पहले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से खुद को अलग किया था, और अब 2 दिन पहले खबर ये आई कि म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने भी ब्रेक लिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में ऐसी कई बातें लिखी हैं जो लोगों को बहुत हैरान कर रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी थकान का जिक्र किया है, डेडलाइन के प्रेशर की बात की है, खुद के सपने पूरे करने का जिक्र किया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ब्रेक जरूरी है कितना जरूरी है।
3: बिल्कुल, देखिए प्रीतम का ये फैसला इसलिए भी उनके फैंस को हैरान कर रहा है क्योंकि प्रीतम अपने करियर के पीक पर हैं। ऐसे में उनकी पोस्ट के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रीतम अब बिल्कुल नई राह पर निकलने वाले हैं। कहने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रीतम का ये कदम बॉलीवुड में बदल रहे उस पैटर्न की वानगी है जहां सितारे किसी और की नहीं खुद की सुनना चाहते हैं और खुद के बॉस बनना चाहते हैं।

जन्नम एरिया के कसक हो, केसरिया का जुनून हो, या फिर कहीं तो होगी वो की तलाश। पिछले डेढ़ दशक में बॉलीवुड के संगीत प्रेमियों के दिलों पर जिस जोड़ी ने सबसे ज्यादा राज किया वो रही संगीतकार प्रीतम और गायक अरिजीत सिंह की जोड़ी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के बीच एक नया ट्रेंड जन्म ले रहा है, अपना बॉस खुद बनने का। पहले अरिजीत सिंह ने फिल्मों के लिए नए गाने रिकॉर्ड करने से दूरी बनाने का फैसला किया और अब प्रीतम की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चा छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि प्रीतम बॉलीवुड छोड़ रहे हैं या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्री के बड़े सितारे अब तयशुदा ढांचे से बाहर निकलकर अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं। अपने जन्मदिन पर प्रीतम ने जो लिखा उससे तो यही लग रहा है खुद की शर्तों पर खुद का बॉस बनने का नया ट्रेंड चल पड़ा है। ये बात प्रीतम की पोस्ट से भी जाहिर होती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, अब समय आ गया है उन चीजों को पूरा करने का जो सालों से छूटती रही हैं। उन्होंने मेन स्ट्रीम को शानदार सफर बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे उन रास्तों पर चलना चाहते हैं जिन पर कम लोग चले हैं। प्रीतम की पोस्ट के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये सिर्फ एक ब्रेक है या फिर रचनात्मक आजादी की तलाश है। दरअसल ये सिर्फ प्रीतम की कहानी नहीं है, पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े नाम पारंपरिक सिस्टम से बाहर निकलकर अपनी पहचान और अपने प्लेटफॉर्म बनाने में जुटे हैं। कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक बना रहा है तो कोई अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहा है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधे दर्शकों तक पहुंच रहा है। यानी अब कलाकार सिर्फ किसी फिल्म स्टूडियो या म्यूजिक लेबल का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते, वे कंटेंट के मालिक भी बनना चाहते हैं और फैसलों के भी। जानकारों का कहना है कि डिजिटल जमाने ने कलाकारों को वो ताकत दी है जो पहले कभी नहीं थी। अब एक गाना रिलीज करने के लिए फिल्म

0: श्रेक एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है तो एक्साइटमेंट आपकी भी बढ़ गई होगी। दरअसल मेकर्स ने श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज किया है जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।
1: शहर फादर फादर अवे के सफर पर निकले।
2: ओ तेरे, ये सच में हो रहा है, हाईला ये हो रहा है, इसका मतलब समझाओ, हुलिया बदलना होगा।
3: एक बार फिर से दर्शकों को हंसाने आ रहे हैं श्रेक, फियोना और डंकी।
4: स्नोमैन को बताना चाहोगे?
5: जल्दी करो श्रेक,
6: तुमसे तो इतना भी नहीं हो सकता, अब क्या कहूँ?
2: मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ बाबू।
3: करीब 17 साल बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है। श्रेक 5 का फैंस को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को इंतजार भी लंबा करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है।
1: शहर फादर फादर अवे के सफर पर।
3: ट्रेलर की शुरुआत 2001 वाली पहली श्रेक की कहानी से होती है, लेकिन तभी डंकी बीच में आकर ट्रेलर में नया ट्विस्ट दे देता है।
4: नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा।
2: तो इसका मतलब श्रेक और डंकी करने वाले हैं कुछ और।
6: नहीं, कहना भी मत।
2: दो पक्के दो।
3: डंकी के अंदाज से साफ है कि इस बार श्रेक की कहानी बीच में आकर ट्रेलर में नया ट्विस्ट दे देता है।
4: नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा।
2: तो इसका मतलब श्रेक और डंकी करने वाले हैं कुछ और।
6: नहीं, कहना भी मत।
2: दो पक्के दो।
3: डंकी के अंदाज से साफ है कि इस बार श्रेक की कहानी पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।
2: रोमांस पर।
4: स्नोमैन को बताना चाहोगे?
5: जल्दी करो श्रेक।
3: श्रेक 5 का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कहानी एक हैरत अंगेज सफर से शुरू हो रही है। श्रेक, फियोना और डंकी एक बार फिर से जादुई दुनिया की सैर पर निकलते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात दानव और डरावने स्नोमैन से होती है। ये स्नोमैन फ्रोजन फिल्म के ओलाफ की मजेदार पिरोड़ी जैसा लगता है। श्रेक 5 में फैंस का पसंदीदा किरदार गिंगी भी वापस आ गया है। ट्रेलर के अंत में श्रेक, फियोना, उनके बच्चे और डंकी एक जेल में बंद नजर आते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी डंकी गाना गाने लगता है जिससे श्रेक परेशान हो जाता है, और यही ये ट्रेलर दर्शकों के मन में तमाम सवाल उठाते हुए खत्म हो जाता है।
2: दो पक्के दो।
6: नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा।
3: श्रेक 5 का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये फिल्म कॉमेडी, इमोशंस और एडवेंचर का जबरदस्त डोज लेकर आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन कॉनराड वर्नन और वॉल्ट डोरन ने किया है। ये दोनों मशहूर डायरेक्टर पहले भी श्रेक फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं। श्रेक की दीवानगी पूरी दुनिया में रही है, यही वजह है कि ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए इस फिल्म को 30 से ज्यादा भाषाओं में डबिंग के साथ रिलीज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अध्यात्म और भक्ति की नगरी काशी को अब नई पहचान मिलने जा रही है। घाटों की नगरी काशी विश्वनाथ धाम से अब क्रिकेट के रोमांच का नाता भी जुड़ने वाला है। वाराणसी में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से काशी, गंगा और शिव की थीम पर आधारित होगा।
0: स्टेडियम का करीब 92% निर्माण काम पूरा हो चुका है। यह स्टेडियम यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। कहा जा रहा है कि स्टेडियम आने वाले 2 से 3 महीनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और 2027 से यहां अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन भी किया जा सकेगा।
8: पूर्वांचल का पहला और उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी में लगभग 90% से ज़्यादा बनकर तैयार हो गया है। और ख़ास बात यह है, ये BCCI का देश का अपना पहला क्रिकेट स्टेडियम है जो लगभग 31 एकड़ के भूभाग में लगभग 451 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है और पूरी तरह से शिव, काशी और गंगा के थीम पर इसको तैयार किया जा रहा है। सबसे खूबसूरत इसका फ्लड लाइट है जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल नुमा है, और साथ ही साथ जो ठीक हमारे सामने जो लॉन्च है वो डमरू की आकृति में तैयार किया जा रहा है। तो वहीं जो सीढ़ियां हैं, जो ऑडिटोरियम है जिसमें 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, वे अर्धचंद्राकार रूप में बनाया जा रहा है। तो प्रवेश द्वार है वे बिलुपत्र की आकृति में उकेरा जा रहा है और अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास लेवल पे अत्याधुनिक तकनीक

0: से इस स्टेडियम का निर्माण हो रहा है 451 करोड़ की लागत लगाकर। खास बात यह भी कहा जा रहा है कि महज आधी घंटे में बारिश का पानी यह स्टेडियम निकाल देगा, जिससे बारिश की वजह से क्रिकेट का खेल रोकना भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत जल्द ही इस साल के अंत तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका काम पूरा हो जाएगा। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका शिलान्यास किया था। माना जा रहा है कि जल्द ये क्रिकेट स्टेडियम मिलने वाला है, जिससे न केवल काशी बल्कि पूर्वांचल के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और माना जा रहा है उनके व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि होने वाली है। तो बहुत बड़ी सौगात वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को वाराणसी का गंजारी स्टेडियम के रूप में मिलने वाला है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको स्लोवाकिया लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालिया दौरे पर थे। यहां भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की अनूठी झलक देखने को मिली। पीएम का यह दौरा केवल कूटनीतिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत और स्लोवाकिया के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी नई मजबूती देने वाला साबित हुआ।
2: बिल्कुल, देखिए इस टूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जाने माने स्लोवाक विद्वान और रॉबर्ट ग्राफिक के साथ भी मुलाकात की। रॉबर्ट ग्राफिक ने भारतीय उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया है। उनके इस काम ने भारतीय ज्ञान परंपरा को यूरोप की नई पीढ़ी तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। देखिए रिपोर्ट।

0: सात समंदर पार भारतीय संस्कृति की इस गूंज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। स्लोवाकिया दौरे में जब प्रधानमंत्री का स्वागत खास अंदाज में किया गया तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक तालमेल का अद्भुत नजारा दिखा। लेकिन स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति की झलक सिर्फ इन खूबसूरत तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। स्लोवाकिया एकेडमी ऑफ साइंस के डायरेक्टर रॉबर्ट ग्रैफ्रिक ने पौराणिक भारतीय ग्रंथों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद करके भारतीय संस्कृति के साथ स्लोवाकिया के रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। रॉबर्ट ग्रैफ्रिक ने भारतीय संस्कृति के दर्शन को प्रस्तुत करने वाले उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया है। इस काम को पूरा करने में उन्हें 5 साल लग गए।
1: I have been interested in India and in Indian languages and literatures since my university studies. And of course, Upanishads are one of the most important books in Indian, in Sanskrit literature. And since we didn't have a Slovak translation of the text, so I decided to translate it because I was thinking that it's really... such an important text that it should be also present in the Slovak language.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के मन की बात के एक कार्यक्रम में भी रॉबर्ट ग्रैफ्रिक का जिक्र किया था। स्लोवाकिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने ग्रैफ्रिक से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए रॉबर्ट ग्रैफ्रिक के काम की तारीफ भी की। रॉबर्ट ग्रैफ्रिक की कोशिशों ने दोनों मुल्कों के सांस्कृतिक तालमेल का नया अध्याय लिखने के साथ साथ भारतीय दर्शन की गहराइयों और महत्व का प्रमाण भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: ऐसा मौसम कब देखने को मिलेगा हमें?
3: वही तो बड़ा सवाल है, सबके जहन में यही सवाल है ना। मेरी वाली चाय तभी आएगी जब ऐसा मौसम होगा।
4: इंतजार कर रही हूँ मैं भी रोज, कब आएगा? दिल्ली एनसीआर में कब दस्तक देने वाला है?
2: अभी तो वो WDA आए जा रहे हैं,
3: बट वो आए तो अच्छे से तो आए,
2: हवा का झोंका आता है और फिर चला जाता है। लेकिन सही मायनों में हमें मॉनसून का शिद्दत से इंतजार हो रहा है, जिसकी चाल फिलहाल कहा तो जा रहा है कि रफ्तार के साथ बढ़ा था आगे, लेकिन एक तरफ जहां पर मॉनसून की रफ्तार थोड़ी सी थम गई है, वहीं बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि हम, हमारा स्टूडियो दिल्ली एनसीआर। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वैसे लोगों की निगाहें आसमान पर ही टिकी हुई हैं और हर किसी को मॉनसून के आने का इंतजार है।
5: उधर धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में बारिश के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ संगीत प्रेमी पारंपरिक मेघराग का गायन कर इंद्रदेव से वर्षा की गुहार लगा रहे हैं। मान्यता है कि मेघराग के स्वर प्रकृति को प्रसन्न कर बारिश का संदेश लेकर आते हैं।

0: आवाज देती ये काशी की साधना है। अस्सी घाट पर शहनाई की ये धुन बादलों को बुला रही है। प्रकृति से काशी के संवाद का ये अनूठा तरीका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्न हैं, जो अस्सी घाट पर राग मेघ से बारिश को काशी आने का न्योता दे रहे हैं।
1: विगत 18-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करता चला रहा हूँ, और जब कहीं बारिश नहीं होती है और सब जगह हो भी जाए तो काशी में नहीं होता तो मुझे तकलीफ होता है, और काशी में इस बार बहुत तगड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत विलम्ब हो गया है, और जीव जंतु इंसान देख ही रहे आप गर्मी से परेशान है, पंछियाँ भी परेशान हैं, मर रही हैं, तो इसलिए इनके जीवोद्धार के लिए और माँ गंगा के श्री चरणों में आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, और उनको जो हमारे पास अंग वस्त्र वगैरह रहता है माँ को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती माला फूल से पूजा पाठ करता हूँ। फिर भगवान भास्कर भगवान इंद्र को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं अपना राग मेघ प्रस्तुत करता हूँ।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ का अपना खास महत्व है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है और सदियों से इसे मेघों और बारिश का राग कहा जाता रहा है। कहते हैं कि राग मेघ प्रकृति के साथ संगीत का अनूठा साक्षात्कार है। यही वजह है कि जब काशी कड़ी धूप में तप रही होती है तो ये राग बादलों को बुलाकर उस तपस्या को पूरा करता है।
1: इसलिए मैं गंगा मैया के चरणों में ही अपने आंचल में उनके मैं बजाता हूँ और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य करता हूँ, और भगवान इंद्र निश्चय, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माँ गंगा का आशीर्वाद है कि 36 घंटे में बढ़िया बारिश होगा। ये रीवा घाट है, रिमझिम फुहारों के साथ बारिश होगा, बढ़िया बारिश होगा, और काशी को राहत मिलेगा, गर्मी से निजात मिलेगा।
0: काशी में गूंजे इन सुरों ने भले बादलों को द्योता भेज दिया हो, लेकिन ये साधना सभी के लिए है। उत्तर भारत तक पहुंचने में मॉनसून जिस तरह वक्त ले रहा है उसने हर किसी को बेचैन कर रखा है। उम्मीद यही है कि काशी में गूंजा ये राग मेघ लोगों की मुराद पूरी करेगा और मॉनसून जल्द काशी समेत समूचे उत्तर भारत में राहत बनकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: वैसे इन तस्वीरों को देख के ही मैंने चाय का कप भरा है, क्योंकि जहां जहां बारिश हो रही है यकीन मानो बूंदें गिरती हैं और आपका मन चाय के लिए ललचा जाता है।
3: चाय कैसी है ये तो बता दो।
2: चाय वैसे आज फॉर अ चेंज इट इज वेरी गुड, आपको ट्राई करनी चाहिए। दोनों तोड़े वर्गी तो नहीं बना सकती है पर फिर भी
4: यार मुझे एक बात बताओ कि मौसम जो है आंख में चोली क्यों खेल रहा है? बारिश आती है कपड़े सूखते हैं, कपड़े वापस आ जाते हैं, फिर धूप आ जाती है।
3: एक शख्स है जो बोलता था कि गर्मी नहीं आ रही, गर्मी नहीं आ
4: रही। कौन है वो शख्स? कौन था वो?
3: है ना, वो शख्स जानता है वो कौन है ना। फिर बारिश नहीं आ रही, फिर बारिश नहीं आ रही,
4: और अब बारिश,
3: अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा,
4: अब मॉनसून कब
3: आएगा?
2: प्री मॉनसून नहीं आ रहा, प्री मॉनसून आने चाहिए। पर एक चीज अच्छी हुई है, वो देखा आपने कि सुबह सुबह एटलीस्ट 9-10 बजे तक मौसम बड़ा खुशगवार सा रहता है। शाम के टाइम में एटलीस्ट आप बाहर टहल सकते हो, वॉक कर सकते हो। दिन के टाइम थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है। चलो इतना शुक्र है कि आपको अगर याद हो नौतपा कितना बुरा हाल था, कम से कम उससे तो बेटर ही लग रहा है मौसम।
4: बिल्कुल सही बात है, तो मौसम आंख में चोली जरूर खेल रहा है और हमें तो इंतजार ही रहता है, चाहे बारिश का और अब मानसून का इंतजार है। खैर देखिए, बात अब कर लेते हैं हिंदुस्तान की क्रिएटिविटी की, जिसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप जो है वो चर्चा में बना हुआ है। पहली नजर में इसे देखने वाला व्यक्ति इसे सड़क किनारे खड़ी एक सचमुच की बस समझ बैठता है, शायद आपको भी ऐसे ही लगेगा, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि ये दरअसल यात्रियों के लिए बनाया गया एक आधुनिक बस शेल्टर है।
2: बहुत ही खूबसूरत बस शेल्टर है, देखिए सीसीटीवी भी उसमें लगा हुआ है। बस का आकार और डिजाइन बिल्कुल उसी तरीके से तैयार किया गया है इस शेल्टर को। अपनी अनूठी बनावट की वजह से ये चर्चा में है, और यकीन मानिए न सिर्फ वहां मुसाफिर बल्कि पर्यटकों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर तो भाई खूब वायरल है ये वीडियो। खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, बैठने का सिस्टम है, बिल्कुल वैसा बनाया गया जैसे कि एक बस होती है। तो लोगों को फिलहाल बस स्टॉप वाला ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है।
3: और चलिए इसके साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बाघ के उस हमले की तस्वीरें दिखाएंगे जिसने नाव पर सवार पर्यटकों के होश उड़ा दिए।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go. Seemed perfectly safe until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
2: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
3: से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: हरिद्वार में शिव भक्ति का बना नया केंद्र, विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन के पारित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, आस्था का उमड़ा सैलाब। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि, प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम, करीब 1768 ईस्वी की है दुर्लभ पांडुलिपि। गांदरबल में 19 जून से शुरू होगा माता खीर भवानी मेला, भव्य अंदाज में की जा रही है तैयारियां, कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र।
4: और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, जहां बोटिंग के दौरान पर्यटक एक रोमांचक पल के गवाह बने। दरअसल जब कुछ सैलानी बोटिंग का मजा ले रहे थे, तभी एक बाघ पानी में उतर गया और तेजी से बोट की तरफ बढ़ा, हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वो लौट भी गया।
1: इस तरह बाघ को आगे बढ़ता देख सभी लोग काफी सहम गए, लेकिन बाघ के वापस लौटने के बाद सबने राहत की सांस ली। अब घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वन्य जीव प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

0: जंगल सफारी के दौरान अचानक अगर बाघ दिख जाए तो पर्यटकों के रोमांच की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन वही बाघ अगर आपको देखकर आपकी ओर दौड़ लगा दे तो जाहिर सी बात है खौफ की कोई सीमा नहीं होगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शारदा डैम में बोटिंग कर रहे सैलानियों के साथ कुछ ऐसा ही मंजर घटा, जब एक बाघ पानी में उतरकर अचानक बोटिंग कर रहे सैलानियों की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी।
1: आज देखा टाइगर, आज देख लिया टाइगर, और टाइगर भी ऐसा देगा हमला करते हुए।
0: जानकारी के मुताबिक शेरपुर कस्बे के निवासी सलमान खान अपने परिवार के साथ बीते शुक्रवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे थे। सफारी करने के बाद वो परिवार समेत चूका क्षेत्र में मौजूदा शारदा सागर डैम में बोटिंग का लुत्फ उठाने पहुंचे। बोटिंग करते समय उन लोगों की नजर डैम के किनारे मौजूद टहलते हुए एक बाघ पर पड़ी। सफारी के दौरान बाघ का दिखना किस्मत की बात होती है, फिर क्या था? सलमान और उनके परिवार ने अपने अपने मोबाइल कैमरों से बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बाघ पानी में उतरकर उनकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा, जिससे सभी लोग घबरा गए। बच्चों की चीखें निकली, फिर क्या था? सलमान और उनके परिवार ने अपने अपने मोबाइल कैमरों से बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बाघ पानी में उतरकर उनकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा, जिससे सभी लोग घबरा गए। बच्चों की चीखें निकल गई।
2: बोटिंग के दौरान जब हम पहुंचे तो हमारी नजर एक पानी में बैठे हुए बाघ पर पड़ी, तो एक ऐसा दृश्य था जिसे हम लोग देखकर, जिसके लिए जाना पहचाना जाता है टाइगर रिजर्व, देश विदेशों में जिसकी पहचान है, जिसकी खूबसूरती है टाइगर के लिए, तो हम लोग वो नज़ारे को देख ही रहे थे, तो अचानक एक टाइगर वो हमारी तरफ दौड़ा, जिसे देखकर थोड़ा सा भयभीत हुए बच्चे, लेकिन उसका दृश्य नज़ारा बहुत अच्छे के लिए, तो हम लोग वो नज़ारे को देख ही रहे थे, तो अचानक एक टाइगर वो हमारी तरफ दौड़ा, जिसे देखकर थोड़ा सा भयभीत हुए बच्चे, लेकिन उसका दृश्य नज़ारा बहुत अच्छे, कई दिन बीत गए हैं लेकिन बच्चों के जहन से और हमारे जहन से बिल्कुल भी नहीं उतर पा रहा है।
0: एक तरफ बाघ का खतरा था, दूसरी ओर डैम का गहरा पानी, मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो गई। हालांकि कुछ दूर आने के बाद बाघ वापस लौट गया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन ये पूरी घटना बाघ का वीडियो बनाने की वजह से कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों का दिखना सामान्य बात है, अक्सर पर्यटकों को घूमते टहलते बाघ दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बोटिंग के दौरान किसी बाघ का नाव के करीब आना काफी दुर्लभ और रोमांचक घटना मानी जा रही है। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़।
3: ये रोमांच की बात निकली है तो आपको फीफा वर्ल्ड कप के बढ़ते क्रेज की तस्वीरें दिखा देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ का जुनून अब सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों, पार्क्स में, यहां तक कि चिड़ियाघर तक पहुंच चुका है, और अपनी अपनी टीमों के समर्थन में अनोखे तरीके से कुछ जानवर भी अनजाने में इस खेल के सुपरस्टार्स बन गए हैं।
4: यही तो है इसकी खूबी। देखिए, कहीं एक बतख लोगों की पसंदीदा मैस्कॉट बन गई है, तो कहीं शेरनियों ने मैचों के नतीजों को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने सभी को हैरान कर दिया है।
5: वर्ल्ड कप का जुनून इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप का हर मैच अहम है और पूरी दुनिया की नजर फुटबॉल के विश्व विजेता पर टिकी है, लेकिन फुटबॉल का ये जोश सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित नहीं रहा। ये तस्वीरें मेक्सिको सिटी की हैं, जहां की सड़कों पर इन दिनों एक खास सितारे की चर्चा है। नाम है मर्ले। ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक पालतू बतख है जो मेक्सिको की फुटबॉल जर्सी पहनकर लोगों के बीच घूमता है। मर्लिन जहां भी जाता है लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इस बतख के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मर्लिन को अब वर्ल्ड कप का अनऑफिशियल मैस्कॉट कहा जाने लगा है। दिलचस्प बात यह है कि मर्लिन ने एक खेल के दौरान अपनी चोट से मेक्सिको का झंडा चुन लिया और देखते ही देखते वो फुटबॉल फैंस का चहेता बन गया। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि मर्लिन ने ये भविष्यवाणी मेक्सिको और साउथ कोरिया के बीच होने वाले मैच के लिए की, लेकिन सिर्फ मर्लिन ही नहीं, अमेरिका के डलास जू में रहने वाली शेरनियां भी इन दिनों सुर्खियों में है। इंग्लैंड और क्रोएशिया के मुकाबले से पहले चिड़ियाघर प्रशासन ने शेरनियों के सामने दोनों देशों के झंडों के पास खाना रखा। मकसद था ये देखना कि आखिर शेरनियां किस टीम को चुनती हैं, और नतीजा आया चौंकाने वाला। इंग्लैंड के प्रतीक चिन्ह पर तीन शेर बने होने के बावजूद शेरनियां सीधे क्रोएशिया वाले हिस्से में पहुंची और वहां रखा खाना खाने लगी, यानी शेरनियों ने विजेता क्रोएशिया को चुना। हालांकि जू प्रशासन का कहना है कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जानवरों को सक्रिय और स्वस्थ रखने की एक खास एक्टिविटी भी है। एक तरफ मेक्सिको की सड़कों पर बतख मर्लिन लोगों का दिल जीत रहा है, तो दूसरी तरफ डलास की शेरनियां फुटबॉल मैच की भविष्यवाणी कर रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इस रंग में इंसानों के साथ साथ जानवर भी पूरी तरह रंगे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना ने अपना खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत जीत के साथ कर दी है, और इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी एक बार फिर अर्जेंटीना के कप्तान और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने लिख दी है। देखिए, 38 साल के मेसी ने वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में अल्जीरिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि पूरे 3 गोल दागकर इतिहास रच दिया है। मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ 17वें, 60वें और 76वें मिनट में गोल दागे। मेसी के इस दमदार प्रदर्शन से अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के मुकाबले में अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच शानदार तरीके से उन्होंने जीत भी लिया। अल्जीरिया के खिलाफ मेसी जब मैदान पर उतरे तो अलग ही रिदम में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस मैच में ना सिर्फ गोल्स की हैट्रिक लगाकर रिकॉर्ड बनाया बल्कि इस मैच में और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो आपको बताते हैं। 38 साल के सुपरस्टार ने अल्जीरिया के खिलाफ अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। ये मेसी का लगातार 6ठा वर्ल्ड कप है।
6: लियोनेल मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की पहली हैट्रिक लगाई। मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, और साथ ही साथ ये मेसी के वर्ल्ड कप करियर की पहली हैट्रिक भी रही।
4: बिल्कुल, देखिए मेसी की हैट्रिक खास मौके पर आई है क्योंकि उन्होंने साल 2006 में 16 जून को ही फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेला था। ठीक 20 साल पहले मेसी ने सर्बिया और मोंटेनेग्रो के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप गोल भी किया था।
7: तो देखिए, इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप में अपने गोल्स की संख्या 16 कर ली है और जर्मनी के महान स्ट्राइक मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली। भले ही मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली हैट्रिक लगाई हो, लेकिन अपने इंटरनेशनल करियर में वो अब तक 11 हैट्रिक लगा चुके हैं।
6: एक और रिकॉर्ड मेसी के नाम के साथ ही जुड़ गया है, वो 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। अब तक ये कारनामा सिर्फ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम दर्ज था, और इस मुकाबले ने मेसी को एक और ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचा दिया। वो 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।
4: देखिए, मेसी अब तक अपने अलग अलग फुटबॉल क्लब्स और अर्जेंटीना के लिए अपने करियर में 911 गोल दाग चुके हैं। मेसी का इंटरनेशनल करियर साल 2005 में 18 साल की उम्र में शुरू हुआ था।
7: देखिए, उनसे ज्यादा मैच सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कुवैत के बदर अल मुतावा ने ही खेले हैं। और चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पॉप स्टार रिहाना का करोड़ों का गिफ्टेड ब्रेसलेट।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org.
10: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
11: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
12: पक रही होती हैं खबरें तो समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
4: वैसे लड़कियों को ना गिफ्ट्स बड़े पसंद होते हैं और कोई गिफ्ट मिलता है तो दे लाइक टू फ्लॉन्ट इट.
3: एग्जैक्टली राइट, अनडाउटेडली,
18: एब्सोल्युटली. गिफ्ट मिला है तो फ्लॉन्ट तो करेंगे,
4: फ्लॉन्ट तो करेंगे.
3: गोल्ड मिलना चाहिए.
4: हाँ, यहाँ पे डायमंड्स की बात हो रही है, पॉप स्टार रिहाना की बात हो रही है. देखिए, रीजन यही है कि उनके हाथ में दिखा है एक बेहद खास डायमंड टेनिस ब्रेसलेट. बताया जा रहा है कि ये ब्रेसलेट उन्हें मुकेश अंबानी परिवार की तरफ से गिफ्ट में मिला है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो रिहाना का, जिसमें वो अपने इसी स्टेटमेंट पीस को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई. इसी दौरान उन्होंने कैमरा के सामने अपना हाथ दिखाया और कलाई में पहना डायमंड ब्रेसलेट फ्लॉन्ट किया.
18: रिहाना ने खुद बताया कि ब्रेसलेट उन्हें भारत में अंबानी परिवार से मिला था. इस ब्रेसलेट की कीमत को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है. देखिए, इस डायमंड टेनिस ब्रेसलेट की कीमत करीब 2,20,00,000 रुपए आकी जा रही है. ब्रेसलेट के डिजाइन अपनी सादगी, क्लासिक लुक और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है. फिलहाल रिहाना का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उनके इस खास गिफ्ट की भी खूब चर्चा हो रही है.
3: छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं. चाय पर चर्चा जारी है.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
19: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
12: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नदियों वेटलैंड्स के संरक्षण का संदेश लेकर महाराष्ट्र के कलाकार इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। स्वप्निल ठाकुर, जिन्हें लोग नदीवाला और वन मैन बैंड के नाम से जानते हैं, अपने संगीत के जरिए पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहे हैं। उनकी खासियत ये है कि वो एक साथ 6 वाद्य यंत्र बजा लेते हैं और साथ ही प्राकृतिक संरक्षण का संदेश भी देते हैं। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात 5:00 चाय पर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
19: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: आत्मक ऊर्जा होने से घर में बीमारियां आ जाती हैं? क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से हर कार्य में असफलता मिलती है? क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा और कैसा होता है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, तर्पण के लिए भी उमड़ रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में शिव भक्ति का बना नया केंद्र, विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन के पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, आस्था का उमड़ा सैलाब। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि, प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम, करीब 1768 ईस्वी की है दुर्लभ पांडुलिपि। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, 3 युद्धपोत INS दूनागिरी, अग्रय और संशोधक 21 जून को एक साथ कोलकाता में किए जाएंगे कमीशन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी के नाम नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में लगाई पहली हैट्रिक, सबसे ज्यादा 16 गोल की रिकॉर्ड बराबरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बुलेटिन में ब्रेक लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं उस ब्रेक की जो मॉनसून ने इन दिनों ले रखा है। देखिए, मॉनसून ने देश में अपने तय समय के आसपास एंट्री मारी थी, फिर मॉनसून की राहों में ना जाने किससे मुलाकात हो गई। देखिए, हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी डरते थे, वही बात हो गई है। देखिए, मॉनसून का सारा टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया है। 4 जून को मॉनसून केरल को भिगोने पहुंचा था। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक उत्तर पश्चिम भारत की दहलीज तक पहुंच जाना था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मॉनसून जहां था वहीं का वहीं अटका हुआ है। दक्षिण और उत्तर पूर्व को भिगोने के बाद मॉनसून की रफ्तार पर मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के लिए मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। देखिए, लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत दे रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है। मॉनसून का इंतजार अभी भी सबको है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर भारत में मॉनसून कब दस्तक देने वाला है और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद, बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांघकर भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण की धरती गमक उठी।

0: अपने तय समय के आसपास जून की उंगली थाम मॉनसून के बादल आ पहुँचे थे। सो लगा कि अब बस बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तरबतर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी, लेकिन मानसूनी बादलों के पांव थम गए। तय रूटीन के हिसाब से मानसून को अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मानसून के बादल दक्षिण, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा तय करके वही ठिटक गए। ऐसा लगा मानो कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। 8 जून के बाद से मानसून देश के पश्चिमी तट के आसपास लगभग स्थिर है। मानसून के अटकने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बनने को माना जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जून का तीसरा हफ्ता आते आते मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से बादल लगभग गायब दिखे। आमतौर पर 15 जून तक भारत का बड़ा हिस्सा मानसूनी बादलों की मोटी चादर से ढका दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आई।
1: इस बीच भारत की चिंता इस बात की है कि मॉनसून कमजोर पड़ रहा है, उसकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है और जून के महीने में ही अब तक 64% कम बरसात हुई है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर मैं आपको ये कहूं कि मौसम विभाग पर ये जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, इनमें दिखाई दे रहा है कि मानो जैसे अरब सागर के पास पश्चिम भारत से बादल ही चोरी हो गए। अब ये देखिए पूरा इलाका, ये अरब सागर का इलाका है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगे बढ़ा है कि उसके बाद वो केरल होते हुए आगे जब बढ़ना चाहिए इसे कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, इन इलाकों में दरअसल इस समय बादलों का डेरा होना चाहिए, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि बादलों को मानो किसी ने चुरा लिया हो और फिर इस महाराष्ट्र के ऊपर होते हुए गुजरात तक आगे जाने के लिए यहां पर मानसून की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो गई है। बादलों का बिल्कुल नदारद हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन यह सिर्फ अरब सागर में नहीं, इन्हीं सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर मैं देखता हूं यहां जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और उसकी जो स्थिति आगे पश्चिम बंगाल की ओर जाने चाहिए, यहां पर भी बादलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है इन सैटेलाइट तस्वीरों में।
0: सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस बार मॉनसून के बादलों ने मुंह क्यों मोड़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में छुपा है। ऊपरी वायुमंडल में इस समय हवाओं की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने मॉनसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आमतौर पर पूर्व से बहने वाली हवाएं, जिन्हें ईस्टर्ली जेट कहा जाता है, हवा को ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, वो है पश्चिम से बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक गई है। यानी मॉनसून के बादलों के बीच इस वक्त एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, मॉनसून कैसे आगे बढ़ेगा। अभी के हालात में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों तक पहुंचकर भी बारिश में तब्दील नहीं हो पा रही। बादल बन रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, नमी आ रही है लेकिन बरस नहीं रही, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि मॉनसून गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी जो हालात हैं उसे मॉनसून का गायब होना नहीं बल्कि मॉनसून का पॉज होना माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मॉनसून कहीं गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ठहर गया है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिन हवाओं के पैटर्न ने बादलों को रोक रखा है वो पैटर्न कमजोर पड़ने जा रहा है, मतलब जैसे ही बाधा हटेगी मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।
1: ऐसे में मौसम विभाग को लगता है कि 20 जून के बाद अगर जब मौसम अपनी रफ्तार पकड़ेगा तब मॉनसून की रफ्तार बारिश लेकर के आएगी, और ऐसे में पश्चिम भारत, खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे में जहां आमतौर पर 9 से 11 जून के बीच बरसात होती थी, मॉनसून तट तक पहुंचता था, उसमें भी काफी देरी है, जो कि पहले 2019 और उसके पहले 2023

0: जमकर बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, अच्छी बात यह है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पिछले दिनों से प्री मानसून गतिविधियां दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून का असर देखने को मिल रहा है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी ही सही लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिली है। देखिए, मौसम विभाग भी इशारा कर रहा है कि मानसून का ब्रेक जल्द ही खत्म होने वाला है और उसी का संकेत है तेज हवाएं और गरज चमक के साथ अलग अलग जगहों पर हो रही ये बारिश। ये मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है, ये समझने वाली बात है। दरअसल प्री मानसून में होने वाली बारिश मानसूनी बारिश से अलग होती है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग आखिरकार कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मानसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मानसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न होता नहीं है। ये देश के दक्षिण पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले चली भी जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। देखिए, मानसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मानसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मानसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। देखिए, मानसून की बारिश कभी तेज होती है तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहता है। जबकि बात अगर हम प्री मानसून बारिश की करें तो प्री मानसून की बारिश बेहद तेज होती है। मानसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मानसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मानसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं देखने को मिलती हैं, जबकि प्री मानसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मानसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मानसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं।

0: मॉनसून के इंतजार और प्री मॉनसून की जोरदार बारिश के बीच ही एक पैटर्न लगातार बनता दिख रहा है। आजकल उत्तर भारत के कई जिलों में आंधी और तेज बारिश को लेकर फोन पर अपडेट आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं। मौसम बिगड़ने की चेतावनी लोगों की मोबाइल स्क्रीन्स पर अक्सर फ्लैश हो रही है, लेकिन इस अलर्ट और अपडेट के बाद कई बार ये हो रहा है कि वास्तव में बारिश होती ही नहीं है। क्या ये टेक्निकल मिसकैलकुलेशन है? मौसम बिगड़ने वाला है, इस प्रिडिक्शन के पैरामीटर्स आखिर क्या हैं? ये हमने जानने की कोशिश की मौसम विभाग से ही।
1: देखिए, विशेष रूप से मानसून आने से जो पहले का पीरियड होता है, इसमें खासकर पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें तेज मेघ गर्जन, तेज गस्टी विंड्स और लाइटनिंग के साथ में रेनफॉल होने की एक्टिविटी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो ऐसे में ये जो थंडरस्टॉर्म सिस्टम्स हैं, ये सामान्यतया शॉर्ट लिविंग फिनोमिना होती है, यानी कि पूरे दिन भर ऐसा वेदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव सिस्टम होता है। खासकर दोपहर और शाम के समय इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तो जो अलर्ट्स और जो समटाइम्स शॉर्ट रेंज के लिए जो पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं मौसम विभाग से, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिकली रडार, सैटेलाइट और न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शंस जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बेस्ड आधार पर ही दिए जा रहे हैं। और जो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि एक से दो घंटे के लिए, यानी ये शॉर्ट लिविंग फिनोमेना होती है, और कभी कभी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी इंटेंस भी थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ जो है ये देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो थंडरस्टॉर्म टाइप के जो सिस्टम्स हैं ये ज़रूर एक दो घंटे के होते हैं। हो सकता है कि दिन में पूरे दिन भर ऐसे सिस्टम आपको ना देखें, दिन में हो सकता है कि सामान्य वेदर रहे, लेकिन शाम के टाइम, दोपहर बाद या कभी कभी रात के समय में भी इस टाइप के कन्वेक्टिव सिस्टम्स डेवलप होते हैं, और ऐसे में सीवियर थंडरस्टॉर्म से बचाने के लिए ही जो IMD का जो गाइडलाइंस हैं या SOP बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलर्ट्स जारी किए जाते हैं।
0: तो देखिए, मानसून

इंतजार हम सभी को है और इस इंतजार के बीच काशी में बारिश के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ संगीत प्रेमी पारंपरिक मेघ राग का गायन कर इंद्रदेव से बरखा की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मान्यता है कि मेघ राग के सुर प्रकृति को प्रसन्न कर बारिश का संदेश लेकर आते हैं।

0: बादलों को आवाज देती ये काशी की साधना है। अस्सी घाट पर शहनाई की ये धुन बादलों को बुला रही है। प्रकृति से काशी के संवाद का ये अनूठा तरीका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्न हैं, जो अस्सी घाट पर राग मेघ से बारिश को काशी आने का न्योता दे रहे हैं।
1: विगत 18-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करता चला रहा हूँ, और जब कहीं बारिश नहीं होती है और सब जगह हो भी जाए तो काशी में नहीं होता तो मुझे तकलीफ होता है। और काशी में इस बार बहुत तगड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत विलंब हो गया है, और जीव जंतु इंसान देख ही रहे आप गर्मी से परेशान है, पंछियाँ भी परेशान हैं, मर रही हैं। तो इसलिए इनके जीवोद्धार के लिए और माँ गंगा के से चरणों में आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, और उनको जो हमारे पास अंग वस्त्र वगैरह रहता है माँ को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती माला फूल से पूजा पाठ करता हूँ। फिर भगवान भास्कर भगवान इंद्र को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं अपना राग मेघ प्रस्तुत करता हूँ।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ का अपना खास महत्व है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है और सदियों से इसे मेघों और बारिश का राग कहा जाता रहा है। कहते हैं कि राग मेघ प्रकृति के साथ संगीत का अनूठा साक्षात्कार है। यही वजह है कि जब काशी कड़ी धूप में तप रही होती है तो ये राग बादलों को बुलाकर उस तपस्या को पूरा करता है।
1: इसलिए मैं गंगा मैया के चरणों में ही अपने आंचल में उनके मैं बजाता हूँ और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य करता हूँ। और भगवान इंद्र निश्चय, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माँ गंगा का आशीर्वाद है कि 36 घंटे में बढ़िया बारिश होगा। ये रीवा घाट है, रिमझिम फुहारों के साथ बारिश होगा, बढ़िया बारिश होगा और काशी को राहत मिलेगा, गर्मी से निजात मिलेगा।
0: काशी में गूंजे इन सुरों ने भले बादलों को द्योता भेज दिया हो, लेकिन ये साधना सभी के लिए है। उत्तर भारत तक पहुंचने में मॉनसून जिस तरह वक्त ले रहा है उसने हर किसी को बेचैन कर रखा है। उम्मीद यही है कि काशी में गूंजा ये राग मेघ लोगों की मुराद पूरी करेगा और मॉनसून जल्द काशी समेत समूचे उत्तर भारत में राहत बनकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, वैसे तो बारिश का इंतजार पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ही बेसब्री से हो रहा है, लेकिन मुंबई की आंखें तो समझिए आसमान पर ही टिक गई हैं। दरअसल कायदे से 15 जून या उससे पहले ही मानसून को मुंबई पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब की मार मानसून दस्तक देने में कुछ ज्यादा ही वक्त ले रहा है। देखिए, खैर देर से ही सही, मानसून को आना तो है ही, सो इंतजार के साथ साथ तैयारियां भी चल रही हैं। मुंबई के वर्सोवा में मानसून की तैयारियों के बीच रेनकोट दान अभियान चलाया गया। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ भी इस अभियान में शामिल हुए। इस अभियान का मकसद जरूरतमंदों को रेनकोट दान करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। मुंबई की बारिश में ये रेनकोट काफी मददगार साबित होता है, और ये तो देखा ही गया है कि मुंबई में बारिश जब होती है तो सारी हदें तोड़कर होती है, कई कई दिनों तक मेघ बिना रुके बस बरसते ही रहते हैं। ऐसे में खासतौर से एशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए ये रेनकोट बड़े ही मददगार साबित हो सकते हैं।
3: ऊपर पंखा संभालना और तेरा बूम है।
2: तो देखिए, मानसून का इंतजार हम सभी को रहेगा। बहरहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो गुड न्यूज टुडे भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की लगातार अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को GNT पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बिहार के रोहतास लिए चलते हैं, जहां कैमूर की पहाड़ियों के बीच गुप्त धाम वाटरफॉल आपका स्वागत करने को तैयार है।

0: ऊंची नीची घुमावदार पथरीले पहाड़, गुफा के भीतर जलते हुए दिए और कुदरती सुंदरता में सिमटी अलौकिक आस्था। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिर्फ इतिहास और मैदानों का प्रदेश है, तो कैमूर की इन वादियों को देखिए। घने जंगलों के बीच गूंजती झरने की आवाज, चारों तरफ फैली हरियाली और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके भीतर खुद महादेव विराजमान है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास में मौजूद गुप्त धाम की हैं, जिसे गुप्तेश्वर धाम भी कहा जाता है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां प्रकृति का रोमांच भी है और महादेव की भक्ति का सुकून भी है। लेकिन इस पवित्र गुप्त धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस शीतल कुंड वॉटरफॉल का दीदार न कर ले। पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता ये वॉटरफॉल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। इस झरने का पानी गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतल कुंड कहा जाता है। रास्ते में पड़ने वाली सुगवा नदी और पहाड़ों के बीच बहते छोटे छोटे झरने इस पूरे ट्रैक को किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। रहस्यमय गुफा के लगभग 360 फीट अंदर जाने पर कुदरती तौर पर बना एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर सदियों से प्रकृति खुद पानी की बूंदों से अभिषेक कर रही है। प्रकृति और भक्ति के इस अद्भुत संगम तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, इसके बाद घने जंगलों से होते हुए छोटे छोटे कई झरनों को पार करते हुए लगभग कुछ ही किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो पूरा कैमूर पर्वत बोल बम के नारों से गूंज रहा हो। लोग गंगा जल लेकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बिहार का ये गुप्त धाम आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भी भागीदार बने। देखिए, आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाएं कैमरा और बनाएं ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play tune in and start listening.
5: मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन तर्पण।
1: SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन तर्पण के लिए भी उमड़ रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में शिव भक्ति का बना नया केंद्र, विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन के भारत शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, आस्था का उमड़ा सैलाब। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि, प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम, करीब 1768 ईस्वी की है दुर्लभ पांडुलिपि। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, 3 युद्धपोत INS दूनागिरी, अग्रय और संशोधक 21 जून को एक साथ कोलकाता में किए जाएंगे कमीशन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी के नाम नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में लगाई पहली हैट्रिक, सबसे ज्यादा 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: हरिद्वार में शिव भक्ति का नया केंद्र, विश्व के सबसे बड़े भारत शिवलिंग की हुई प्राण प्रतिष्ठा। हरिद्वार के श्री साई शिव गंगा धाम में स्थापित हुआ ये विशाल शिवलिंग, 5,210 किलो है इस शिवलिंग का वजन। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत और राजनीतिक हस्तियों समेत स्थानीय नागरिक रहे मौजूद, भगवान को लगाया गया विशेष भोग। प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम, अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि, करीब 1768 ईस्वी की है दुर्लभ पांडुलिपि, इस प्राचीन ग्रंथ में लगभग 600 से 700 पन्ने। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू होने जा रही यात्रा। पुलवामा में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर की मॉक ड्रिल, इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। इस अभ्यास में सुरक्षा खतरों, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रियाओं, संकट प्रबंधन, अलग अलग एजेंसियों के बीच में तालमेल जैसी कई आपातकालीन स्थितियों का प्रैक्टिस किया गया। ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान आ सकने वाली इमरजेंसी स्थितियों से निपटने को लेकर की तैयारी, आपसी तालमेल को भी परखा गया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के पंजीकरण के लिए पहुंचे श्रद्धालु। कठुआ में अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन मुस्तैद, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों ने कठुआ स्टेशन का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्टेशन पर लगाए गए CCTV कैमरे, स्टेशन परिसर पर तैनात किए जाएंगे जवान। जम्मू में अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने ली तलाशी। सुरक्षा बलों ने भगवती नगर बेस कैंप के आसपास इलाकों में चलाया सर्च अभियान, आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही नजर। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा से पहले बांदीपुरा के शारदा देवी मंदिर में CRPF जवानों ने की विशेष पूजा, जवानों ने लगाए जय माता दी के जयकार। पूजा के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, यात्रा के सकुशल संपन्न होने की कामना की गई। मां शारदा की पूजा के बाद लंगर का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। गांधरबल में 19 जून से शुरू हो रहा माता खीर भवानी का मेला, तैयारियां जारी। अमरनाथ यात्रा के बाद कश्मीरी पंडितों का दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक उत्सव, बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद। रायगढ़ में राजा महोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई इसमें शामिल। उत्सव में पारंपरिक झूले, लोकगीत और लजीज पकवानों के साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। उत्सव में पारंपरिक ओडिसी और संबलपुरी नृत्यों के माध्यम से ओडिया लोक कला की प्रस्तुति दी गई। इस उत्सव में पारंपरिक परिधान में नजर आई महिलाएं, राजा झूला का भी लिया आनंद। अमृतसर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा मां के दर्शन के लिए वंदे भारत बनी लोगों की पहली पसंद। साइबर ठगी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, गृह मंत्री अमित शाह ने 1930 साइबर हेल्पलाइन की समीक्षा की, हेल्पलाइन को अपग्रेड करने के दिए निर्देश। हेल्पलाइन को एआई अनेबल और मल्टी लिंगुअल बनाने के आदेश, बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़ी शिकायतों को समाधान पर फोकस। दिल्ली के गृह मंत्री ने राजेंद्र नगर और नारायण फायर सर्विस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, ढांचे आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमताओं का जायजा लिया। लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें शामिल हुए सीएम योगी, 930 कंप्यूटर ऑपरेटर बांटे गए नियुक्ति पत्र। द्वारका की गोमती नदी से दो डूबते युवकों का किया गया सफल रेस्क्यू, मानसून से पहले ही उफान पर है नदी। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी और ताकत, 3 युद्धपोत होंगे एक साथ शामिल। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधक को एक साथ किया जाएगा शामिल, 21 जून को कोलकाता में होगा कमीशन। भारतीय नौसेना में दिखेगी मेक इन इंडिया की झलक, समुद्र में त्रिशक्ति संभालेगी मोर्चा। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों, एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस, जबकि आईएनएस अग्रय एडवांस्ड सोनार टॉरपीडो स्वदेशी एएसडब्ल्यू रॉकेट लॉन्चर लैस। आईएनएस संशोधक हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्र तल की मैपिंग समुद्री क्षेत्र की जानकारी को बेहतर बनाएगा। यूपी वाराणसी पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज, वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा वाराणसी स्टेडियम, भोलेनाथ काशी और गंगा की थीम पर बन रहा स्टेडियम। आधुनिकता के साथ संस्कृति की भी छाप दिखेगी, स्टेडियम की छत अर्धचंद्रकार, फ्लड लाइट त्रिशूल नुमा होगी। 30.86 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे स्टेडियम में 30,000 लोग उठा सकेंगे मैच का लुत्फ, गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा होगा दर्शक दीर्घा में बैठने का इंतजाम। काशी गंगा भोलेनाथ से प्रेरित देश का पहला स्टेडियम होगा वाराणसी का ये स्टेडियम। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में अब से कुछ देर में नीदरलैंड के साथ होगा भारतीय टीम का मुकाबला, लीड्स के मैदान पर खेला जाएगा ये मैच। पाकिस्तान को हराकर अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम की जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी T20 इंटरनेशनल में पहली बार फिर रहे भारत न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ वनडे में टीम इंडिया लाई रनों की सुनामी, पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 402 रन। कैप्टन गिल खेल ली है, उन्होंने शानदार 154 रनों की ताबड़तोड़ पारी, 110 गेंदों में जड़े 22 चौके और 2 छक्के। ईशान किशन ने खेली 79 गेंदों पर शानदार 125 रनों की पारी, इसमें 7 छक्के और 14 चौके। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पंजाब के जालंधर से 3 लड़कियों का चयन हुआ, चुने गए खिलाड़ियों में कोच सरबजीत सिंह हैप्पी के साथ 2 शिष्य। गुरविंदर वीर सिंह का 100 मीटर दौड़ के लिए जबकि रशदीप कौर का 400 मीटर और 400 मीटर रिले दौड़ के लिए चयन हुआ। जालंधर के ही रहने वाले तेजीत सिंह हैप्पी के साथ 2 शिष्य। गुरविंदर वीर सिंह का 100 मीटर दौड़ के लिए जबकि रशदीप कौर का 400 मीटर और 400 मीटर रिले दौड़ के लिए चयन हुआ। जालंधर के ही रहने वाले तेजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्टपट में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व, ग्लासगो में अगले महीने से शुरू होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना के कैप्टन और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, अपने पहले ही मैच में अल्जीरिया के खिलाफ जमाई गोल की हैट्रिक। अब तक 11 इंटरनेशनल हैट्रिक लगा चुके हैं मेसी, साथ ही मेसी ने की फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी। रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंचा भारत, रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बड़ा फैसला। गोरखपुर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पटना में स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया झाड़ू, लोगों को किया जागरूक। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मेयरघाट पर चलाया स्वच्छता अभियान, कार्यकर्ताओं के साथ लगाई झाड़ू। पुंछ में लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए शानदार पहल, लड़कियों को सिखाया जा रहा आत्मरक्षा के गुर। लड़कियों के लिए ताइक्वांडो कैंप का आयोजन किया गया, 100 से ज्यादा लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। रांची में कृषि व्यापार मेले का आगाज, सीएम हेमंत सोरेन ने की इसमें शिरकत। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत आईटीबीपी और माई भारत की ओर से किया आयोजित। श्रीनगर में रिटायरमेंट से पहले की काउंसलिंग वर्कशॉप के 59वें संस्करण का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पहुंचे। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरा पहला कार्गो विमान, वाटर कैनन से विमान का किया गया स्वागत। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने पीएनजी और सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर में अद्विका वार्ता संवाद का आयोजन हुआ, बच्चों से डिप्टी सीएम पार्वती परिदा ने शासन नीतिगत मुद्दों पर बातचीत की। मुंबई में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे। रियासी में ऑर्गेनिक लीची की खेती के लिए बढ़ी किसानों की आमदनी, लीची से लाखों रुपयों की कमाई हो रही। दिल्ली में 19 जून तक बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में 22 जून तक हो सकती है बारिश। राजस्थान के जैसलमेर में बदला मौसम, धूल भरी आंधी के बाद बारिश से गिरा तापमान भी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई जोरदार बारिश, कुछ देर के लिए सड़कों पर लग गया जाम। जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके के तुलैल में फटा बादल, बादल फटने से बह गए कई घर। भारी बारिश के कारण उत्तर कश्मीर में कई जगहों पर फ्लैश फ्लड, कुपवाड़ा में कई जगहों में गांव में घुस गया फ्लैश फ्लड। यशराज बैनर तले बनी फिल्म अल्फा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, दमदार डायलॉग्स और खतरनाक एक्शन ने लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाई। फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर हुआ लॉन्च, इस फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया और टोपी वाला आपको नजर आएंगे। बंटवारा 1947 के मेकर्स ने फिल्म के कैरेक्टर पोस्टर्स जारी किए, सनी देओल निभा रहे मुख्य किरदार। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट की हो रही वापसी, नेटफ्लिक्स पर होगा ये शो अपस्ट्रीम। दर्शकों को हंसाने के लिए सिल्वर स्क्रीन पर फिर से आ रही श्रेक, फियोना और डंकी अगले साल 30 जून को रिलीज होगी। हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी ईशा देओल, फिल्म घूंघट का ऐलान, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देगी कहानी। मलयालम सिनेमा में करण जौहर का पहला कदम, पृथ्वीराज सुकुमारन की ओडियन का ऐलान। फिल्म पैडी का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी, फिल्म 13 दिनों में इसने की है 220 करोड़ की कमाई। पैनोरमा स्टूडियोज और जैकब बाबू मिलकर बनाएंगे दो मलयालम फिल्में, मलयालम में बनी दृश्यम 3 की जबरदस्त सफलता के बाद फैसला। अंबानी परिवार ने रिहाना को गिफ्ट किया डायमंड का ब्रेसलेट, कीमत करीब 2.2 करोड़ रुपए। दक्षिण पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के लियानजियांग काउंटी में हुआ शानदार समुद्री ड्रैगन बोट रेस का आयोजन। लाल पीले सफेद हरे रंग की 4 ड्रैगन बोट ने इस रेस में हिस्सा लिया, सिग्नल मिलते ही ये नावें 800 मीटर दूर फिनिश लाइन की ओर बढ़ती हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर तेजी से चप्पू चलाते हुए क्रू के साथ सर पर दौड़ती नजर आ रही ये शानदार नावें, अद्भुत दृश्य नजर आया। तेज हवाएं ऊंची लहरों के कारण काफी चुनौतीपूर्ण होती है, समुद्र में होने वाली ये रेस सामान्य ड्रैगन बोट की तुलना में 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची बनाई जाती है नाव। 600 साल पुराना ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल परंपरा, ग्रामीण ये रेस आयोजित करने के लिए खुद पैसा इकट्ठा करते हैं। मिस्र के काहिरा शहर में आयोजित किया गया भव्य आर्ट स्ट्रीट प्रोग्राम, जिसके तहत ओपन एयर कल्चरल स्पेस में तब्दील हुई काहिरा के डाउनटाउन में एक सड़क। इस खास वीकेंड अट्रैक्शन को देखने के लिए उमड़ी स्थानीय लोगों और सैलानियों की भीड़, लोगों ने लाइव परफॉर्मेंस और आर्ट शो का जमकर मजा लिया। सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने से ही की इस प्रोग्राम की शुरुआत, अल शरीफान स्ट्रीट पर होती है ये परफॉर्मेंस। इस आयोजन में संगीत, पेंटिंग, डांस, लोक कला, स्ट्रीट एरोबेटिक्स भी शामिल किए जाते हैं, आते हैं लोग देखने के लिए। काहिरा गवर्नरेट और संस्कृति मंत्रालय मिलकर चलाते हैं ये आर्ट स्ट्रीट। इजिप्शियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स इस प्रोग्राम को कलाकारों के चयन की जिम्मेदारी लेती है। डलास जू की शेरनियों ने की इंग्लैंड और क्रोएशिया के मैच को लेकर भविष्यवाणी, क्रोएशिया को चुना मैच का विजेता। इंग्लैंड और क्रोएशिया के झंडों के बीच रखे भोजन में शेरनिया सीधे क्रोएशिया की ओर पहुंची, इंग्लैंड के फैंस को लगा बड़ा झटका। डलास जू की तीन शेरनियों के फैसले से लोग हुए हैरान, जू विशेषज्ञों की उम्मीदों पर फेरा पानी। ये एक्टिविटी सिर्फ मैच का अनुमान लगाने के लिए नहीं बल्कि जानवरों को सक्रिय रखने के लिए कराई जाती है। इंग्लैंड और क्रोएशिया एक बार फिर से आमने सामने, 2018 सेमीफाइनल की यादें हुई ताजा। मैक्सिको सिटी की नई स्टार बनी बत्तख मर्लिन मैक्सिको फुटबॉल टीम की जर्सी पहनकर सड़कों पर घूम रही। सेल्फी लेने वालों की लगी कतारें, मर्लिन बत्तख के साथ फोटो खिंचवाने के लिए राहगीर भी रास्ते में रुके। मर्लिन को लोग 2026 वर्ल्ड कप का मान रहे अनऑफिशियल मैस्कॉट, लोगों को मर्लिन की भविष्यवाणी का इंतजार। मर्लिन बत्तख ने दक्षिण कोरिया मैक्सिको के बीच होने वाले मैच में मैक्सिको का झंडा चुना, वीडियो वायरल। मर्लिन के लोकप्रिय होने पर मालकिन को हुई खुशी, उम्मीद से ज्यादा मिल रहा पालतू बत्तख को लोगों का प्यार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
3: क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में बीमारियां आ जाती हैं? क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से हर कार्य में असफलता मिलती है? क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा और कैसा होता है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
5: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चीन के शंघाई में जश्न का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहां खुशियों का ऐसा मेला सजा जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था शंघाई डिज्नीलैंड की स्थापना के 10 साल पूरे होने का। इस खास मौके पर पूरे पार्क को रंगों, रोशनी और सपनों की दुनिया में तब्दील कर दिया गया।
2: डिज्नीलैंड नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं सालगिरह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, तर्पण के लिए भी उमड़ रहे श्रद्धालु। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क। हरिद्वार में शिव भक्ति का बन गया नया रिकॉर्ड, विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन के पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, आस्था का उमड़ा सैलाब।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावन। शाम के 7 बज चुके हैं, 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं, आपको बताएंगे आज की 7 अच्छी खबरें। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज देते हैं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ हो गया है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी भारत ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। ऐसे में हमारी आज की पहली गुड न्यूज यानी गुड न्यूज नंबर 1 यही है, रक्षा निर्यात में आया रिकॉर्ड उछाल। भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम की वजह से है। पिछले वित्त वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15.6% की ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो आंकड़े से 110% की असाधारण वृद्धि है। यह रक्षा निर्माण में स्वदेशीकरण की दिशा में देश की प्रगति को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक रक्षा उत्पादन है। घरेलू रक्षा विनिर्माण में तेजी का असर रक्षा निर्यात पर भी दिखाई दिया है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये भारतीय रक्षा उपकरणों की वैश्विक स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाता है।
4: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और 2025-26 में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ा 1,78,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% इजाफा हुआ है और अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो उनका हिस्सा 24% का है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दर अगर पिछले कुछ सालों यानी एक दशक से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बढ़ोतरी 110% है। यानी लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहा है, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। यानी ब्रह्मोस से लेकर व्हील्ड व्हीकल्स तक सब कुछ भारत बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और साथ ही सैकड़ों ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब भारत आयात नहीं करता, भारत में ही बनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है।
3: अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी तैयारियों को परख रही हैं। तो ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 2 इसी से जुड़ी है। बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारी, जबरदस्त पहरेदारी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने राष्ट्र राजमार्ग पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया।
5: हाँ, तैयारी है अमरनाथ यात्रा की। यहाँ एक ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास में कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर संभावित संकट की परिस्थितियों से निपटने का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग आपातकालीन हालातों का अभ्यास किया, जिसमें सुरक्षा बलों, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने समन्वय और तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी जारी है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों समेत सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
6: ये आज का हमारा जो विजिट कठुआ रेलवे स्टेशन का है, ये यात्रा से ही मुतल्लक है। आज यहाँ पे हमने ऑल एजेंसीज के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजों की और जरूरत है। कंबाइंड सबमिट करेंगे।
5: पठानकोट में विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उस दौरान अंतरराज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौकों, मुख्य मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर रेड अलर्ट नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की जांच की जा रही है। सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी चिकित्सा सहायता केंद्र 28 जून तक पूरी तरह कार्यशील हो जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन बूथ 25 जून तक स्थापित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सेवा दल और लंगर कमेटियों के सदस्य अमरनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, दवाइयों समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सेवादारों ने अमरनाथ धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
7: कि आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं। बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आप आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
5: जाहिर है आस्था, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी संगम के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है, दूसरी ओर सेवा समितियां यात्रियों के स्वागत और सहायता के लिए जुटी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। पठानकोट से पवन सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर की वादियों में एक बार फिर से आस्था का महासंगम होने जा रहा है। कुछ ही दिनों बाद गांधरबल के तुलमुल स्थित माता खीर भवानी मंदिर में भव्य खीर भवानी मेले का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 3 यही है। मेले की तैयारी में सजने लगा खीर भवानी मंदिर। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े और पवित्र धार्मिक उत्सवों में शामिल है। ये केवल एक मेला नहीं है बल्कि एक उत्सव है, साथ ही साथ अपनी जड़ों, संस्कृति और सनातन परंपराओं से जुड़ने का एक भावनात्मक अवसर भी होता है। इस पावन अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं।
5: पवित्र धाम माता खीर भवानी मंदिर, जहां आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलता है। कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला

0: यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में दर्शन कर सके। माता खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का भी प्रतीक है। हर साल खीर भवानी मेले के मौके पर माँ के धाम में हजारों भक्त पहुँचते हैं और माता के गीतों को गाते गुनगुनाते श्रद्धालुओं की भीड़ माँ के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लेती है। अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का, जब देश दुनिया से आने वाले हजारों श्रद्धालु माँ खीर भवानी के पावन दरबार में शीश नवाएंगे और भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से सराबोर इस विशेष अवसर पर मंदिर परिसर जयकारों, मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों से गूंज उठेगा। कश्मीर की वादियों में बसे इस पावन धाम में एक बार फिर आस्था का महासागर उमड़ेगा और हजारों श्रद्धालु मां के चरणों में अपनी सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना करेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी और गांदरबल से मां खीर भवानी धाम से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम शुरू किया है और इसके तहत शहर के चौराहों पर डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही है और इस स्क्रीन पर रेड लाइट पर रुकने वाले वाहनों की पूरी डिटेल दिखाई देती है। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। चौराहे के स्मार्ट स्क्रीन पर खुलेगी गाड़ियों की कुंडली। चौराहों पर लगे स्मार्ट कैमरे गाड़ियों का नंबर स्कैन कर PUC, इंश्योरेंस और चालान की पूरी जानकारी तुरंत स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देंगे।

0: जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शुरू किया है, जिसके जरिए अब वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक रामबाग चौराहे पर पहली बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जहां रेड लाइट पर रुकने वाले वाहनों की पूरी डिटेल ऑन द स्पॉट दिखाई जा रही है। इस सिस्टम में लगाए गए स्मार्ट कैमरे जैसे ही किसी वाहन का नंबर स्कैन करते हैं, तुरंत उस वाहन से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगती है। इसमें गाड़ियों की PUC स्थिति, इंश्योरेंस की वैधता और लंबित चालानों की पूरी जानकारी शामिल होती है।
1: जयपुर के सबसे बिजिएस्ट यानी कि सबसे हैवी ट्रैफिक वाले चौराहों पर एक नई पहल की जा रही है, जिसमें कुछ ऐसी स्क्रीन्स लगाई जा रही है जहां ट्रैफिक के चलते ही वहां पे गाड़ियों के नंबर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे और वो नंबर ऐसे होंगे कि वहां मेंशन किया जाएगा कि इस गाड़ी के नंबर पर कितने चालान हैं, क्या उनके नाम पे कोई चालान है भी या नहीं है, है तो टोटल अब तक कितने हैं, कितने अमाउंट के हैं, क्या उस गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है, क्या उस गाड़ी का PUC हो रखा है, ये सब चीजें एक डेटा के जरिए इन स्क्रीन्स पे दिखाई जाएंगी।
0: इस पहल का सबसे खास पहलू ये है कि वाहन मालिक रेड लाइट पर रुकते ही अपने वाहन की स्थिति को लाइव देख सकते हैं। इससे लोगों को अपने दस्तावेज समय पर अपडेट करने में मदद मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस सिस्टम का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी है। रामबाग चौराहे पर लगाई गई ये स्क्रीन अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बन गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये शुरुआत है और आने वाले समय में शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी ऐसी AI आधारित स्क्रीन और कैमरे लगाए जाएंगे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था और अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनने की उम्मीद है।
2: यह प्रक्रिया अभी रामबाग सर्किल पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। अगर यह इस सर्किल पर यह सफल रहता है, जंक्शन पर यह अगर सक्सेसफुल रहता है, तो हम अदरवाइज हमारे और भी 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ऑलरेडी ANPR कैमरे हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो वहां पर भी हम इसको आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि ऐसे वाहनों को चिन्हित करके और उन पर इमीडिएट एक्शन किया जा सके।
0: ये पूरा सिस्टम आधुनिक कैमरों और फास्ट इंटरनेट पर टिका है। ये मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में काम करता है। इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जयपुर के अजमेरी गेट के पास एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। जयपुर पुलिस की ये नई स्मार्ट तकनीक सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए एक बेहतरीन

0: दम मानी जा रही है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: धनबाद, जिसकी पहचान दशकों से देश को ऊर्जा देने वाले कोयले और भूमिगत आग से रही है, लेकिन अब यही धरती सिर्फ कोयला नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र बनने जा रही है। कोल इंडिया की पहली कोल बेड मीथेन यानी CBM परियोजना झरिया कोल फील्ड में आकार ले रही है। ऐसे में हमारी आज की पांचवी गुड न्यूज भी यही है, कोयलांचल की धरती से निकलेगा ग्रीन फ्यूल। झरिया में अगले एक साल में बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व के साथ साथ घरेलू रसोई गैस उद्योग और उर्वरक क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिलेगा।
2: झरिया के CBM ब्लॉक 1 को कोल इंडिया की पहली कोल बेड मीथेन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस ब्लॉक में कपूरिया, मुनीडीह और सिंघरा के भूवैज्ञानिक क्षेत्र शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक यहां करीब 25 बिलियन क्यूबिक मीटर मीथेन गैस का भंडार मौजूद है। प्रभा एनर्जी लिमिटेड को इस परियोजना का डेवलपर चुना गया है। ये परियोजना 3 चरणों में विकसित की जा रही है। पहले चरण में कोर होल ड्रिलिंग, टेस्ट वेल, हाइड्रो फ्रैक्चरिंग और वैज्ञानिक परीक्षण किए गए। दूसरे चरण में उत्पादन क्षमता और बाजार की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, जबकि तीसरे चरण में 30 वर्षों तक मीथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन किया जाएगा।
3: उस मीथेन को वैज्ञानिक ढंग से निकाल करके व्यवहारिक ढंग से अपने ऊर्जा के स्रोतों में हम ला पाए, इस दिशा में हमारा मुन्नीडी में एक एरिया वन के तहत हमने लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर में इसको हमने चिन्हित किया है।
2: इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उत्पादित गैस सीधे राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ेगी। ये पाइपलाइन झरिया CBM ब्लॉक को गेल की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना से जोड़ेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इसके लिए गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी है। इससे झरिया से निकली गैस देश के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकेगी। परियोजना के आर्थिक लाभ भी बेहद बड़े स्तर पर मिलने की संभावना है। अनुमान है कि व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद हर वर्ष इससे करीब 1424 करोड़ रुपए का कारोबार होगा, जिसमें BCCL को लगभग 1.25 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। यानी कोयले के साथ साथ अब गैस भी BCCL के लिए आय का नया स्रोत बनेगी।
4: ये जो है जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी में हमको बहुत ही मदद करने वाला है। हमारा जो दूसरे देशों से हम मिडिल ईस्ट से हम जो पेट्रोल और डीजल और ये सब का जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमें बहुत राहत मिलेगी अगर हम इसका अच्छे वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से इसका अगर हम दोहन करते हैं।
2: कभी सिर्फ कोयले के लिए पहचाने जाने वाला झरिया अब ऊर्जा के नए युग की ओर बढ़ रहा है। धरती की गहराइयों में छिपी मीथेन गैस अब न सिर्फ देश के घरों और उद्योगों को नई ऊर्जा देगी बल्कि खदानों को सुरक्षित बनाएगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी और BCCL के राजस्व का नया अध्याय भी लिखेगी। अगर ये परियोजना सफल होती है तो झरिया सिर्फ ब्लैक डायमंड की नगरी नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की राजधानी के रूप में भी अपनी नई पहचान बना सकता है। सिथुन मोदक, धनबाद, गुड न्यूज टुडे।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी गंगा आरती और प्राचीन घाटों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब वाराणसी क्रिकेट के वैश्विक नक्शे पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। यहां बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम करीब करीब बनकर तैयार है, तो ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 6 यही है, शिव और गंगा की थीम पर काशी में क्रिकेट स्टेडियम। काशी का क्रिकेट स्टेडियम न केवल खेल सुविधाओं के लिहाज से आधुनिक है बल्कि इसकी पूरी डिजाइन काशी की संस्कृति, गंगा की पवित्रता और भगवान शिव की दिव्यता को समर्पित है।

0: वाराणसी में बन रहा गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। स्टेडियम का करीब 92% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक ये पूरी तरह से बन जाएगा। इस साल के अंत तक यहाँ एक ट्रायल मैच आयोजित करने की योजना है, जबकि 2027 में इस मैदान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेले जाने की संभावना है। स्टेडियम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भगवान शिव थीम आधारित वास्तुकला है। यहाँ डमरू के आकार का मीडिया सेंटर बनाया गया है, जबकि मैदान में 4 त्रिशूल स्वरूप फ्लड लाइटें स्थापित की गई हैं। क्रिकेट स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार है, मानो बाबा विश्वनाथ की नगरी का क्रिकेट स्टेडियम भी शिवमय हो चला है।
1: टोटल 32,000 कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, और महादेव के थीम पे, जैसे भगवान भोले को आपने जानते ही, अब चंद्रशेखर नाम है जिसके ऊपर, जिसके सर पे चंद्रमा हो, तो क्रिसेंट के आधार पे रूप सीटिंग है, और त्रिशूल उनको चाहिए तो त्रिशूल के हिसाब से अपना लाइट है डिजाइन, जो हाई मास्ट लाइट है, जो जिसको फ्लड लाइट बोलते हैं आप, जिसमें मैच होता है रात में, तो त्रिशूल के आकार का लाइट है, और बाकी दो ही चीज है, और बेलपत्र है, डमरू है।
0: यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरोज शुक्ला का कहना है कि स्टेडियम को शिवमय बनाना आसान नहीं था, कई बार की कोशिश के बाद ये संभव हो सका। करीब 30 एकड़ भूमि पर तैयार हो रहे गंजारी क्रिकेट स्टेडियम में करीब 32,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। दर्शक दीर्घा में बैठने की व्यवस्था गंगा के घाट की सीढ़ियों जैसी होगी। इससे दर्शकों को खेल के साथ साथ काशी की आध्यात्मिक संस्कृति का भी अनूठा अनुभव मिलेगा, यानी अत्याधुनिकता के साथ ही काशी की संस्कृति और भोले की नगरी की झलक इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पूरे देश में अलग पहचान दिलाने वाला है। इस स्टेडियम को लेकर काशीवासियों में खासा उत्साह है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।
2: मुंबई में 19वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। 21 जून तक चलने वाला ये महोत्सव मुख्यधारा की फीचर फिल्मों से अलग डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन और वाइल्ड लाइफ फिल्मों को समर्पित है। ऐसे में हमारी गुड न्यूज नंबर 7 यानी कि आज की आखिरी गुड न्यूज यही है, सिनेमा की उत्कृष्टता और सांस्कृतिक विविधता का जश्न। महानगरी मुंबई एक बार फिर से सिनेमा के रंगों में रंग गई है। 19वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ के साथ ही देश विदेश के फिल्मकारों, कलाकारों और सिनेमा प्रेमियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। ये थी 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं
4: है। Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
5: Swing and a foul out of play off to the left.
4: Big 12 Radio.
6: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
4: Talk Sport.
7: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
4: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
3: Come see.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, तर्पण के लिए भी उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क। हरिद्वार में शिव भक्ति का बना नया रिकॉर्ड। विश्व के सबसे बड़े 5,210 किलो वजन के पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। आस्था कौमड़ा सैलाब।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का वायरल फैक्ट चेक में। सोशल मीडिया के इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार के साथ फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस देते हैं, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी को गढ़ देते हैं जो असलियत से कोसों दूर रहती है। अब नतीजा क्या होता है? वो ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की उस धुंध को साफ करते हैं जहां वायरल दामों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। चलिए वही काम करते हैं, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की। तो फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि 30 जून से देश में कागज के नोट बंद हो जाएंगे और उनकी जगह बाजार में प्लास्टिक के नए नोट जारी कर दिए जाएंगे। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर में हम उस वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कर्णप्रयाग में जिपलाइनिंग के दौरान दिल्ली के एक महिला पर्यटक की गहरी खाई में गिर जाने की वजह से मौत हो गई। क्या है इस वायरल दावे की और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे। और शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: क्या 30 जून से आपके पर्स में रखे कागज के नोट बेकार हो जाएंगे? क्या RBI सचमुच सभी नोटों को हटाकर प्लास्टिक करेंसी लाने जा रहा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे दावों ने लाखों लोगों को उलझन में डाल दिया है। लेकिन जब वायरल दावों का फैक्ट चेक किया गया तो क्या निकला सच और क्या निकला झूठ, पड़ताल करते हैं शिव बोट में। देखिए
11: 30 जून से

0: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 30 जून से देश में कागज के नोट बंद हो जाएंगे और उनकी जगह बाजार में प्लास्टिक के नए नोट जारी कर दिए जाएंगे। सनसनीखेज दावा पीएम नरेंद्र मोदी की कथित आवाज के साथ शेयर किया जा रहा है। ऑडियो में बताया जा रहा है कि 30 जून से सभी लोग हो जाएं सावधान, कागज के नोट पूरी तरह बंद हो जाएंगे और मार्केट में प्लास्टिक के नए नोट जारी होंगे।
1: 30 जून से सभी लोग हो जाएं सावधान, कागज के नोट पूरी तरह बंद हो जाएंगे और मार्केट में नए प्लास्टिक नोट जारी होंगे।
0: इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर देखते ही लोगों के बीच काफी अफरा तफरी मच गई। लोगों को 2016 का नोटबंदी वाला सीन याद आने लगा। वायरल हो रहे पोस्ट का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर करने लगे।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि 30 जून से देश में कागज के नोट बंद हो जाएंगे, उनकी जगह बाजार में प्लास्टिक के नए नोट जारी कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे पोस्ट का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल पोस्ट की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल की। सर्च के दौरान हमें पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट्स या किसी विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट या आरबीआई की वेबसाइट पर हमें 30 जून से कागज के नोट बंद होने से संबंधित कोई पोस्ट, कोई रिपोर्ट या नोटिफिकेशन नहीं मिला, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो इसके बारे में बाकायदा सूचना दी गई होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को इसके बारे में सूचित किया जाता, लेकिन ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिली। इसके अलावा वीडियो में पीएम मोदी की आवाज सुनाई दे रही है, इससे सुनने से ऐसा लग रहा है कि इसे छेड़छाड़ करके तैयार किया गया, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ आपके सामने रखते हैं कि अगर दावा सच है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी आखिर क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर पोस्ट के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, सच क्या है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब ये पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और इस पोस्ट का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली जो 6 जून को प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में आरबीआई गवर्नर के हवाले से बताया गया है कि पॉलीमर के नोटों को लेकर फिलहाल एक प्रस्ताव विचाराधीन है और ये अभी अपने बेहद प्रारंभिक चरण में है। बतौर रिपोर्ट आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि जहां तक पॉलीमर नोटों का सवाल है ये प्रस्ताव विचाराधीन है और जैसे ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा हम आपको सूचित करेंगे। हम इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि इसे लागू करना फायदेमंद होगा या नहीं। इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी मौजूदा कागजी नोटों को अमान्य या बंद करने से संबंधित कोई जानकारी मौजूद नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर 5 जून को अपलोड किया गया आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो मिला। वीडियो में आरबीआई गवर्नर साफ तौर पर यही कहते दिख रहे हैं कि पॉलीमर के नए नोटों को जारी करने का प्रस्ताव अभी केवल शुरुआती स्टेज में है।
1: पॉलीमर नोट की जहां तक बात है वो प्रस्ताव विचाराधीन है, अभी जैसे ही कोई इसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा हम आपको बताएंगे।
0: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहीं भी मौजूदा कागजी करेंसी को 30 जून या किसी भी अन्य तारीख से बंद करने की घोषणा नहीं की। सर्च के दौरान हमें भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक के एक्स हैंडल से 9 जून 2026 को किया गया एक पोस्ट मिला जिसमें पीआईबी ने वायरल दावे को फर्जी करार देते हुए लिखा है, कागजी मुद्रा नोटों को वापस लेने या उन्हें 30 जून 2026 तक प्लास्टिक मुद्रा नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है। चूंकि वायरल पोस्ट में पीएम मोदी की आवाज का इस्तेमाल कर 30 जून से देश में कागज के नोट बंद होने का दावा किया गया था, इसलिए हमने इस ऑडियो की प्रामाणिकता जांचने के लिए इसे एआई वॉइस डिटेक्शन टूल्स पर स्कैन किया। इस दौरान एआई डिटेक्शन टूल अनडिटेक्टेबल एआई ने पोस्ट में मौजूद पीएम मोदी की आवाज को 99% संभावना के साथ एआई जनरेटेड बताया। एआई डिटेक्शन टूल डीप फेकोमीटर के 5 अलग अलग एआई वॉइस डिटेक्टर्स ने भी इस ऑडियो का विश्लेषण किया और उच्च संभावना के साथ इसे एआई जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में ये स्पष्ट हो गया कि 30 जून से देश में कागज के नोट बंद होने और नए प्लास्टिक नोट के जारी होने का दावा बेबुनियाद है। इसके अलावा वायरल पोस्ट में मौजूद पीएम नरेंद्र मोदी की आवाज असली नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि कर्णप्रयाग में जिपलाइनिंग के दौरान दिल्ली की एक महिला पर्यटक की गहरी खाई में गिर जाने की वजह से मौत हो गई। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में देखिए।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि कर्णप्रयाग में जिपलाइनिंग के दौरान दिल्ली की एक महिला पर्यटक गहरी खाई में गिर गई। वायरल वीडियो में चमकीले गुलाबी और पीले रंग के कपड़े पहने एक महिला ऊंचे पहाड़ों के बीच जिपलाइनिंग करती नजर आ रही है, लेकिन अचानक जिपलाइन का तार टूट जाता है और वो काफी ऊंचाई से गहरी खाई में गिर जाती है। दावे के मुताबिक ये हादसा उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हुआ है, जहां दिल्ली से आई एक महिला पर्यटक इस भयानक हादसे का शिकार हो गई। कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि कर्णप्रयाग में जिपलाइनिंग के दौरान दिल्ली की एक महिला पर्यटक गहरी खाई में गिर गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यही वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। बारीकी से देखने पर हमें इसमें कई खामियां नजर आईं। उदाहरण के तौर पर वीडियो के बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाज बनावटी प्रतीत हो रही है। इसके अलावा जिपलाइन पर सफर कर रही महिला का बॉडी मूवमेंट कुछ जगहों पर काफी अजीब तरीके से लड़खड़ाता और अप्राकृतिक लगता है। ऐसे में हमें वीडियो के असली होने पर संदेह पैदा हुआ। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल हो रहे वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल आपके सामने है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। आखिर सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं।
0: फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला गया और फिर उसे सर्च किया गया। इस दौरान हमें ये वीडियो 2 जून 2026 को एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के अकाउंट पर शॉर्ट्स के रूप में अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में हैशटैग फनी शॉर्ट्स जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अकाउंट को खंगालने पर पता चला कि यहाँ इसी तरह के जिपलाइन हादसों से जुड़े कई और काल्पनिक वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा मई 2026 के भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इस वीडियो को फनी हैशटैग के साथ शेयर किया गया था। सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में इस तरह के जिपलाइन हादसे से जुड़ी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो कहीं न कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती। इसके बाद हमने जिपलाइन हादसे का बताकर वायरल हुए वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर जांचा। इस दौरान टूल ने अपने विश्लेषण में इस वीडियो को 99.2% स्कोर के साथ संभावित AI जेनरेटेड बताया। इस वीडियो को हमने एक दूसरे AI डिटेक्शन टूल डीप फेको मीटर पर भी चेक किया। इस टूल के AVSRDD मॉडल ने भी 100% संभावना के साथ वीडियो को AI जेनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से ये साफ हो गया है कि कर्णप्रयाग में जिपलाइन हादसे के दौरान दिल्ली की महिला पर्यटक की मौत का दावा बेबुनियाद है। वायरल हो रहा वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जेनरेटेड है।
2: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए GNT।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
4: ब्लैक डायमंड से निकलेगा ग्रीन फ्यूल, कोल बेड मिथेन लिखेगी ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय, नीट फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चौक चौराहों पर बेइज्जती। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
2: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को आगे बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
12: इन दिनों दिल्ली मेट्रो से जुड़ा ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और एक छोटे बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में एक मासूम बच्चे ने जो किया उसने हर किसी का दिल जीत लिया। बच्चे ने मेट्रो स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे CISF जवान को न सिर्फ सैल्यूट किया बल्कि झुककर उनके पैर भी छुए। ये नजारा इतना प्यारा था कि वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए भावुक हो गए। दिल छू लेने वाले वीडियो को CISF ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो शेयर होते ही यह तेजी से वायरल हो गया। इन दिनों इंटरनेट पर यह वीडियो खूब चर्चा में है। वीडियो में एक छोटी बच्ची पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों का स्वागत करती नजर आ रही है। बच्ची का प्यारा अंदाज और मासूम मुस्कान लोगों को बेहद पसंद आ रही है। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये वायरल वीडियो जेवर एयरपोर्ट का है, जहां से 15 जून को पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नन्ही बच्ची जिसका नाम सफा है, सफेद पायलट यूनिफॉर्म और कैप पहनकर एयरपोर्ट पर मौजूद है। उसके सामने एक छोटी ट्रॉली रखी हुई है जिसमें फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते सजे हैं। जैसे ही लोग उसके पास से गुजरते हैं वो मुस्कुराते हुए उन्हें प्यार से फूल देती नजर आती है। बच्ची का आत्मविश्वास भरा अंदाज और मासूमियत वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है।

सोशल मीडिया पर एक नन्ही बच्ची का क्यूट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क किनारे खड़ी कार के हॉर्न की बीप को म्यूजिक की तरह सुनकर उस पर डांस करती नजर आती है।

बच्ची की मासूमियत, परफेक्ट टाइमिंग और अनोखा टैलेंट लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपनी छत पर योग और एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी अचानक एक नटखट बंदर वहां पहुंच जाता है और कुछ दूरी पर बैठकर उसे ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद जो होता है वो देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। बंदर बिल्कुल उसी अंदाज में महिला की नकल करने लगता है और उसका फ्री जिम पार्टनर बन जाता है। ये क्यूट और फनी वीडियो इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत रहा है और लोग इसे अब तक का सबसे मनोरंजक वर्कआउट मोमेंट बता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर एक उदास और गहरी सोच में डूबे गोरिल्ला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को अपने घर का क्लेश याद आ रहा है। वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एक नर गोरिल्ला तेजी से भागता दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे एक मादा गोरिल्ला गुस्से में उसका पीछा कर रही होती है। पूरा सीन ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया हो और मेल गोरिल्ला वहां से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो इंटरनेट यूजर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक गोरिल्ला अकेले घास पर बैठा दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर है, एक हाथ ठुड्डी के नीचे टिका हुआ है और उसकी नजरें कहीं दूर जीरो में खोई हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बैठाकर किसी गहरे कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि कुछ सतर्क सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही ये जानकारी शेयर कर दी कि वीडियो के दोनों हिस्से अलग अलग जगहों और समय के हैं तथा उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया ने इस गोरिल्ला के लिए अपनी अलग ही कहानी गढ़ ली थी और लोग उसे कियोमासा की वैवाहिक परेशानी का नाम देने लगे।

0: प्यार में दिल टूटने की कहानियाँ तो आपने इंसानों की बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली का हार्ट ब्रेक देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी बिल्ली से होती है। बिल्ली अपने मुंह में एक छोटे से चूहे को दबाए हुए नजर आती है, जिसे लोग गिफ्ट या तोहफा बता रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो किसी खास को यह तोहफा देने के लिए उत्साहित होकर वहां पहुंची हो। बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर जाती दिखाई देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसका इंतजार एक बड़े सरप्राइज से होने वाला है। जैसे ही बिल्ली आगे पहुंचती है, उसकी नजर दो दूसरी बिल्लियों पर पड़ती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे के साथ बेहद प्यार भरे अंदाज में समय बिताती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर पहली बिल्ली कुछ पल के लिए रुक जाती है। वीडियो में उसका रिएक्शन ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि जिस खास के लिए वह गिफ्ट लेकर आई थी, वो अब किसी और के साथ खुश है। हालांकि जानवरों की भावनाओं को इंसान की तरह नहीं समझा जा सकता, लेकिन वीडियो का यह पल लोगों को काफी दिलचस्प लग रहा है। वीडियो का सबसे भावुक और मजेदार हिस्सा तब आता है जब बिल्ली बिना कोई शोर किए अपना गिफ्ट जमीन पर रख देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से वापस लौट जाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में बीमारियां आ जाती हैं? क्या नकारात्मक ऊर्जा होने से हर कार्य में असफलता मिलती है? क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा और कैसा होता है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। ब्लैक डायमंड से निकलेगा ग्रीन फ्यूल, धनबाद में कोल बैट मिथेन लिखेगी ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय। नीट री एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई और इस बार फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद है। जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चौक चौराहों पर होगी बेइज्जती, एलईडी स्क्रीन पर खुल जाएगी वाहनों की कुंडली।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
2: फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत, यूएस प्रेसिडेंट ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवताल श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं का ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंद्रकोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क। दुबई और लंदन तक भेजे जा रहे मध्य प्रदेश के आम, नरसिंहपुर में विदेशी तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं जंबो केसर आम, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन। गुरुग्राम पहुंचा 4 देश ट्रेवल कर चुका स्ट्रे डॉग आलोका, एनिमल लवर्स ने ऑटोग्राफ के तौर पर पंजे के प्रिंट्स लिए, डॉग को पीस का ब्रांड एम्बेसडर दिया गया नाम। शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात, हम सबसे पहले झारखंड के धनबाद की करेंगे जहां से गुड न्यूज सामने आई है। खुशखबरी यह है कि कोयले के रूप में देश को ऊर्जा देने वाली यह धरती जल्दी ही स्वच्छ ऊर्जा का भी बड़ा केंद्र बनने जा रही है, क्योंकि अगले 1 साल में धनबाद से बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है कि इस कोल बेट मीथेन का गैस का इस्तेमाल घरेलू पीएनजी, सीएनजी, इंडस्ट्रियल गैस, केमिकल फर्टिलाइजर और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में किया जा सकता है।

0: कोयला राजधानी के नाम से मशहूर धनबाद की ये धरती दशकों से कोयले के रूप में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही है और आज भी यहाँ की धरती से रोजाना हजारों मीट्रिक टन कोयला निकाला जाता है। लेकिन जल्द ही यहाँ से एक नई ऊर्जा क्रांति का आगाज होने जा रहा है। ये ऊर्जा क्रांति कोल बेड मीथेन गैस के रूप में होगी, जिसका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन अगले एक साल में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: धनबाद, जिसकी पहचान दशकों से देश की ऊर्जा देने वाली कोयले और भूमिगत आग से रही है, लेकिन अब यही धरती सिर्फ कोयला नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा भी देगी। और इस वक्त हम धनबाद के BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है कोल इंडिया की पहली कोल बेल्ट मीथेन यानी CBM परियोजना झरिया कोल फील्ड में एक आकार ले रही है। अगले एक साल में यहाँ बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का व्यापारिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
0: झरिया CBM ब्लॉक 1 को कोल इंडिया की पहली कोल बेड मीथेन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। अनुमान है कि इस इलाके में करीब 25 बिलियन क्यूबिक मीटर कोल बेड मीथेन गैस का भंडार मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से निकालने के लिए 5 कोर होल और 5 टेस्ट वेल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 टेस्ट वेल में हाइड्रो फ्रैक्चरिंग का काम भी पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे पर काम जारी है।
2: उस मीथेन को वैज्ञानिक ढंग से निकाल करके व्यवहारिक ढंग से अपने ऊर्जा के स्रोतों में हम ला पाए, इस दिशा में हमारा मुन्नीडी में एक एरिया वन के तहत हमने लगभग 25 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार लगभग 33 स्क्वायर किलोमीटर में इसको हमने चिन्हित किया है और इसकी विभिन्न इनिशियल प्रक्रिया 5 बोर होल 5 टेस्ट वेल ये सब हम कर चुके हैं और 2 से गैस का निकलना भी शुरू हो गया है और इसका कमर्शियल यूज पाइपलाइन बिछा करके मुझे लगता है कि विद इन 1 ईयर हम लोग इसको शुरू कर लेंगे।
0: कोल बेड मीथेन गैस खदानों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती रही है, क्योंकि इसकी मौजूदगी भूमिगत खनन को जोखिमपूर्ण बनाती है। BCCL के CMD मनोज कुमार अग्रवाल बताते हैं कि धनबाद की भूमिगत खदानों से कोल बेड मीथेन गैस निकालने के बाद न सिर्फ गैस विस्फोट का खतरा कम होगा बल्कि झरिया में भूमिगत आग और भूधंसान जैसी समस्याओं पर भी काबू पाने में मदद मिल सकती है। यानी ये परियोजना सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं बल्कि खनन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।
2: हमें लगभग 125 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू की प्राप्ति होगी और ये प्रभा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को ये कार्य दिया गया है जो कि इस कार्य में बड़े ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। और एक हमें साइड में दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो अंडरग्राउंड कोल माइंस चलती हैं उससे जब मीथेन गैस ही कार्य करते समय खतरनाक होता है जी, तो वो भी निकल जाएगा, उसका फायदा भी होगा, ऊर्जा का स्रोत में भी आएगा और गैस रहित अंडरग्राउंड माइनिंग जब उसमें होगी तो वो सुरक्षा के दृष्टि से बड़ा उपयोगी।
0: आपको बता दें कि कोल बेड मीथेन वो प्राकृतिक गैस है जो लाखों वर्षों तक कोयला बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसकी परतों में जमा रहती है। गैस की ऊष्मा क्षमता करीब 8500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, जो प्राकृतिक गैस के लगभग बराबर है, इसलिए इसे एक बेहतर स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इस कोल बेड मीथेन गैस का उत्पादन शुरू होने के बाद इसका इस्तेमाल रसोई में PNG के रूप में, गाड़ियों में CNG के रूप में, उर्वरक उद्योग में यूरिया और अमोनिया बनाने के लिए, जबकि गैस से चलने वाले पावर प्लांट में मीथेन को जलाकर बिजली पैदा की जा सकती है। IIT ISM के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार मानते हैं कि आने वाले समय में झरिया की खदानों से निकलने वाली ये गैस एनर्जी सेक्टर में देश की तस्वीर बदल सकती है।
3: देखिए, कोल बेड मीथेन का भविष्य में बहुत ही ज्यादा संभावना है। कारण ये है कि कोल बेड मीथेन का मतलब यह कि मीथेन एक प्राकृतिक गैस है जो कि प्रचुर मात्रा में कोयला के परत के बीच में उपलब्ध है। तो अगर आप भविष्य में देखेंगे तो इसका यूज ऑटोमोबाइल से लेके हाउसहोल्ड में आपका जो गैस यूज हो रहा है उसमें आप यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल में जो CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है उसमें इसका यूज हो सकता है। हाउसहोल्ड में आप PNG जो पाइप नेचुरल गैस है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर आपका इंडस्ट्रियल जो भी सेक्टर्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में गैस के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स में मशीन को चलाने के लिए जो गैस का यूज करते हैं जिससे आपको ऊर्जा मिलती है उसमें आप इसका कोल बेड मीथेन का आप उपयोग कर सकते हैं। अब मीथेन जो है वो कोयला के परतों में ही बनता है जो नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से बनता है, तो हमारे पास मीथेन गैस की कोई कमी है नहीं। और मीथेन गैस को आप कॉम्प्रेस्ड करके आप उसको शुद्ध करके आप किसी भी सेक्टर में उसका यूज कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो हमको फायदा हमारे देश को मिलने वाला है वो ऊर्जा सशक्तिकरण में।
0: मौजूदा समय में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल, गैस और कोयले का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में BCCL का ये प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होने वाला है, इसीलिए इसे एक नई ऊर्जा क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। धनबाद से सिथुन मोदक, गुड न्यूज टुडे।
4: और अगली खबर है नीट से जुड़ी हुई, नीट री एग्जाम को लेकर, जो 3 दिन बाद यानी कि 21 जून को

0: और महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट री एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने बिना किसी गड़बड़ी के री एग्जाम कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही है। और यही वजह है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए पहली बार एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से आई हैं, जहां परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को मदुरई से तिरुनेलवेली तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मॉक ड्रिल की गई। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को पहले विमान के जरिए दिल्ली से मदुरई ले जाया गया, इसके बाद उन्हें वायुसेना के अधिकारियों की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से तिरुनेलवेली आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड तक पहुंचाया गया, ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए।
1: मई महीने में हुआ नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक होने के बाद देखा जा रहा है कि देश भर में इस मामले को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पहले तो पेपर को रद्द कर दिया गया, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और फिर इसका री एग्जामिनेशन 21 जून के लिए घोषित किया गया, जिसको बस अब 3 दिन का ही वक्त बाकी रह गया और इसको लेकर भी सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। देश में पहली बार देखा जाएगा कि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए देश की आर्मी और साथ ही एयरफोर्स दोनों की मदद ली जाएगी। एयरफोर्स जो परीक्षा केंद्रों तक जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो पहुंचाएंगे और साथ ही जो आर्मी है परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में मदद करेगी।
0: एयरफोर्स की मदद लेने के अलावा सरकार इस बार सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए है। इसी चौकसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
2: So we had a meeting with the telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a neat leak paper. The moment you are allowing that, any platform, whenever you create an account on Google or Gmail, it says what you can, what you cannot. So we had made a request that please do not allow. And after informing them about a channel, they would block them. We had to block 200 channels.
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए तैयारियों में जोर शोर से जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई है। वहां सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान एसपी प्रवीण नायक ने पिपराली रोड पर मौजूद विभिन्न हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स में जाकर तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से बात की, जिसमें उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की है।
3: जो नेक्स्ट 21 जून को जो नीट एग्जाम होने वाले हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में आज पूरे पुलिस के द्वारा पूरा कोचिंग इलाके अंदर हमने फ्लैग मार्च और भ्रमण किया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत भी किया था। तो उनसे ये जानकारी लिया गया कि कोई भी चीज़ें अफवाह या कुछ भी चीज़ें अगर आपके इनके न्यूज़ संज्ञान में आ रहे हैं तो हमारे नॉलेज में लेके आए और इसके ऊपर हम एक्शन कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे बातचीत किया गया था, उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी बातचीत किया था बच्चों से। इसके साथ साथ हमने जो भी नीट एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना अगर कोई हमें देना चाहता है तो उसके एक मोबाइल नंबर हमने जारी किया तो उसके बारे में भी सभी बच्चों को हमने बताया था।
0: री एग्जाम के लिए एनटीए और सरकार की कोशिशों को देखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस बार फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद भी जताई है।
4: जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था तो एग्जाम रद्द हो गया था और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है और इस बार उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
5: अनन्या।
4: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
5: जी सर।
4: तो अब दोबारा आप री एग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं?
5: जी सर।
4: तो अब कितना अप्रीहेंशन है? इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की अप्रीहेंशन है एज ए स्टूडेंट?
5: सर, आई एक्सपेक्ट कि पेपर सही से हो, फेयरली कंडक्ट हो। पिछली बार हमारी मेहनत वेस्ट गई थी, हमने 3 मई के लिए स्ट्रेटजाइज किया हुआ था पूरा और वो पूरी चीज उल्टी पड़ गई हमारे ऊपर ही। तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो।
4: इस बार सरकार ने बड़े अरेंजमेंट्स किए हैं इसको फुल प्रूफ रखने के लिए कि कोई लीक्स ना रहे, और किस तरह देखते हैं उसको?
6: हम होप तो यही कर रहे हैं कि इस बार लीक नहीं होएगा पेपर, लेकिन एक वो चीज होती है कि पहले जब हमने तैयारी कर रहे थे तो

0: एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी हमारी तैयारी करने की. उसके बाद फिर हम घर गए, उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमें पता चल रहा है कि दोबारा पेपर करना पड़ रहा है. तो फिर वो चीज एक मेंटल हैरेसमेंट थी हमारे लिए थोड़ा टाइम के लिए. लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं हम.
1: गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था.
2: आई होप कि इस बार ना हो ली, क्योंकि काफी जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इस बार. तो
3: कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी रोज की?
2: 14-15 घंटे तो रोज.
4: कुल मिलाकर कोशिश इस बार यही है कि नीट यूजी जैसी अहम परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो पाए. दिल्ली से अनमोल बाली, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
5: और अब उन लोगों के लिए पते की बात जो गुलाबी नगरी जयपुर की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं. इस बात से बेफिक्र होकर कि गाड़ी चलाने के तौर तरीकों पर AI कैमरों से नजर रखी जा रही है. जयपुर के मुख्य चौराहे रामबाग के ट्रैफिक लाइट पर एक ऐसा हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया गया है जो चौराहों पर पहुंचते ही किसी की गाड़ी का सारा रिकॉर्ड एक बड़ी LED स्क्रीन पर दिखा देगा. यानी बड़ी सी स्क्रीन पर किसी भी वाहन की कुंडली खुल जाएगी. चौक चौराहों पर बेइज्जती से बचने के लिए यह जरूरी है कि अब ट्रैफिक नियम न तोड़ा जाए.
6: सीट बेल्ट का प्रयोग करें, अन्यथा आपका चालान हो सकता है. धन्यवाद.
4: तकनीक के इस दौर में व्यस्त सड़कों या बड़े चौक चौराहों पर विज्ञापन के लिए इस तरह की LED स्क्रीन्स दिखना अब कोई नई बात नहीं है. लेकिन जयपुर शहर के चौराहों पर इस तरह की स्क्रीन्स को देखकर ये मान लेना आपकी बड़ी गलती साबित हो सकती है. ऐसे डिजिटल साइनेज सिस्टम के सामने से निकलने पर आपके वाहन की पूरी कुंडली इस LED स्क्रीन पर खुल जाएगी.
7: जयपुर के सबसे बिजिएस्ट यानी कि सबसे हैवी ट्रैफिक वाले चौराहों पर एक नई पहल की जा रही है, जिसमें कुछ ऐसी स्क्रीन्स लगाई जा रही है जहां ट्रैफिक के चलते ही वहां पे गाड़ियों के नंबर रिफ्लेक्ट किए जाएंगे. और वो नंबर ऐसे होंगे कि वहां मेंशन किया जाएगा कि इस गाड़ी के नंबर पर कितने चालान हैं, क्या उनके नाम पे कोई चालान है भी या नहीं है, है तो टोटल अब तक कितने हैं, कितने अमाउंट के हैं, क्या उस गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है, क्या उस गाड़ी का PUC हो रखा है. ये सब चीजें एक डेटा के जरिए इन स्क्रीन्स पे दिखाई जाएंगी. ये कुछ कमर्शियल स्क्रीन्स है जो चौराहे पे लगी हुई है, और इन स्क्रीन्स पे जैसे ही ट्रैफिक का मूवमेंट होता है वैसे ही गाड़ी के नंबर आते हैं, और साथ ही साथ में उनका जो रिकॉर्ड होता है वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से, जैसे गाड़ी का नंबर अभी आ रहा है और नीचे लिखा आ रहा है कि दिस कार हैज नो चालान. इसका मतलब यही है कि इस गाड़ी के नंबर के आगे कोई चालान नहीं है, इनके अभी तक कोई चालान नहीं हुआ है. पर कोई गाड़ी ऐसी हो जिसके नाम पे ऑलरेडी 5 से 6 या जितने भी अनपेड चालान हैं वो अभी तक हों, तो वो यहाँ पे बताए जाते हैं, पॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है.
4: साफ है कि जयपुर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर बच निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब नामुमकिन हो गया है. दरअसल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार किलों के लिए मशहूर गुलाबी नगरी के रामबाग सर्कल पर जो डिजिटल बिलबोर्ड लगाया गया है वो रियल टाइम ट्रैफिक अवेयरनेस स्क्रीन नाम की तकनीक है. रामबाग चौराहे पर पहुंचते ही किसी भी गाड़ी से जुड़ा सारा रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा. दरअसल ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरे के जरिए उस चौराहे से गुजरने वाली किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी गाड़ी के नंबर को स्कैन कर लेता है. स्कैन करते ही AI बेस्ड सिस्टम वाहन नंबर को सरकारी डेटाबेस से मैच करता है. फिर 12 सेकंड के अंदर पेंडिंग चालान, जुर्माना राशि, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी LED स्क्रीन पर फ्लैश होने लगती है. करीब 4 से 5 सेकंड तक वाहन की सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है.
8: इसी के तहत हमने एक लोगों का तक उनके चालान की जानकारी पहुंचे कि उनकी गाड़ियों के कितने चालान पेंडिंग है. इस प्रोजेक्ट के तहत ही हमने ये जो रामबाग पर आप स्क्रीन देख रहे हैं ये स्क्रीन हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ की है. इस प्रोजेक्ट के तहत जो ANPR कैमरे उस सर्किल के ऊपर इंस्टॉल्ड किए गए हैं, और इन कैमरे के साथ साथ जो हमारा ई वाहन जो हमारा अदरवाइज ऐप है, वेबसाइट है, जिसके ऊपर सभी वाहनों की जानकारी रहती है और वाहनों का जो भी डिटेल है चालान का वो रिकॉर्ड रहता है. मोमेंट जब कोई इस जंक्शन को क्रॉस करता है तो ANPR कैमरा उस गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करता है और रीड करके यदि उसका ऑलरेडी कोई चालान पेंडिंग है तो वो स्क्रीन के ऊपर शो करता है।
4: पेंडिंग चालान, जुर्माना राशि का बकाया या पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट एक्सपायर होने की जानकारी तुरंत अगले ट्रैफिक चेक पॉइंट पर खड़े पुलिस कर्मी को भेज दी जाती है, जिस पर वो वाहन मालिक को रोककर पेंडिंग चालान या दस्तावेज की कमी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद मौके पर ही चालान भरने की सलाह दी जाती है। अगर फिर भी बात समझ में न आए तो पुलिस की तरफ से गाड़ी जब्त करने का रास्ता हमेशा खुला है।
8: अभी जो एजॉन हमारा सिस्टम है उस पर हमारे लोगों को हमने या तो अभय कमांड कंट्रोल के थ्रू या अदरवाइज जो हमारे पॉइंट पर डिप्लॉयड लोग हैं उनके माध्यम से हम उन वाहनों को रोकते हैं, उनको इस चीज की जानकारी देते हैं या अदरवाइज किसी के सीरियस ऑफेंसेस रिकॉर्डेड हैं तो हम उधर इमीडिएट उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं।
4: कुछ सेकंड्स के अंदर ही पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई के पीछे एक कंट्रोल रूम है जो रामबाग चौराहे पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम यानी AI कैमरे के जरिए नजर रखता है।
7: तो इस ATC कंट्रोल रूम में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ से सब कुछ मॉनिटर किया जाता है, कहाँ पे कौन सिग्नल तोड़ रहा है, कितना जो कितने लोग हैं जिनके कितने पीछे के चालान हैं, वो सब यहाँ से मॉनिटर हो रहा है। पूरा डेटा जो है वो यहाँ रहता है और यहीं से लोगों तक चेतावनी जाती है कि इस गाड़ी के इतने चालान है तो उस मौके पे मौजूद जो भी अफसर है वो वहां पे रोक ले उनको, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आगे की जा सके। ये वो जगह है जहां से वो सब कुछ एक साथ कंट्रोल किया जाता है और यहीं पे मैं इनसे बातचीत करते हुए आपको बताऊंगी कि कैसे वो सब मॉनिटर होता है, कैसे रोका जाता है और कैसे आगे की जो कार्रवाई है वो की जाती है। सर, आपने एक स्क्रीन खोल रखी है जिसमें हमें स्कैंड और काफी सारे अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो दिखाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से मॉनिटर करते हैं वो बताइए।
9: जी, हमारे पास ये स्क्रीन है, इस पे जैसे ही कोई व्हीकल डिटेक्ट होता है तो उसके नंबर और उसकी फोटो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तुरंत हमें उस नंबर को वायरलेस सेट के द्वारा संबंधित अधिकारी को इन्फॉर्म करते हैं, वो गाड़ी वहीं साइड में रुकवा लेते हैं चौराहे पे और उसके खिलाफ उचित जो कार्रवाई बनती है वो की जाती है वहां।
7: अच्छा, यहाँ पे एक बार आप हमें स्क्रीन ओपन करके दिखा दीजिए जहाँ की वो उस ट्रैफिक सिग्नल पे जो स्क्रीन लगाई है तो वो कैसे लोगों का नंबर।
9: हमारे यहाँ जो भी ये गाड़ी डिटेक्ट हुई है, अभी ये गाड़ी डिटेक्ट हुई है तो इस गाड़ी का नंबर और हम वहाँ संबंधित चौराहे पे बताएंगे और वहाँ रोक लेते हैं।
7: पिछले कुछ चालान भी इसमें दिखाए जा रहे हैं, कितने चालान है इस गाड़ी के।
9: इसके जितने भी चालान पेंडिंग है वो सारे इसमें डेटा दिखाता है।
7: पेंडिंग चालान जैसे इसमें 24 चालान पेंडिंग दिखाए जा रहे हैं, अमाउंट भी दिखाया जा रहा
9: है। अमाउंट भी दिखाता है और इसमें चालान भी दिखाता है, दोनों चीजें जो भी इसके चालान पेंडिंग है वो सारे दिखाता है इसमें।
4: देश के मेट्रो शहरों में जयपुर की गिनती होती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। महानगर होने की वजह से 40 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। पर्यटकों के तौर पर भी बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों या कमर्शियल वाहनों से जयपुर आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना एक बड़ी चुनौती है।
8: जयपुर में लगभग हम कहें तो लगभग रफली 250 पॉइंट्स हमारे ट्रैफिक पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल्ड है। इन सभी पॉइंट्स में से लगभग 20% पॉइंट्स के ऊपर हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए ITMS बेस्ड कैमरे हैं, जहां पर कुछ जगहों पर वायलेशंस रिकॉर्ड्स होते हैं, कहीं पर हमारे ANPR कैमरे हैं। जब ITMS बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ उसके साथ साथ ऑनलाइन चालान के प्रोसीजर भी स्टार्ट हुआ। आज लगभग 5,000 से 6,000 चालान ऑनलाइन रोज जयपुर सिटी के अंदर जनरेट होते हैं जो लोगों के पास ऑनलाइन मैसेजिंग के थ्रू रजिस्टर्ड ओनर के पास पहुंचते हैं। इनमें से कई ऐसे ओनर्स हैं जिनको शायद पता भी नहीं होता या अदरवाइज वो उसको अवॉइड कर देते हैं। एक ही वाहन के लगभग 5, 10, 15, 20 चालान तक भी एक ही व्हीकल के पेंडिंग रह जाते हैं और कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं।
4: ऐसे में जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को तकनीक से जोड़ना जरूरी हो जाता है और यही वजह है कि इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम आधारित कैमरे और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को नई मजबूती देने का रास्ता चुना गया है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के नए ट्रेंड की, जो इन दिनों बॉलीवुड में खूब चल रहा है। कुछ महीने पहले अगर आपको याद हो तो अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से खुद को अलग कर लिया था और अब दो दिन पहले ऐसा ही एक फैसला म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने भी लिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो लोगों को हैरान कर रही हैं। उन्होंने इंस्टा पर अपनी थकान का जिक्र किया है, डेडलाइन के प्रेशर की बात भी उन्होंने कही है और खुद के सपने पूरे करने का जिक्र भी किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बॉलीवुड में चल क्या रहा है। दरअसल प्रीतम का फैसला इसलिए भी फैंस को बहुत हैरान कर रहा है क्योंकि प्रीतम फिलहाल अपने करियर के पीक पर हैं। ऐसे में उनकी पोस्ट के तमाम मायने, तमाम अटकलें उनकी पोस्ट से निकाली जा रही हैं। माना जा रहा है कि प्रीतम अब बिल्कुल नई राह पर निकलने वाले हैं। कहने वाले तो वैसे ये भी कह रहे हैं कि प्रीतम का ये कदम बॉलीवुड में बदल रहे उस पैटर्न की वानगी है जहां पर सितारे किसी और की नहीं बल्कि खुद की सुनना चाहते हैं, यानी कि वो खुद के बॉस बनना ज्यादा पसंद करते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics, Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
12: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबर कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज़ टुडे।

आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नकारात्मक ऊर्जा की, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभावों की और नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती कहां से है इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम के 6:58 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र प्रातः 11:32 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आजकल आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य बातचीत में हम नकारात्मक ऊर्जा इस शब्द का प्रयोग करते हैं, निगेटिव एनर्जी का। नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव एनर्जी क्या होती है? देखिए, हर व्यक्ति और हर वस्तु से उसके स्वभाव के अनुसार तरंगे निकलती रहती हैं, व्यक्ति से भी निकलती हैं और जो टेबल कुर्सी कृत्रिम चीज है जिनमें प्राण नहीं है उनके अंदर से भी तरंगे निकलती हैं। किसी जीवित व्यक्ति के अंदर से निकलने वाली तरंगे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और एक साथ जब ढेर सारी तरंगे इकट्ठा हो जाती हैं तो वो इकट्ठा हो करके एक एनर्जी बन जाती हैं, एक ऊर्जा बन जाती हैं इकट्ठा हो करके। अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है और खराब संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक यानी निगेटिव होती है। जब एक साथ ढेर सारी नकारात्मक तरंग इकट्ठा होती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है और नकारात्मक ऊर्जा
हमारे और हमारी तरक्की के बीच में आती है और नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ रोक डालती है। तो बेसिकली नकारात्मक ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, आपके घर के लोगों से, आपके घर के सामान से, आपके घर की वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर के मामले हल होंगे, संपत्ति खरीद सकेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपके घर में कोई जरूरी नहीं है कि निगेटिव एनर्जी ही हो, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो कैसे जाने कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है? आपके घर में मिठाई, चीनी, गुड़, अगर ये खुला रहता है फिर भी चींटियां नहीं लगती, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है। बार बार लगाने के बावजूद अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है, तमाम जतन करने के बावजूद तुलसी सूख जाती है, तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर घर में काफी पैसा बीमारियों और दवाइयों में खर्च होता है, पैसा आता तो है लेकिन बीमारी में काफी पैसा जाता है, तो इसका मतलब घर में निगेटिव एनर्जी है। तमाम जतन करते हैं, तमाम उपाय करते हैं, फिर भी घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है, तो आप ये समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अवश्य है। अब मान लिया आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो इसके नुकसान क्या हैं? अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो घर में प्रवेश करते ही आपका मन खराब हो जाएगा।
घर के लोगों में तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। बिना कारण के बीमारियों में या फालतू की वजहों में, फालतू की चीजों में अनावश्यक पैसा खर्च होगा। और अगर घर में निगेटिव एनर्जी है तो आपके कोशिश करने के बावजूद सारे महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे और अच्छा करने के बावजूद आपको जीवन में बदनामी मिलेगी, जीवन में अपयश मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, संयम से काम लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया और आपको ये बात समझ में आ गई कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो, या ऐसी व्यवस्था बनाइए कि घर में सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। कोशिश करिए कि घर में जो पोंछा लगाते हैं उस पोंछे के पानी में एक चम्मच या दो चम्मच नमक डालें, नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। हर अमावस्या को, महीने में एक अमावस्या आती है, अमावस्या को घर की विधिवत सफाई करिए और जो भी वस्तु आपके काम की ना हो, आपके प्रयोग में ना आती हो, उस वस्तु को हटा दीजिए। प्रातः काल घर में पूजा स्थान पर बैठ के मंत्र का जप करिए और 3 बार शंख बजाइए। घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती नियमित रूप से जलाइए, खास तौर से शाम को पूजा के समय जलाइए और पूरे घर में गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती घुमाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो धीरे धीरे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, जीवन में सुख चैन और शांति आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती सामान खो सकता है, केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की नकारात्मक ऊर्जा की, अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप वैवाहिक जीवन में सुधार चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उन भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाइएगा, इसके बाद वही तिलक जरा सा खुद को भी लगा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: Achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
9: यूं ही जापानियों को सिविक सेंस में दुनिया में सबसे अव्वल माना जाता है। आप अगर ये बात नहीं जानते तो ये वायरल तस्वीरें देखिए, आप खुद इसको सलाम करेंगे। वीडियो में देखिए जरा, यहाँ हुए एक स्टेडियम में मैच के बाद फैंस यहाँ फैले कचरे को अपने हाथों से उठा रहे हैं। बच्चे हो या युवा, कचरा उठाना यहाँ छोटा काम नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, जब फैन से इसकी वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि ये आदर का मामला है, हम खिलाड़ियों का, स्टेडियम का और खेल का सम्मान करते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। है ना सम्मान का संदेश। इन तस्वीरों को देखिए जरा, इन्हें देख आप खुद समझ जाएंगे कि कभी कभी हमें जिनसे खतरा होता है वही हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। वीडियो में देख रहे बत्तख के बच्चों का एक झुंड अपनी माँ से बिछड़ गया, जहाँ उनकी मुलाकात इस गोल्डन रिट्रीवल पिल्ले से हुई। बत्तख के बच्चे इस पिल्ले के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो वो जब इन्हें सूंघ कर जाने लगा तो वो भी उसी के पीछे हो लिए।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
10: फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवताल श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान, सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंद्रकोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क। दुबई और लंदन तक भेजे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के आम, नरसिंहपुर में विदेशी तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं जम्बो केसर आम, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन। गुरुग्राम पहुंचा 4 देश ट्रैवल कर चुका स्ट्रे डॉग आलोका, एनिमल लवर्स ने ऑटोग्राफ के तौर पर पंजे के लिए प्रिंस डॉग को पीस का ब्रांड एम्बेसडर दिया गया नाम। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा ओडिशा के रायगढ़ के राजा महोत्सव के यहाँ, जहाँ ओडिशा के पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पारंपरिक लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लिया जा रहा है।
13: ओडिशा के रायगढ़ में राजा महोत्सव की धूम है। इस उत्सव में पारंपरिक झूलों के बीच लोकगीत और लजीज पारंपरिक पकवानों ने फिजा में रौनक ला दी है। पारंपरिक ओडिशी और संबलपुरी नृत्यों के जरिए ओडिशी लोक कला यहां प्रदर्शित हो रही है। भव्य सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। यहां महिलाएं पारंपरिक ओडिशी वेशभूषा में नजर आईं और राजा झूला का आनंद उठाते दिखी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के तुलमुल में मौजूद माता खीर मंदिर में माता खीर भवानी मेला 19 जून को लगने जा रहा है। इस मेले और उत्सव को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस मेले में सैकड़ों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए इस मेले के लिए और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा ताइक्वांडो कैंप लगाया था, जिसमें इलाके की बच्चियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। यहां ताइक्वांडो कोच ने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए और उनका आत्मविश्वास मजबूत किया। इस कैंप में आज समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुंछ के एसपी खुद बच्चियों के उत्साह वर्धन के लिए आए। बेहद पवित्र और दुर्गम किन्नौर कैलाश यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी। इस मुश्किल धार्मिक यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा वजहों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को ही किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। किन्नौर कैलाश यात्रा रिकांगपियो के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। गंगटोली और गणेश पार्क इस यात्रा का पहला पड़ाव है। करीब 14,900 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पार्वती कुंड में स्नान के बाद अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। इस दुर्गम खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहां समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मथुरा के संत आशुतोष ब्रह्मचारी और गायिका प्रांजल दहिया ने भस्म आरती में हिस्सा लिया। आज सुबह की भस्म आरती खास रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। बाबा महाकाल का आज भांग, चंदन और आभूषणों के साथ राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह से लंबी लंबी कतारों में मौजूद भक्तों ने महाकाल की दिव्य भस्म आरती में हिस्सा लिया।
10: और अब बात करते हैं मॉनसून की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की दस्तक से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट आया। मौसम विभाग ने 17 से 22 जून के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने की आशंका जताई है और हिमाचल के कुछ राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहने वाली है। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी।

0: मानसून की आहट से बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख में चौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं में नमी महसूस की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून समय पर दस्तक देने वाला है। 18 जून से 22 जून के बीच में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं तो कभी बारिश हो जाती है, कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया। दिल्ली NCR में गर्मी से मिली राहत का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही मौसम नया ट्विस्ट भी लेकर आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जून से उत्तर पश्चिम भारत का एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
1: देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग अलग मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है। बात अगर दिल्ली NCR की जाए तो इस वक्त तापमान थोड़े से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि 35 डिग्री है, लेकिन जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा ही जो है महसूस की जा रही है, क्योंकि तापमान एकदम से वापस बढ़ा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, उसका असर जो है मैदानी राज्यों पर देखने को मिला था और दिल्ली NCR में भी लगातार जो है आंधी तूफान और हल्की बारिश जो है वो देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ गए। हालांकि 18 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ वापस से सक्रिय होगा, जिसका असर पहाड़ी राज्य समेत जो है दिल्ली NCR और बाकी सभी मैदानी राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की जो बारिश है दिल्ली NCR में देखी जा सकती है, पहाड़ी राज्यों पर भी जो है अच्छी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं मानसून की स्थिति की बात करूं तो मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के अधिकतम हिस्से जो है वो मानसून कवर कर चुका है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दी है और इसके साथ ही अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों में जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 23 जून के आसपास की जो तारीख है वो बताई गई है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की तरफ मॉनसून बढ़ेगा। हालांकि अभी महीने का अंत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास जो है दिल्ली NCR में मानसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो तापमान थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल के बाद वापस से थोड़ी सी स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा।
0: पिंक सिटी, जयपुर, लेक सिटी, उदयपुर समेत कई जिलों में गर्मी का असर एक बार फिर से बढ़ गया। हालांकि प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी थी। कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
2: प्री मानसून के सीजन में आसमान में बादल और सूरज की नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में कहीं जगह तेज तो कहीं जगह हल्की बारिश देखी जा रही है और ऐसे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झुंझुनू में दर्ज की गई है, जो कि 66 mm है। वहीं टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइएस्ट टेम्परेचर इस वक्त फलौदी में है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते ईस्ट राजस्थान में अलग अलग दिन अलग अलग मौसम देखा जाएगा, जिसमें बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और वहीं जो डेजर्ट एरिया है, जो जोधपुर जैसलमेर संभाग है, वहां पे 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड के डस्ट स्टॉर्म की भी चेतावनी दी जा रही है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
3: देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यदि देखें भारत मौसम विभाग की तरफ से जो जारी की गई थी, तो फर्स्ट स्टेज में भी ये स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं, इनमें जैसे ही मानसून प्रोग्रेस होगा आगे बढ़ेगा तो हम लोग राजस्थान में मानसून के पहुंचने की स्थिति जैसे ही स्पष्ट होगी तो आपको अवगत कराएंगे।
0: पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 जून तक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा तक मानसून दस्तक दे चुका है। फिलहाल मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 7 दिन से अटका हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और फिर 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ। 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है। 17 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब,

0: भारतीय नौसेना इस हफ्ते कोलकाता में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को अपने नाम करने जा रही है। नौसेना एक ही दिन एक साथ 3 एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। यह भव्य समारोह 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान आयोजित हो सकता है। देश के समुद्री इतिहास में यह बेहद दुर्लभ मौका होगा जब फ्रंटलाइन के 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ देश की सेवा में समर्पित किया जाएगा। हाल के सालों में ये ऐसा दूसरा मौका है जब भारतीय नौसेना एक साथ 3 युद्धपोतों को अपने बेड़े का हिस्सा बनाने जा रही है। इस त्रिकोणीय कमीशनिंग में INS दूरागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक एक साथ नौसेना का हिस्सा बनेंगे। यूपी के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली घरेलू कार्गो फ्लाइट का सफल संचालन हो गया। आज इस एयरपोर्ट पर चेन्नई से करीब 20 टन मिश्रित कार्गो लेकर मालवाहक पहली फ्लाइट पहुंची, जिसका वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। कार्गो की लैंडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये विमान वापस चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अफकॉम होल्डिंग का बोइंग 737-800F मालवाहक विमान खाद्य पदार्थ, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल डिवाइस और अन्य कंसोलिडेटेड शिपमेंट लेकर नोएडा पहुंचा था। इस सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया है कि एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बांके बिहारी मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं के संबंध में गहन विचार मंथन किया गया और मंदिर प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत झूले के जीर्णोद्धार का फैसला भी हुआ है। कनाडा के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप चर्चा का विषय है। बस के आकार और डिजाइन में तैयार किया गया ये बस शेल्टर अपनी अनूठी बनावट की वजह से लोगों के साथ साथ पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और बैठने का सिस्टम ठीक वैसा ही बनाया गया है जैसा बसों में होता है। लोगों को बस स्टॉप का ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है।
1: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया।

0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाबा बर्फानी के धाम तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा। मन में अटूट आस्था और दिल में विश्वास लिए बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का जत्था जल्द निकलने वाला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर किसी भी खतरे से निपटने की एक्सरसाइज की। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग आपातकालीन हालातों का अभ्यास किया, जिसमें सुरक्षा बलों, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे से तालमेल बनाकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
1: हमारा जो विजिट कठुआ रेलवे स्टेशन का है, ये यात्रा से ही मुतल्लिक है। आज यहाँ पे हमने ऑल एजेंसीज के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजों की और जरूरत है। कंबाइंड एक होटल सबमिट करेंगे।

0: पठानकोट में भी विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अंतरराज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौकों, मुख्य मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर रेड अलर्ट नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी और जांच की जा रही है।
1: सारे व्हीकल्स दी चेकिंग हो रही है कि उस वाहन चाहे भी कोई जिहड़ी है यात्रा वा ये सही तरीके नाल शुरू होके तो संपन्न सही तरीके नाल हो जाए, कोई भी अनसुखामी घटना ना वापरे, उन्हां दी डायरेक्शन ते ये रेगुलर काम जिहड़ा चलता रहेगा। नाल ही साडे माणयोग SSP पठानकोट जी वालों भी इस तो पहला भी रेगुलर ही सर्च ऑपरेशन ते फूड पेट्रोलिंग भीड़ भड़ा वाली जगह पर चैकिंग ये रेगुलर चल रही है, तो उन्होंने डायरेक्शन से ये रेगुलर सारे काम हो रहे हैं, जो रेगुलर आने वाले समय में चलता है।
0: सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी चिकित्सा सहायता केंद्र 28 जून तक पूरी तरह शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन बूथ 25 जून तक ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सेवा दल और लंगर कमेटियों के सदस्य अमरनाथ पहुँचने लगे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, दवाइयों समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सेवादारों ने अमरनाथ धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
2: आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं, बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: सेवा समितियों की तरफ से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
3: हमारा पशुपतिनाथ का लंगर जो गुफा पे है, इसकी 5 गाड़ियां ऑलरेडी 5 तारीख को गुफा पहुंच चुकी है, जो बालटाल बेस कैंप को तैयार कर चुकी है। अब वो टीम ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ से 18 ट्रकों की सामग्री लेके यहाँ से बालटाल की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सारा सामान गुफा की तरफ जाएगा और अमरनाथ बर्बानी के जो दर्शनों पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष लंगर, प्लस इस साल हमारी संस्था के द्वारा लगभग 50 मसाजर मशीनों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें यात्री विश्राम करके अपने पैरों को सुकून देंगे।
0: जाहिर है आस्था, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर सेवा समितियों यात्रियों के स्वागत और सहायता के लिए जोर शोर से जुटी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। बता दें, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी। पठानकोट से पवन सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
5: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने और कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 347 अंकों की बढ़त के साथ 77,155 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 24,085 पर बंद हुआ। रुपए की मजबूती और वीक ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 4800 रुपए गिर गया और ये 1,54,400 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5300 रुपए गिरकर 2,55,400 रुपए पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव खत्म होने से 17 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 94.50 के स्तर पर बंद हुआ।
4: कल के टू से जुड़ा बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम तो एनिमेशन कैरेक्टर श्रेक की 17 साल बाद वापसी। जी हाँ, आ गया है श्रेक 5 का ट्रेलर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
5: बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम मेगा मूवी कल्कि 2 से जुड़ने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। चर्चा है कि आलिया भट्ट कल्कि 2 में अहम किरदार निभा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूटिंग शुरू कर ली है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई। इस फिल्म में आलिया को दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट किया गया है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इस रहस्य से पर्दा उठने में अभी वक्त है क्योंकि फिल्म के दिसंबर में रिलीज होने की चर्चा है। बड़े पर्दे पर अभिनेत्री शर्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। खबर है कि मशहूर डायरेक्टर लवरंजन की अगली फिल्म में दोनों एक साथ दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लवरंजन अपनी अगली फिल्म के लिए शर्वरी को फीमेल लीड के रूप में कास्ट करने पर सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शर्वरी ने इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लवरंजन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वो कार्तिक और शर्वरी को पूरी स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद शर्वरी फिल्म पर अपना आखिरी फैसला लेंगी।

0: जी।
1: फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर आ गया है। रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि कुछ रिश्ते किस्मत पे लिखे होते हैं, कुछ प्यार से बनते हैं, कुछ हमेशा के लिए कायम रहते हैं। रिश्तों के ऐसे ही ताने बाने को लेकर फिल्म तेरा मेरा नाता, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बैरी और मेघना मुख्य किरदार में है। सीपी प्रोडक्शन के सहयोग से ब्लू डायमंड प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म तेरा मेरा नाता 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म को चंदा पटेल ने प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन चंदा पटेल और स्वतंत्र गोयल ने मिलकर किया है। एनिमेशन की दुनिया से गुड न्यूज आई है, क्योंकि दर्शकों को हंसाने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं श्रेक, योना और डंकी। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसी के साथ करीब 17 साल के बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई। श्रेक 5 अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है और इसके ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पैनोरमा स्टूडियोज और जैकब बाबू मिलकर फहाद फासिल की मुख्य भूमिका वाली दो मलयालम फिल्म बनाएंगे। मलयालम में बनी दृश्यम 3 की जबरदस्त सफलता के बाद पैनोरमा स्टूडियोज अब प्रोड्यूसर जैकब बाबू के साथ मिलकर दो मलयालम फिल्में बनाने पर काम कर रहे हैं। इन दोनों फिल्मों में फहाद फासिल मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्में अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। डायरेक्टर, कास्ट, टेक्नीशियन और क्रिएटिव टीम के अन्य मुख्य सदस्यों के बारे में जल्द ही जानकारी सामने आने वाली है।
2: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
5: फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। US प्रेसिडेंट ने की PM मोदी की तारीफ, कहा जब तक मोदी है दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवताल श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म से में इसे देवताओं का ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंद्रकोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क। दुबई और लंदन तक भेजे जा रहे मध्य प्रदेश के आम। नरसिंहपुर में विदेशी तकनीक से तैयार किए जा रहे जंबो के सराम, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन। गुरुग्राम पहुंचा चार देश ट्रैवल कर चुका स्ट्रे डॉग आलोका। एनिमल लवर्स ने ऑटोग्राफ के तौर पर पंजे के लिए प्रिंस, डॉग को पीस का ब्रांड एम्बेसडर दिया गया नाम।
2: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: फुटबॉल फीवर छाया है। ऐसे में फीफा में मेसी के 16वें गोल ने अर्जेंटीना के फैंस को ऐसा खुश किया कि सब सड़क पर जश्न मनाते दिखे। ऐसे में अर्जेंटीना के इस छुटकू फैन को देख लीजिए, सड़क पर खुशी के मारे थिरकता ये नन्हा फुटबॉल प्रेमी सबकी आंखों का तारा बन गया। अब देखिए ऐसी वायरल तस्वीर जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। चुक यानी इस चिकन को अपने दोस्त का काम करना बहुत अखर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वक्त उसके साथ गुजारा जाए। फिर क्या, वो आ गया काम बिगाड़ने और जब तक उसकी दोस्त ने उसे गुदगुदाया नहीं वो माना नहीं। इन तस्वीरों को देखकर यूजर्स बोल रहे हैं, असली दोस्ती तो ये चिकन जानता है। कचरा लेने तो गाड़ी हमारे यहाँ भी आती है, लेकिन तस्वीरों में मिली एक टैलेंटेड कचरा लेने वाले से। इन्हें पता है लोगों ने कहाँ कहाँ कचरा रखा है और चलती गाड़ी में बीच सड़क पर मोटर गाड़ियों बाइक्स की आवाजाही में कचरे वाले दौड़ दौड़ कर न सिर्फ कचरा उठाते हैं बल्कि अपनी गाड़ी को कहीं रुकने नहीं दे रहा। दो अजनबी जब मिलते हैं तो क्या होता है, नहीं पता तो फिर इन तस्वीरों को देखिए। एक जू में इस बच्चे को मिला व्हाइट चिंपैंजी का बच्चा। अब ये दोनों अनजाने लगे एक दूसरे को निहारने। वो बच्चे से कुछ कहना चाहता और बच्चा इस चिंपैंजी के बच्चे से कुछ कहना चाहता। मानो दोनों ने एक दूसरे की मौन की भाषा पढ़ ली और दोनों इस मुलाकात का लुत्फ उठाने लगे। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ताकने की ये तस्वीरें वायरल हैं, लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। मसाज की जरूरत सिर्फ बड़ों को नहीं बच्चों को होती है। खुद देखिए इन तस्वीरों में कैसे ये छोटा सा बच्चा मसाज का मजा ले रहा है। मानो कह रहा हो दिन भर मैं भी तो एक्टिव रहता हूँ, मुझे भी तो मसाज चाहिए।
2: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट की, जो दोबारा होने जा रही है। पेपर लीक के कारण पिछली परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से लाखों छात्र प्रभावित हुए। पेपर लीक मामले के बाद 21 जून को फिर से नीट यूजी परीक्षा होने जा रही है। पेपर लीक के आरोप के बाद करीब 22 लाख छात्रों को नए सिरे से परीक्षा देनी पड़ रही है। इस साल 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें परीक्षा कराने वाली एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने या उसका पुनर्गठन करने जैसी कई मांग की गई। सरकार ने इस हाई प्रोफाइल परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए। प्रश्न पत्रों को लेकर विशेष गंभीरता बढ़ती जा रही है। इस बार प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विमान से अलग अलग शहरों में पहुंचाए जा रहे हैं। देश भर में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट, पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती होगी। एक बड़े कदम के तहत देश में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई। छात्रों से अपील की गई है कि वो किसी भी अफवाह, फर्जी पेपर लीक या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। जाहिर है नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तारीख करीब आ रही है। इस परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी असीम बस्सी ने चंडीगढ़ में स्टूडेंट से बात की और उनकी राय जानी।
0: प्री एग्जामिनेशन जो है 21 जून को होने वाला है और उसके लिए सरकार ने काफी तैयारी की, क्योंकि पिछली बार बहुत एम्बेरसमेंट हुई थी कि क्योंकि पेपर जो है वो कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि पेपर जो है लीक हो गया था, तो एग्जामिनेशन पूरा रद्द कर दिया था। और अब री एग्जामिनेशन जो है 21 जून को होने वाला है। हमारे साथ वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था तो एग्जाम रद्द हो गया था और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है और इस बार इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
6: अनन्या।
0: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
6: जी सर।
0: तो अब दोबारा आप री एग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं?
6: जी सर।
0: तो अब कितना एप्रीहेंशन है? इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की एप्रीहेंशन है स्टूडेंट?
6: सर, आई एक्सपेक्ट कि पेपर सही से हो, फेयरली कंडक्ट हो। पिछली बार हमारी मेहनत वेस्ट गई थी, हमने 3 महीने के लिए स्ट्रेटजाइज किया हुआ था पूरा और वो पूरी चीज उल्टी पड़ गई हमारे ऊपर ही। तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो, बट ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम एयरफोर्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट टाइम इतने सारे मेजर्स दिए हुए हैं तो कुछ कह नहीं सकते, बट होपफुली अच्छा ही जाएगा।
0: तो कितना जोल्ट था आपके लिए, कितना सेटबैक था जब पिछली बार कैंसिल हुआ? काफी मेहनत की होगी दिन रात तो कैंसिलेशन हो गया।
6: सर, मेंटली टैक्सिंग तो ऑब्वियसली था, सारे एस्पिरेंट्स के लिए था, वी आर ऑल एट द सेम लेवल नाउ। बट हाँ, ऑब्वियसली एडमिशन हो रही थी, अब नहीं हो रही है, मतलब पता नहीं है, अब अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो तो एक फैक्टर है।
7: कहा तो उन्होंने पहले भी था, बट अब ट्रस्ट इश्यूज तो है सबको ही कि इस बार कैसा पेपर आएगा। पहले भी डिफिकल्ट पेपर का ही बोल रहे थे, इस बार भी हमारी तैयारी तो ऐसी सी है, बाकी डिपेंड करता है, इट्स प्रोबेबिलिटी तो ऑड्स आर नेवर जीरो की, कुछ भी हो सकता है।
0: पिछली बार ज्यादा मेहनत की कि इस बार ज्यादा मेहनत किया?
7: उतनी ही कर रहे हैं, क्योंकि पेपर तो वही है ना हमारा, रिजल्ट तो सेम ही आना था।
8: हम होप तो यही कर रहे हैं कि इस बार लीक नहीं होएगा पेपर, लेकिन एक वो चीज होती है कि पहले जब हमने तैयारी कर रहे थे तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी हमारी तैयारी करने की, उसके बाद फिर हम घर गए, उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमें पता चल रहा है कि दोबारा पेपर करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज एक मेंटल हैरेसमेंट थी हमारे लिए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं हम और यही होप है कि अब लीक नहीं होगा और मतलब जो डिजर्व करते हैं बच्चे मेडिकल में जाने के लिए और वही मेडिकल में जाएंगे, ताकि अच्छी सिलेक्शन हो बच्चों के और कट ऑफ इतनी हाई ना जाए जितनी पहले जा रही थी ड्यू टू लीक।
9: इस बार यही उम्मीद है कि पेपर बहुत अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से कंडक्ट हो जाए और कोई किसी भी तरीके की लीक ना हो, ताकि हम सब बच्चों साथ फेयर मीन्स के साथ पेपर हो जाए। बस यही उम्मीद है और गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि कमिंग ईयर्स में भी बच्चों को री एग्जामिनेशन के लिए अपियर ना करना पड़े क्योंकि इस टाइम से निकलना बहुत टफ था।
6: सर वी आर रियली मतलब हमें नहीं पता कि होगा कैसे, वी आर नॉट रियली श्योर हाउ इट विल एंड अप, बट वी आर रियली होपिंग कि बहुत फेयरली हो विदाउट एनी चीटिंग, क्योंकि एग्जैक्टली लाइक जो पिछले वाला सीन था, पिछले वाला नीट था, तो बिकॉज ऑफ चीटिंग, बिकॉज ऑफ द पेपर लीक हमारा नीट कैंसिल हुआ है और जो डिजर्व भी करते थे उनको सीट्स नहीं मिलती। अगर वो कैंसिल नहीं भी होता तो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सीट्स नहीं मिलती, तो इस बार वी आर होपिंग कि फेयरली हो विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी चीटिंग एंड स्टफ, ताकि जो डिजर्व करते हैं, जिनके मार्क्स आने चाहिए, जो सिलेक्ट होने चाहिए, दे शुड गेट इन टू देयर सीट्स।
10: आई होप कि इस बार ना हो लीक, क्योंकि काफी लाइक जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इस बार तो
11: कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी रोज की?
10: 15 घंटे, 14-15 घंटे तो रोज,
11: 16 उसके तो पानी फिर गया,
10: उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही।
2: अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती। आज बात फुटबॉलर सरप्रीत सिंह की, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड के पंजाबी परिवार में पैदा हुए 27 साल के सरप्रीत सिंह भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्हें फीफा विश्व कप के शुरुआती प्लेइंग 11 में उतारा गया। मिडफील्डर सरप्रीत सिंह ने ईरान के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहे मैच में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन से सबको लुभाया।

0: पंजाब का गांव होशियारपुर खुशी और गर्व से फूला नहीं समा रहा है, और वजह है न्यूजीलैंड के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह, जो फीफा विश्व कप की शुरुआती 11 में उतरने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए हैं। ऑकलैंड में पंजाबी माता पिता के घर जन्मे 27 साल के सरप्रीत सिंह का पैतृक गांव होशियारपुर है, जहां रहने वाले उनके पारिवारिक दोस्तों में शुमार ये परिवार भी सरप्रीत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया।
1: इस तरह सारे मेनू की, साडे परिवार नू की, सारे इलाके नू बहुत खुशी है, क्योंकि साडे इस पंजाब दे विच जां इंडिया दे विच इक्को एक जिहड़ा साडा जिहड़ा पंजाब दा बोर्न हैगा, जो कि न्यूजीलैंड है, तां उह न्यूजीलैंड दा बोर्न, पर उहदा जिहड़ा मापिआं दा संबंध आ उह साडे पंजाब नाल, साडे जिले नाल आ, इस करके सानू सारिआं नू खुशी है।
0: जाहिर है उनका गांव उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर जश्न वाले एहसास से गुजर रहा है। सरप्रीत सिंह ने ऐतिहासिक फीफा वर्ल्ड कप में न सिर्फ जगह बनाई, बल्कि अपने खेल से दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों को अपना मुरीद भी बना लिया। ईरान के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ मुकाबले में सरप्रीत ने न्यूजीलैंड की तरफ से अपना विश्व कप डेब्यू किया। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच डैरेन बेजले ने भरोसा जताते हुए सरप्रीत को शुरुआत से मैदान में उतारा। 10 नंबर की जर्सी में खेल रहे इस मिडफील्डर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा मुकाबला खेला। सरप्रीत ने ईरान के गोल पर 3 प्रयास किए, हालांकि उनके प्रयास गोल में तब्दील नहीं हो सके, उन्हें सिर्फ 90वें मिनट में सब्स्टिट्यूट किया गया। उन्होंने न्यूजीलैंड के 4-2-3-1 फॉर्मेशन में मिडफील्ड में खेल दिखाया। सरप्रीत ने 2017 और 2019 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड के लिए खेला था। सरप्रीत 2018 में मुंबई में हुए इंटर कॉन्टिनेंटल कप के दौरान भारत में भी खेले थे। फीफा के नियमों के मुताबिक कोई खिलाड़ी किसी भी देश की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का पात्र तब होता है जब उसकी अपनी माँ और अपने पिता या दादा दादी नाना नानी का जन्म उस देश की धरती पर हुआ हो और उसके पास उस देश का पासपोर्ट भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
4: क्या आपके घर में सीलन आ रही है? क्या घर में जरूरत से ज्यादा धूल रहती है? क्या आपने घर में देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं? इन गड़बड़ियों का आपके भाग्य पर कैसा पड़ता है प्रभाव और क्या है इनको बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: No.
6: Oh, no.
5: Welcome to Get Real.
6: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
6: Oh, my God.
7: It's got to be deliciously desperate.
6: Why do these girls forget her?
8: She has a soft spot for troubled men.
7: Boo bloody hoo.
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
6: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
1: श्रीलंका में हो रही ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची इंडिया ए। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
2: श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हरा दिया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्रा की अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंडिया ए ने 9 विकेट पर 319 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ इंडिया ए ने टूर्नामेंट में लगातार दो हार का सिलसिला तोड़ा और रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर 403 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत पहली बार ऑल आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली।
1: तीन मैचों की ट्राई सीरीज के दूसरे वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। मैच फतह कर भारत ने सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जीएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं और उन पर्यटन स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बिहार के रोहतास लिए चलते हैं, जहां कैमूर की पहाड़ियों के बीच गुप्त धाम वाटरफॉल आपका स्वागत करने को तैयार है।

0: ऊंची नीची घुमावदार पथरीले पहाड़, गुफा के भीतर जलते हुए दिए और कुदरती सुंदरता में सिमटी अलौकिक आस्था। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिर्फ इतिहास और मैदानों का प्रदेश है, तो कैमूर की इन वादियों को देखिए। घने जंगलों के बीच गूंजती झरने की आवाज, चारों तरफ फैली हरियाली और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके भीतर खुद महादेव विराजमान है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास में मौजूद गुप्त धाम की है, जिसे गुप्तेश्वर धाम भी कहा जाता है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां प्रकृति का रोमांच भी है और महादेव की भक्ति का सुकून भी है। लेकिन इस पवित्र गुप्त धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस शीतल कुंड वॉटरफॉल का दीदार न कर ले। पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता ये वॉटरफॉल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। इस झरने का पानी गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतल कुंड कहा जाता है। रास्ते में पड़ने वाली सुगवा नदी और पहाड़ों के बीच बहते छोटे छोटे झरने इस पूरे ट्रैक को किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। रहस्यमय गुफा के लगभग 360 फीट अंदर जाने पर कुदरती तौर पर बना एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर सदियों से प्रकृति खुद पानी की बूंदों से अभिषेक कर रही है। प्रकृति और भक्ति के इस अद्भुत संगम तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, इसके बाद घने जंगलों से होते हुए छोटे छोटे कई झरनों को पार करते हुए लगभग कुछ ही किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो पूरा कैमूर पर्वत बोल बम के नारों से गूंज रहा हो। लोग गंगा जल लेकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बिहार का ये गुप्त धाम आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के इस संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह, तो उठाए अपना कैमरा, बनाए ब्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर। हम इसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: क्या आपके घर में सीलन आ रही है? क्या घर में जरूरत से ज्यादा धूल रहती है? क्या आपने घर में देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं? इन गड़बड़ियों का आपके भाग्य पर कैसा पड़ता है प्रभाव और क्या है इनको बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आपके घर में सीलन आ रही है? क्या घर में जरूरत से ज्यादा धूल रहती है? क्या आपने घर में देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं? इन गड़बड़ियों का आपके भाग्य पर कैसा पड़ता है प्रभाव और क्या है इनको बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: विश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
5: Good News Today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: फ्रांस के एविन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवताल श्रद्धालु से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं का ताल कहा गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क। दुबई और लंदन तक भेजे जा रहे मध्य प्रदेश के आम, नरसिंहपुर में विदेशी तकनीक से तैयार किए जा रहे जंबो केसर आम, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन।

0: मरहबा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसके लिए सुरक्षा की अभेद दीवार बनाई जा रही है। लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक और यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा बल और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हैं, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयारी है। आज आपको कठुआ से लेकर पहलगाम तक सुरक्षा के तमाम इंतजाम दिखाएंगे। इसके अलावा आपको जम्मू और रामबन के यात्री निवासों की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। दोनों जगहों पर न सिर्फ पुख्ता सुरक्षा है, बल्कि यात्रियों के लिए सुविधा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि वहां पर लंगर की व्यवस्था भी है। श्री भक्तों से पहले सेवादार तमाम साजो सामान के साथ घाटी पहुंचने लगे हैं। जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक करीब 125 लंगर लगाए जाने हैं, जिनके लिए जम्मू के रास्ते ट्रकों का सिलसिला शुरू हो गया है। शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र से। लखनपुर यानी कि जम्मू में एंट्री के साथ और पवित्र गुफा तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, और इसके लिए सेना और सुरक्षा बलों के साथ पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जुटी हैं। रेलवे स्टेशन, बाजार, सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं, चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। इसके साथ जम्मू के यात्री निवास की सुरक्षा पर भी फोकस है। यात्रा में अब करीब 2 हफ्ते का वक्त बचा है, उससे पहले हर तरह के खतरे और हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दुश्मन कहीं भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन, बाजार या हाईवे पर घात लगाए, लेकिन हर हाल में उसकी साजिश को नाकाम करना है, ताकि यात्रा में कोई विघ्न न आए। और अमरनाथ गुफा जा रहे श्रद्धालु महफूज रहे, इसीलिए पहलगाम पर, जो यात्रा का पवित्र बेस कैंप है, सबसे ज्यादा फोकस है। जर्रे जर्रे पर नजर है। चप्पे चप्पे पर निगेबानी है। खासकर हाईवे पर हालात के मुताबिक ऑपरेशन करने के लिए पुलिस और कमांडो टीम पूरी तरह से तैयार है। देखिए कैसे पुलिस की टीम ने पलक झपकते ही पूरे इलाके को घेर लिया और मॉक ड्रिल के तहत आतंकियों को ढेर कर दिया। पर उससे भी अहम बात यह है कि जख्मी लोगों को ऐसे हालात से निकालना, इसके लिए खास प्रैक्टिस की गई है। गाड़ियों की ओट लेकर कमांडो आगे बढ़े और एम्बुलेंस के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया। इस बीच मेडिकल टीम घायलों को लेकर वहां से निकल गई। यह अभ्यास वैसे तो अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर है और सभी संवेदनशील जगहों पर किया जा रहा है, पर पहलगाम रूट पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा है। खानाबल से पहलगाम तक सैनिटाइजेशन अभियान यानी चप्पे चप्पे की निगरानी जारी है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और मेडिकल टीम ने मिलकर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड एक्टिव कर दिया। पहलगाम नुनमान यात्रा का बेस कैंप है, लेकिन यात्रा की शुरुआत जम्मू और उससे पहले कठुआ से हो जाती है। बड़ी तादाद में यहीं से यात्रियों की एंट्री होती है, इसीलिए कठुआ सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। तभी तो रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की बारीकी से जांच हो रही है, महत्वपूर्ण जगहों का मुआयना किया जा रहा है और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। देश भर से आने वाले भोलेनाथ के भक्तों का स्वागत कठुआ जिले में होता है और यहीं से यात्रियों को पहले जम्मू और फिर बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया जाता है।
1: जहाँ पे हमने ऑल एजेंसी के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजें की और जरूरत है, कंबाइंड सबने करेंगे। सारी की सारी जो गतिविधियां अब सभी महकमा मिल के करनी है वो आने वाली यात्रा के लिए है, यात्रा सुगत रहे, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, किसी तरह से उसी पे ही अभी जाते हुए कार्रवाई लगातार किसी भी तरह का कोई कर पाए, और अगर वो कुछ सोचे हम उससे आगे आते एक कदम आगे आते सोचे और ये चीजों को टाइम में निपेट, इससे ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड है कि हमारे मीन टाइम हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, बेयरिंग अप कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं जिससे हम एक दूसरे को जाने पहचाने और जो हमारा रिजल्ट जो डिजायर्ड रिजल्ट।
0: अमरनाथ यात्रा में सबसे अहम पड़ाव है जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप। हजारों की तादाद में यहाँ यात्री आते हैं और जत्थों में पहलगाम या बालटाल के लिए रवाना हो जाते हैं। जल्दी ही यात्री निवास शिव भक्तों से गुलजार होने वाला है। यात्री निवास की साफ सफाई तो हो ही चुकी है, अब सैनिटाइजेशन हो रही है। एक एक करके सबको खंगाला गया, बारीक नजरों से जांच हुई और यात्री निवास को हर तरह के संभावित खतरे से महफूज कर दिया गया।
2: इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। आज से ठीक 2 हफ्ते बाद ये यात्रा शुरू होगी। 3 जुलाई को श्री अमरनाथ जी की यात्रा दोनों मार्गों से शुरू होगी, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटाल मार्ग से भी। इस समय हम जम्मू के यात्री निवास भवन के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए आज से कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए थे कवरेज के लिए, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, यहाँ पर रंग रोगन चल रहा था, साफ सफाई का कार्य चल रहा था। आज अगर हम देखें तो रंग रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है, साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। और साथ ही में अगर हम बात करें चाहे श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या तमाम सरकारी एजेंसियां हो, उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली है और अब सभी जो है बड़ी ही व्याकुलता के साथ श्रद्धालुओं की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्रद्धालु यहां जम्मू कश्मीर आए और उनका दिव्य भव्य स्वागत यहां पर किया जाए। साथ ही में सरकारी एजेंसियों के अलावा अगर हम बात करें तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी सामने आती हैं, इस यात्रा के समय वो भी अपना योगदान देती है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, वो भी सामने आते हैं और खासतौर पर जो लंगर समितियां हैं जो देश के अलग अलग भागों से यहां जम्मू कश्मीर आती हैं उनका आना भी शुरू हो चुका है।
0: जम्मू कश्मीर में तो मल्टीलेयर सुरक्षा घिरा है ही, पंजाब में भी पुलिस मुस्तैद है। असल में पंजाब के पठानकोट की सीमा जम्मू कश्मीर के कठुआ से मिलती है और पठानकोट पाकिस्तान के बॉर्डर के भी करीब है, इसीलिए अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के नजरिए से यहां लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। चौक चौराहों, रास्तों, बाजारों पर नाके लगे हैं, गाड़ियों की गहन जांच हो रही है।
3: श्री अमरनाथ यात्रा जी जिहड़ी हुण शुरू होण जा रही है उस संबंध च साडे माणयोग डी आई जी सरदार

जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू से लेकर पहलगाम और बालटाल तक का रास्ता बाबा बर्फानी के भक्तों से गुलजार होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही घाटी में बम बम भोले का जयकारा गूंजने लगा है, क्योंकि शिव भक्तों से पहले सेवादार पहुंचने लगे हैं। यात्रा के दौरान जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक करीब 125 लंगरों को मंजूरी मिली है। दिल्ली, पंजाब और यूपी से आने वाली ये लंगर समितियां यात्रा के दौरान शिव भक्तों को भोजन, पानी और ठहरने की सुविधा देती है, इसीलिए ऐसी संस्थाओं से जुड़े लोग भी यात्रा का अहम हिस्सा हो जाते हैं। देखिए यात्रा के सेवादारों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।

0: लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक का रास्ता महादेव के जयकारों से गूंजने लगा है। हालांकि यात्रा शुरू नहीं हुई, बाबा बर्फानी के भक्त भी नहीं पहुंचे, लेकिन भक्तों के लिए भोजन का इंतजाम करने वाली संस्थाएं साजू सामान के साथ चल पड़ी हैं। ट्रकों पर लदे सामान, अनाज, चारा पानी और दूसरी जरूरी चीजें लगातार गुफा तक जा रही हैं। जो संस्थाएं बरसों से लंगर की सेवा दे रही हैं, उनमें यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश है।
1: मुझे बड़ी खुशी है कि आज पहला जत्था जो है हमारा अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा के लिए पशुपात सेवक दिल्ली जो है इनकी आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं। बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से इनकी पूरी संस्था का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, और बड़ा ये इनका लंगर जो है बड़ा हाइजेनिक, बड़ा अच्छे तरीके से हर साल बाबा भोलेनाथ की ये सेवा में लंगर लगाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिल्ली से आके पशुपति नाथ सेवक दिल्ली जो है इनकी संस्था है। तो ये हमारे अभी जहाँ रुकेंगे।
0: लंगर संगठनों को भंडारा लगाने की मंजूरी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड देता है। इस साल यात्रा के दोनों मार्गों यानी पहलगाम और बालटाल से लेकर पवित्र गुफा तक 126 भंडारे लगाने की अनुमति मिली है। कई लंगर संस्थाएं राशन के ट्रक के साथ कश्मीर पहुंच चुकी हैं और कुछ रास्ते में हैं। इस साल जिनको मंजूरी मिली है उनमें से एक तिहाई लंगर संगठन पंजाब से हैं। इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा से भी संगठन आ रहे हैं। इनके पास यात्रियों को अच्छा भोजन और जलपान देने का अच्छा खासा अनुभव है। सबसे बड़ी बात, इनकी बाबा बर्फानी में गहरी आस्था है।
2: बाबा अमरनाथ की कृपा से हमारा श्री पशुपतिनाथ सेवक दिल्ली, जो दिल्ली से भंडारा है, ये पिछले 28 सालों से बाबा अमरनाथ की सेवा में यात्रियों के लिए लंगर लगा रहा है। हम बड़े हर्षोल्लास से अपनी पूरी टीम के साथ ट्रकों में बाबा की सामग्री लेके श्री अमरनाथ जी की गुफा की तरफ कूच कर रहे हैं। इन बिटवीन हमारी जो ब्रांच है, हमारे महाजन साहब की पूरी टीम जो कठुआ से है, उन्होंने हमारे वेलकम के लिए लखनपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी पूरी टीम का, जो पूरे लंगर वालों के सेवादार आए हैं, उनके लिए अरेंजमेंट करवा रहे हैं, रात को रुकने और खाने की पूरी व्यवस्था है। बाबा जी की कृपा से हमारा पशुपतिनाथ का लंगर जो गुफा पे है, इसकी 5 गाड़ियां ऑलरेडी 5 तारीख को गुफा पहुंच चुकी है, जो बालटाल बेस कैंप को तैयार कर चुकी है। अब वो टीम ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ से 18 ट्रकों की सामग्री लेके यहाँ से अब बालटाल की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सारा सामान गुफा की तरफ जाएगा।
0: यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। उससे एक हफ्ता पहले ही मार्गों पर तयशुदा जगह पर भंडारे शुरू हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये संस्थाएं श्रद्धालुओं के ठहरने का भी इंतजाम करती हैं और इनमें से कुछ पशुओं के लिए चारे का भी इंतजाम करती हैं।
2: अमरनाथ बर्फानी के जो दर्शनों पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष लंगर, प्लस इस साल हमारी संस्था के द्वारा लगभग 50 मसाजर मशीनों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमे यात्री विश्राम करके अपने पैरों को सुकून देंगे। हमारी संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य है पशु, यानी के पशुओं

के लिए भी लंगर है, घोड़ों के लिए भी लंगर है, घोड़े पिट्ठू वालों के लिए लंगर है, घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था है हमारी संस्था द्वारा। जो भी घोड़ा बालटाल से आएगा उसको बालटाल बेस कैंप से लेके गुफा तक लंगर की व्यवस्था घोड़े वालों घोड़ों के लिए भी है, जिसमें प्रॉपर चारे की व्यवस्था है। ये बाबा अमरनाथ बर्फानी की कृपा है हमारी संस्था पे कि हम इस तरह भी सोच रहे हैं।

0: अमरनाथ यात्रा में लाखों शिव भक्तों के आने की उम्मीद है। लिहाजा जम्मू के यात्री निवास, रामबन के चंद्रकोट का यात्री निवास और पंथा चौक श्रीनगर के यात्री निवास में भी लंगर लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी यात्री को खाने पीने की दिक्कत न हो। रामबन के चंद्रकोट यात्री निवास में भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। श्रद्धालुओं के लिए ठहरने खाने पीने की बढ़िया तैयारी है। लंगर के लिए खाने पीने की चीजें लेकर संस्था पहुंच चुकी है।
1: नीलकंठ महादेव सेवा समिति पंजाब फिरोजपुर, जेडी अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उनकी तैयारी ते भी असी आए हैं। फिरोजपुर शहर तो चंद्रकोट यात्री निवास लंगर दी सेवा करने वास्ते बहुत खुशी होंदी है जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ, ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਆਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੰਦਰਕੋਟ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਾਣ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ।
0: ਆਵਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ, ਮੈਡੀਕਲ, ਯਾਨੀ ਯਾਤਰੀਓ ਕੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਸਾਏ ਮੇ ਯਾਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਕਰ ਯਾਤਰਾ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
2: आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और हमारी जेके पुलिस जो है पूरी इंतजाम से खड़ी है। आप यात्री खुले दिल से आए और बाबा अमरनाथ के दर्शन करें।
0: सुविधा की भी शानदार व्यवस्था है। यात्रा के दोनों मार्गों पर और हर अहम पड़ाव पर लंगर नजर आएंगे। इसके अलावा बालटाल और नुनवान में टेंट सिटी बनाई जा रही है, जहां 10,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था होगी। वहां भी बड़े पैमाने पर खाने पीने के लिए लंगर की कोई कमी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इधर अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा केदार के धाम यानी कि केदारनाथ में तो भीड़ है ही, बद्री विशाल के दरबार में भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और अभी तक भक्तों की तादाद 11,50,000 से ज्यादा हो चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता कमल नैन सिलोड़ी की रिपोर्ट।

0: बद्रीनाथ धाम में अब तक 11,50,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं, जो इस बार अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जून के महीने में देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम पूरी तरह से सुहाना है। हर समय इस समय बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए गाड़ियां दौड़ रही है।
1: हम हैदराबाद से आया है, अब यात्रा अच्छा हो गया है।
2: बाकी दर्शन वगैरह बढ़िया था, थोड़ा भीड़ ज्यादा है मगर चलता, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ भगवान की तरफ। जय बद्री विशाल।
0: यात्रा में अब लगभग 10,000 के आसपास की जो संख्या है श्रद्धालुओं की, वो कम हो चुकी है। 20,000 के करीब श्रद्धालु रोजाना भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। तो वहीं जोशी मठ में यहाँ पे वन वे सिस्टम, जो गेट सिस्टम लगाया गया था, उसे आज से अब ढील दे दी गई है। आज से गेट सिस्टम में यात्रियों को घंटों नहीं रुकना पड़ेगा। जो गाड़ियां अब जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, जो कि वन वे है, वहां से आ रही हैं, यहां से गेट लग जाता था, अब उन गाड़ियों को सीधा यहां से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भेजा जा रहा है।
3: पहले जब जो है यात्रा बड़ी थी तो थोड़ा जाम ज्यादा लग रहा था नीचे, तो फिर हमने अधिकारियों, अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद हमने यहाँ से गेट सिस्टम लागू किया था, तो उसको हमें अच्छा परिणाम मिला। और अब चूंकि यात्रा काफ़ी कम हो गई है, और इसके बाद हमने फिर पुनः जो है अपने अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इसमें जो है इसको जो गेट सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए।
0: लगातार गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है अभी भी, क्योंकि अभी पहाड़ों में अब मानसून आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो भीड़ अभी भी बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही धामों की यात्रा लगातार बनी हुई है।
4: बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए।

0: क्या आपके घर में सीलन आ रही है? क्या घर में जरूरत से ज्यादा धूल रहती है? क्या आपने घर में देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं? इन गड़बड़ियों का आपके भाग्य पर कैसा पड़ता है प्रभाव और क्या है इनको बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits. You're listening to MSNBC. No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नेदरलैंड्स को दी 95 रनों से शिखर से 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का टारगेट। फ्रांस के एवन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। US प्रेसिडेंट ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा जब तक मोदी है दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवताल श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदन कोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: लखनऊ वनडे में भारत ने 170 रन के भारी अंतर से अफगानिस्तान को दी करारी शिकस्त। लगातार दूसरा वनडे जीतकर तीन वनडे की सीरीज में अजय बढ़त हासिल की। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने झटके 3-3 विकेट। प्रिंस यादव को 2 और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया लाई रनों की सुनामी। 50 ओवर में खड़ा किया 402 रनों का विशाल का स्कोर। जवाब में 45वें ओवर में 232 के स्कोर पर पूरी अफगानिस्तानी टीम धराशाही। कप्तान गिल ने खेली शानदार 156 रनों की ताबड़तोड़ पारी। 110 गेंदों में जड़े 22 चौके 2 छक्के। ईशान किशन ने खेली 79 गेंदों पर शानदार 125 रनों की पारी, इसमें 7 छक्के और 14 चौके शामिल। श्रीलंका में चल रही वनडे ट्राई सीरीज में भी इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हराया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र ने खेली अर्धशतकीय पारियां। इंडिया के 319 रनों के जवाब में 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रनों पर सिमटी अफगानिस्तान ए। इस जीत के साथ इंडिया ए ने रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास। 95 रनों से नेदरलैंड को हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। साथ ही महिला T20 विश्व कप में पहली बार बनाया 200 से ज्यादा रनों का स्कोर। भारतीय महिला टीम ने नेदरलैंड के खिलाफ 5 विकेट पर खड़ा किया 209 रनों का स्कोर। महिला T20 विश्व कप इतिहास का ये तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर दर्ज। श्रुति मंदाना ने खेली 47 गेंदों में बनाए शानदार 74 रन। शेफाली वर्मा ने भी खेली 55 रनों की अर्धशतकीय पारी। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पंजाब के जालंधर से 3 खिलाड़ियों का चयन। चुने गए खिलाड़ियों में कोच सरबजीत सिंह हैप्पी के 2 शिष्य शामिल। गुरविंदर वीर सिंह का 100 मीटर दौड़ जबकि रशदीप कौर का 400 मीटर और 4x4 मीटर रिले दौड़ का चयन हुआ। जालंधर के रहने वाले तेजिंद्रपाल सिंह टूर शॉटपुट में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में अगले महीने होने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फिर से अर्जेंटीना के कप्तान और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। अपने पहले ही मैच में अल्जीरिया के खिलाफ जमाई गोल की हैट्रिक। अब तक 11 इंटरनेशनल हैट्रिक लगा चुके मेसी। साथ ही साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की। जर्मनी के मरोस्लाव क्लोज के नाम था ये रिकॉर्ड। यूपी वाराणसी और पूर्वांचल के क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज। वाराणसी को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम निर्माण का 90% काम पूरा। यूपी का तीसरा और पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा वाराणसी स्टेडियम। भोलेनाथ, काशी और गंगा की थीम पर बन रहा है स्टेडियम। आधुनिकता के साथ संस्कृति का भी दिखेगा मेल। स्टेडियम की छत अर्धचंद्रकार, फ्लडलाइट्स, त्रिशूलनुमा लॉज, डमरूनुमा और रास्ते बिल्वपत्र के आकृति में होंगे। एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे इस स्टेडियम में 30,000 लोग उठा सकेंगे मैच का लुत्फ। गंगा घाट की सीढ़ियों जैसा होगा। दर्शक दीर्घा में बैठने का इंतजाम। काशी गंगा और भोलेनाथ से प्रेरित देश का पहला स्टेडियम होगा वाराणसी स्टेडियम। इस साल दिसंबर तक स्टेडियम निर्माण पूरा होने का रखा गया है लक्ष्य। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। 19 जून को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। रुदौली में 72 परियोजनाओं का लोकार्पण और 51 का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी अयोध्या में भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 101 जैन प्रतिमाओं के उद्घाटन सहित कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी की ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने वाले कर्मचारियों को सख्त चेतावनी बताया। घोर अनुशासनहीनता कहा, इससे बिना वजह सिस्टम पर उठती हैं उंगलियां। दुबई और लंदन तक भेजे जा रहे हैं मध्य प्रदेश के आम। नरसिंहपुर में विदेशी तकनीक से तैयार किए जा रहे जंबो केसर आम। 1.5 से 2 किलो होती है एक आम की का वजन। इसराइल की अल्ट्रा हाई डेंसिटी तकनीक का इस्तेमाल। कम जगह में अधिक पौधे उगाकर उत्पादन और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलती है। खास बैगिंग तकनीक के तहत आम पर लगाए जाते हैं विशेष बैग, जिससे फलों का रंग, चमक और गुणवत्ता में होता है सुधार। कीटों से मिलती है सुरक्षा। सैलानियों से गुलजार हुई चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल दोगुनी हुई सैलानियों की संख्या। अब तक पहुंचे 3600 से ज्यादा पर्यटक। देवभूमि में पूरी आस्था के साथ जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। तप्तकुंड स्नान, ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण के लिए भी उमड़ रहे श्रद्धालु। प्रतिदिन 18 से 20 हजार भक्त पहुंच रहे बद्रीनाथ धाम। इस बार पुरुषोत्तम मास के चलते बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड भक्त। यात्रा मार्ग पर लंबी कतारों के बीच प्रशासन अलर्ट। पवित्र देवताल भी श्रद्धालुओं से और साधु संतों से गुलजार। बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्नान। बद्रीनाथ धाम से लगभग 52 किलोमीटर दूर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भारत चीन सीमा से सटा हुआ ये देवताल। हरिद्वार में शिव भक्ति का नया केंद्र। विश्व के सबसे बड़े पारद शिवलिंग की हुई प्राण प्रतिष्ठा। हरिद्वार के श्री साई शिव गंगा धाम में स्थापित हुआ यह विशाल शिवलिंग 5,210 किलो है इस शिवलिंग का वजन। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संत और राजनीतिक हस्तियों समेत सानी नागरिक मौजूद रहे। भगवान को लगाया गया विशेष भोग। प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में संरक्षित होगी 260 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि। करीब 1768 ईस्वी की है ये दुर्लभ पांडुलिपि। इस प्राचीन ग्रंथ में लगभग 600 से 700 पन्ने मौजूद। गुरुग्राम में वैश्विक शांति दूत अलोका का शानदार स्वागत। मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में उमड़ी डॉग लवर्स की भारी भीड़। द पीस डॉग के नाम से जाना जाता है अलोका। 2025 और 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शांति पदयात्रा पर निकले बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह के साथ यात्रा करने के कारण हुआ था फेमस। गुरुग्राम पहुंचा, 4 देश ट्रेवल कर चुका स्ट्रे डॉग अलोका। एनिमल लवर्स ने ऑटोग्राफ के तौर पर पंजे के प्रिंट्स लिए। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पूरे यात्रा मार्ग पर सुविधा केंद्रों में सुरक्षा चाक चौबंद। कठुआ में अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन मुस्तैद। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बलों ने कठुआ स्टेशन का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। स्टेशन परिसर पर तैनात किए गए जवान। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। भगवती नगर बेस कैंप में सुरक्षा बलों की तलाशी ली जा रही। सुरक्षा बलों ने भगवती नगर बेस कैंप के आसपास इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन। आने जाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने कराया है रजिस्ट्रेशन। अब सीआईएसएफ के हाथों में दिल्ली के ऐतिहासिक सफदरजंग एयरपोर्ट की सुरक्षा। ये सीआईएसएफ की 73वीं एविएशन सिक्योरिटी यूनिट। देश भर में नागरिक उड्डयन सुरक्षा को मजबूत बनाने के तहत गृह मंत्रालय का बड़ा कदम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों और राज्यपालों के हेलीकॉप्टर संचालन का प्रमुख केंद्र है ये एयरपोर्ट। फ्रांस के एवेन में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा देखने में शांत लेकिन सख्त व्यक्ति हैं मोदी, मैं भारत का बहुत सम्मान करता हूं, अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका करेगा मदद। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की, रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। साइबर ठगी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, गृह मंत्री अमित शाह ने 1930 साइबर हेल्पलाइन की समीक्षा की, हेल्पलाइन को अपग्रेड करने की दिशा में दिए गए अहम निर्देश। हेल्पलाइन को AI एनेबल और मल्टी लिंगुअल बनाने का आदेश, बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़ी शिकायतों को समाधान पर फोकस। दिल्ली में गृह मंत्री ने राजेंद्र नगर और नारायणा फायर सर्विस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, बुनियादी ढांचे और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्षमताओं का जायजा लिया गया। फिरोजाबाद में मुहर्रम से पहले SP ने धर्मगुरुओं के साथ की पीस कमेटी की बैठक, ताजिया जुलूस को लेकर दिशा निर्देश जारी। द्वारका की गोमती नदी से दो डूबते युवकों का किया गया सफल रेस्क्यू, मानसून से पहले उफान पर नदी। भारतीय नौसेना की ओर से बढ़ेगी ताकत, 3 युद्धपोत होंगे एक साथ शामिल। INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक एक साथ शामिल होंगे, 21 जून को कोलकाता में होगा कमीशन। भारतीय नौसेना में दिखेगी मेक इन इंडिया की झलक, समुद्र में त्रिशक्ति संभालेगी मोर्चा। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों, एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन सिस्टम से लैस, जबकि INS अग्रे एडवांस सोनार, टॉर्पीडो और स्वदेशी ASW रॉकेट लॉन्चर से है लैस। INS संशोधक हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्र तल की मैपिंग और समुद्री क्षेत्र की जानकारी को बनाएगा बेहतर। रक्षा उत्पादन में नया रिकॉर्ड, 1.78 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा भारत, रक्षा मंत्री ने बताया आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिरप पर मचे बवाल के बाद सरकार का फैसला। गोरखपुर में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संशोधन का संरक्षण का संदेश। पटना में स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया झाड़ू, लोगों को जागरूक किया। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मेयर घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान, कार्यकर्ताओं के साथ लगाया झाड़ू। यशराज बैनर तले बनी फिल्म अल्फा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, दमदार डायलॉग्स और खतरनाक एक्शन से लोगों की एक्साइटमेंट हुई दुगनी। फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर हुआ लॉन्च, इस फिल्म में सूरज अंबिकावाणी, दीपिका चिलखिया, टोपी वाला पंकज बेरी और मेघना हरा निभा रहे हैं मुख्य किरदार। बंटवारा 1947 के मेकर्स ने फिल्म के कैरेक्टर पोस्टर किए जारी, सनी देओल निभा रहे हैं मुस्लिम किरदार। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेंटेन की ओर की हो रही है वापसी, नेटफ्लिक्स पर होगा स्ट्रीम, इंस्टा पोस्ट के से दी जानकारी। दर्शकों को हंसाने के लिए सिल्वर स्क्रीन पर फिर आ रही है श्रेक, फियोना और डंकी, अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है श्रेक 5 ट्रेलर रिलीज। हॉरर कॉमेडी फिल्म में नजर
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेशी ट्रिप की जगह स्वदेश घूमने की अपील की है, तो जेएनटी भी आप लोगों से अपने आसपास की खूबसूरत, ऐतिहासिक और दूसरी सैर सपाटा करने वाली जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोज को जेएनटी पर दिखाएं और उन पर्यटक स्थलों को भी लोग जाने, वहां सैर सपाटा करें। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बिहार के रोहतास लिए चलते हैं, जहां कैमूर की पहाड़ियों के बीच गुप्त धाम वाटरफॉल आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। ऊंची नीची घुमावदार पथरीले पहाड़, गुफा के भीतर जलते हुए दिए और कुदरती सुंदरता में सिमटी अलौकिक आस्था। अगर आप सोचते हैं कि बिहार सिर्फ इतिहास और मैदानों का प्रदेश है, तो कैमूर की इन वादियों को देखिए। घने जंगलों के बीच गूंजती झरने की आवाज, चारों तरफ फैली हरियाली और एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके भीतर खुद महादेव विराजमान है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास में मौजूद गुप्त धाम की है, जिसे गुप्तेश्वर धाम भी कहा जाता है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ प्रकृति का रोमांच भी है और महादेव की भक्ति का सुकून भी है। लेकिन इस पवित्र गुप्त धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इस शीतल कुंड वाटरफॉल का दीदार न कर ले। पहाड़ों की ऊंचाई से गिरता ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि इसे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। इस झरने का पानी गर्मियों में भी बर्फ जैसा ठंडा रहता है, इसीलिए इसे शीतल कुंड कहा जाता है। रास्ते में पड़ने वाली सुगवा नदी और पहाड़ों के बीच बहते छोटे छोटे झरने इस पूरे ट्रैक को किसी जन्नत जैसा बना देते हैं। रहस्यमय गुफा के लगभग 360 फीट अंदर जाने पर कुदरती तौर पर बना एक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई देता है, जिस पर सदियों से प्रकृति खुद पानी की बूंदों से अभिषेक कर रही है। प्रकृति और भक्ति के इस अद्भुत संगम तक पहुंचना किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता, इसके बाद घने जंगलों से होते हुए छोटे छोटे कई झरनों को पार करते हुए लगभग कुछ ही किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी एक यादगार लम्हा है। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो पूरा कैमूर पर्वत बोल बम के नारों से गूंज रहा हो। लोग गंगा जल लेकर बाबा गुप्तेश्वर नाथ पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून के दो पल बिताना चाहते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बिहार का ये गुप्त धाम आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, तो अपने आसपास की किसी भी खूबसूरत जगह का वीडियो बनाइए और इसे हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप करके 7303409922 पर। हम आपके भेजे गए वीडियो को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. Tune in has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: Women T20 World Cup में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।

0: नमस्कार, गुड लक टू डे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या बातचीत करने वाले हैं। आज बातचीत का विषय है घर के जाले, सीलन और धूल। ये सभी आपकी किस्मत के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं, कैसे आपकी किस्मत को बिगाड़ सकते हैं और किसी वजह से घर में जाले लगे रहते हैं, सीलन होती है, धूल बहुत ज्यादा है, आप साफ नहीं करते हैं, उसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपकी किस्मत के ऊपर। इसको सुधारने के उपाय क्या है, क्या कुछ आपको करना चाहिए ताकि जीवन में बदलाव आ सके, सब कुछ पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र।
1: सप्ताह में एक दिन अपने सारे परिवार के लोगों के साथ बैठकर कोई संयुक्त पूजा जरूर करें। सब लोग बैठकर एक साथ सुंदरकांड का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें या सब लोग मिलकर एक साथ अगर आरती भी करें रेगुलरली सप्ताह में कम से कम एक दिन, तो ऐसा करने से परिवार में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 18 जून 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 6:58 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया घर में जाले लगना, सीलन आना, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सवाल पंडित जी से यही बनता है कि पंडित जी, घर में किसी वजह से सीलन आने लगे, कई बार आप दिखते हैं कि दीवारों पर सीलन आ गई, किचन में सीलन आ गई, उसकी वजह क्या है, वो किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेगा और उससे बचने के उपाय कैसे कर सकते हैं?
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं आपके घर की छोटी छोटी गड़बड़ियां आपके भाग्य को कैसे बिगाड़ देती हैं। अगर आपके घर में सीलन आने लगे तो इसका अर्थ क्या है, पहले ये जानिए। घर में अचानक अगर सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि अनुकूल नहीं है। और सीलन अगर आने लगेगी तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब होना शुरू हो जाएगा। मुकदमेबाजी की और कर्जों की नौबत आपके जीवन में आ जाएगी और बिना कारण के मानसिक तनाव बढ़ेगा। जिन घरों में सीलन हमेशा रहती ही रहती है उन घरों में ज्यादातर लोग बीमार होते हैं और बीमारी की वजह से वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर घर में सीलन है तो क्या उपाय करें इसके प्रभाव को कम करने के लिए? घर में पर्याप्त रात सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। किसी भी प्रकार से खिड़की निकाल के, रोशनदान निकाल के, शीशा लगा के, किसी भी प्रकार से घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए। रोज सुबह और शाम अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइएगा। सीलन का इंतजाम तो आप करेंगे ही, उसकी तोड़ फोड़ करके या जैसे भी व्यवस्था करके आप सीलन को ठीक जरूर करेंगे, लेकिन साथ में घर में लाइटिंग ठीक हो और घर के पूजा स्थान पर अगर आप सुबह शाम दीपक जलाएंगे तो सीलन का नकारात्मक प्रभाव आपके घर के ऊपर नहीं पड़ेगा।
0: चलिए आगे भी बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
1: मेष राशि, बेवजह की चिंता इस समय आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी। परिवार में अशांति से बचाव करें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल ये है कि घर में अगर आपके धूल मिट्टी ज्यादा होती है तो ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करती है, किस तरह के नकारात्मक प्रभाव होते हैं और अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं तो कैसे उपाय आप कर सकते हैं?
1: देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में धूल मिट्टी ज्यादा होती है। सामान पर, फर्नीचर पर, मूर्तियों पर धूल जमी होती है और उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। क्या प्रभाव होता है? देखिए, धूल मिट्टी मुख्यतः मंगल से संबंध रखती है। इसका कनेक्शन मंगल से है। घर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो रहेगी ही, लेकिन ज्यादा धूल होना समस्या का कारण बनता है। अगर घर में धूल मिट्टी ज्यादा रहती है तो इसके कारण परिवार में मतभेद होने लगते हैं, परिवार में गड़बड़ियां होने लगती हैं, भाई भाई में तनाव और अलगाव की नौबत आ जाती है। और अगर घर में धूल मिट्टी ज्यादा रहे तो घर के लोगों में आपसी कलेश बढ़ने लगता है। कभी कभी घर के लोगों में रक्त संबंधी, ब्लड संबंधी समस्या होने लगती है। तो अगर आपके घर में धूल मिट्टी ज्यादा रहती है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये रिश्तों के लिए, परिवार की शांति के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा नियमित रूप से लगाइएगा। हर मंगलवार को घर में सुंदर कांड का पाठ करिएगा, और जिस दिन सुंदर कांड का पाठ करेंगे, घर में मीठी चीज का भोग हनुमान जी को लगाएंगे। वैसे मैं सामान्यतः एक बात कहता हूं, फिर से बता देता हूं, कि महीने में एक अमावस्या आती है, महीने की एक अमावस्या पर घर की विधिवत सफाई करिए, घर में जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको हटा दीजिए, और विधिवत सफाई के अलावा नियमित रूप से घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग होती रहे। अगर ऐसा होता रहेगा तो घर में धूल मिट्टी नहीं जमेगी, और धूल मिट्टी नहीं जमेगी तो घर में अशांति नहीं होगी।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगली तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
1: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर के मामले आपके हल होंगे, कोई संपत्ति इस समय खरीद सकेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, कोई बड़ा निर्णय ना लें, संयम से काम लें, केले का दान अगर कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए अब वक्त आ गया है आपके सवाल और पंडित जी के जवाब लेने का। आप सब बहुत सारे सवाल भेजते हैं, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको ही सूचित कर दें कि आप भी कोई भी प्रश्न इस शो में पूछना चाहते हैं पंडित जी से, ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है वो आपसे जानते हैं
1: जी।

0: डॉक्टर का जो क्षेत्र है वो आपके करियर के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर इस क्षेत्र में करियर नहीं बनाती हैं तो ऐसी स्थिति में आप एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकती हैं। तो एजुकेशन में, कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, ऐसे क्षेत्रों में आपका करियर बनेगा और अप्रैल 2027 के बाद आपका बेहतर समय शुरू हो रहा है, आप उसमें सफलता पाएंगी। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। पंडित जी, कौन सा है दूसरा सवाल वो भी बता दीजिए।
0: जी, अगला प्रश्न हर्षल बेले ने हमें लिखा है, नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं। 3 दिसंबर 1993 का जन्म है, 7:30 प्रातः नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में हर कदम पर संघर्ष बहुत है, कोई भी काम जीवन में होता ही नहीं है, आगे मेरा करियर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा और विवाह कब होगा। हर्षल, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए हर्षल, आप थोड़ा प्रयास करके किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में अभी नौकरी करने का प्रयास करिए या सेल्स मार्केटिंग की कोई नौकरी करिए, आपको नौकरी मिलेगी। आपके हालात जनवरी 2027 से बेहतर दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से जिंदगी आपकी 2028 में बेहतर होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपकी मुश्किल कम हो जाएगी।
1: चलिए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि अगर किसी कारणवश आपके घर में बहुत सारे जाले आपको दिखते हैं, उसका आपकी किस्मत पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उससे बचने के लिए कैसे उपाय हमें करने चाहिए?
0: देखिए, बहुत सारे घरों में, खास तौर से कोनों में, कमरों में जाले होते हैं, तो अगर जाले हैं तो इनका प्रभाव क्या है? घर में अगर जाले ज्यादा हैं तो समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर घर में जाले ज्यादा होंगे तो घर में आर्थिक नुकसान होगा, पैसे रुपयों की दिक्कत ज्यादा होगी और आकस्मिक रूप से घर के लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटेंगी, बेवजह पैसे की बर्बादी होगी और घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। लेकिन मोटे तौर पे ऐसा देखा गया है कि अगर घर में जाले ज्यादा हों तो पैसों की बर्बादी होती है और घर के लोगों के साथ दुर्घटना होती रहती है। क्या उपाय करेंगे? जहां भी जाले दिखें तुरंत उसे

0: हटाइए, तुरंत उसकी सफाई करिए और जालों वाली जो जगह आपके घर में है उस जगह पर एक बार दीपक जलाकर या मोमबत्ती जलाकर दिखाइएगा। घर में अगर जाले हैं तो जालों की तुरंत सफाई करिए और रोज शाम को घर के हर कमरे में धूप बत्ती जलाइए या धूप बत्ती जलाकर घुमाइए और पूजा के समय 3 बार शंख जरूर बजाइए। अगर आपके घर में जाले हैं और आप उन जालों को समय समय पे साफ करते रहें, घर में धूप बत्ती जलाकर कमरों में दिखाते रहें, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा नहीं हो पाएगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु बालों के राशिफल में आज क्या खास है।
0: तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त तो होंगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती सामान खो सकता है, केले का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: पंडित जी, एक और सवाल है आपसे, ये बताइए कि बहुत सारे घरों में अक्सर देखा गया है कि आप पौधे लेकर आते हैं लेकिन किसी वजह से पौधे मर जाते हैं, वो पौधे सरवाइव नहीं कर पाते घर में, तो घर में पौधों का ना लग पाना, इसका आपका किस्मत के साथ कैसे कनेक्शन है, ये किस तरह से नकारात्मक प्रभाव डालता है और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
0: बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां फूलों के और बाकी पौधे लगाए जाते हैं लेकिन पौधे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, नहीं लग पाते हैं, क्या होता है इससे? देखिए, पौधे जो होते हैं वो सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा को, किसी घर की एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो पौधे लग ही नहीं पाएंगे, और अगर नकारात्मक ऊर्जा भी है, सकारात्मक ऊर्जा भी है, तो पौधे कुछ समय तक लगेंगे, उसके बाद सूख जाएंगे। जहां पर तुलसी का पौधा ना लग पाए, जिन घरों में तुलसी का पौधा लगाने पर वो बार बार सूख जाए, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपके घर में पौधे नहीं लग पा रहे, खास तौर से तुलसी बार बार लग करके सूख जा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? घर में धूप की और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिएगा। दोनों समय सुबह और शाम पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और शंख बजाएं। घर में गंदे कपड़े और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी।
1: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर से आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न आप भेजना चाहते हैं, अपनी दिक्कतों का निवारण चाहते हैं, तो ईमेल आईडी के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। पंडित जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
0: जी, अगला प्रश्न विश्वजीत प्रसाद ने हमें लिखा है, उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से। 4 मई 1991 का जन्म है। 9:15 प्रातः, कल्याणी, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर की नौकरी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी कब तक परमानेंट होगी और मेरा अपना मकान कब तक बनेगा। विश्वजीत जी, कुंडली आपकी बनती है मिथुन लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। साल 2027 के आरंभ में शिक्षा क्षेत्र में आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी और 2027 में ही आप अपने मकान का निर्माण भी करवा पाएंगे। फरवरी 2027 से आपका समय काफी बेहतर है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर इस शनि मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दर्शकों का अंतिम सवाल भी इस शो में शामिल कर लेते हैं और जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन सा है अगला प्रश्न और कौन से दर्शक का है अगला प्रश्न।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मुकेश राम जी ने बांका बिहार से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 16 अक्टूबर 2022, 7:30 प्रातः, अमरपुर, बांका, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरा छोटा सा बच्चा है, उसकी तबीयत बुरी तरह खराब हुई थी कुछ दिनों पहले और फिर उसके साथ एक एक्सीडेंट भी हो गया, तो मेरे बच्चे का स्वास्थ्य खराब रह रहा है, एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, तो मेरे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और क्या उपाय करना चाहिए। मुकेश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, जब तक आपका बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, अक्टूबर 2028 तक, तब तक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर में चोट न लगे या पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान ना करें। एक इनको मोती बनवा के पहनाइए, 6 से 8 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, लाल या पीले धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में पहना दें और इनकी माता जी को बोलिए कि रोज सुबह शाम इस बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करेंगी और इस बच्चे को लाल रंग से परहेज करवाइएगा। लाल कपड़े, लाल जूते, लाल बेडशीट, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 18 जून को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका ये गुड डे उनके लिए क्या लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 18 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चीजें ठीक होंगी, लेकिन इस साल स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि जब सूर्य अस्त हो रहे हों, सूर्य डूब रहे हों, तो क्या उस समय सोना अशुभ होता है? देखिए, सूर्यास्त का जो समय है ये पूजा उपासना के लिए और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। सूर्यास्त के समय भोजन करना और सोना शुभ नहीं होता। ऐसा करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है और जीवन में दरिद्रता आती है। तो सूर्यास्त के समय आप पूजा उपासना या ध्यान करें। सूर्यास्त होते समय सोना और भोजन करना उचित नहीं होता।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 18 जून 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 18 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और संतान के मामलों में आपको लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पंडित जी अंत की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी से जानते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी होती है। आज की गुडलक राशि है धनु। इनकी शिक्षा में शुरुआत में बाधा आती है, लेकिन बाद में मेहनत करके ये अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं।
1: चलिए, तमाम उपायों के बारे में जानकारी पंडित जी आपको दे चुके हैं, अब बारी आती है खास उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो आज का महा उपाय क्या है वो पंडित जी ही आपको बताएंगे।
0: जी, अगर आपकी संतान भटक रही हो, बेटा हो बेटी हो, भटक रही हो, गलत रास्ते पे जा रही हो, बुरी आदतें संतान को लग रही हो, तो क्या करेंगे? अपने घर में पीले रंग के गणेश जी की एक मूर्ति या एक चित्र स्थापित करिए। रोज सवेरे उनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। इसके बाद ओम उमा पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करिए कि संतान को सद्बुद्धि आए, संतान कहीं भटकने ना पाए।
1: तो पंडित जी, ये तमाम उपाय और जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
0: नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बुलेटिन में ब्रेक लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं उस ब्रेक की जो मॉनसून ने इन दिनों ले रखा है। देखिए, मॉनसून ने देश में अपने तय समय के आसपास एंट्री मारी थी, फिर मॉनसून की राहों में न जाने किससे मुलाकात हो गई। देखिए, हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी डरते थे, वही बात हो गई है। देखिए, मॉनसून का सारा टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया है। 4 जून को मॉनसून केरल को भिगोने पहुंचा था। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक उत्तर पश्चिम भारत की दहलीज तक पहुंच जाना था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मॉनसून जहां था वहीं का वहीं अटका हुआ है। दक्षिण और उत्तर पूर्व को भिगोने के बाद मॉनसून की रफ्तार पर मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के लिए मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। देखिए, लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत दे रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी सबको है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर भारत में मॉनसून कब दस्तक देने वाला है और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद, बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांघकर भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण की धरती गमक उठी।

0: अपने तय समय के आसपास जून की उंगली थाम मॉनसून के बादल आ पहुँचे थे। सो लगा कि अब बस बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तरबतर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी, लेकिन मॉनसूनी बादलों के पांव थम गए। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मॉनसून के बादल दक्षिण, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा तय करके वहीं ठिटक गए। ऐसा लगा मानो कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। 8 जून के बाद से मॉनसून देश के पश्चिमी तट के आसपास लगभग स्थिर है। मॉनसून के अटकने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बनने को माना जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जून का तीसरा हफ्ता आते आते मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से बादल लगभग गायब दिखे। आमतौर पर 15 जून तक भारत का बड़ा हिस्सा मानसूनी बादलों की मोटी चादर से ढका दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आई।
1: इस बीच भारत की चिंता इस बात की है कि मॉनसून कमजोर पड़ रहा है, उसकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है और जून के महीने में ही अब तक 64% कम बरसात हुई है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर मैं आपको ये कहूं कि मौसम विभाग पर ये जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, इनमें दिखाई दे रहा है कि मानो जैसे अरब सागर के पास पश्चिम भारत से बादल ही चोरी हो गए। अब ये देखिए पूरा इलाका, ये अरब सागर का इलाका है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगे बढ़ा है कि उसके बाद वो केरल होते हुए आगे जब बढ़ना चाहिए इसे कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, इन इलाकों में दरअसल इस समय बादलों का डेरा होना चाहिए, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि बादलों को मानो किसी ने चुरा लिया हो और फिर इस महाराष्ट्र के ऊपर होते हुए गुजरात तक आगे जाने के लिए यहां पर मानसून की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो गई है। बादलों का बिल्कुल नदारद हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ अरब सागर में नहीं, इन्हीं सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर मैं देखता हूं यहां जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और उसकी जो स्थिति आगे पश्चिम बंगाल की ओर जाने चाहिए, यहां पर भी बादलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है इन सैटेलाइट तस्वीरों में।
0: सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस बार मॉनसून के बादलों ने मुंह क्यों मोड़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में छुपा है। ऊपरी वायुमंडल में इस समय हवाओं की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने मॉनसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आमतौर पर पूर्व से बहने वाली हवाएं, जिन्हें ईस्टर्ली जेट कहा जाता है, हवा को ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, वो है पश्चिम से बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक गई है। यानी मॉनसून के बादलों के बीच इस वक्त एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, मॉनसून कैसे आगे बढ़ेगा। अभी के हालात में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों तक पहुंचकर भी बारिश में तब्दील नहीं हो पा रही। बादल बन रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, नमी आ रही है लेकिन बरस नहीं रही, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि मॉनसून गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी जो हालात हैं उसे मॉनसून का गायब होना नहीं बल्कि मॉनसून का पॉज होना माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मॉनसून कहीं गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ठहर गया है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिन हवाओं के पैटर्न ने बादलों को रोक रखा है वो पैटर्न कमजोर पड़ने जा रहा है। मतलब जैसे ही बाधा हटेगी मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।
1: ऐसे में मौसम विभाग को लगता है कि 20 जून के बाद अगर जब मौसम अपनी रफ्तार पकड़ेगा तब मॉनसून की रफ्तार बारिश लेकर के आएगी, और ऐसे में पश्चिम भारत, खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे में जहां आमतौर पर 9 से 11 जून के बीच बरसात होती थी, मॉनसून तट तक पहुंचता था, उसमें भी काफ़ी देरी है, जो कि पहले 2019 और उसके पहले 2023 में ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 25 जून की तारीख भी बीत सकती है। यानी मॉनसून का इंतजार पूरे भारत के लिए अभी लंबा है।
0: वैसे मॉनसून का इंतजार भले लंबा खिंच रहा हो, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में एक के बाद एक लगातार सक्रिय होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि ये मॉनसून की बारिश नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हुई बारिश है। इस बारिश के चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।
2: एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से, उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: रही बात मॉनसून के आगे बढ़ने की, तो संकेत यही है कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ने के हालात बन रहे हैं। जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मॉनसून दोबारा एक्टिव होगा। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में बादल आएंगे और जमकर बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, अच्छी बात यह है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पिछले दिनों से प्री मॉनसून गतिविधियां दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्री मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी ही सही लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिली है। देखिए, मौसम विभाग भी इशारा कर रहा है कि मॉनसून का ब्रेक जल्द ही खत्म होने वाला है और उसी का संकेत है तेज हवाएं और गरज चमक के साथ अलग अलग जगहों पर हो रही ये बारिश। ये मॉनसून नहीं है, ये प्री मॉनसून है, ये समझने वाली बात है। दरअसल प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग आखिरकार कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न होता नहीं है। ये देश के दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले चली भी जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। देखिए, मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। देखिए, मॉनसून की बारिश कभी तेज होती है तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहता है। जबकि बात अगर हम प्री मॉनसून बारिश की करें तो प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं देखने को मिलती हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं।

0: मानसून के इंतजार और प्री मानसून के जोरदार बारिश के बीच ही एक पैटर्न लगातार बनता दिख रहा है। देखिए, आजकल उत्तर भारत के कई जिलों में आंधी और तेज बारिश को लेकर फोन पर अपडेट आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, आपको भी आए होंगे। देखिए, मौसम बिगड़ने की चेतावनी लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, लेकिन इस अलर्ट और अपडेट के बाद कई बार ये हो रहा है कि वास्तव में बारिश होती ही नहीं है। क्या ये टेक्निकल मिसकैलकुलेशन है? मौसम बिगड़ने वाला है, इस प्रिडिक्शन के पैरामीटर्स आखिर क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की मौसम विभाग से ही।
1: देखिए, विशेष रूप से मानसून आने से जो पहले का पीरियड होता है, इसमें खासकर पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें तेज मेघ गर्जन, तेज गस्टी विंड्स और लाइटनिंग के साथ में रेनफॉल होने की एक्टिविटी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो ऐसे में ये जो थंडरस्टॉर्म सिस्टम्स हैं, ये सामान्यतया शॉर्ट लिविंग फिनोमेना होती है, यानी कि पूरे दिन भर ऐसा वेदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव सिस्टम होता है, खासकर दोपहर और शाम के समय इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जो अलर्ट्स और जो समटाइम्स शॉर्ट रेंज के लिए जो पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं मौसम विभाग से, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिकली रडार, सैटेलाइट और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बेस्ड आधार पर ही दिए जा रहे हैं। और जो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि एक से दो घंटे के लिए, यानी ये शॉर्ट लिविंग फिनोमेना होती है, और कभी कभी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी इंटेंस भी थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ जो है ये देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो थंडरस्टॉर्म टाइप के जो सिस्टम्स हैं ये ज़रूर एक दो घंटे के होते हैं। हो सकता है कि दिन में पूरे दिन भर ऐसे सिस्टम आपको ना दिखें, दिन में हो सकता है कि सामान्य वेदर रहे, लेकिन शाम के टाइम, दोपहर बाद या कभी कभी रात के समय

हम सभी को है और इस इंतजार के बीच काशी में बारिश के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ संगीत प्रेमी पारंपरिक मेघ राग का गायन कर इंद्रदेव से बरखा के गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मान्यता है कि मेघ राग के सुर प्रकृति को प्रसन्न कर बारिश का संदेश लेकर आते हैं।

0: आवाज देती ये काशी की साधना है। अस्सी घाट पर शहनाई की ये धुन बादलों को बुला रही है। प्रकृति से काशी के संवाद का ये अनूठा तरीका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्न हैं, जो अस्सी घाट पर राग मेघ से बारिश को काशी आने का न्योता दे रहे हैं।
1: विगत 18-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करता चला आ रहा हूँ, और जब कहीं बारिश नहीं होती है और सब जगह हो भी जाए तो काशी में नहीं होता तो मुझे तकलीफ होता है, और काशी में इस बार बहुत तगड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत विलम्ब हो गया है, और जीव जंतु इंसान देख ही रहे आप गर्मी से परेशान है, पंछियाँ भी परेशान हैं, मर रही हैं, तो इसलिए इनके जीवोद्धार के लिए और माँ गंगा के श्री चरणों में आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, और उनको जो हमारे पास अंग वस्त्र वगैरह रहता है माँ को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती माला फूल से पूजा पाठ करता हूँ। फिर भगवान भास्कर भगवान इंद्र को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं अपना राग मेघ प्रस्तुत करता हूँ।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ का अपना खास महत्व है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है और सदियों से इसे मेघों और बारिश का राग कहा जाता रहा है। कहते हैं कि राग मेघ प्रकृति के साथ संगीत का अनूठा साक्षात्कार है। यही वजह है कि जब काशी कड़ी धूप में तप रही होती है तो ये राग बादलों को बुलाकर उस तपस्या को पूरा करता है।
1: इसलिए मैं गंगा मैया के चरणों में ही अपने आंचल में उनके मैं बजाता हूँ और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य करता हूँ, और भगवान इंद्र निश्चय, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माँ गंगा का आशीर्वाद है कि 36 घंटे में बढ़िया बारिश होगा। ये रीवा घाट है, रिमझिम फुहारों के साथ बारिश होगा, बढ़िया बारिश होगा, और काशी को राहत मिलेगा, गर्मी से निजात मिलेगा।
0: काशी में गूंजे इन सुरों ने भले बादलों को द्योता भेज दिया हो, लेकिन ये साधना सभी के लिए है। उत्तर भारत तक पहुंचने में मॉनसून जिस तरह वक्त ले रहा है उसने हर किसी को बेचैन कर रखा है। उम्मीद यही है कि काशी में गूंजा ये राग मेघ लोगों की मुराद पूरी करेगा और मॉनसून जल्द काशी समेत समूचे उत्तर भारत में राहत बनकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मॉनसून का इंतजार हम सभी को रहेगा। बहरहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: से एग्जाम को लेकर जो तीन दिन बाद यानी कि 21 जून को होने जा रहा है, इसे लेकर छात्र इन दिनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। वहीं सरकार ने भी री एग्जाम को बिना किसी गड़बड़ी के करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर

0: लगा दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स मॉक ड्रिल कर रहा है।
1: इस बार बस पेपर फेयर कंडक्ट हो,
2: जो डिजर्व करते हैं बच्चे मेडिकल में जाने के लिए, और वही मेडिकल में जाएंगे।
1: मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा आ जाए जैसे पिछली बार हुआ था। बट वी रियली होपिंग कि बहुत फेयरली हो विदाउट एनी चीटिंग।
3: देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट री एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने बिना किसी गड़बड़ी के री एग्जाम कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही है, और यही वजह है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए पहली बार एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से आई हैं, जहां परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को मदुरई से तिरुनेलवेली तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मॉक ड्रिल की गई। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को पहले विमान के जरिए दिल्ली से मदुरई ले जाया गया, इसके बाद उन्हें वायुसेना के अधिकारियों की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से तिरुनेलवेली आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड तक पहुंचाया गया, ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए।
4: मई महीने में हुआ नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक होने के बाद देखा जा रहा है कि देश भर में इस मामले को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पहले तो पेपर को रद्द कर दिया गया, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई, और फिर इसका री एग्जामिनेशन 21 जून के लिए घोषित किया गया, जिसको बस अब 3 दिन का ही वक्त बाकी रह गया। और इसको लेकर भी सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। देश में पहली बार देखा जाएगा कि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए देश की आर्मी और साथ ही एयरफोर्स दोनों की मदद ली जाएगी। एयरफोर्स जो परीक्षा केंद्रों तक जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो पहुंचाएंगे, और साथ ही जो आर्मी है परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में मदद करेगी।
3: एयरफोर्स की मदद लेने के अलावा सरकार इस बार सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। इसी चौकसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
5: So we had a meeting with the telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a neat leak paper. The moment you are allowing that, any platform, whenever you create an account on Google or Gmail, it says what you can, what you cannot. So we had made a request that please do not allow. And after informing them about a channel, they would block them. We had to block 200 channels.
3: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए तैयारियों में जोर शोर से जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई है। वहां सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान एसपी प्रवीण नायक ने पिपराली रोड पर मौजूद विभिन्न हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स में जाकर तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से बात की, जिसमें उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की है।
6: जो नेक्स्ट 21 जून को जो नीट एग्जाम होने वाले हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में आज पूरे पुलिस के द्वारा पूरा कोचिंग इलाके अंदर हमने फ्लैग मार्च और भ्रमण किया गया था, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत भी किया था। तो उनसे ये जानकारी लिया गया कि कोई भी चीज़ें, अफवाह या कुछ भी चीज़ें अगर आपके इनके न्यूज़ संज्ञान में आ रहे हैं तो हमारे नॉलेज में लेके आए और उसके ऊपर हम एक्शन कर सकते। इसके बारे में सबसे बातचीत किया गया था, उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी बातचीत किया था बच्चों से। इसके साथ साथ हमने जो भी नीट एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना अगर कोई हमें देना चाहता है तो उसके एक मोबाइल नंबर हमने जारी किया था, तो उसके बारे में भी सभी बच्चों को हमने बताया था।
3: री एग्जाम के लिए एनटीए और सरकार की कोशिशों को देखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस बार फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद भी जताई है।
7: जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था तो एग्जाम रद्द हो गया था, और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है, और इस बार इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
8: अनन्या।
7: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
8: जी सर।
7: तो अब दोबारा आप रीएग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं।
8: जी सर।
7: तो अब कितना अप्रीहेंशन है, इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की अप्रीहेंशन है स्टूडेंट?
8: सर आई एक्सपेक्ट कि पेपर सही से हो, फेयरली कंडक्ट हो। पिछली बार हमारी मेहनत वेस्ट गई थी, हमने 3 महीने के लिए स्ट्रेटजाइज किया हुआ था पूरा और वो पूरी चीज उल्टी पड़ गई हमारे ऊपर ही, तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो।
7: इस बार सरकार ने बड़े अरेंजमेंट्स किए हैं इसको फुल प्रूफ रखने के लिए कि कोई लीक्स ना रहे, और किस तरह देखते हैं उसको?
2: हम होप तो यही कर रहे हैं कि इस बार लीक नहीं होएगा पेपर, लेकिन एक वो चीज होती है कि पहले जब हमने तैयारी कर रहे थे तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी हमारी तैयारी करने की, उसके बाद फिर हम घर गए, उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमें पता चल रहा है कि दोबारा पेपर करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज एक मेंटल हैरेसमेंट थी हमारे लिए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं हम।
1: गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था।
9: आई होप कि इस बार ना हो ली, क्योंकि काफी जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इस बार तो
7: कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी रोज की?
9: 15 घंटे 14-15 घंटे तो रोज।
3: कुल मिलाकर कोशिश इस बार यही है कि नीट यूजी जैसी अहम परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो पाए। दिल्ली से अनमोल बाली, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चीन के शंघाई में जश्न का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहां खुशियों का ऐसा मेला सजा जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था शंघाई डिज्नीलैंड की स्थापना के 10 साल पूरे होने का और इस खास अवसर पर पूरे पार्क को रंगों रोशनी और सपनों की दुनिया में बदल दिया गया।
10: डिज्नीलैंड नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं सालगिरह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
13: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
12: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
14: You're listening to MSNBC.
12: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: वुमेन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
15: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा उड़ीसा के रायगढ़ के राजा महोत्सव के यहाँ, जहाँ उड़ीसा के पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पारंपरिक लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लिया जा रहा है।
16: ओडिशा के रायगढ़ में राजा महोत्सव की धूम है। इस उत्सव में पारंपरिक झूलों के बीच लोकगीत और लजीज पारंपरिक पकवानों ने फिजा में रौनक ला दी है। पारंपरिक ओडिशी और संबलपुरी नृत्यों के जरिए ओडिशी लोक कला यहां प्रदर्शित हो रही है। भव्य सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। यहां महिलाएं पारंपरिक ओडिशी वेशभूषा में नजर आईं और राजा झूला का आनंद उठाते दिखी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के तुलमुल में मौजूद माता खीर मंदिर में माता खीर भवानी मेला 19 जून को लगने जा रहा है। इस मेले और उत्सव को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस मेले में सैकड़ों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है, इसीलिए इस मेले के लिए और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा ताइक्वांडो कैंप लगाया था, जिसमें इलाके की बच्चियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। यहां ताइक्वांडो कोच ने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए और उनका आत्मविश्वास मजबूत किया। इस कैंप में आज समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुंछ के एएसपी खुद बच्चियों के उत्साह वर्धन के लिए आए। बेहद पवित्र और दुर्गम किन्नौर कैलाश यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी। इस मुश्किल धार्मिक यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा वजहों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को ही किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। किन्नौर कैलाश यात्रा रिकांगपियो के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। गंगटोली और गणेश पार्क इस यात्रा का पहला पड़ाव है। करीब 14,900 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पार्वती कुंड में स्नान के बाद अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। इस दुर्गम खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहां समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मथुरा के संत आशुतोष ब्रह्मचारी और गायिका प्रांजल दहिया ने भस्म आरती में हिस्सा लिया। आज सुबह की भस्म आरती खास रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। बाबा महाकाल का आज भांग, चंदन और आभूषणों के साथ राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह से लंबी लंबी कतारों में मौजूद भक्तों ने महाकाल की दिव्य भस्म आरती में हिस्सा लिया।
15: और अब बात करते हैं मॉनसून की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की दस्तक से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट आया, मौसम विभाग ने 17 से 22 जून के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की आशंका जताई है और हिमाचल के कुछ राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहने वाली है। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी।

0: मानसून की आहट से बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख में चौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं में नमी महसूस की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून समय पर दस्तक देने वाला है। 18 जून से 22 जून के बीच में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं तो कभी बारिश हो जाती है, कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले दो दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली राहत का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही मौसम नया ट्विस्ट भी लेकर आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जून से उत्तर पश्चिम भारत का एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
1: देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग अलग मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो इस वक्त तापमान थोड़े से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि 35 डिग्री है, लेकिन जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा ही जो है महसूस की जा रही है, क्योंकि तापमान एकदम से वापस बढ़ा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, उसका असर जो है मैदानी राज्यों पर देखने को मिला था और दिल्ली एनसीआर में भी लगातार जो है आंधी तूफान और हल्की बारिश जो है वो देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ गए। हालांकि 18 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ वापस से सक्रिय होगा, जिसका असर पहाड़ी राज्य समेत जो है दिल्ली एनसीआर और बाकी सभी मैदानी राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की जो बारिश है दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है, पहाड़ी राज्यों पर भी जो है अच्छी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं मानसून की स्थिति की बात करूं तो मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के अधिकतम हिस्से जो है वो मानसून कवर कर चुका है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दी है और इसके साथ ही अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का ये अनुमान है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों में जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 23 जून के आसपास की जो तारीख है वो बताई गई है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की तरफ मॉनसून बढ़ेगा। हालांकि अभी महीने का अंत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास जो है दिल्ली एनसीआर में मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो तापमान थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल के बाद वापस से थोड़ी सी स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा।
0: पिंक सिटी, जयपुर, लेक सिटी, उदयपुर समेत कई जिलों में गर्मी का असर एक बार फिर से बढ़ गया। हालांकि प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी थी। कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
2: प्री मानसून के सीजन में आसमान में बादल और सूरज की नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में कहीं जगह तेज तो कहीं जगह हल्की बारिश देखी जा रही है और ऐसे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झुंझुनू में दर्ज की गई है, जो कि 66 mm है। वहीं टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइएस्ट टेम्परेचर इस वक्त फलौदी में है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते ईस्ट राजस्थान में अलग अलग दिन अलग अलग मौसम देखा जाएगा, जिसमें बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और वहीं जो डेजर्ट एरिया है, जो जोधपुर जैसलमेर संभाग है, वहां पे 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड के डस्ट स्टॉर्म की भी चेतावनी दी जा रही है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है, इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
3: देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यदि देखें भारत मौसम विभाग की तरफ से जो जारी की गई थी, तो फर्स्ट स्टेज में भी ये स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं, इनमें जैसे ही मानसून प्रोग्रेस होगा आगे बढ़ेगा तो हम लोग राजस्थान में मानसून के पहुंचने की स्थिति जैसे ही स्पष्ट होगी तो आपको अवगत कराएंगे।
0: पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 जून तक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा तक मानसून दस्तक दे चुका है। फिलहाल मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 7 दिन से अटका हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और फिर 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ। 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है। 17 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है। जयपुर से रिदम जैन और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारतीय नौसेना त्रिशक्ति से होने वाली है लैस। जी हां, 21 जून को होगी 3 युद्ध पोतों की एक साथ कमिशनिंग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: देश में अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप नहीं बेच पाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ड्रग्स रूल्स 1945 में बदलाव किया है। इसमें कफ सिरप को शेड्यूल के से हटा दिया गया है। शेड्यूल के उन दवाओं की लिस्ट है जिन्हें बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बेचा जा सकता है। यह बदलाव पिछले साल 29 दिसंबर को जारी एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर जनता के सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद किया गया है। ये प्रपोजल पिछले साल के आखिर में मध्य प्रदेश में खराब कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद आया था। भारतीय नौसेना इस हफ्ते कोलकाता में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को अपने नाम करने जा रही है। नौसेना एक ही दिन एक साथ 3 एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। यह भव्य समारोह 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान आयोजित हो सकता है। देश के समुद्री इतिहास में यह बेहद दुर्लभ मौका होगा जब फ्रंटलाइन के 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ देश की सेवा में समर्पित किया जाएगा। हाल के सालों में ये ऐसा दूसरा मौका है जब भारतीय नौसेना एक साथ 3 युद्धपोतों को अपने बेड़े का हिस्सा बनाने जा रही है। इस त्रिकोणीय कमिशनिंग में INS दूरागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक एक साथ नौसेना का हिस्सा बनेंगे। यूपी के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली घरेलू कार्गो फ्लाइट का सफल संचालन हो गया। आज इस एयरपोर्ट पर चेन्नई से करीब 20 टन मिश्रित कार्गो लेकर मालवाहक पहली फ्लाइट पहुंची, जिसका वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। कार्गो की लैंडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये विमान वापस चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अफकॉम होल्डिंग का बोइंग 737-800F मालवाहक विमान खाद्य पदार्थ, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल डिवाइस और अन्य कंसोलिडेटेड शिपमेंट लेकर नोएडा पहुंचा था। इस सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया है कि एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बाके बिहारी मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं के संबंध में गहन विचार मंथन किया गया और मंदिर प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत झूले के जीर्णोद्धार का फैसला भी हुआ है। कनाडा के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप चर्चा का विषय है। बस के आकार और डिजाइन में तैयार किया गया ये बस शेल्टर अपनी अनूठी बनावट की वजह से लोगों के साथ साथ पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और बैठने का सिस्टम ठीक वैसा ही बनाया गया है जैसा बसों में होता है। लोगों को बस स्टॉप का ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है।
4: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया।

0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाबा बर्फानी के धाम तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा। मन में अटूट आस्था और दिल में विश्वास लिए बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का जत्था जल्द निकलने वाला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर किसी भी खतरे से निपटने की एक्सरसाइज की। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग आपातकालीन हालातों का अभ्यास किया, जिसमें सुरक्षा बलों, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे से तालमेल बनाकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत सभी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
1: हमारा जो विजिट कठुआ रेलवे स्टेशन का है, ये यात्रा से ही मुतल्लक है। आज यहाँ पे हमने ऑल एजेंसीज के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजों की और जरूरत है। कंबाइंड सबमिट करेंगे।
0: पठानकोट में भी विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अंतरराज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौकों, मुख्य मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर रेड अलर्ट नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी और जांच की जा रही है।
2: सारे व्हीकल्स दी चेकिंग हो रही है कि उस वंचा भी कोई जिहड़ी है यात्रा वा ये सही तरीके नाल शुरू होके तो संपन्न सही तरीके नाल हो जाए, कोई भी अनसुखावी घटना ना वापरे। उन्हां दी डायरेक्शन ते ये रेगुलर काम जिहड़ा चलता रहेगा। नाल ही साडे माणयोग SSP पठानकोट जी वालों भी इस तो पहला भी रेगुलर ही सर्च ऑपरेशन ते फूड पेट्रोलिंग भीड़ भड़ा वाली जगह ते चैकिंग ये रेगुलर चल रही है ते उन्हां दी डायरेक्शन ते ये रेगुलर सारे काम हो रहे हैं जिहड़ा रेगुलर आने वाले समय च चलता है।
0: सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी चिकित्सा सहायता केंद्र 28 जून तक पूरी तरह शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन बूथ 25 जून तक ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सेवा दल और लंगर कमेटियों के सदस्य अमरनाथ पहुँचने लगे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, दवाइयों समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सेवादारों ने अमरनाथ धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
3: आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं। बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: सेवा समितियों की तरफ से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: हमारा पशुपतिनाथ का लंगर जो गुफा पे है, इसकी 5 गाड़ियां ऑलरेडी 5 तारीख को गुफा पहुंच चुकी है, जो बालटाल बेस कैंप को तैयार कर चुकी है। अब वो टीम ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ से 18 ट्रकों की सामग्री लेके यहाँ से अब बालटाल की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सारा सामान गुफा की तरफ जाएगा और अमरनाथ बर्फानी के जो दर्शनों पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष लंगर, प्लस इस साल हमारी संस्था के द्वारा लगभग 50 मसाजर मशीनों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें यात्री विश्राम करके अपने पैरों को सुकून देंगे।
0: जाहिर है आस्था, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। तो वहीं दूसरी ओर सेवा समितियों यात्रियों के स्वागत और सहायता के लिए जोर शोर से जुटी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। बता दें, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी। पठानकोट से पवन सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने और कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 347 अंकों की बढ़त के साथ 77,155 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 24,085 पर बंद हुआ। रुपए की मजबूती और वीक ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 4800 रुपए गिर गया और ये 1,54,400 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5300 रुपए गिरकर 2,55,400 रुपए पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव खत्म होने से 17 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 94.50 के स्तर पर बंद हुआ।
5: कल के टू से जुड़ा बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम, तो एनिमेशन कैरेक्टर श्रेक की 17 साल बाद वापसी। जी हाँ, आ गया है श्रेक 5 का ट्रेलर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
7: बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम मेगा मूवी कल्कि 2 से जुड़ने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। चर्चा है कि आलिया भट्ट कल्कि 2 में अहम किरदार निभा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूटिंग शुरू कर ली है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई। इस फिल्म में आलिया को दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट किया गया है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इस रहस्य से पर्दा उठने में अभी वक्त है, क्योंकि फिल्म के दिसंबर में रिलीज होने की चर्चा है। बड़े पर्दे पर अभिनेत्री शर्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। खबर है कि मशहूर डायरेक्टर लवरंजन की अगली फिल्म में दोनों एक साथ दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लवरंजन अपनी अगली फिल्म के लिए शर्वरी को फीमेल लीड के रूप में कास्ट करने पर सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शर्वरी ने इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लवरंजन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वो कार्तिक और शर्वरी को पूरी स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद शर्वरी फिल्म पर अपना आखिरी फैसला लेंगी।

0: जी।
1: फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर आ गया है। रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि कुछ रिश्ते किस्मत पे लिखे होते हैं, कुछ प्यार से बनते हैं, कुछ हमेशा के लिए कायम रहते हैं। रिश्तों के ऐसे ही ताने बाने को लेकर फिल्म तेरा मेरा नाता, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बैरी और मेघना मुख्य किरदार में है। सीपी प्रोडक्शन के सहयोग से ब्लू डायमंड प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म तेरा मेरा नाता 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म को चंदा पटेल ने प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन चंदा पटेल और स्वतंत्र गोयल ने मिलकर किया है। एनिमेशन की दुनिया से गुड न्यूज आई है, क्योंकि दर्शकों को हंसाने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं श्रेक, योना और डंकी। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसी के साथ करीब 17 साल के बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई। श्रेक 5 अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है और इसके ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पैनोरमा स्टूडियोज और जैकब बाबू मिलकर फहाद फासिल की मुख्य भूमिका वाली दो मलयालम फिल्म बनाएंगे। मलयालम में बनी दृश्यम 3 की जबरदस्त सफलता के बाद पैनोरमा स्टूडियोज अब प्रोड्यूसर जैकब बाबू के साथ मिलकर दो मलयालम फिल्में बनाने पर काम कर रहे हैं। इन दोनों फिल्मों में फहाद फासिल मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्में अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। डायरेक्टर, कास्ट, टेक्नीशियन और क्रिएटिव टीम के अन्य मुख्य सदस्यों के बारे में जल्द ही जानकारी सामने आने वाली है।
2: श्रीलंका में हो रही ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची इंडिया ए। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
3: श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हरा दिया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्रह की अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंडिया ए ने 9 विकेट पर 319 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ इंडिया ए ने टूर्नामेंट में लगातार दो हार का सिलसिला तोड़ा और रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर 403 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत पहली बार ऑल आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
5: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
6: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
5: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
9: मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
10: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बुलेटिन में ब्रेक लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं उस ब्रेक की जो मॉनसून ने इन दिनों ले रखा है। देखिए, मॉनसून ने देश में अपने तय समय के आसपास एंट्री मारी थी, फिर मॉनसून की राहों में ना जाने किससे मुलाकात हो गई। देखिए, हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी डरते थे, वही बात हो गई है। देखिए, मॉनसून का सारा टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया है। 4 जून को मॉनसून केरल को भिगोने पहुंचा था। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक उत्तर पश्चिम भारत की दहलीज तक पहुंच जाना था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मॉनसून जहां था वहीं का वहीं अटका हुआ है। दक्षिण और उत्तर पूर्व को भिगोने के बाद मॉनसून की रफ्तार पर मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के लिए मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। देखिए, लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत दे रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी सबको है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर भारत में मॉनसून कब दस्तक देने वाला है और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद, बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांघकर भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण की धरती गमक उठी।

0: अपने तय समय के आसपास जून की उंगली थाम मॉनसून के बादल आ पहुँचे थे। सो लगा कि अब बस बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी, लेकिन मॉनसूनी बादलों के पांव थम गए। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मॉनसून के बादल दक्षिण, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा तय करके वहीं ठिटक गए। ऐसा लगा मानो कोई मेहमान घर तो आया, पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। 8 जून के बाद से मॉनसून देश के पश्चिमी तट के आसपास लगभग स्थिर है। मॉनसून के अटकने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बनने को माना जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जून का तीसरा हफ्ता आते आते मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से बादल लगभग गायब दिखे। आमतौर पर 15 जून तक भारत का बड़ा हिस्सा मानसूनी बादलों की मोटी चादर से ढका दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आई।
1: इस बीच भारत की चिंता इस बात की है कि मॉनसून कमजोर पड़ रहा है, उसकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है और जून के महीने में ही अब तक 64% कम बरसात हुई है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर मैं आपको ये कहूं कि मौसम विभाग पर ये जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, इनमें दिखाई दे रहा है कि मानो जैसे अरब सागर के पास पश्चिम भारत से बादल ही चोरी हो गए। अब ये देखिए पूरा इलाका, ये अरब सागर का इलाका है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगे बढ़ा है कि उसके बाद वो केरल होते हुए आगे जब बढ़ना चाहिए इसे कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, इन इलाकों में दरअसल इस समय बादलों का डेरा होना चाहिए, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि बादलों को मानो किसी ने चुरा लिया हो और फिर इस महाराष्ट्र के ऊपर होते हुए गुजरात तक आगे जाने के लिए यहां पर मानसून की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो गई है। बादलों का बिल्कुल नदारद हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ अरब सागर में नहीं, इन्हीं सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर मैं देखता यहां जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और उसकी जो स्थिति आगे पश्चिम बंगाल की ओर जानी चाहिए, यहां पर भी बादलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है इन सैटेलाइट तस्वीरों में।
0: सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर इस बार मॉनसून के बादलों ने मुंह क्यों मोड़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में छुपा है। ऊपरी वायुमंडल में इस समय हवाओं की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने मॉनसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आमतौर पर पूर्व से बहने वाली हवाएं, जिन्हें ईस्टर्ली जेट कहा जाता है, हवा को ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, वो है पश्चिम से बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक गई है। यानी मॉनसून के बादलों के बीच इस वक्त एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, मॉनसून कैसे आगे बढ़ेगा। अभी के हालात में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों तक पहुंचकर भी बारिश में तब्दील नहीं हो पा रही। बादल बन रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, नमी आ रही है लेकिन बरस नहीं रही, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि मॉनसून गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी जो हालात हैं उसे मॉनसून का गायब होना नहीं बल्कि मॉनसून का पॉज होना माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मॉनसून कहीं गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ठहर गया है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिन हवाओं के पैटर्न ने बादलों को रोक रखा है वो पैटर्न कमजोर पड़ने जा रहा है। मतलब जैसे ही बाधा हटेगी मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।
1: ऐसे में मौसम विभाग को लगता है कि 20 जून के बाद अगर जब मौसम अपनी रफ्तार पकड़ेगा तब मॉनसून की रफ्तार बारिश लेकर के आएगी, और ऐसे में पश्चिम भारत, खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे में जहां आमतौर पर 9 से 11 जून के बीच बरसात होती थी, मॉनसून तट तक पहुंचता था, उसमें भी काफी देरी है, जो कि पहले 2019 और उसके पहले 2023 में ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 25 जून की तारीख भी बीत सकती है। यानी मॉनसून का इंतजार पूरे भारत के लिए अभी लंबा है।
0: वैसे मॉनसून का इंतजार भले लंबा खिंच रहा हो, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में एक के बाद एक लगातार सक्रिय होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि ये मॉनसून की बारिश नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हुई बारिश है। इस बारिश के चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।
2: एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: रही बात मॉनसून के आगे बढ़ने की, तो संकेत यही है कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ने के हालात बन रहे हैं। जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मॉनसून दोबारा एक्टिव होगा। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में बादल आएंगे और जमकर बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, अच्छी बात यह है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पिछले दिनों से प्री मॉनसून गतिविधियां दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्री मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी ही सही लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिली है। देखिए, मौसम विभाग भी इशारा कर रहा है कि मॉनसून का ब्रेक जल्द ही खत्म होने वाला है और उसी का संकेत है तेज हवाएं और गरज चमक के साथ अलग अलग जगहों पर हो रही ये बारिश। ये मॉनसून नहीं है, ये प्री मॉनसून है, ये समझने वाली बात है। दरअसल प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग आखिरकार कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न होता नहीं है। ये देश के दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले चली भी जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। देखिए, मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। देखिए, मॉनसून की बारिश कभी तेज होती है तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहता है। जबकि बात अगर हम प्री मॉनसून बारिश की करें तो प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं देखने को मिलती हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं।

0: मानसून के इंतजार और प्री मानसून की जोरदार बारिश के बीच ही एक पैटर्न लगातार बनता दिख रहा है। देखिए, आजकल उत्तर भारत के कई जिलों में आंधी और तेज बारिश को लेकर फोन पर अपडेट आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, आपको भी आए होंगे। देखिए, मौसम बिगड़ने की चेतावनी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, लेकिन इस अलर्ट और अपडेट के बाद कई बार ये हो रहा है कि वास्तव में बारिश होती ही नहीं है। क्या ये टेक्निकल मिसकैलकुलेशन है? मौसम बिगड़ने वाला है, इस प्रिडिक्शन के पैरामीटर्स आखिर क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की मौसम विभाग से ही।
1: देखिए, विशेष रूप से मानसून आने से जो पहले का पीरियड होता है, इसमें खासकर पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें तेज मेघ गर्जन, तेज गस्टी विंड्स और लाइटनिंग के साथ में रेनफॉल होने की एक्टिविटी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो ऐसे में ये जो थंडरस्टॉर्म सिस्टम्स हैं, ये सामान्यतया शॉर्ट लिविंग फिनोमिना होती है, यानी कि पूरे दिन भर ऐसा वेदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव सिस्टम होता है, खासकर दोपहर और शाम के समय इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जो अलर्ट्स और जो समटाइम्स शॉर्ट रेंज के लिए जो पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं मौसम विभाग से, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिकली रडार, सैटेलाइट और न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शंस जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बेस आधार पर ही दिए जा रहे हैं। और जो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि एक से दो घंटे के लिए, यानी ये शॉर्ट लिविंग

0: आवाज देती ये काशी की साधना है। अस्सी घाट पर शहनाई की ये धुन बादलों को बुला रही है। प्रकृति से काशी के संवाद का ये अनूठा तरीका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्न हैं, जो अस्सी घाट पर राग मेघ से बारिश को काशी आने का न्योता दे रहे हैं।
1: विगत 18-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करता चला रहा हूँ, और जब कहीं बारिश नहीं होती है और सब जगह हो भी जाए तो काशी में नहीं होता तो मुझे तकलीफ होता है, और काशी में इस बार बहुत तगड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत विलम्ब हो गया है, और जीव जंतु इंसान देख ही रहे आप गर्मी से परेशान है, पंछियाँ भी परेशान हैं, मर रही हैं, तो इसलिए इनके जीवोद्धार के लिए और माँ गंगा के श्री चरणों में आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, और उनको जो हमारे पास अंग वस्त्र वगैरह रहता है माँ को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती माला फूल से पूजा पाठ करता हूँ। फिर भगवान भास्कर भगवान इंद्र को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं अपना राग मेघ प्रस्तुत करता हूँ।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ का अपना खास महत्व है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है और सदियों से इसे मेघों और बारिश का राग कहा जाता रहा है। कहते हैं कि राग मेघ प्रकृति के साथ संगीत का अनूठा साक्षात्कार है। यही वजह है कि जब काशी कड़ी धूप में तप रही होती है तो ये राग बादलों को बुलाकर उस तपस्या को पूरा करता है।
1: इसलिए मैं गंगा मैया के चरणों में ही अपने आंचल में उनके मैं बजाता हूँ और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य करता हूँ, और भगवान इंद्र निश्चय, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माँ गंगा का आशीर्वाद है कि 36 घंटे में बढ़िया बारिश होगा। ये रीवा घाट है, रिमझिम फुहारों के साथ बारिश होगा, बढ़िया बारिश होगा, और काशी को राहत मिलेगा, गर्मी से निजात मिलेगा।
0: काशी में गूंजे इन सुरों ने भले बादलों को द्योता भेज दिया हो, लेकिन ये साधना सभी के लिए है। उत्तर भारत तक पहुंचने में मॉनसून जिस तरह वक्त ले रहा है, उसने हर किसी को बेचैन कर रखा है। उम्मीद यही है कि काशी में गूंजा ये राग मेघ लोगों की मुराद पूरी करेगा और मॉनसून जल्द काशी समेत समूचे उत्तर भारत में राहत बनकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मॉनसून का इंतजार हम सभी को रहेगा। बहरहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: लेकर जो तीन दिन बाद यानी कि 21 जून को होने जा रहा है, इसे लेकर छात्र इन दिनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। वहीं सरकार ने भी री एग्जाम को बिना किसी गड़बड़ी के करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स मॉक ड्रिल कर रहा है।
3: इस बार बस पेपर फेयर कंडक्ट हो,
4: जो डिजर्व करते हैं बच्चे मेडिकल में जाने के लिए, और वही मेडिकल में जाएंगे।
3: मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा आ जाए जैसे पिछली बार हुआ था। बट वी रियली होपिंग कि बहुत फेयरली हो विदाउट एनी चीटिंग।

0: देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट री एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने बिना किसी गड़बड़ी के री एग्जाम कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही है। और यही वजह है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए पहली बार एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से आई हैं, जहां परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को मदुरई से तिरुनेलवेली तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मॉक ड्रिल की गई। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को पहले विमान के जरिए दिल्ली से मदुरई ले जाया गया, इसके बाद उन्हें वायुसेना के अधिकारियों की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से तिरुनेलवेली आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड तक पहुंचाया गया, ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए।
1: मई महीने में हुआ नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक होने के बाद देखा जा रहा है कि देश भर में इस मामले को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पहले तो पेपर को रद्द कर दिया गया, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और फिर इसका री एग्जामिनेशन 21 जून के लिए घोषित किया गया, जिसको बस अब 3 दिन का ही वक्त बाकी रह गया। और इसको लेकर भी सुरक्षा के जो प्रबंध है वो बढ़ा दिए गए हैं। देश में पहली बार देखा जाएगा कि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए देश की आर्मी और साथ ही एयरफोर्स दोनों की मदद ली जाएगी। एयरफोर्स जो परीक्षा केंद्रों तक जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो पहुंचाएंगे और साथ ही जो आर्मी है परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में मदद करेगी।
0: एयरफोर्स की मदद लेने के अलावा सरकार इस बार सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए है। इसी चौकसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
2: So we had a meeting with the telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a neat leak paper. The moment you are allowing that, any platform, whenever you create an account on Google or Gmail, it says what you can, what you cannot. So we had made a request that please do not allow. And after informing them about a channel, they would block them. We had to block 200 channels.
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए तैयारियों में जोर शोर से जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई है। वहां सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान एसपी प्रवीण नायक ने पिपराली रोड पर मौजूद विभिन्न हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स में जाकर तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से बात की, जिसमें उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की है।
3: जो नेक्स्ट 21 जून को जो नीट एग्जाम होने वाले हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में आज पूरे पुलिस के द्वारा पूरा कोचिंग इलाके अंदर हमने फ्लैग मार्च और भ्रमण किया गया था, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत भी किया था। तो उनसे ये जानकारी लिया गया कि कोई भी चीज़ें अफवाह या कुछ भी चीज़ें अगर आपके इनके न्यूज़ संज्ञान में आ रहे हैं तो हमारे नॉलेज में लेके आए और उसके ऊपर हम एक्शन कर सकते, इसके बारे में सबसे बातचीत किया गया था। उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी बातचीत किया था बच्चों से। इसके साथ साथ हमने जो भी नीट एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना अगर कोई हमें देना चाहता है तो उसके एक मोबाइल नंबर हमने जारी किया था, तो उसके बारे में भी सभी बच्चों को हमने बताया था।
0: री एग्जाम के लिए एनटीए और सरकार की कोशिशों को देखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस बार फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद भी जताई है।
4: जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था तो एग्जाम रद्द हो गया था, और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है और इस बार उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
5: अनन्या।
4: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
5: जी सर।
4: तो अब दोबारा आप री एग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं?
5: जी सर।
4: तो अब कितना अप्रिहेंशन है? इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए, और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है, और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की अप्रिहेंशन है स्टूडेंट?
5: सर, आई एक्सपेक्ट कि पेपर सही से हो, फेयरली कंडक्ट हो। पिछली बार हमारी मेहनत वेस्ट गई थी, हमने 3 महीने के लिए स्ट्रेटजाइज किया हुआ था पूरा, और वो पूरी चीज उल्टी पड़ गई हमारे ऊपर ही। तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो।
4: इस बार सरकार ने बड़े अरेंजमेंट्स किए हैं इसको फुल प्रूफ रखने के लिए कि कोई लीक्स ना रहे, और किस तरह देखते हैं उसको?
6: हम होप तो यही कर रहे हैं कि इस बार लीक नहीं होएगा पेपर, लेकिन एक वो चीज होती है कि पहले जब हमने तैयारी कर रहे थे तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी हमारी तैयारी करने की, उसके बाद फिर हम घर गए, उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमें पता चल रहा है कि दोबारा पेपर करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज़ एक मेंटल हैरेसमेंट थी हमारे लिए थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं हम।
7: गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था।
8: आई होप कि इस बार ना हो ली, क्योंकि काफी जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इस बार तो।
4: कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी रोज की?
8: 14-15 घंटे तो रोज।
0: कुल मिलाकर कोशिश इस बार यही है कि नीट यूजी जैसी अहम परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो पाए। दिल्ली से अनमोल बाली, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के शंघाई में जश्न का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहां खुशियों का ऐसा मेला सजा जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था शंघाई डिज्नीलैंड की स्थापना के 10 साल पूरे होने का, और इस खास अवसर पर पूरे पार्क को रंगों, रोशनी और सपनों की दुनिया में बदल दिया गया।
9: डिज्नीलैंड, नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं साल की रह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, Tune In has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नेदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
13: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा उड़ीसा के रायगढ़ के राजा महोत्सव के यहाँ, जहाँ उड़ीसा के पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पारंपरिक लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लिया जा रहा है।
14: ओडिशा के रायगढ़ में राजा महोत्सव की धूम है। इस उत्सव में पारंपरिक झूलों के बीच लोकगीत और लजीज पारंपरिक पकवानों ने फिजा में रौनक ला दी है। पारंपरिक ओडिशी और संबलपुरी नृत्यों के जरिए ओडिशी लोक कला यहां प्रदर्शित हो रही है। भव्य सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। यहां महिलाएं पारंपरिक ओडिशी वेशभूषा में नजर आईं और राजा झूला का आनंद उठाते दिखी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के तुलमुल में मौजूद माता खीर मंदिर में माता खीर भवानी मेला 19 जून को लगने जा रहा है। इस मेले और उत्सव को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस मेले में सैकड़ों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है, इसीलिए इस मेले के लिए और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा ताइक्वांडो कैंप लगाया था, जिसमें इलाके की बच्चियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। यहां ताइक्वांडो कोच ने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए और उनका आत्मविश्वास मजबूत किया। इस कैंप में आज समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुंछ के एसपी खुद बच्चियों के उत्साह वर्धन के लिए आए। बेहद पवित्र और दुर्गम किन्नौर कैलाश यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी। इस मुश्किल धार्मिक यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा वजहों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को ही किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। किन्नौर कैलाश यात्रा रिकांगपियो के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। गंगटोली और गणेश पार्क इस यात्रा का पहला पड़ाव है। करीब 14,900 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पार्वती कुंड में स्नान के बाद अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। इस दुर्गम खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहां समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मथुरा के संत आशुतोष ब्रह्मचारी और गायिका प्रांजल दहिया ने भस्म आरती में हिस्सा लिया। आज सुबह की भस्म आरती खास रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। बाबा महाकाल का आज भांग, चंदन और आभूषणों के साथ राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह से लंबी लंबी कतारों में मौजूद भक्तों ने महाकाल की दिव्य भस्म आरती में हिस्सा लिया।
13: और अब बात करते हैं मॉनसून की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की दस्तक से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट आया। मौसम विभाग ने 17 से 22 जून के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने की आशंका जताई है और हिमाचल के कुछ राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहने वाली है। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी।

0: मानसून की आहट से बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख में चौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं में नमी महसूस की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून समय पर दस्तक देने वाला है। 18 जून से 22 जून के बीच में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्री मानसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं तो कभी बारिश हो जाती है, कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले दो दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली राहत का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही मौसम नया ट्विस्ट भी लेकर आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जून से उत्तर पश्चिम भारत का एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
1: देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग अलग मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो इस वक्त तापमान थोड़े से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि 35 डिग्री है, लेकिन जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा ही जो है महसूस की जा रही है, क्योंकि तापमान एकदम से वापस बढ़ा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, उसका असर जो है मैदानी राज्यों पर देखने को मिला था और दिल्ली एनसीआर में भी लगातार जो है आंधी तूफान और हल्की बारिश जो है वो देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ गए। हालांकि 18 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ वापस से सक्रिय होगा, जिसका असर पहाड़ी राज्य समेत जो है दिल्ली एनसीआर और बाकी सभी मैदानी राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की जो बारिश है दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है, पहाड़ी राज्यों पर भी जो है अच्छी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं मानसून की स्थिति की बात करूं तो मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के अधिकतम हिस्से जो है वो मानसून कवर कर चुका है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दी है और इसके साथ ही अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों में जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 23 जून के आसपास की जो तारीख है वो बताई गई है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की तरफ मॉनसून बढ़ेगा। हालांकि अभी महीने का अंत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास जो है दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो तापमान थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल के बाद वापस से थोड़ी सी स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा।
0: पिंक सिटी, जयपुर, लेक सिटी, उदयपुर समेत कई जिलों में गर्मी का असर एक बार फिर से बढ़ गया। हालांकि प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी थी। कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
2: प्री मानसून के सीजन में आसमान में बादल और सूरज की नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में कई जगह तेज तो कहीं जगह हल्की बारिश देखी जा रही है और ऐसे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झुंझुनू में दर्ज की गई है, जो कि 66 mm है। वहीं टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइएस्ट टेम्परेचर इस वक्त फलौदी में है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते ईस्ट राजस्थान में अलग अलग दिन अलग अलग मौसम देखा जाएगा, जिसमें बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और वहीं जो डेजर्ट एरिया है, जो जोधपुर जैसलमेर संभाग है, वहां पे 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड के डस्ट स्टॉर्म की भी चेतावनी दी जा रही है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
3: देखिए लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यदि देखें भारत मौसम विभाग की तरफ से जो जारी की गई थी, तो फर्स्ट स्टेज में भी ये स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं, इनमें जैसे ही मानसून प्रोग्रेस होगा आगे बढ़ेगा तो हम लोग राजस्थान में मानसून के पहुंचने की स्थिति जैसे स्पष्ट होगी तो आपको अवगत कराएंगे।
0: पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 जून तक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा तक मानसून दस्तक दे चुका है। फिलहाल मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 7 दिन से अटका हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और फिर 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ। 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है। 17 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है। जयपुर से रिदम जैन और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारतीय नौसेना त्रि शक्ति से होने वाली है लैस। जी हां, 21 जून को होगी 3 युद्ध पोतों की एक साथ कमिशनिंग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: देश में अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप नहीं बेच पाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ड्रग्स रूल्स 1945 में बदलाव किया है। इसमें कफ सिरप को शेड्यूल के से हटा दिया गया है। शेड्यूल के उन दवाओं की लिस्ट है जिन्हें बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बेचा जा सकता है। ये बदलाव पिछले साल 29 दिसंबर को जारी एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर जनता के सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद किया गया है। ये प्रपोजल पिछले साल के आखिर में मध्य प्रदेश में खराब कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद आया था। भारतीय नौसेना इस हफ्ते कोलकाता में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को अपने नाम करने जा रही है। नौसेना एक ही दिन एक साथ 3 एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। ये भव्य समारोह 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान आयोजित हो सकता है। देश के समुद्री इतिहास में ये बेहद दुर्लभ मौका होगा जब फ्रंटलाइन के 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ देश की सेवा में समर्पित किया जाएगा। हाल के सालों में ये ऐसा दूसरा मौका है जब भारतीय नौसेना एक साथ 3 युद्धपोतों को अपने बेड़े का हिस्सा बनाने जा रही है। इस त्रिकोणीय कमिश्निंग में INS दूरागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक एक साथ नौसेना का हिस्सा बनेंगे। यूपी के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली घरेलू कार्गो फ्लाइट का सफल संचालन हो गया। आज उस एयरपोर्ट पर चेन्नई से करीब 20 टन मिश्रित कार्गो लेकर मालवाहक पहली फ्लाइट पहुंची, जिसका वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। कार्गो की लैंडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये विमान वापस चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अब कॉम होल्डिंग का बोइंग 737-800F मालवाहक विमान खाद्य पदार्थ, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल डिवाइस और अन्य कंसोलिडेटेड शिपमेंट लेकर नोएडा पहुंचा था। इस सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया है कि एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बाके बिहारी मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं के संबंध में गहन विचार मंथन किया गया और मंदिर प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत झूले के जीर्णोद्धार का फैसला भी हुआ है। कर्नाटक के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप चर्चा का विषय है। बस के आकार और डिजाइन में तैयार किया गया ये बस शेल्टर अपनी अनूठी बनावट की वजह से लोगों के साथ साथ पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और बैठने का सिस्टम ठीक वैसा ही बनाया गया है जैसा बसों में होता है। लोगों को बस स्टॉप का ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है।
5: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया।

0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाबा बर्फानी के धाम तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा। मन में अटूट आस्था और दिल में विश्वास लिए बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का जत्था जल्द निकलने वाला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर किसी भी खतरे से निपटने की एक्सरसाइज की। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग आपातकालीन हालातों का अभ्यास किया, जिसमें सुरक्षा बलों, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे से तालमेल बनाकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत सभी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
1: हमारा जो विजिट कठुआ रेलवे स्टेशन का है, ये यात्रा से ही मुतल्लिक है। आज यहाँ पे हमने ऑल एजेंसीज के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजों की और जरूरत है।
0: पठानकोट में भी विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अंतरराज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौकों, मुख्य मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर रेड अलर्ट नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी और जांच की जा रही है।
2: सारे व्हीकल्स दी चेकिंग हो रही है कि उस वंचा भी कोई जिहड़ी है यात्रा वा ये सही तरीके नाल शुरू होके तो संपन्न सही तरीके नाल हो जाए, कोई भी अनसुखावी घटना ना वापरे। उन्हां दी डायरेक्शन ते ये रेगुलर काम जिहड़ा चलता रहेगा। नाल ही साडे माणयोग SSP पठानकोट जी वालों भी इस तो पहला भी रेगुलर ही सर्च ऑपरेशन ते फूड पेट्रोलिंग भीड़ भड़ा वाली जगह पर चैकिंग ये रेगुलर चल रही है, तो उन्होंने डायरेक्शन से ये रेगुलर सारे काम हो रहे हैं। जो रेगुलर आने वाले समय से चलता है।
0: सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी चिकित्सा सहायता केंद्र 28 जून तक पूरी तरह शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन बूथ 25 जून तक ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सेवा दल और लंगर कमेटियों के सदस्य अमरनाथ पहुँचने लगे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, दवाइयों समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सेवादारों ने अमरनाथ धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
3: आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं। बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: सेवा समितियों की तरफ से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: हमारा पशुपतिनाथ का लंगर जो गुफा पे है, इसकी 5 गाड़ियां ऑलरेडी 5 तारीख को गुफा पहुंच चुकी है, जो बालटाल बेस कैंप को तैयार कर चुकी है। अब वो टीम ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ से 18 ट्रकों की सामग्री लेके यहाँ से अब बालटाल की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सारा सामान गुफा की तरफ जाएगा और अमरनाथ बर्फानी के जो दर्शनों पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष लंगर, प्लस इस साल हमारी संस्था के द्वारा लगभग 50 मसाजर मशीनों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें यात्री विश्राम करके अपने पैरों को सुकून देंगे।
0: जाहिर है आस्था, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर सेवा समितियों, यात्रियों के स्वागत और सहायता के लिए जोर शोर से जुटी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। बता दें, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी। पठानकोट से पवन सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने और कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 347 अंकों की बढ़त के साथ 77,155 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 24,085 पर बंद हुआ। रुपए की मजबूती और वीक ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 4800 रुपए गिर गया और ये 1,54,400 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5300 रुपए गिरकर 2,55,400 रुपए पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव खत्म होने से 17 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 94.50 के स्तर पर बंद हुआ।
5: कल के टू से जुड़ा बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम, तो एनिमेशन कैरेक्टर श्रेक की 17 साल बाद वापसी। जी हाँ, आ गया है श्रेक 5 का ट्रेलर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
7: बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम मेगा मूवी कल्कि 2 से जुड़ने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। चर्चा है कि आलिया भट्ट कल्कि 2 में अहम किरदार निभा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूटिंग शुरू कर ली है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई। इस फिल्म में आलिया को दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट किया गया है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इस रहस्य से पर्दा उठने में अभी वक्त है, क्योंकि फिल्म के दिसंबर में रिलीज होने की चर्चा है। बड़े पर्दे पर अभिनेत्री शर्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। खबर है कि मशहूर डायरेक्टर लवरंजन की अगली फिल्म में दोनों एक साथ दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लवरंजन अपनी अगली फिल्म के लिए शर्वरी को फीमेल लीड के रूप में कास्ट करने पर सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शर्वरी ने इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लवरंजन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वो कार्तिक और शर्वरी को पूरी स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद शर्वरी फिल्म पर अपना आखिरी फैसला लेंगी।

0: जी।
1: फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर आ गया है। रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि कुछ रिश्ते किस्मत पे लिखे होते हैं, कुछ प्यार से बनते हैं, कुछ हमेशा के लिए कायम रहते हैं। रिश्तों के ऐसे ही ताने बाने को लेकर फिल्म तेरा मेरा नाता, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बैरी और मेघना मुख्य किरदार में है। सीपी प्रोडक्शन के सहयोग से ब्लू डायमंड प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म तेरा मेरा नाता 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म को चंदा पटेल ने प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन चंदा पटेल और स्वतंत्र गोयल ने मिलकर किया है। एनिमेशन की दुनिया से गुड न्यूज आई है, क्योंकि दर्शकों को हंसाने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं श्रेक, फियोना और डंकी। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसी के साथ करीब 17 साल के बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई। श्रेक 5 अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है और इसके ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पैनोरमा स्टूडियोज और जैकब बाबू मिलकर फहाद फासिल की मुख्य भूमिका वाली दो मलयालम फिल्म बनाएंगे। मलयालम में बनी दृश्यम 3 की जबरदस्त सफलता के बाद पैनोरमा स्टूडियोज अब प्रोड्यूसर जैकब बाबू के साथ मिलकर दो मलयालम फिल्में बनाने पर काम कर रहे हैं। इन दोनों फिल्मों में फहाद फासिल मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्में अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। डायरेक्टर, कास्ट, टेक्नीशियन और क्रिएटिव टीम के अन्य मुख्य सदस्यों के बारे में जल्द ही जानकारी सामने आने वाली है।
2: श्रीलंका में हो रहे ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची इंडिया ए। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
3: श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हरा दिया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्रह की अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंडिया ए ने 9 विकेट पर 319 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ इंडिया ए ने टूर्नामेंट में लगातार 2 हार का सिलसिला तोड़ा और रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर 403 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत पहली बार ऑल आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। 25 रन की शानदार पारी खेली।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत, यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बुलेटिन में ब्रेक लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं उस ब्रेक की जो मॉनसून ने इन दिनों ले रखा है। देखिए, मॉनसून ने देश में अपने तय समय के आसपास एंट्री मारी थी, फिर मॉनसून की राहों में न जाने किससे मुलाकात हो गई। देखिए, हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी डरते थे, वही बात हो गई है। देखिए, मॉनसून का सारा टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया है। 4 जून को मॉनसून केरल को भिगोने पहुंचा था। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक उत्तर पश्चिम भारत की दहलीज तक पहुंच जाना था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मॉनसून जहां था वहीं का वहीं अटका हुआ है। दक्षिण और उत्तर पूर्व को भिगोने के बाद मॉनसून की रफ्तार पर मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के लिए मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। देखिए, लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत दे रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी सबको है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर भारत में मॉनसून कब दस्तक देने वाला है और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद, बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांघकर भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण की धरती गमक उठी।

0: अपने तय समय के आसपास जून की उंगली थाम मॉनसून के बादल आ पहुँचे थे। सो लगा कि अब बस बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तरबतर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी, लेकिन मानसूनी बादलों के पांव थम गए। तय रूटीन के हिसाब से मानसून को अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मानसून के बादल दक्षिण, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा तय करके वहीं ठिटक गए। ऐसा लगा मानो कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। 8 जून के बाद से मानसून देश के पश्चिमी तट के आसपास लगभग स्थिर है। मानसून के अटकने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बनने को माना जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जून का तीसरा हफ्ता आते आते मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से बादल लगभग गायब दिखे। आमतौर पर 15 जून तक भारत का बड़ा हिस्सा मानसूनी बादलों की मोटी चादर से ढका दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आई।
1: इस बीच भारत की चिंता इस बात की है कि मॉनसून कमजोर पड़ रहा है, उसकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है और जून के महीने में ही अब तक 64% कम बरसात हुई है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर मैं आपको ये कहूं कि मौसम विभाग पर ये जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, इनमें दिखाई दे रहा है कि मानो जैसे अरब सागर के पास पश्चिम भारत से बादल ही चोरी हो गए। अब ये देखिए, पूरा इलाका ये अरब सागर का इलाका है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगे बढ़ा है कि उसके बाद वो केरल होते हुए आगे जब बढ़ना चाहिए इसे कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, इन इलाकों में दरअसल इस समय बादलों का डेरा होना चाहिए, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि बादलों को मानो किसी ने चुरा लिया हो और फिर इस महाराष्ट्र के ऊपर होते हुए गुजरात तक आगे जाने के लिए यहां पर मानसून की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो गई है। बादलों का बिल्कुल नदारद हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ अरब सागर में नहीं, इन्हीं सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर मैं देखता यहां जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और उसकी जो स्थिति आगे पश्चिम बंगाल की ओर जानी चाहिए, यहां पर भी बादलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है इन सैटेलाइट तस्वीरों में।
0: सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस बार मानसून के बादलों ने मुंह क्यों मोड़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में छुपा है। ऊपरी वायुमंडल में इस समय हवाओं की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने मानसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आमतौर पर पूर्व से बहने वाली हवाएं, जिन्हें ईस्टर्ली जेट कहा जाता है, हवा को ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, वो है पश्चिम से बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक गई है। यानी मानसून के बादलों के बीच इस वक्त एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, मानसून कैसे आगे बढ़ेगा। अभी के हालात में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों तक पहुंचकर भी बारिश में तब्दील नहीं हो पा रही। बादल बन रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, नमी आ रही है लेकिन बरस नहीं रही, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि मानसून गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी जो हालात हैं उसे मानसून का गायब होना नहीं बल्कि मानसून का पॉज होना माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मानसून कहीं गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ठहर गया है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिन हवाओं के पैटर्न ने बादलों को रोक रखा है वो पैटर्न कमजोर पड़ने जा रहा है, मतलब जैसे ही बाधा हटेगी मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।
1: ऐसे में मौसम विभाग को लगता है कि 20 जून के बाद अगर जब मौसम अपनी रफ्तार पकड़ेगा तब मानसून की रफ्तार बारिश लेकर के आएगी, और ऐसे में पश्चिम भारत, खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे में जहां आमतौर पर 9 से 11 जून के बीच बरसात होती थी, मानसून तट तक पहुंचता था, उसमें भी काफी देरी है, जो कि पहले 2019 और उसके पहले 2023 में ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 25 जून की तारीख भी बीत सकती है। यानी मानसून का इंतजार पूरे भारत के लिए अभी लंबा है।
0: वैसे मॉनसून का इंतजार भले लंबा खिंच रहा हो, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में एक के बाद एक लगातार सक्रिय होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि ये मॉनसून की बारिश नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हुई बारिश है। इस बारिश के चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।
2: एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से, उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: रही बात मॉनसून के आगे बढ़ने की, तो संकेत यही है कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ने के हालात बन रहे हैं। जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मॉनसून दोबारा एक्टिव होगा। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में बादल आएंगे और जमकर बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, अच्छी बात यह है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पिछले दिनों से प्री मॉनसून गतिविधियां दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्री मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी ही सही लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिली है। देखिए, मौसम विभाग भी इशारा कर रहा है कि मॉनसून का ब्रेक जल्द ही खत्म होने वाला है और उसी का संकेत है तेज हवाएं और गरज चमक के साथ अलग अलग जगहों पर हो रही ये बारिश। ये मॉनसून नहीं है, ये प्री मॉनसून है, ये समझने वाली बात है। दरअसल प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग आखिरकार कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न होता नहीं है। ये देश के दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले चली भी जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। देखिए, मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। देखिए, मॉनसून की बारिश कभी तेज होती है तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहता है। जबकि बात अगर हम प्री मॉनसून बारिश की करें तो प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं देखने को मिलती हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं।

0: मानसून के इंतजार और प्री मानसून की जोरदार बारिश के बीच ही एक पैटर्न लगातार बनता दिख रहा है। देखिए, आजकल उत्तर भारत के कई जिलों में आंधी और तेज बारिश को लेकर फोन पर अपडेट आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, आपको भी आए होंगे। देखिए, मौसम बिगड़ने की चेतावनी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, लेकिन इस अलर्ट और अपडेट के बाद कई बार ये हो रहा है कि वास्तव में बारिश होती ही नहीं है। क्या ये टेक्निकल मिसकैलकुलेशन है? मौसम बिगड़ने वाला है, इस प्रिडिक्शन के पैरामीटर्स आखिर क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की मौसम विभाग से ही।
1: देखिए, विशेष रूप से मानसून आने से जो पहले का पीरियड होता है, इसमें खासकर पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें तेज मेघ गर्जन, तेज गस्टी विंड्स और लाइटनिंग के साथ में रेनफॉल होने की एक्टिविटी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो ऐसे में ये जो थंडरस्टॉर्म सिस्टम्स हैं, ये सामान्यतया शॉर्ट लिविंग फिनोमिना होती है, यानी कि पूरे दिन भर ऐसा वेदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव सिस्टम होता है। खासकर दोपहर और शाम के समय इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तो जो अलर्ट्स और जो समटाइम्स शॉर्ट रेंज के लिए जो पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं मौसम विभाग से, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिकली रडार, सैटेलाइट और न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शंस जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बेस्ड आधार पर ही दिए जा रहे हैं। और जो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि एक से दो घंटे के लिए, यानी ये शॉर्ट लिविंग फिनोमेना होती है, और कभी कभी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी इंटेंस भी थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ जो है ये देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो थंडरस्टॉर्म टाइप के जो सिस्टम्स हैं ये ज़रूर एक दो घंटे के होते हैं। हो सकता है कि दिन में पूरे दिन भर ऐसे सिस्टम आपको ना दिखें, दिन में हो सकता है कि सामान्य वेदर रहे, लेकिन शाम के टाइम, दोपहर बाद या कभी कभी रात के समय में भी इस टाइप के कन्वेक्टिव सिस्टम्स डेवलप होते हैं, और ऐसे में सीवियर थंडरस्टॉर्म से बचाने के लिए ही जो IMD का जो गाइडलाइंस हैं या SOP बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलर्ट्स जारी किए जाते हैं।
0: तो देखिए, मानसून का इंतजार हम सभी को है, और इस इंतजार के बीच काशी में बारिश के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ संगीत प्रेमी पारंपरिक मेघ राग का गायन कर इंद्रदेव से बरखा के गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मान्यता है कि मेघ राग के सुर प्रकृति को प्रसन्न कर बारिश का संदेश लेकर आते हैं।

0: बादलों को आवाज देती ये काशी की साधना है। अस्सी घाट पर शहनाई की ये धुन बादलों को बुला रही है। प्रकृति से काशी के संवाद का ये अनूठा तरीका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्न हैं, जो अस्सी घाट पर राग मेघ से बारिश को काशी आने का न्योता दे रहे हैं।
1: विगत 18-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करता चला रहा हूँ, और जब कहीं बारिश नहीं होती है और सब जगह हो भी जाए तो काशी में नहीं होता तो मुझे तकलीफ होता है, और काशी में इस बार बहुत तगड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत विलम्ब हो गया है, और जीव जंतु इंसान देख ही रहे आप गर्मी से परेशान है, पंछियाँ भी परेशान हैं, मर रही हैं, तो इसलिए इनके जीवोद्धार के लिए और माँ गंगा के श्री चरणों में आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, और उनको जो हमारे पास अंग वस्त्र वगैरह रहता है माँ को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती माला फूल से पूजा पाठ करता हूँ। फिर भगवान भास्कर भगवान इंद्र को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं अपना राग मेघ प्रस्तुत करता हूँ।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ का अपना खास महत्व है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है और सदियों से इसे मेघों और बारिश का राग कहा जाता रहा है। कहते हैं कि राग मेघ प्रकृति के साथ संगीत का अनूठा साक्षात्कार है। यही वजह है कि जब काशी कड़ी धूप में तप रही होती है तो ये राग बादलों को बुलाकर उस तपस्या को पूरा करता है।
1: इसलिए मैं गंगा मैया के चरणों में ही अपने आंचल में उनके मैं बजाता हूं और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य करता हूं, और भगवान इंद्र निश्चय, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माँ गंगा का आशीर्वाद है कि 36 घंटे में बढ़िया बारिश होगा। ये रीवा घाट है, रिमझिम फुहारों के साथ बारिश होगा, बढ़िया बारिश होगा, और काशी को राहत मिलेगा, गर्मी से निजात मिलेगा।
0: काशी में गूंजे इन सुरों ने भले बादलों को द्योता भेज दिया हो, लेकिन ये साधना सभी के लिए है। उत्तर भारत तक पहुंचने में मॉनसून जिस तरह वक्त ले रहा है उसने हर किसी को बेचैन कर रखा है। उम्मीद यही है कि काशी में गूंजा ये राग मेघ लोगों की मुराद पूरी करेगा और मॉनसून जल्द काशी समेत समूचे उत्तर भारत में राहत बनकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मॉनसून का इंतजार हम सभी को रहेगा। बहरहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Tech moves fast, and WGU can help you keep up. We build technology degrees with industry leaders focused on real skills, not hype. Learn online, earn respected certifications, graduate ready for what's next. Visit WGU.edu to learn more.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: एग्जाम को लेकर जो तीन दिन बाद यानी कि 21 जून को होने जा रहा है, इसे लेकर छात्र इन दिनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। वहीं सरकार ने भी री एग्जाम को बिना किसी गड़बड़ी के करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स मॉक ड्रिल कर रहा है।
3: पेपर फेयर कंडक्ट हो,
4: जो डिजर्व करते हैं बच्चे मेडिकल में जाने के लिए और वही मेडिकल में जाएंगे।
3: मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था। बट वी रियली होपिंग कि बहुत फेयरली हो विदाउट एनी चीटिंग।
2: देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट री एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने बिना किसी गड़बड़ी के री एग्जाम कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही है और यही वजह है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए पहली बार एयरफोर्स की मदद ली जा रही है।

0: तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से आई हैं, जहां परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को मदुरई से तिरुनेलवेली तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मॉक ड्रिल की गई। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को पहले विमान के जरिए दिल्ली से मदुरई ले जाया गया, इसके बाद उन्हें वायुसेना के अधिकारियों की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से तिरुनेलवेली आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड तक पहुंचाया गया ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए।
1: मई महीने में हुआ नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक होने के बाद देखा जा रहा है कि देश भर में इस मामले को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पहले तो पेपर को रद्द कर दिया गया, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और फिर इसका री एग्जामिनेशन 21 जून के लिए घोषित किया गया, जिसको बस अब 3 दिन का ही वक्त बाकी रह गया और इसको लेकर भी सुरक्षा के जो प्रबंध है वो बढ़ा दिए गए हैं। देश में पहली बार देखा जाएगा कि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए देश की आर्मी और साथ ही एयरफोर्स दोनों की मदद ली जाएगी। एयरफोर्स जो परीक्षा केंद्रों तक जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो पहुंचाएंगे और साथ ही जो आर्मी है परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में मदद करेगी।
0: एयरफोर्स की मदद लेने के अलावा सरकार इस बार सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए है। इसी चौकसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
2: So we had a meeting with the Telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a neat leak paper. The moment you are allowing that, any platform, whenever you create an account on Google or Gmail, it says what you can, what you cannot. So we had made a request that please do not allow. And after informing them about a channel, they would block them. We had to block 200 channels.
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए तैयारियों में जोर शोर से जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई है। वहां सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान एसपी प्रवीण नायक ने पिपराली रोड पर मौजूद विभिन्न हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स में जाकर तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से बात की, जिसमें उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की है।
3: जो नेक्स्ट 21 जून को जो नीट एग्जाम होने वाले हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में आज पूरे पुलिस के द्वारा पूरा कोचिंग इलाके अंदर हमने फ्लैग मार्च और भ्रमण किया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत भी किया था। तो उनसे ये जानकारी लिया गया कि कोई भी चीज़ें अफवाह या कुछ भी चीज़ें अगर आपके इनके न्यूज़ संज्ञान में आ रहे हैं तो हमारे नॉलेज में लेके आए और उसके ऊपर हम एक्शन कर सकते। तो इसके बारे में सबसे बातचीत किया गया था, उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी बातचीत किया था बच्चों से। इसके साथ साथ हमने जो भी नीट एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना अगर कोई हमें देना चाहता है तो उसके एक मोबाइल नंबर हमने जारी किया तो उसके बारे में भी सभी बच्चों को हमने बताया था।
0: री एग्जाम के लिए एनटीए और सरकार की कोशिशों को देखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस बार फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद भी जताई है।
4: जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था तो एग्जाम रद्द हो गया था और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है और इस बार उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
5: अनन्या।
4: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
5: जी सर।
4: तो अब दोबारा आप री एग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं?
5: जी सर।
4: तो अब कितना अप्रिहेंशन है? इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की अप्रिहेंशन है स्टूडेंट?
5: सर, आई एक्सपेक्ट कि पेपर सही से हो, फेयरली कंडक्ट हो। पिछली बार हमारी मेहनत वेस्ट गई थी, हमने 3 महीने के लिए स्ट्रेटजाइज किया हुआ था पूरा और वो पूरी चीज उल्टी पड़ गई हमारे ऊपर ही। तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो।
4: इस बार सरकार ने बड़े अरेंजमेंट्स किए हैं इसको फुल प्रूफ रखने के लिए कि कोई लीक्स ना रहे, और किस तरह देखते हैं उसको?
6: हम होप तो यही कर रहे हैं कि इस बार लीक नहीं होएगा पेपर, लेकिन एक वो चीज होती है कि पहले जब हमने तैयारी कर रहे थे तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी हमारी तैयारी करने की, उसके बाद फिर हम घर गए, उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमें पता चल रहा है कि दोबारा पेपर करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज एक मेंटल हैरेसमेंट थी हमारे लिए थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं हम।
7: गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था।
8: आई होप कि इस बार ना हो लीक, क्योंकि काफी लाइक जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इस बार। तो
4: कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी रोज की?
8: 14-15 घंटे तो रोज।
0: कुल मिलाकर कोशिश इस बार यही है कि नीट यूजी जैसी अहम परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो पाए। दिल्ली से अनमोल बाली, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के शंघाई में जश्न का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहां खुशियों का ऐसा मेला सजा जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था शंघाई डिज्नीलैंड की स्थापना के 10 साल पूरे होने का और इस खास अवसर पर पूरे पार्क को रंगों, रोशनी और सपनों की दुनिया में बदल दिया गया।
9: डिज्नीलैंड, नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं सालगिरह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
10: खबरें तो आ रहा है।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
12: वुमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत यूएस प्रेसिडेंट ने दी। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया।
14: और अब बात करते हैं मानसून की। देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट आया। मौसम विभाग ने 17 से 22 जून के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की आशंका जताई है और हिमाचल के कुछ राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहने वाली है। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी।

0: मानसून की आहट से बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख में चौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं में नमी महसूस की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून समय पर दस्तक देने वाला है। 18 जून से 22 जून के बीच में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं तो कभी बारिश हो जाती है, कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले दो दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली राहत का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही मौसम नया ट्विस्ट भी लेकर आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जून से उत्तर पश्चिम भारत का एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
1: देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग अलग मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो इस वक्त तापमान थोड़े से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि 35 डिग्री है, लेकिन जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा ही जो है महसूस की जा रही है, क्योंकि तापमान एकदम से वापस बढ़ा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, उसका असर जो है मैदानी राज्यों पर देखने को मिला था और दिल्ली एनसीआर में भी लगातार जो है आंधी तूफान और हल्की बारिश जो है वो देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ गए। हालांकि 18 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ वापस से सक्रिय होगा, जिसका असर पहाड़ी राज्य समेत जो है दिल्ली एनसीआर और बाकी सभी मैदानी राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की जो बारिश है दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है, पहाड़ी राज्यों पर भी जो है अच्छी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं मानसून की स्थिति की बात करूं तो मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के अधिकतम हिस्से जो है वो मानसून कवर कर चुका है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दी है और इसके साथ ही अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों में जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 23 जून के आसपास की जो तारीख है वो बताई गई है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की तरफ मॉनसून बढ़ेगा। हालांकि अभी महीने का अंत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास जो है दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो तापमान थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल के बाद वापस से थोड़ी सी स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा।
0: पिंक सिटी, जयपुर, लेक सिटी, उदयपुर समेत कई जिलों में गर्मी का असर एक बार फिर से बढ़ गया। हालांकि प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी थी। कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
2: प्री मानसून के सीजन में आसमान में बादल और सूरज की नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में कहीं जगह तेज तो कहीं जगह हल्की बारिश देखी जा रही है और ऐसे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झुंझुनू में दर्ज की गई है, जो कि 66 mm है। वहीं टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइएस्ट टेम्परेचर इस वक्त फलौदी में है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते ईस्ट राजस्थान में अलग अलग दिन अलग अलग मौसम देखा जाएगा, जिसमें बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और वहीं जो डेजर्ट एरिया है, जो जोधपुर जैसलमेर संभाग है, वहां पे 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड के डस्ट स्टॉर्म की भी चेतावनी दी जा रही है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
3: देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यदि देखें भारत मौसम विभाग की तरफ से जो जारी की गई थी, तो फर्स्ट स्टेज में भी ये स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं, इनमें जैसे ही मानसून प्रोग्रेस होगा आगे बढ़ेगा तो हम लोग राजस्थान में मानसून के पहुंचने की स्थिति जैसे स्पष्ट होगी तो आपको अवगत कराएंगे।
0: पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 जून तक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार।
1: भारतीय नौसेना त्रिशक्ति से होने वाली है लैस। जी हां, 21 जून को होगी 3 युद्ध पोतों की एक साथ कमिशनिंग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: देश में अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप नहीं बेच पाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ड्रग्स रूल्स 1945 में बदलाव किया है। इसमें कफ सिरप को शेड्यूल के से हटा दिया गया है। शेड्यूल के उन दवाओं की लिस्ट है जिन्हें बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बेचा जा सकता है। ये बदलाव पिछले साल 29 दिसंबर को जारी एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर जनता के सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद किया गया है। ये प्रपोजल पिछले साल के आखिर में मध्य प्रदेश में खराब कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद आया था। भारतीय नौसेना इस हफ्ते कोलकाता में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को अपने नाम करने जा रही है। नौसेना एक ही दिन एक साथ 3 एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। ये भव्य समारोह 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान आयोजित हो सकता है। देश के समुद्री इतिहास में ये बेहद दुर्लभ मौका होगा जब फ्रंटलाइन के 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ देश की सेवा में समर्पित किया जाएगा। हाल के सालों में ये ऐसा दूसरा मौका है जब भारतीय नौसेना एक साथ 3 युद्ध पोतों को अपने बेड़े का हिस्सा बनाने जा रही है। इस त्रिकोणीय कमिश्निंग में INS दूरागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक एक साथ नौसेना का हिस्सा बनेंगे। यूपी के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली घरेलू कार्गो फ्लाइट का सफल संचालन हो गया। आज इस एयरपोर्ट पर चेन्नई से करीब 20 टन मिश्रित कार्गो लेकर मालवाहक पहली फ्लाइट पहुंची, जिसका वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। कार्गो की लैंडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये विमान वापस चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अफकॉम होल्डिंग का बोइंग 737-800F मालवाहक विमान खाद्य पदार्थ, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल डिवाइस और अन्य कंसोलिडेटेड शिपमेंट लेकर नोएडा पहुंचा था। इस सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया है कि एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बाके बिहारी मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं के संबंध में गहन विचार मंथन किया गया और मंदिर प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत झूले के जीर्णोद्धार का फैसला भी हुआ है। कर्नाटक के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप चर्चा का विषय है। बस के आकार और डिजाइन में तैयार किया गया ये बस शेल्टर अपनी अनूठी बनावट की वजह से लोगों के साथ साथ पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और बैठने का सिस्टम ठीक वैसा ही बनाया गया है जैसा बसों में होता है। लोगों को बस स्टॉप का ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है।
1: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के साथ
5: तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया।

0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाबा बर्फानी के धाम तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा। मन में अटूट आस्था और दिल में विश्वास लिए बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का जत्था जल्द निकलने वाला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर किसी भी खतरे से निपटने की एक्सरसाइज की। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग आपातकालीन हालातों का अभ्यास किया, जिसमें सुरक्षा बलों, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे से तालमेल बनाकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत सभी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
1: हमारा जो विजिट कठुआ रेलवे स्टेशन का है, ये यात्रा से ही मुतल्लक है। आज यहाँ पे हमने ऑल एजेंसीज के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजों की और जरूरत है। कंबाइंड सबमिट करेंगे।
0: पठानकोट में भी विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अंतरराज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौकों, मुख्य मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर रेड अलर्ट नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी और जांच की जा रही है।
2: सारे व्हीकल्स दी चेकिंग हो रही है कि उस वन च भी कोई जिहड़ी है यात्रा वा ये सही तरीके नाल शुरू हो के ते संपन्न सही तरीके नाल हो जाए, कोई भी अनसुखामी घटना ना वापरे। उन्हां दी डायरेक्शन ते ये रेगुलर काम जिहड़ा चलता रहेगा। ते नाल ही साडे माणयोग SSP पठानकोट जी वालों भी इस तो पहला भी रेगुलर ही सर्च ऑपरेशन ते फूड पेट्रोलिंग भीड़ भड़ा वाली जगह पर चैकिंग रेगुलर चल रही है। तो उन्हों की डायरेक्शन से ये रेगुलर सारे काम हो रहा है, जो रेगुलर आने वाले समय चल रहा है।
0: सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी चिकित्सा सहायता केंद्र 28 जून तक पूरी तरह शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन बूथ 25 जून तक ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सेवा दल और लंगर कमेटियों के सदस्य अमरनाथ पहुँचने लगे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, दवाइयों समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सेवादारों ने अमरनाथ धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
3: आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं। बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: सेवा समितियों की तरफ से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: हमारा पशुपतिनाथ का लंगर जो गुफा पे है, इसकी 5 गाड़ियां ऑलरेडी 5 तारीख को गुफा पहुंच चुकी है, जो बालटाल बेस कैंप को तैयार कर चुकी है। अब वो टीम ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ से 18 ट्रकों की सामग्री लेके यहाँ से बालटाल की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सारा सामान गुफा की तरफ जाएगा और अमरनाथ बर्फानी के जो दर्शनों पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष लंगर, प्लस इस साल हमारी संस्था के द्वारा लगभग 50 मसाजर मशीनों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें यात्री विश्राम करके अपने पैरों को सुकून देंगे।
0: जाहिर है आस्था, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर सेवा समितियों यात्रियों के स्वागत और सहायता के लिए जोर शोर से जुटी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। बता दें, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी। पठानकोट से पवन सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने और कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 347 अंकों की बढ़त के साथ 77,155 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 24,085 पर बंद हुआ। रुपए की मजबूती और वीक ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 4800 रुपए गिर गया और ये 1,54,400 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5300 रुपए गिरकर 2,55,400 रुपए पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव खत्म होने से 17 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 94.50 के स्तर पर बंद हुआ।
5: कल के टू से जुड़ा बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम तो एनिमेशन कैरेक्टर श्रेक की 17 साल बाद वापसी। जी हाँ, आ गया है श्रेक 5 का ट्रेलर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
7: बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम मेगा मूवी कल्की 2 से जुड़ने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। चर्चा है कि आलिया भट्ट कल्की 2 में अहम किरदार निभा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूटिंग शुरू कर ली है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई। इस फिल्म में आलिया को दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट किया गया है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इस रहस्य से पर्दा उठने में अभी वक्त है, क्योंकि फिल्म के दिसंबर में रिलीज होने की चर्चा है। बड़े पर्दे पर अभिनेत्री शर्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। खबर है कि मशहूर डायरेक्टर लव रंजन की अगली फिल्म में दोनों एक साथ दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लव रंजन अपनी अगली फिल्म के लिए शर्वरी को फीमेल लीड के रूप में कास्ट करने पर सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शर्वरी ने इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लव रंजन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वो कार्तिक और शर्वरी को पूरी स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद शर्वरी फिल्म पर अपना आखिरी फैसला लेंगी।

0: जी।
1: फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर आ गया है। रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि कुछ रिश्ते किस्मत पे लिखे होते हैं, कुछ प्यार से बनते हैं, कुछ हमेशा के लिए कायम रहते हैं। रिश्तों के ऐसे ही ताने बाने को लेकर फिल्म तेरा मेरा नाता, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बैरी और मेघना मुख्य किरदार में हैं। सीपी प्रोडक्शन के सहयोग से ब्लू डायमंड प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म तेरा मेरा नाता 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म को चंदा पटेल ने प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन चंदा पटेल और स्वतंत्र गोयल ने मिलकर किया है। एनिमेशन की दुनिया से गुड न्यूज आई है, क्योंकि दर्शकों को हंसाने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं श्रेक, योना और डंकी। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसी के साथ करीब 17 साल के बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई। श्रेक 5 अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है और इसके ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पैनोरमा स्टूडियोज और जैकब बाबू मिलकर फहाद फासिल की मुख्य भूमिका वाली दो मलयालम फिल्म बनाएंगे। मलयालम में बनी दृश्यम 3 की जबरदस्त सफलता के बाद पैनोरमा स्टूडियोज अब प्रोड्यूसर जैकब बाबू के साथ मिलकर दो मलयालम फिल्में बनाने पर काम कर रहे हैं। इन दोनों फिल्मों में फहाद फासिल मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्में अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। डायरेक्टर, कास्ट, टेक्नीशियन और क्रिएटिव टीम के अन्य मुख्य सदस्यों के बारे में जल्द ही जानकारी सामने आने वाली है।
2: श्रीलंका में हो रही ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची इंडिया ए। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
3: श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हरा दिया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्रा की अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंडिया ए ने 9 विकेट पर 319 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ इंडिया ए ने टूर्नामेंट में लगातार दो हार का सिलसिला तोड़ा और रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर 403 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत पहली बार ऑल आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
6: somebody save me,
5: to timeless favorites,
6: life is like a song,
5: and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: You and I, so much more than a history.
4: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां। चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बुलेटिन में ब्रेक लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं उस ब्रेक की जो मॉनसून ने इन दिनों ले रखा है। देखिए, मॉनसून ने देश में अपने तय समय के आसपास एंट्री मारी थी, फिर मॉनसून की राहों में न जाने किससे मुलाकात हो गई। देखिए, हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी डरते थे, वही बात हो गई है। देखिए, मॉनसून का सारा टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया है। 4 जून को मॉनसून केरल को भिगोने पहुंचा था। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक उत्तर पश्चिम भारत की दहलीज तक पहुंच जाना था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मॉनसून जहां था वहीं का वहीं अटका हुआ है। दक्षिण और उत्तर पूर्व को भिगोने के बाद मॉनसून की रफ्तार पर मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के लिए मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। देखिए, लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत दे रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी सबको है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर भारत में मॉनसून कब दस्तक देने वाला है और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद, बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांघकर भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण की धरती गमक उठी।

0: अपने तय समय के आसपास जून की उंगली थाम मॉनसून के बादल आ पहुँचे थे। सो लगा कि अब बस बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तरबतर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी, लेकिन मॉनसूनी बादलों के पांव थम गए। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मॉनसून के बादल दक्षिण, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा तय करके वहीं ठिटक गए। ऐसा लगा मानो कोई मेहमान घर तो आया, पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। 8 जून के बाद से मॉनसून देश के पश्चिमी तट के आसपास लगभग स्थिर है। मॉनसून के अटकने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बनने को माना जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जून का तीसरा हफ्ता आते आते मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से बादल लगभग गायब दिखे। आमतौर पर 15 जून तक भारत का बड़ा हिस्सा मानसूनी बादलों की मोटी चादर से ढका दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आई।
1: इस बीच भारत की चिंता इस बात की है कि मॉनसून कमजोर पड़ रहा है, उसकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है और जून के महीने में ही अब तक 64% कम बरसात हुई है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर मैं आपको ये कहूं कि मौसम विभाग पर ये जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, इनमें दिखाई दे रहा है कि मानो जैसे अरब सागर के पास पश्चिम भारत से बादल ही चोरी हो गए। अब ये देखिए पूरा इलाका, ये अरब सागर का इलाका है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगे बढ़ा है कि उसके बाद वो केरल होते हुए आगे जब बढ़ना चाहिए इसे कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, इन इलाकों में दरअसल इस समय बादलों का डेरा होना चाहिए, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि बादलों को मानो किसी ने चुरा लिया हो और फिर इस महाराष्ट्र के ऊपर होते हुए गुजरात तक आगे जाने के लिए यहां पर मानसून की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो गई है। बादलों का बिल्कुल नदारद हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ अरब सागर में नहीं, इन्हीं सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर मैं देखता यहां जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और उसकी जो स्थिति आगे पश्चिम बंगाल की ओर जानी चाहिए, यहां पर भी बादलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है इन सैटेलाइट तस्वीरों में।
0: सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस बार मॉनसून के बादलों ने मुंह क्यों मोड़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में छुपा है। ऊपरी वायुमंडल में इस समय हवाओं की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने मॉनसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आमतौर पर पूर्व से बहने वाली हवाएं, जिन्हें ईस्टर्ली जेट कहा जाता है, हवा को ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, वो है पश्चिम से बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक गई है। यानी मॉनसून के बादलों के बीच इस वक्त एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, मॉनसून कैसे आगे बढ़ेगा। अभी के हालात में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों तक पहुंचकर भी बारिश में तब्दील नहीं हो पा रही। बादल बन रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, नमी आ रही है लेकिन बरस नहीं रही, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि मॉनसून गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी जो हालात हैं उसे मॉनसून का गायब होना नहीं बल्कि मॉनसून का पॉज होना माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मॉनसून कहीं गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ठहर गया है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिन हवाओं के पैटर्न ने बादलों को रोक रखा है वो पैटर्न कमजोर पड़ने जा रहा है, मतलब जैसे ही बाधा हटेगी मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।
1: ऐसे में मौसम विभाग को लगता है कि 20 जून के बाद अगर जब मौसम अपनी रफ्तार पकड़ेगा तब मॉनसून की रफ्तार बारिश लेकर के आएगी, और ऐसे में पश्चिम भारत, खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे में जहां आमतौर पर 9 से 11 जून के बीच बरसात होती थी, मॉनसून तट तक पहुंचता था, उसमें भी काफी देरी है, जो कि पहले 2019 और उसके पहले 2023 में ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 25 जून की तारीख भी बीत सकती है। यानी मॉनसून का इंतजार पूरे भारत के लिए अभी लंबा है।
0: वैसे मॉनसून का इंतजार भले लंबा खिंच रहा हो, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में एक के बाद एक लगातार सक्रिय होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि ये मॉनसून की बारिश नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हुई बारिश है। इस बारिश के चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।
2: एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से, उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: रही बात मॉनसून के आगे बढ़ने की, तो संकेत यही है कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ने के हालात बन रहे हैं। जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मॉनसून दोबारा एक्टिव होगा। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में बादल आएंगे और जमकर बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, अच्छी बात यह है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पिछले दिनों से प्री मॉनसून गतिविधियां दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्री मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी ही सही लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिली है। देखिए, मौसम विभाग भी इशारा कर रहा है कि मॉनसून का ब्रेक जल्द ही खत्म होने वाला है और उसी का संकेत है तेज हवाएं और गरज चमक के साथ अलग अलग जगहों पर हो रही ये बारिश। ये मॉनसून नहीं है, ये प्री मॉनसून है, ये समझने वाली बात है। दरअसल प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग आखिरकार कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न होता नहीं है। ये देश के दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले चली भी जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। देखिए, मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। देखिए, मॉनसून की बारिश कभी तेज होती है तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहता है। जबकि बात अगर हम प्री मॉनसून बारिश की करें तो प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं देखने को मिलती हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं।

0: मानसून के इंतजार और प्री मानसून के जोरदार बारिश के बीच ही एक पैटर्न लगातार बनता दिख रहा है। देखिए, आजकल उत्तर भारत के कई जिलों में आंधी और तेज बारिश को लेकर फोन पर अपडेट आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, आपको भी आए होंगे। देखिए, मौसम बिगड़ने की चेतावनी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, लेकिन इस अलर्ट और अपडेट के बाद कई बार ये हो रहा है कि वास्तव में बारिश होती ही नहीं है। क्या ये टेक्निकल मिसकैलकुलेशन है? मौसम बिगड़ने वाला है, इस प्रिडिक्शन के पैरामीटर्स आखिर क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की मौसम विभाग से ही।
1: देखिए, विशेष रूप से मानसून आने से जो पहले का पीरियड होता है, इसमें खासकर पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें तेज मेघ गर्जन, तेज गस्टी विंड्स और लाइटनिंग के साथ में रेनफॉल होने की एक्टिविटी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो ऐसे में ये जो थंडरस्टॉर्म सिस्टम्स हैं, ये सामान्यतया शॉर्ट लिविंग फिनोमिना होती है, यानी कि पूरे दिन भर ऐसा वेदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव सिस्टम होता है। खासकर दोपहर और शाम के समय इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तो जो अलर्ट्स और जो समटाइम्स शॉर्ट रेंज के लिए जो पूर्वानुमान जारी किए जा रहा है मौसम विभाग से, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिकली रडार, सैटेलाइट और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बेस्ड आधार पर ही दिए जा रहे हैं। और जो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि एक से दो घंटे के लिए, यानी ये शॉर्ट लिविंग फिनोमेना होती है, और कभी कभी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी इंटेंस भी थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ जो है ये देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो थंडरस्टॉर्म टाइप के जो सिस्टम्स हैं ये ज़रूर एक दो घंटे के होते हैं। हो सकता है कि दिन में पूरे दिन भर ऐसे सिस्टम आपको ना दिखें, दिन में हो सकता है कि सामान्य वेदर रहे, लेकिन शाम के टाइम, दोपहर बाद या कभी कभी रात के समय में भी इस टाइप के कन्वेक्टिव सिस्टम्स डेवलप होते हैं, और ऐसे में सीवियर थंडरस्टॉर्म से बचाने के लिए ही जो IMD का जो गाइडलाइंस हैं या SOP बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलर्ट्स जारी किए जाते हैं।
0: तो देखिए, मानसून का इंतजार हम सभी को है, और इस इंतजार के बीच काशी में बारिश के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ संगीत प्रेमी पारंपरिक मेघ राग का गायन कर इंद्रदेव से बरखा के गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मान्यता है कि मेघ राग के सुर प्रकृति को प्रसन्न कर बारिश का संदेश लेकर आते हैं।

0: बादलों को आवाज देती ये काशी की साधना है। अस्सी घाट पर शहनाई की ये धुन बादलों को बुला रही है। प्रकृति से काशी के संवाद का ये अनूठा तरीका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्न हैं, जो अस्सी घाट पर राग मेघ से बारिश को काशी आने का न्योता दे रहे हैं।
1: विगत 18-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करता चला रहा हूँ, और जब कहीं बारिश नहीं होती है और सब जगह हो भी जाए तो काशी में नहीं होता तो मुझे तकलीफ होता है। और काशी में इस बार बहुत तगड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत विलम्ब हो गया है, और जीव जंतु इंसान देख ही रहे आप गर्मी से परेशान है, पंछियाँ भी परेशान हैं, मर रही हैं। तो इसलिए इनके जीवोद्धार के लिए और माँ गंगा के से चरणों में आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, और उनको जो हमारे पास अंग वस्त्र वगैरह रहता है माँ को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती माला फूल से पूजा पाठ करता हूँ। फिर भगवान भास्कर भगवान इंद्र को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं अपना राग मेघ प्रस्तुत करता हूँ।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ का अपना खास महत्व है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है और सदियों से इसे मेघों और बारिश का राग कहा जाता रहा है। कहते हैं कि राग मेघ प्रकृति के साथ संगीत का अनूठा साक्षात्कार है। यही वजह है कि जब काशी कड़ी धूप में तप रही होती है तो ये राग बादलों को बुलाकर उस तपस्या को पूरा करता है।
1: इसलिए मैं गंगा मैया के चरणों में ही अपने आंचल में उनके मैं बजाता हूं और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य करता हूं। और भगवान इंद्र निश्चय, मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माँ गंगा का आशीर्वाद है कि 36 घंटे में बढ़िया बारिश होगा। ये रीवा घाट है, रिमझिम फुहारों के साथ बारिश होगा, बढ़िया बारिश होगा और काशी को राहत मिलेगा, गर्मी से निजात मिलेगा।
0: काशी में गूंजे इन सुरों ने भले बादलों को द्योता भेज दिया हो, लेकिन ये साधना सभी के लिए है। उत्तर भारत तक पहुंचने में मॉनसून जिस तरह वक्त ले रहा है उसने हर किसी को बेचैन कर रखा है। उम्मीद यही है कि काशी में गूंजा ये राग मेघ लोगों की मुराद पूरी करेगा और मॉनसून जल्द काशी समेत समूचे उत्तर भारत में राहत बनकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मॉनसून का इंतजार हम सभी को रहेगा। बहरहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: एग्जाम को लेकर जो तीन दिन बाद यानी कि 21 जून को होने जा रहा है, इसे लेकर छात्र इन दिनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। वहीं सरकार ने भी री एग्जाम को बिना किसी गड़बड़ी के करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स मॉक ड्रिल कर रहा है।
4: पेपर फेयर कंडक्ट हो,
5: जो डिजर्व करते हैं बच्चे मेडिकल में जाने के लिए और वही मेडिकल में जाएंगे।
4: मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा आ जाए जैसे पिछली बार हुआ था। बट वी रियली होपिंग कि बहुत फेयरली हो विदाउट एनी चीटिंग।
3: देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट री एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने बिना किसी गड़बड़ी के री एग्जाम कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही है और यही वजह है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए पहली बार एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से आई हैं, जहां परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को मदुरई से तिरुनेलवेली तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मॉक ड्रिल की गई। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को

0: ग्राउंड तक पहुंचाया गया ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए।
1: मई महीने में हुआ नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक होने के बाद देखा जा रहा है कि देश भर में इस मामले को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पहले तो पेपर को रद्द कर दिया गया, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई और फिर इसका री एग्जामिनेशन 21 जून के लिए घोषित किया गया, जिसको बस अब 3 दिन का ही वक्त बाकी रह गया और इसको लेकर भी सुरक्षा के जो प्रबंध है वो बढ़ा दिए गए हैं। देश में पहली बार देखा जाएगा कि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए देश की आर्मी और साथ ही एयरफोर्स दोनों की मदद ली जाएगी। एयरफोर्स जो परीक्षा केंद्रों तक जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो पहुंचाएंगे और साथ ही जो आर्मी है परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में मदद करेगी।
0: एयरफोर्स की मदद लेने के अलावा सरकार इस बार सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए है। इसी चौकसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
2: So we had a meeting with the Telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a neat leak paper. The moment you are allowing that, any platform, whenever you create an account on Google or Gmail, it says what you can, what you cannot. So we had made a request that please do not allow. And after informing them about the channel, they would block them. We had to block 200 channels.
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए तैयारियों में जोर शोर से जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई है। वहां सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान एसपी प्रवीण नायक ने पिपराली रोड पर मौजूद विभिन्न हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स में जाकर तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से बात की, जिसमें उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की है।
3: जो नेक्स्ट 21 जून को जो नीट एग्जाम होने वाले उसी की तैयारी के सिलसिले में आज पूरे पुलिस के द्वारा पूरा कोचिंग इलाके अंदर हमने फ्लैग मार्च और भ्रमण किया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत भी किया था। तो उनसे ये जानकारी लिया गया कि कोई भी चीज़ें अफवाह या कुछ भी चीज़ें अगर आपके इनके न्यूज़ संज्ञान में आ रहे हैं तो हमारे नॉलेज में लेके आए और उसके ऊपर हम एक्शन कर सकते हैं। इसके बारे में सबसे बातचीत किया गया था, उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी बातचीत किया था बच्चों से। इसके साथ साथ हमने जो भी नीट एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना अगर कोई हमें देना चाहता है तो उसके एक मोबाइल नंबर हमने जारी किया था, तो उसके बारे में भी सभी बच्चों को हमने बताया था।
0: री एग्जाम के लिए एनटीए और सरकार की कोशिशों को देखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस बार फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद भी जताई है।
4: जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था तो एग्जाम रद्द हो गया था और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है और इस बार इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
5: अनन्या।
4: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
5: जी सर।
4: तो अब दोबारा आप री एग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं?
5: जी सर।
4: तो अब कितना अप्रीहेंशन है? इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की अप्रीहेंशन है स्टूडेंट?
5: सर, आई एक्सपेक्ट कि पेपर सही से हो, फेयरली कंडक्ट हो। पिछली बार हमारी मेहनत वेस्ट गई थी, हमने 3 महीने के लिए स्ट्रेटजाइज किया हुआ था पूरा और वो पूरी चीज उल्टी पड़ गई हमारे ऊपर ही, तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो।
4: इस बार सरकार ने बड़े अरेंजमेंट्स किए हैं इसको फुल प्रूफ रखने के लिए कि कोई लीक्स ना रहे, तो किस तरह देखते हैं उसको?
6: हम होप तो यही कर रहे हैं कि इस बार लीक नहीं होएगा पेपर, लेकिन एक वो चीज होती है कि पहले जब हमने तैयारी कर रहे थे तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी हमारी तैयारी करने की, उसके बाद फिर हम घर गए, उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमें पता चल रहा है कि दोबारा पेपर करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज एक मेंटल हैरेसमेंट थी हमारे लिए थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं हम।
7: गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था।
8: आई होप कि इस बार ना हो ली, क्योंकि काफी जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इस बार तो
4: कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी रोज की?
8: 14-15 घंटे तो रोज।
0: कुल मिलाकर कोशिश इस बार यही है कि नीट यूजी जैसी अहम परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो पाए। दिल्ली से अनमोल बाली।

0: चंडीगढ़ से असीम बस्सी और सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चीन के शंघाई में जश्न का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहां खुशियों का ऐसा मेला सजा जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था शंघाई डिज्नीलैंड की स्थापना के 10 साल पूरे होने का और इस खास अवसर पर पूरे पार्क को रंगों, रोशनी और सपनों की दुनिया में बदल दिया गया।
2: डिज्नीलैंड नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं साल के रह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
5: जी खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: वुमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत, यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: आइए शुरू करते हैं न्यूज पद पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा ओडिशा के रायगढ़ के राजा महोत्सव के यहाँ, जहाँ ओडिशा के पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पारंपरिक लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लिया जा रहा है।
7: ओडिशा के रायगढ़ में राजा महोत्सव की धूम है। इस उत्सव में पारंपरिक झूलों के बीच लोकगीत और लजीज पारंपरिक पकवानों ने फिजा में रौनक ला दी है। पारंपरिक ओडिशी और संबलपुरी नृत्यों के जरिए ओडिशी लोक कला यहां प्रदर्शित हो रही है। भव्य सांस्कृतिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। यहां महिलाएं पारंपरिक ओडिशी वेशभूषा में नजर आईं और राजा झूला का आनंद उठाते दिखी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के तुलमुल में मौजूद माता खीर मंदिर में माता खीर भवानी मेला 19 जून को लगने जा रहा है। इस मेले और उत्सव को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुख्य पर्व माना जाता है। इस मेले में सैकड़ों विस्थापित कश्मीरी पंडितों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए इस मेले के लिए और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा ताइक्वांडो कैंप लगाया था, जिसमें इलाके की बच्चियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। यहां ताइक्वांडो कोच ने बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए और उनका आत्मविश्वास मजबूत किया। इस कैंप में आज समापन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुंछ के एसपी खुद बच्चियों के उत्साहवर्धन के लिए आए। बेहद पवित्र और दुर्गम किन्नौर कैलाश यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी। इस मुश्किल धार्मिक यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा वजहों से प्रशासन ने एक दिन में सिर्फ 375 यात्रियों को ही किन्नौर कैलाश यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया। किन्नौर कैलाश यात्रा रिकांगपियो के पास तंगलिंग गांव से शुरू होती है, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। गंगटोली और गणेश पार्क इस यात्रा का पहला पड़ाव है। करीब 14,900 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पार्वती कुंड में स्नान के बाद अंतिम चढ़ाई शुरू होती है। इस दुर्गम खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद मुख्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहां समुद्र तल से करीब 19,850 फीट ऊंचाई पर 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक और दिव्य शिवलिंग मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मथुरा के संत आशुतोष ब्रह्मचारी और गायिका प्रांजल दहिया ने भस्म आरती में हिस्सा लिया। आज सुबह की भस्म आरती खास रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। बाबा महाकाल का आज भांग, चंदन और आभूषणों के साथ राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह से लंबी लंबी कतारों में मौजूद भक्तों ने महाकाल की दिव्य भस्म आरती में हिस्सा लिया।
6: और अब बात करते हैं मॉनसून की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की दस्तक से मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री से पहले तूफान का अलर्ट आया। मौसम विभाग ने 17 से 22 जून के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की आशंका जताई है और हिमाचल के कुछ राज्यों में गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी अभी जारी रहने वाली है। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी।

0: मानसून की आहट से बादलों की चाल बदली हुई है। कहीं सूरज से आंख में चौली का खेल चल रहा है तो कहीं हवाओं में नमी महसूस की जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 15 जून से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून समय पर दस्तक देने वाला है। 18 जून से 22 जून के बीच में एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे यहां बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए 18 और 19 जून को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जैसे जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्री मॉनसून बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कभी तेज हवाएं चलती हैं तो कभी बारिश हो जाती है, कुछ घंटों में धूप भी निकल आती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 दिनों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम का ये बदलाव राहत लेकर आया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली राहत का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही मौसम नया ट्विस्ट भी लेकर आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जून से उत्तर पश्चिम भारत का एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई, लेकिन उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
1: देश के अलग अलग राज्यों में मौसम का अलग अलग मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो इस वक्त तापमान थोड़े से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि 35 डिग्री है, लेकिन जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा ही जो है महसूस की जा रही है, क्योंकि तापमान एकदम से वापस बढ़ा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, उसका असर जो है मैदानी राज्यों पर देखने को मिला था और दिल्ली एनसीआर में भी लगातार जो है आंधी तूफान और हल्की बारिश जो है वो देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान जो है वो बढ़ गए। हालांकि 18 जून को एक पश्चिमी विक्षोभ वापस से सक्रिय होगा, जिसका असर पहाड़ी राज्य समेत जो है दिल्ली एनसीआर और बाकी सभी मैदानी राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की जो बारिश है दिल्ली एनसीआर में देखी जा सकती है, पहाड़ी राज्यों पर भी जो है अच्छी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर मैं मानसून की स्थिति की बात करूं तो मानसून जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के अधिकतम हिस्से जो है वो मानसून कवर कर चुका है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दी है और इसके साथ ही अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों में जो है मॉनसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। 23 जून के आसपास की जो तारीख है वो बताई गई है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की तरफ मॉनसून बढ़ेगा। हालांकि अभी महीने का अंत का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास जो है दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश जो है वो देखी जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो तापमान थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल के बाद वापस से थोड़ी सी स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर मैदानी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा।
0: पिंक सिटी, जयपुर, लेक सिटी, उदयपुर समेत कई जिलों में गर्मी का असर एक बार फिर से बढ़ गया। हालांकि प्री मानसून की बारिश ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी थी। कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।
2: प्री मानसून के सीजन में आसमान में बादल और सूरज की नोकझोंक देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाके में कहीं जगह तेज तो कहीं जगह हल्की बारिश देखी जा रही है और ऐसे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झुंझुनू में दर्ज की गई है, जो कि 66 mm है। वहीं टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हाइएस्ट टेम्परेचर इस वक्त फलौदी में है, जो कि 42 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते ईस्ट राजस्थान में अलग अलग दिन अलग अलग मौसम देखा जाएगा, जिसमें बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। येलो अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है और वहीं जो डेजर्ट एरिया है, जो जोधपुर जैसलमेर संभाग है, वहां पे 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड के डस्ट स्टॉर्म की भी चेतावनी दी जा रही है।
0: मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
3: देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यदि देखें भारत मौसम विभाग की तरफ से जो जारी की गई थी, तो फर्स्ट स्टेज में भी ये स्पष्ट किया गया था कि इस बार मानसून कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि जो लार्ज स्केल जो क्लाइमेट ड्राइवर्स हैं उनका जो कंडीशंस है वो इस बार एक अच्छे मानसून के लिए फेवरेबल नहीं है। वहीं सेकंड स्टेज जो फोरकास्ट दिया गया अपडेटेड जस्ट जून मई एंड में, तो इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश पूरे देश भर में होने की संभावना है, और उसी के मुताबिक भी अब तक यदि देखें तो सामान्य से कम बारिश इंडिया भर में भी रिपोर्ट हुई है, और मानसून फ्लो जो है वो सामान्य से यूँ कह सकते हैं कि वीक मानसून फ्लो है। तो ऐसे में जैसे ही कोई वेदर सिस्टम्स बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो मानसून का जो प्रोग्रेस पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की तरफ होगा, तो ऐसे में राजस्थान का जो है वो नंबर यूं कह सकते हैं कि लगभग इंडिया के ज्यादातर एरियाज को कवर करने के बाद सामान्यतः राजस्थान में पहुंचता है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेंट्रल इंडिया के काफी एरिया बाकी हैं, इनमें जैसे ही मानसून प्रोग्रेस होगा आगे बढ़ेगा तो हम लोग राजस्थान में मानसून के पहुंचने की स्थिति जैसे स्पष्ट होगी तो आपको अवगत कराएंगे।
0: पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन समूचे उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मानसून का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। 16 जून तक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा तक मानसून दस्तक दे चुका है। फिलहाल मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 7 दिन से अटका हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में हालात बदल सकते हैं और फिर 20 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ सकता है। उसके बाद मुंबई में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से ऐसा नहीं हुआ। 20 जून के बाद मानसून मुंबई पर मेहरबान हो सकता है। 17 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सूखी पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं के कमजोर पड़ने की वजह से बारिश में देरी हो रही है। साथ ही अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर भी मानसून की चाल पर पड़ा है। जयपुर से रिदम जैन और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारतीय नौसेना त्रि शक्ति से होने वाली है लैस। जी हां, 21 जून को होगी 3 युद्ध पोतों की एक साथ कमिशनिंग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: देश में अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप नहीं बेच पाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ड्रग्स रूल्स 1945 में बदलाव किया है। इसमें कफ सिरप को शेड्यूल के से हटा दिया गया है। शेड्यूल के उन दवाओं की लिस्ट है जिन्हें बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बेचा जा सकता है। यह बदलाव पिछले साल 29 दिसंबर को जारी एक ड्राफ्ट प्रपोजल पर जनता के सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद किया गया है। ये प्रपोजल पिछले साल के आखिर में मध्य प्रदेश में खराब कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद आया था। भारतीय नौसेना इस हफ्ते कोलकाता में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को अपने नाम करने जा रही है। नौसेना एक ही दिन एक साथ 3 एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। ये भव्य समारोह 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे के दौरान आयोजित हो सकता है। देश के समुद्री इतिहास में ये बेहद दुर्लभ मौका होगा जब फ्रंटलाइन के 3 नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को एक साथ देश की सेवा में समर्पित किया जाएगा। हाल के सालों में ये ऐसा दूसरा मौका है जब भारतीय नौसेना एक साथ 3 युद्धपोतों को अपने बेड़े का हिस्सा बनाने जा रही है। इस त्रिकोणीय कमिशनिंग में INS दूरागिरी, INS अग्रय और INS संशोधक एक साथ नौसेना का हिस्सा बनेंगे। यूपी के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली घरेलू कार्गो फ्लाइट का सफल संचालन हो गया। आज इस एयरपोर्ट पर चेन्नई से करीब 20 टन मिश्रित कार्गो लेकर मालवाहक पहली फ्लाइट पहुंची, जिसका वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। कार्गो की लैंडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये विमान वापस चेन्नई के लिए रवाना हो गया। अफकॉम होल्डिंग का बोइंग 737-800F मालवाहक विमान खाद्य पदार्थ, ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल डिवाइस और अन्य कंसोलिडेटेड शिपमेंट लेकर नोएडा पहुंचा था। इस सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया है कि एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार है। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 16वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बांके बिहारी मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं के संबंध में गहन विचार मंथन किया गया और मंदिर प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत झूले के जीर्णोद्धार का फैसला भी हुआ है। कर्नाटक के मंगलुरु में बना एक अनोखा बस स्टॉप चर्चा का विषय है। बस के आकार और डिजाइन में तैयार किया गया ये बस शेल्टर अपनी अनूठी बनावट की वजह से लोगों के साथ साथ पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें खिड़कियां, दरवाजे और बैठने का सिस्टम ठीक वैसा ही बनाया गया है जैसा बसों में होता है। लोगों को बस स्टॉप का ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है।
5: अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया।

0: अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाबा बर्फानी के धाम तक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा। मन में अटूट आस्था और दिल में विश्वास लिए बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए शिव भक्तों का जत्था जल्द निकलने वाला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। पुलवामा पुलिस ने नेशनल हाईवे पर व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें कई एजेंसियों ने एक साथ मिलकर किसी भी खतरे से निपटने की एक्सरसाइज की। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग आपातकालीन हालातों का अभ्यास किया, जिसमें सुरक्षा बलों, पुलिस और राहत बचाव टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक दूसरे से तालमेल बनाकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि यात्रा के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों समेत सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
1: हमारा जो विजिट कठुआ रेलवे स्टेशन का है, ये यात्रा से ही मुतल्लक है। आज यहाँ पे हमने ऑल एजेंसीज के साथ एक कॉमन विजिट किया और स्टेशन को पूरा बारीकी से नजर भी लगाई, देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या क्या चीजों की और जरूरत है। कंबाइंड सबमिट करेंगे।
0: पठानकोट में भी विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अंतरराज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौकों, मुख्य मार्गों, बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर रेड अलर्ट नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी और जांच की जा रही है।
2: सारे व्हीकल्स दी चेकिंग हो रही है कि उस वंच भी कोई जी यात्रा वा ये सही तरीके नाल शुरू हो के तो संपन्न सही तरीके नाल हो जाए, कोई भी अनसुखामी घटना ना वापरे। उन्हों की डायरेक्शन से ही ये रेगूलर काम जोड़ा चलता रहेगा। नाल ही साढ़े माणयोग SSP पठानकोट जी वालों भी इस तो पहला भी रेगूलर ही सर्च ऑपरेशन से फूड पेट्रोलिंग भीड़ भड़ा वाली जगह पर चैकिंग ये रेगूलर चल रही है, तो उन्हों की डायरेक्शन से ही ये रेगूलर सारे काम हो रहे हैं जो रेगूलर आने वाले समय चलता रहे।
0: सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी चिकित्सा सहायता केंद्र 28 जून तक पूरी तरह शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन बूथ 25 जून तक ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से सेवा दल और लंगर कमेटियों के सदस्य अमरनाथ पहुँचने लगे हैं। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन, चाय, दवाइयों समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सेवादारों ने अमरनाथ धाम की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।
3: आज लंगर कमेटी जो है हमारे बाबा अमरनाथ के लंगर लगाने जा रहे हैं। बहुत भव्य लंगर लगाते हैं हर साल ये महाराज के चरणों में। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि यात्रा कोई असुविधा ना हो। हर जगह आप देखें, आज हमें प्रवेश द्वार लखनपुर में इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
0: सेवा समितियों की तरफ से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: हमारा पशुपतिनाथ का लंगर जो गुफा पे है, इसकी 5 गाड़ियां ऑलरेडी 5 तारीख को गुफा पहुंच चुकी है, जो बालटाल बेस कैंप को तैयार कर चुकी है। अब वो टीम ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ से 18 ट्रकों की सामग्री लेके यहाँ से अब बालटाल की तरफ कूच कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा सारा सामान गुफा की तरफ जाएगा और अमरनाथ बर्फानी के जो दर्शनों पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष लंगर, प्लस इस साल हमारी संस्था के द्वारा लगभग 50 मसाजर मशीनों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। एक हॉल बनाया जा रहा है जिसमें यात्री विश्राम करके अपने पैरों को सुकून देंगे।
0: जाहिर है आस्था, सेवा और सुरक्षा की त्रिवेणी के बीच अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। एक ओर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर सेवा समितियों यात्रियों के स्वागत और सहायता के लिए जोर शोर से जुटी हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। बता दें, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिनों तक चलेगी। पठानकोट से पवन सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने और कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 347 अंकों की बढ़त के साथ 77,155 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 24,085 पर बंद हुआ। रुपए की मजबूती और वीक ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 4800 रुपए गिर गया और ये 1,54,400 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5300 रुपए गिरकर 2,55,400 रुपए पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वेस्ट एशिया में तनाव खत्म होने से 17 जून को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 94.50 के स्तर पर बंद हुआ।
5: कल के टू से जुड़ा बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम, तो एनिमेशन कैरेक्टर श्रेक की 17 साल बाद वापसी। जी हाँ, आ गया है श्रेक 5 का ट्रेलर। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
7: बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम मेगा मूवी कल्की 2 से जुड़ने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। चर्चा है कि आलिया भट्ट कल्की 2 में अहम किरदार निभा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने हैदराबाद में फिल्म के लिए शुरुआती शूटिंग शुरू कर ली है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाई। इस फिल्म में आलिया को दीपिका पादुकोण की जगह कास्ट किया गया है या फिर उनका अलग किरदार है, इसके बारे में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इस रहस्य से पर्दा उठने में अभी वक्त है, क्योंकि फिल्म के दिसंबर में रिलीज होने की चर्चा है। बड़े पर्दे पर अभिनेत्री शर्वरी वाघ और कार्तिक आर्यन की जोड़ी धमाल मचाने वाली है। खबर है कि मशहूर डायरेक्टर लव रंजन की अगली फिल्म में दोनों एक साथ दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लव रंजन अपनी अगली फिल्म के लिए शर्वरी को फीमेल लीड के रूप में कास्ट करने पर सोच रहे हैं। हालांकि अभी तक फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शर्वरी ने इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लव रंजन इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वो कार्तिक और शर्वरी को पूरी स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद शर्वरी फिल्म पर अपना आखिरी फैसला लेंगी।

0: जी।
1: फिल्म तेरा मेरा नाता का ट्रेलर आ गया है। रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि कुछ रिश्ते किस्मत पे लिखे होते हैं, कुछ प्यार से बनते हैं, कुछ हमेशा के लिए कायम रहते हैं। रिश्तों के ऐसे ही ताने बाने को लेकर फिल्म तेरा मेरा नाता, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सूरज, अंबिका वाणी, दीपिका चिखलिया, पंकज बेरी और मेघना मुख्य किरदार में है। सीपी प्रोडक्शन के सहयोग से ब्लू डायमंड प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म तेरा मेरा नाता 26 जून को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म को चंदा पटेल ने प्रोड्यूस किया है। इसका निर्देशन चंदा पटेल और स्वतंत्र गोयल ने मिलकर किया है। एनिमेशन की दुनिया से गुड न्यूज आई है, क्योंकि दर्शकों को हंसाने के लिए एक बार फिर से आ रहे हैं श्रेक, योना और डंकी। श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इसी के साथ करीब 17 साल के बाद श्रेक की वापसी ने इस एनिमेशन सीक्वल के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। इस नए सीक्वल के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब श्रेक 5 का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई। श्रेक 5 अगले साल 30 जून को रिलीज होने जा रही है और इसके ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। पैनोरमा स्टूडियोज और जैकब बाबू मिलकर फहाद फासिल की मुख्य भूमिका वाली दो मलयालम फिल्म बनाएंगे। मलयालम में बनी दृश्यम 3 की जबरदस्त सफलता के बाद पैनोरमा स्टूडियोज अब प्रोड्यूसर जैकब बाबू के साथ मिलकर दो मलयालम फिल्में बनाने पर काम कर रहे हैं। इन दोनों फिल्मों में फहाद फासिल मुख्य भूमिका में होंगे। ये फिल्में अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं और अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। डायरेक्टर, कास्ट, टेक्नीशियन और क्रिएटिव टीम के अन्य मुख्य सदस्यों के बारे में जल्द ही जानकारी सामने आने वाली है।
2: श्रीलंका में हो रही ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची इंडिया ए। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
3: श्रीलंका में हो रही वनडे ट्राई सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इंडिया ए ने अफगानिस्तान ए को 101 रनों से हरा दिया। कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्रा की अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंडिया ए ने 9 विकेट पर 319 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान ए को 36.5 ओवर में सिर्फ 218 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ इंडिया ए ने टूर्नामेंट में लगातार दो हार का सिलसिला तोड़ा और रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के खिलाफ रनों का पहाड़ खड़ा कर 403 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत पहली बार ऑल आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल ने 154 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक।
5: It's stormy and previously on my show Carly Pierce shared why she loves award show season.
6: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
5: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और जीएनटी स्पेशल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बुलेटिन में ब्रेक लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं उस ब्रेक की जो मॉनसून ने इन दिनों ले रखा है। देखिए, मॉनसून ने देश में अपने तय समय के आसपास एंट्री मारी थी, फिर मॉनसून की राहों में न जाने किससे मुलाकात हो गई। देखिए, हुआ कुछ ऐसा जिससे सभी डरते थे, वही बात हो गई है। देखिए, मॉनसून का सारा टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया है। 4 जून को मॉनसून केरल को भिगोने पहुंचा था। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक उत्तर पश्चिम भारत की दहलीज तक पहुंच जाना था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मॉनसून जहां था वहीं का वहीं अटका हुआ है। दक्षिण और उत्तर पूर्व को भिगोने के बाद मॉनसून की रफ्तार पर मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के लिए मॉनसून का इंतजार लंबा खिंच रहा है। ये बात और है कि इस इंतजार को थोड़ा आसान बनाया है प्री मॉनसून की बारिश ने। देखिए, लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को कम से कम जून की गर्मी से राहत दे रहे हैं, लेकिन ये फौरी राहत है, मॉनसून का इंतजार अभी भी सबको है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर भारत में मॉनसून कब दस्तक देने वाला है और ये कौन है जो मॉनसून की राह रोके खड़ा हुआ है।

बड़ी उम्मीद, बड़े इंतजार के बाद मॉनसून ने सागर की दहलीज लांघकर भारत के भीतर प्रवेश किया था। मौसम के पांव बादलों पर पड़े तो मानो बूंदों को पंख लग गए। ऐसे झूम के बरसे बदरा कि दक्षिण की धरती गमक उठी।

0: अपने तय समय के आसपास जून की उंगली थाम मॉनसून के बादल आ पहुँचे थे। सो लगा कि अब बस बढ़ते चले आएंगे और हमेशा की तरह जून खत्म होने से पहले पूरे देश को तर बतर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घड़ी का कांटा भी चलता रहा और कैलेंडर पर तारीखें बदलने का सिलसिला भी, लेकिन मॉनसूनी बादलों के पांव थम गए। तय रूटीन के हिसाब से मॉनसून को अब तक काफी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मॉनसून के बादल दक्षिण, उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा तय करके वहीं ठिटक गए। ऐसा लगा मानो कोई मेहमान घर तो आया पर किसी बात का बुरा मान अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। 8 जून के बाद से मॉनसून देश के पश्चिमी तट के आसपास लगभग स्थिर है। मॉनसून के अटकने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन नहीं बनने को माना जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जून का तीसरा हफ्ता आते आते मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर से बादल लगभग गायब दिखे। आमतौर पर 15 जून तक भारत का बड़ा हिस्सा मानसूनी बादलों की मोटी चादर से ढका दिखाई देता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग नजर आई।
1: इस बीच भारत की चिंता इस बात की है कि मॉनसून कमजोर पड़ रहा है, उसकी रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है और जून के महीने में ही अब तक 64% कम बरसात हुई है। इतना ही नहीं, दरअसल अगर मैं आपको ये कहूं कि मौसम विभाग पर ये जो सैटेलाइट पिक्चर हैं, इनमें दिखाई दे रहा है कि मानो जैसे अरब सागर के पास पश्चिम भारत से बादल ही चोरी हो गए। अब ये देखिए पूरा इलाका ये अरब सागर का इलाका है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगे बढ़ा है कि उसके बाद वो केरल होते हुए आगे जब बढ़ना चाहिए इसे कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र, इन इलाकों में दरअसल इस समय बादलों का डेरा होना चाहिए, लेकिन यहां से ऐसा लगता है कि बादलों को मानो किसी ने चुरा लिया हो और फिर इस महाराष्ट्र के ऊपर होते हुए गुजरात तक आगे जाने के लिए यहां पर मानसून की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर हो गई है। बादलों का बिल्कुल नदारद हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन ये सिर्फ अरब सागर में नहीं, इन्हीं सैटेलाइट पिक्चर्स को अगर मैं देखता यहां जो बे ऑफ बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल में भी अगर आप देखेंगे तो आगे आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और उसकी जो स्थिति आगे पश्चिम बंगाल की ओर जानी चाहिए, यहां पर भी बादलों की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई पड़ती है इन सैटेलाइट तस्वीरों में।
0: सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर इस बार मॉनसून के बादलों ने मुंह क्यों मोड़ लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब जमीन पर नहीं बल्कि धरती से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में छुपा है। ऊपरी वायुमंडल में इस समय हवाओं की एक ऐसी जंग चल रही है जिसने मॉनसून की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। आमतौर पर पूर्व से बहने वाली हवाएं जिन्हें ईस्टर्ली जेट कहा जाता है हवा को ऊपर उठाने का काम करती हैं। इसी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है, वो है पश्चिम से बहने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर दक्षिण की ओर खिसक गई है। यानी मॉनसून के बादलों के बीच इस वक्त एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, मॉनसून कैसे आगे बढ़ेगा। अभी के हालात में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों तक पहुंचकर भी बारिश में तब्दील नहीं हो पा रही। बादल बन रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे, नमी आ रही है लेकिन बरस नहीं रही, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि मॉनसून गायब हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी जो हालात हैं उसे मॉनसून का गायब होना नहीं बल्कि मॉनसून का पॉज होना माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मॉनसून कहीं गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ठहर गया है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि जिन हवाओं के पैटर्न ने बादलों को रोक रखा है वो पैटर्न कमजोर पड़ने जा रहा है, मतलब जैसे ही बाधा हटेगी मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है।
1: ऐसे में मौसम विभाग को लगता है कि 20 जून के बाद अगर जब मौसम अपनी रफ्तार पकड़ेगा तब मॉनसून की रफ्तार बारिश लेकर के आएगी, और ऐसे में पश्चिम भारत खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे में जहां आमतौर पर 9 से 11 जून के बीच बरसात होती थी मॉनसून तट तक पहुंचता था, उसमें भी काफी देरी है, जो कि पहले 2019 और उसके पहले 2023 में ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 25 जून की तारीख भी बीत सकती है। यानी मॉनसून का इंतजार पूरे भारत के लिए अभी लंबा है।
0: वैसे मॉनसून का इंतजार भले लंबा खिंच रहा हो, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में एक के बाद एक लगातार सक्रिय होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि ये मॉनसून की बारिश नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हुई बारिश है। इस बारिश के चलते जम्मू से लेकर हिमाचल और दिल्ली तक मौसम सुहाना चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है।
2: एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभाव करेगा और 18 तारीख से, उसके कारण पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और अगर आप NCR दिल्ली की बात करें तो NCR दिल्ली के लिए हमने फिर से 20 और 21 के लिए लाइट रेनफॉल का फोरकास्ट दे रखा है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंटिन्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम है।
0: रही बात मॉनसून के आगे बढ़ने की, तो संकेत यही है कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ने के हालात बन रहे हैं। जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मॉनसून दोबारा एक्टिव होगा। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में बादल आएंगे और जमकर बरसेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो देखिए, अच्छी बात यह है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में पिछले दिनों से प्री मॉनसून गतिविधियां दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्री मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी ही सही लेकिन कुछ राहत तो जरूर मिली है। देखिए, मौसम विभाग भी इशारा कर रहा है कि मॉनसून का ब्रेक जल्द ही खत्म होने वाला है और उसी का संकेत है तेज हवाएं और गरज चमक के साथ अलग अलग जगहों पर हो रही ये बारिश। ये मॉनसून नहीं है, ये प्री मॉनसून है, ये समझने वाली बात है। दरअसल प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग आखिरकार कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न होता नहीं है। ये देश के दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले चली भी जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। देखिए, मॉनसून के बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार और लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। देखिए, मॉनसून की बारिश कभी तेज होती है तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का जो सिलसिला होता है वो भी चलता रहता है। जबकि बात अगर हम प्री मॉनसून बारिश की करें तो प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं देखने को मिलती हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं।

0: मानसून के इंतजार और प्री मानसून की जोरदार बारिश के बीच ही एक पैटर्न लगातार बनता दिख रहा है। देखिए, आजकल उत्तर भारत के कई जिलों में आंधी और तेज बारिश को लेकर फोन पर अपडेट आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, आपको भी आए होंगे। देखिए, मौसम बिगड़ने की चेतावनी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, लेकिन इस अलर्ट और अपडेट के बाद कई बार ये हो रहा है कि वास्तव में बारिश होती ही नहीं है। क्या ये टेक्निकल मिसकैलकुलेशन है? मौसम बिगड़ने वाला है, इस प्रिडिक्शन के पैरामीटर्स आखिर क्या है, ये हमने जानने की कोशिश की मौसम विभाग से ही।
1: देखिए, विशेष रूप से मानसून आने से जो पहले का पीरियड होता है, इसमें खासकर पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें तेज मेघ गर्जन, तेज गस्टी विंड्स और लाइटनिंग के साथ में रेनफॉल होने की एक्टिविटी ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो ऐसे में ये जो थंडरस्टॉर्म सिस्टम्स हैं, ये सामान्यतया शॉर्ट लिविंग फिनोमिना होती है, यानी कि पूरे दिन भर ऐसा वेदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्टिव सिस्टम होता है। खासकर दोपहर और शाम के समय इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तो जो अलर्ट्स और जो समटाइम्स शॉर्ट रेंज के लिए जो पूर्वानुमान जारी किए जा रहा है मौसम विभाग से, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिकली रडार, सैटेलाइट और न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बेस्ड आधार पर ही दिए जा रहे हैं। और जो इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि एक से दो घंटे के लिए, यानी ये शॉर्ट लिविंग फिनोमेना होती है, और कभी कभी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी इंटेंस भी थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ जो है ये देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो थंडरस्टॉर्म टाइप के जो सिस्टम्स हैं ये ज़रूर एक दो घंटे के होते हैं। हो सकता है कि दिन में पूरे दिन भर ऐसे सिस्टम आपको ना दिखें, दिन में हो सकता है कि सामान्य वेदर रहे, लेकिन शाम के टाइम, दोपहर बाद या कभी कभी रात के समय में भी इस टाइप के कन्वेक्टिव सिस्टम्स डेवलप होते हैं, और ऐसे में सीवियर थंडरस्टॉर्म से बचाने के लिए ही जो IMD का जो गाइडलाइंस हैं या SOP बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलर्ट्स जारी किए जाते हैं।
0: तो देखिए, मानसून का इंतजार हम सभी को है, और इस इंतजार के बीच काशी में बारिश के लिए एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ संगीत प्रेमी पारंपरिक मेघ राग का गायन कर इंद्रदेव से बरखा के गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मान्यता है कि मेघ राग के सुर प्रकृति को प्रसन्न कर बारिश का संदेश लेकर आते हैं।

0: आवाज देती ये काशी की साधना है। अस्सी घाट पर शहनाई की ये धुन बादलों को बुला रही है। प्रकृति से काशी के संवाद का ये अनूठा तरीका है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्न हैं, जो अस्सी घाट पर राग मेघ से बारिश को काशी आने का न्योता दे रहे हैं।
1: विगत 18-20 वर्षों से ये कार्यक्रम करता चला रहा हूँ, और जब कहीं बारिश नहीं होती है और सब जगह हो भी जाए तो काशी में नहीं होता तो मुझे तकलीफ होता है, और काशी में इस बार बहुत तगड़ा बारिश नहीं हुआ, बहुत विलम्ब हो गया है, और जीव जंतु इंसान देख ही रहे आप गर्मी से परेशान है, पंछियाँ भी परेशान हैं, मर रही हैं, तो इसलिए इनके जीवोद्धार के लिए और माँ गंगा के श्री चरणों में आके मैं पूजा पाठ करता हूँ, और उनको जो हमारे पास अंग वस्त्र वगैरह रहता है माँ को चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती माला फूल से पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान भास्कर भगवान इंद्र को मैं प्रसन्न करने के लिए मैं अपना राग मेघ प्रस्तुत करता हूँ।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग मेघ का अपना खास महत्व है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है और सदियों से इसे मेघों और बारिश का राग कहा जाता रहा है। कहते हैं कि राग मेघ प्रकृति के साथ संगीत का अनूठा साक्षात्कार है। यही वजह है कि जब काशी कड़ी धूप में तप रही होती है तो ये राग बादलों को बुलाकर उस तपस्या को पूरा करता है।
1: इसलिए मैं गंगा मैया के चरणों में ही अपने आंचल में उनके मैं बजाता हूँ और भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य करता हूँ, और भगवान इंद्र निश्चय, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से माँ गंगा का आशीर्वाद है कि 36 घंटे में बढ़िया बारिश होगा। ये रीवा घाट है, रिमझिम फुहारों के साथ बारिश होगा, बढ़िया बारिश होगा, और काशी को राहत मिलेगा, गर्मी से निजात मिलेगा।
0: काशी में गूंजे इन सुरों ने भले बादलों को द्योता भेज दिया हो, लेकिन ये साधना सभी के लिए है। उत्तर भारत तक पहुंचने में मॉनसून जिस तरह वक्त ले रहा है उसने हर किसी को बेचैन कर रखा है। उम्मीद यही है कि काशी में गूंजा ये राग मेघ लोगों की मुराद पूरी करेगा और मॉनसून जल्द काशी समेत समूचे उत्तर भारत में राहत बनकर बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मॉनसून का इंतजार हम सभी को रहेगा। बहरहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम
1: से। एग्जाम को लेकर जो 3 दिन बाद यानी कि 21 जून को होने जा रहा है, इसे लेकर छात्र इन दिनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। वहीं सरकार ने भी री एग्जाम को बिना किसी गड़बड़ी के करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पेपर पहुंचाने के लिए एयरफोर्स मॉक ड्रिल कर रहा है।
2: इस बार बस पेपर फेयर कंडक्ट हो,
3: जो डिजर्व करते हैं बच्चे मेडिकल में जाने के लिए, और वही मेडिकल में जाएंगे।
2: मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा आ जाए जैसे पिछली बार हुआ था। बट वी रियली होपिंग कि बहुत फेयरली हो विदाउट एनी चीटिंग।
1: देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट री एग्जाम की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने बिना किसी गड़बड़ी के री एग्जाम कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही है। और यही वजह है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए पहली बार एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से आई हैं, जहां परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को मदुरई से तिरुनेलवेली तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मॉक ड्रिल की गई। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को पहले विमान के जरिए दिल्ली से मदुरई ले जाया गया, इसके बाद उन्हें वायुसेना के अधिकारियों की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से तिरुनेलवेली आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड तक पहुंचाया गया, ताकि पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए।
4: मई महीने में हुआ नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक होने के बाद देखा जा रहा है कि देश भर में इस मामले को लेकर नेशनल टेस्ट एजेंसी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पहले तो पेपर को रद्द कर दिया गया, साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई, और फिर इसका री एग्जामिनेशन।

0: किया गया, जिसको बस अब 3 दिन का ही वक्त बाकी रह गया और इसको लेकर भी सुरक्षा के जो प्रबंध है वो बढ़ा दिए गए हैं। देश में पहली बार देखा जाएगा कि किसी प्रवेश परीक्षा के लिए देश की आर्मी और साथ ही एयरफोर्स दोनों की मदद ली जाएगी। एयरफोर्स जो परीक्षा केंद्रों तक जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो पहुंचाएंगे और साथ ही जो आर्मी है परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में मदद करेगी।
1: एयरफोर्स की मदद लेने के अलावा सरकार इस बार सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखे हुए है। इसी चौकसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी बंद रहेगा। एनटीए ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
2: So we had had a meeting with the telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a neat leak paper. The moment you are allowing that, any platform, whenever you create an account on Google or Gmail, it says what you can, what you cannot. So we had made a request that please do not allow. And after informing them about a channel, they would block them. We had to block 200 channels.
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए तैयारियों में जोर शोर से जुटी हैं, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई है। वहां सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान एसपी प्रवीण नायक ने पिपराली रोड पर मौजूद विभिन्न हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स में जाकर तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से बात की, जिसमें उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। साथ ही साथ परीक्षा से जुड़ी कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील भी की है।
3: जो नेक्स्ट 21 जून को जो नीट एग्जाम होने वाले हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में आज पूरे पुलिस के द्वारा पूरा कोचिंग इलाके अंदर हमने फ्लैग मार्च और भ्रमण किया गया था और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत भी किया था। तो उनसे ये जानकारी लिया गया कि कोई भी चीज़ें अफवाह या कुछ भी चीज़ें अगर आपके इनके न्यूज़ संज्ञान में आ रहे हैं तो हमारे नॉलेज में लेके आए और उसके ऊपर हम एक्शन कर सकते। इसके बारे में सबसे बातचीत किया गया था, उनकी प्रिपरेशन के बारे में भी बातचीत किया था बच्चों से। इसके साथ साथ हमने जो भी नीट एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना अगर कोई हमें देना चाहता है तो उसके एक मोबाइल नंबर हमने जारी किया था, तो उसके बारे में भी सभी बच्चों को हमने बताया।
1: री एग्जाम के लिए एनटीए और सरकार की कोशिशों को देखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस बार फ्री एंड फेयर एग्जाम की उम्मीद भी जताई है।
4: जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था तो एग्जाम रद्द हो गया था और इस बार फिर वो एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है और इस बार उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है?
5: अनन्या।
4: अनन्या, पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया था नीट का?
5: जी सर।
4: तो अब दोबारा आप री एग्जामिनेशन में 21 जून को बैठ रहे हैं?
5: जी सर।
4: तो अब कितना अप्रीहेंशन है? इस बार सरकार ने काफी एयरफोर्स भी लगा दी है पेपर्स को ट्रांसफर करने के लिए और टेलीग्राम को भी बंद किया है कहा जा रहा है और भी मेजर्स ले रहे हैं, तो किस तरह की अप्रीहेंशन है स्टूडेंट?
5: सर, आई एक्सपेक्ट कि पेपर सही से हो, फेयरली कंडक्ट हो। पिछली बार हमारी मेहनत तो वेस्ट गई थी, हमने 3 महीने के लिए स्ट्रेटजाइज किया हुआ था पूरा और वो पूरी चीज उल्टी पड़ गई हमारे ऊपर ही। तो वी आर होपिंग कि इस बार ही अच्छा हो।
4: इस बार सरकार ने बड़े अरेंजमेंट्स किए हैं इसको फुल प्रूफ रखने के लिए कि कोई लीक्स ना रहे, तो किस तरह देखते हैं उसको?
6: हम होप तो यही कर रहे हैं कि इस बार लीक नहीं होएगा पेपर, लेकिन एक वो चीज होती है कि पहले जब हमने तैयारी कर रहे थे तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी हमारी तैयारी करने की, उसके बाद फिर हम घर गए, उसके बाद आफ्टर 10 डेज हमें पता चल रहा है कि दोबारा पेपर करना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज एक मेंटल हैरेसमेंट थी हमारे लिए थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब उसी तरीके से अब तैयारी कर रहे हैं।
7: गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा भी अच्छा हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था।
8: आई होप कि इस बार ना हो ली, क्योंकि काफी जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं इस बार तो
4: कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी रोज की?
8: 14-15 घंटे तो रोज।
1: कुल मिलाकर कोशिश इस बार यही है कि नीट यूजी जैसी अहम परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से हो, जिससे दिन रात मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो पाए। दिल्ली से अनमोल बाली, चंडीगढ़ से असीम बस्सी और सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के शंघाई में जश्न का एक अलग ही रंग देखने को मिला। यहां खुशियों का ऐसा मेला सजा जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौका था शंघाई डिज्नीलैंड की स्थापना के 10 साल पूरे होने का और इस खास अवसर पर पूरे पार्क को रंगों रोशनी और सपनों की दुनिया में

0: बदल दिया गया।
1: डिज्नीलैंड, नाम सुनते ही सपनों की दुनिया आकार लेने लगती है, कहानियां चल पड़ती हैं। ऊंचा महल, डिज्नी की राजकुमारियां, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, एना, एल्सा और भी बहुत सारे। 15 जून की शाम ये सारे किरदार एक साथ नजर आए। मौका था डिज्नीलैंड की स्थापना के 10वीं सालगिरह का, जिसे चीन के शंघाई में धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया, आतिशबाजी हुई और लोगों ने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। साल 2016 में शुरू हुआ शंघाई डिज्नीलैंड आज चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ऐसे में इसकी 10वीं सालगिरह पर पूरे पार्क की खास सजावट की गई, विशेष परेड निकाली गई, जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। शाम होते ही भव्य लाइट एंड साउंड शो और आतिशबाजी ने दर्शकों का मन मोह लिया। डिज्नी के अधिकारी और चीन के एंटरटेनमेंट जगत की मशहूर हस्तियां इस जश्न में शामिल हुई और कार्यक्रम का समापन मैजिक टुगेदर गाने के साथ हुआ। पिछले 10 सालों में शंघाई डिज्नीलैंड ने चीन के पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है। करोड़ों लोग अब तक इस थीम पार्क की सैर कर चुके हैं। थीम्ड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2016 में खुलने के बाद से इस रिजॉर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। शंघाई डिज्नीलैंड चीन का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला थीम पार्क बना हुआ है और ये दुनिया के टॉप 5 थीम पार्कों में शामिल है। ऐसे में कामयाबी के 10 साल का जश्न तो बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: वेमेन T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को दी 95 रनों से मात, 114 रन पर ऑल आउट हुई टीम। भारत ने दिया था 210 रन का लक्ष्य। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत, यूएस प्रेसिडेंट ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा जब तक मोदी हैं दुनिया में भारत का बड़ा रोल। भारत चीन सीमा से सटा पवित्र देवता श्रद्धालुओं से गुलजार, बर्फ से ढका नजर आया 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र स्थान। सनातन धर्म में इसे देवताओं की ताल कहा गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, चंदनकोट का यात्री निवास श्रद्धालु के स्वागत के लिए तैयार, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैलानियों से गुलजार हुई शमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, विश्व धरोहर सूची में शामिल है नंदा देवी नेशनल पार्क।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
5: आइए शुरू करते हैं न्यूज पद पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा ओडिशा के रायगढ़ के राजा महोत्सव के यहाँ, जहाँ ओडिशा के पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पारंपरिक लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लिया जा रहा है।